3 जून सन 2026 प्रातः के 5:57 होने को हैं। आरंभ होती है हमारी आज की प्रातःकालीन सभा।

मीडियम वेव 241.54 मीटर अर्थात 1242 किलोहर्ट्स, न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप डीटीएच और डीआरएम 1233 किलोहर्ट्स पर ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। आज बुधवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की 13वीं तिथि। तदनुसार

0: मीडियम वेव 241.54 मीटर अर्थात 1242 किलोहर्ट्ज़, न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप, डीटीएच और डीआरएम 1233 किलोहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। प्रातः के 6 बजने को हैं, कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। सरकार ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE द्वारा ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली के लिए सेवा अनुबंध से संबंधित मामलों की जांच के लिए एक सदस्यीय समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता क्षमता निर्माण आयोग की अध्यक्ष एस राधा चौहान करेंगी। समिति 1 माह के भीतर कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। बोर्ड ने कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों के लिए उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियों में पाई गई त्रुटियों के सत्यापन और उत्तरों के पुनर्मूल्यांकन के लिए ऑनलाइन पोर्टल खोल दिया है। वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिग्ज आज से 4 दिन की भारत यात्रा पर रहेंगी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कल नई दिल्ली में बताया कि उनके साथ उनके मंत्रिमंडल के प्रमुख मंत्री भी होंगे और वे इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगी। विजिट ऑफ
2: द एक्टिंग प्रेसिडेंट। वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति की भारत यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगी। इन वार्ताओं में भारत वेनेजुएला संबंधों के सभी पहलुओं पर चर्चा होगी और ऊर्जा, व्यापार, निवेश, फार्मास्यूटिकल्स, स्वास्थ्य सेवा, परिवहन तथा नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्रों में सहयोग के अवसरों की खोज पर भी चर्चा होगी। ट्रांसपोर्टेशन एंड रिन्यूएबल एनर्जी।
1: भारत ने

0: पाल के साथ सीमा विवाद सुलझाने में तीसरे पक्ष की किसी भी तरह की भूमिका को खारिज कर दिया है। कुछ दिन पहले नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने लंबित सीमा विवाद को सुलझाने में चीन और ब्रिटेन के शामिल होने की मांग की थी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि सीमा मुद्दों के सभी पहलुओं को सुलझाने के लिए स्थापित द्विपक्षीय तंत्र मौजूद है।
1: भारत नेपाल सीमा का लगभग 98% हिस्सा निर्धारित हो चुका है। सीमा के निर्धारित हिस्सों में सीमा पार कब्जे और नो मैन्स लैंड पर अतिक्रमण के मामले भी हैं, जिसका संयुक्त रूप से मानचित्रण किया जा रहा है। हमने सीमा संबंधित सभी मामलों से निपटने के लिए द्विपक्षीय तंत्र स्थापित किए हैं। भारत और नेपाल के बीच जो भी द्विपक्षीय मामले हैं, उसमें किसी तरह से तीसरे पक्ष की कोई भूमिका नहीं है।
0: जर्मनी से होकर हवाई मार्ग से यात्रा करने वाले भारतीय नागरिकों के लिए ट्रांजिट वीजा की अनिवार्यता आज से समाप्त हो गई है। भारत ने इस फैसले का स्वागत किया है। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस नई व्यवस्था से भारत और जर्मनी के बीच लोगों के आपसी संपर्क और संबंधों को मजबूती मिलेगी। जम्मू कश्मीर में पंचायत और जिला विकास परिषद चुनावों की तैयारियों की समीक्षा के लिए राज्य निर्वाचन आयोग की 2 दिवसीय उच्च स्तरीय बैठक आज से शुरू होगी। बैठक की अध्यक्षता राज्य निर्वाचन आयुक्त शांतमनु करेंगे। जनजातीय कार्य मंत्रालय आज नई दिल्ली में एकीकृत जनजातीय विकास एजेंसियों और एकीकृत जनजातीय विकास परियोजनाओं को सुदृढ़ करने पर राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित करेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगी। यह आयोजन जनजातीय गरिमा उत्सव 2026 के अंतर्गत हो रहा है। पश्चिम बंगाल सरकार आज अन्नपूर्णा योजना का शुभारंभ करेगी। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी इसका औपचारिक उद्घाटन करेंगे। मुख्यमंत्री के संबोधन के तुरंत बाद लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र वितरित किए जाएंगे। प्रत्येक ब्लॉक नगर पालिका और कोलकाता नगर निगम क्षेत्र में चयनित 100 लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र वितरित किए जाएंगे। बांग्लादेश के विदेश मंत्री खलीलुर रहमान संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं। उनका कार्यकाल इस वर्ष सितंबर से शुरू होगा। तीसरे और अंतिम महिला T20 क्रिकेट मैच में भारत को इंग्लैंड से 6 विकेट से हार का सामना करना पड़ा। इंग्लैंड ने श्रृंखला 2-1 से अपने नाम कर ली है। इंग्लैंड के टॉन्टन में खेले गए इस मुकाबले में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड को 181 रन का लक्ष्य दिया। इंग्लैंड ने 18 ओवर और 3 गेंद में 4 विकेट पर 184 रन बनाकर मैच अपने नाम कर लिया। मौसम विभाग ने आंध्र प्रदेश के तटवर्ती इलाकों गुजरात, ओडिशा, राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश में गरज और तेज हवाओं के साथ वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, सिक्किम में भी वर्षा की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीडियम वेव 241.54 मीटर अर्थात 1242 किलोहर्ट्स, न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और DRM 1233 किलोहर्ट्स पर हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है खेती की बातें कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में सुनिए मूंगफली की खेती विषय पर जानकारी। जानकारी दे रहे हैं दिनेश कुमार सिंह।
3: किसान भाइयों, आज हम मूंगफली की खेती के बारे में चर्चा करेंगे। 15 जून से इसकी बुआई शुरू हो जाती है और जुलाई के प्रथम सप्ताह तक इसकी बुआई कर सकते हैं। अगर आप लोग इसकी खेती करना चाहते हैं तो जान लें कि इसकी जो प्रजातियां हैं वह 3 तरह की होती हैं। एक तो वह प्रजातियां हैं जो सीधे बढ़ती हैं, दूसरी वह प्रजातियां हैं जो सीधे न बढ़कर फैलने वाली होती हैं, तथा तीसरी प्रजातियों में इन दोनों प्रकार का मिला जुला गुण होता है। टाइप 64 गुच्छेदार प्रजाति है, यानी सीधी बढ़ने वाली। इसकी एक फली में 2 दाने होते हैं तथा 1 एकड़ में इससे 8 से 10 क्विंटल तक उपज मिल जाती है। टाइप 28 फैलने वाली प्रजाति है, इसकी एक फली में 3 दाने होते हैं, यह 130 से 135 दिन में तैयार हो जाती है। चंद्रा, जिसे AH-104 कहते हैं, यह भी फैलने वाली प्रजाति है तथा 130 से 135 दिन में तैयार होती है। मूंगफली की एक प्रजाति M-13 है, यानी M-13, जो कि फैलने वाली प्रजाति है। इसके दाने बड़े होते हैं,

0: 135 से 140 दिन में तैयार होती है। मूंगफली की दो अच्छी प्रजातियां और हैं, एक चित्रा जिसे MA10 कहते हैं और दूसरी कौशल। चित्रा कम फैलने वाली प्रजाति है, 125 से 130 दिन में तैयार होती है, तथा कौशल जो कि गुच्छेदार प्रजाति है। इनमें से जो भी प्रजातियां आप चाहें लेकर के बुआई करें। अगर आपके पास सिंचाई के साधन हैं तब तो आप 15 जून से बुआई कर सकते हैं। अगर वर्षा पर आधारित खेती कर रहे हैं तो 25 जून से जुलाई के प्रथम सप्ताह तक इसकी बुआई कर सकते हैं। यदि पहले बुआई कर देते हैं तो बीज में जमाव पहले हो जाता है और ये पौधे बरसात के पानी का लाभ शुरू से उठाने लगते हैं और फिर इनसे अच्छी उपज मिलती है। अगर बुआई में देरी करते हैं तो मूंगफली की उपज घट सकती है। मूंगफली की जड़ें वैसे तो काफ़ी गहराई तक जाती हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप खूब गहरी जुताई करके खेत तैयार करें। अगर आप गहरी जुताई करते हैं तो मूंगफली की फलियां ज़मीन में काफ़ी गहराई पर बनेंगी, जिससे बाद में इनकी खुदाई करने में दिक्कत होगी। खेत को हल्का यानी कि 12 से 18 सेंटीमीटर गहरा जोतना चाहिए। दो तीन जुताई करके और फिर पाटा लगाकर खेत को तैयार कर लेते हैं। मूंगफली की अच्छी पैदावार के लिए उर्वरकों का प्रयोग अति आवश्यक है। उचित तो यह है कि उर्वरक मिट्टी की जांच कराकर दिए जाएं, लेकिन अगर आप मिट्टी की जांच नहीं करा सके हैं तो वैज्ञानिकों द्वारा जो सामान्य मात्रा संस्तुत है उसे प्रयोग करें। चूंकि यह दलहनी फसल है और इसकी जड़ों में नत्रजन बनाने की शक्ति होती है, अतः इसे नत्रजन कम दिया जाता है। खेत तैयार करते समय प्रति एकड़ की दर से लगभग 13 किलोग्राम यूरिया, 75 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट और लगभग 28 किलोग्राम म्यूरेटा पोटाश, ये सब खेत में कुण में बीज से करीब 2-3 सेंटीमीटर नीचे देना चाहिए। जब फसल लगभग 3 सप्ताह की हो जाती है तो लगभग 1.5 किलोग्राम बोरेक्स खड़ी फसल में बुरक देना चाहिए और फिर खेत में हल्की गुड़ाई करके इसे मिट्टी में मिला देते हैं। मूंगफली का बीज उत्तम किस्म का होना चाहिए। इसकी फलियां जिसे बीज के लिए प्रयोग करना है उन्हें ठंडे, सूखे और हवादार जगह में रखना चाहिए। जब बुआई करना हो तो बुआई से 1 हफ्ता पहले हाथ से इन फलियों को तोड़कर दाने निकाल लेते हैं। दाना निकालने का कार्य बुआई के बहुत पहले नहीं करना चाहिए, नहीं तो बीज का जमाव घट सकता है। बोने से पहले बीज को उपचारित करना चाहिए, जिससे कुछ बीमारियों से फसल को बचाया जा सके। थीरम दवा की 2.5 ग्राम मात्रा 1 किलोग्राम बीज को शोधित करने के लिए पर्याप्त होती है। थीरम दवा से उपचार के बाद फिर बीज को विशिष्ट राइजोबियम कल्चर से भी उपचारित कर लेना चाहिए। तो इस तरह से इन सब बातों को ध्यान में रखकर मूंगफली की खेती करनी चाहिए।
1: मूंगफली की खेती, इस विषय पर अभी आपने ये जानकारी सुनी। जानकारी दे रहे थे दिनेश कुमार सिंह। इसी के साथ खेती की बातें कार्यक्रम अब संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना। मंगल करने वाले, बल बुद्धि देने वाले भगवान श्री गणेश को प्रातः नमन।

0: अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का दैनिक कार्यक्रम आराधना। आज के गायक कलाकार थे उस्ताद अहमद हुसैन, मोहम्मद हुसैन, लता मंगेशकर, अनूप जलोटा और सुधा मल्होत्रा। आकाशवाणी वाराणसी से अब प्रस्तुत है विचार बिंदु कार्यक्रम और आज विषय है मौन का महत्व।
1: मनुष्य का जीवन विचित्रताओं से भरा है। मनुष्य के जीवन में हर अनुभव, बात, विचार और व्यवहार के दो पहलू होते हैं, जैसे सुख दुख, जीत हार और सफलता असफलता। इसी तरह बोलना और मौन रहना भी है। प्रायः मनुष्यों और पशु पक्षियों में सबसे अधिक देखी जाने वाली भिन्नता वाणी की ही है। मनुष्य स्पष्ट और बोधगम्य भाषा के माध्यम से

0: अपनी वाणी प्रकट कर सकता है। इससे वो समाज में अपनी हर इच्छा अनिच्छा प्रकट करता है, जबकि पशु पक्षियों के लिए ये सुविधा नहीं है। उनके पास अपनी एक जनजात बोली है जिससे वे आपसी संवाद करते हैं। हमारे पास कई भाषाओं के जरिए बोलने के लिए बहुत सी बातें हैं, पर क्या कभी हमने विचार किया कि इतनी बातों को बोलकर हम इनके बदले अपने लिए क्या प्राप्त करते हैं? आज समाज में लोगों में वक्तृता की होड़ लगी है। यदि हम थोड़ी सी संवेदना रखें तो भीतर एक बात प्रकट होती है कि क्यों न इन परिस्थितियों में उलझने से बचें और मौन धारण करें। शायद मौन व्रत रखने का आरंभ ऐसी परिस्थितियों के कारण ही हुआ होगा। मौन शब्द मन से ही निकला है, मन यानी अंतःकरण की ओर उन्मुख होने की राह। लंबे समय तक मौन होकर व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का समुचित निरूपण कर सकता है। मात्र एक दिन के लिए मौन व्रत रखकर हम इसकी महत्ता से परिचित हो सकते हैं। जिस दिन हम चुप रहे और जिस दिन कुछ न कुछ बोलते रहे, दोनों दिन हमें विपरीत अनुभव कराते हैं। जिस दिन हम मुखर होते हैं, स्वयं और पास पड़ोस को केवल बाहरी दृष्टि से देखते हैं, वहीं जिस दिन हम मौन व्रत रखकर अपने दायित्व निभाते हैं, उसमें हमें स्वयं और संसार को देखने की एक उदार दृष्टि प्राप्त होती है। इस तरह यदि मौन रहने का अभ्यास प्रतिदिन ही हो तो हम स्वयं और संसार के लिए कितने उदार हो सकते हैं। इंद्रियों को नियंत्रण में रखने में ही सुख की कुंजी निहित है, और इंद्रियों को संयमित करने का एक उत्तम उपाय है मौन। अनादिकाल से ऋषि मुनियों ने मौन की महत्ता को स्वीकार किया है। गीता में भगवान श्री कृष्ण मौन को 5 तपों में से एक कहते हैं। वाणी का मौन मन की शांति के बिना असंभव है। मन को शांत करने के उपरांत ही सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और नए विचार आते हैं। मौन रहते समय हमारे विचारों का चयन, शोधन और परिमार्जन होता रहता है। परिणाम स्वरूप हम सर्वोत्तम विचारों को प्राप्त कर सकते हैं। मुनिजन मौन द्वारा प्राप्त इस सकारात्मक ऊर्जा को संचित कर परमार्थ सेवा करते हैं। प्रख्यात अमेरिकी कवि हेनरी लॉन्ग के अनुसार मौन और एकांत आत्मा के सर्वोत्तम मित्र हैं। मौन अवस्था में हम सही आत्मावलोकन कर सकते हैं। जिस प्रकार हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए निद्रा की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार हमारे मानसिक स्वास्थ्य के लिए मौन की जरूरत होती है। ज्ञान की शक्ति मौन है। महात्मा गांधी कहते थे कि मौन में अंतर शक्ति को जगाने की प्रभावशाली सामर्थ्य होती है। उनके अनुसार वो व्यक्ति जो अपने जीवन में निरंतर रूप से सत्य का शोध कर रहा हो, मौन साधना का ही पथ पकड़ता है। संसार के सबसे बड़े महाकाव्य महाभारत की रचना के समय महर्षि वेद व्यास जी के मुख से निकले वचनों को लिपिबद्ध करते समय गणेश जी मौन साधना में लीन रहे। मौन के महत्व का इससे बड़ा प्रमाण और क्या होगा? आज के समय में जब वाचालता को बुद्धिमत्ता से जोड़ दिया जाता है तो मौन की प्रासंगिकता और अधिक बढ़ जाती है। भूख लगने पर हम आवश्यकता अनुसार भोजन करते हैं, शारीरिक आवश्यकता अनुसार सोते हैं, लेकिन वाणी पर संयम कितना रखा जाए इसका ध्यान नहीं रखते। वाचालता ऊर्जा का व्यर्थ क्षरण है। तभी तो अधिकांश संत महात्मा मौन के उपासक रहे हैं।
1: मौन का महत्व, ये विषय था आज के विचार बिंदु कार्यक्रम का। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे हार्निया कारण लक्षण और बचाव विषय पर जानकारी। विशेषज्ञ हैं डॉक्टर प्रेम प्रकाश।
2: मैं डॉक्टर प्रेम प्रकाश हूं, एक कंसल्टेंट सर्जन एवं मेडिकल सुपरिटेंडेंट के रूप में पंडित दीनदयाल उपाध्याय राजकीय चिकित्सालय में कार्यरत हूं। कल हमने आपके बीच चर्चा रखी थी हर्निया, एक जो कॉमन डिजीज है, उसको परिभाषित करने का प्रयास किया था, कितने प्रकार के होते हैं, इस विषय पे चर्चा की थी और क्या कारण है, इस पे कुछ हमने अपनी बात रखी थी। आज उसी चर्चा को जारी रखते हुए कुछ और भी कारणों की चर्चा मैं आपके बीच रखूंगा। जिस पेशेंट को सीओपीडी की समस्या होती है,

0: सीओपीडी, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज या ऑब्स्ट्रक्टिव यूरोपैथी, पेशाब की जो तंत्र है, यूरोलॉजिकल जो सिस्टम है उसमें यदि किसी तरीके का ऑब्स्ट्रक्शन हो, या कॉन्स्टिपेशन की उनको समस्या हो, या प्रीवियस सर्जरी की बात हो, या माल न्यूट्रिशन हो, सफिशियंट अमाउंट में उनकी न्यूट्रिशन नहीं उनको मिल पा रही हो, एज ज्यादा हो, इसके अलावे कुछ और भी जो कि कॉन्जेनाइटल होती हैं, जो कि जेनेटिक होती हैं और उसके वजह से भी मांसपेशियों में कमजोरी आ जाती है, ये सारे भी कारण हैं हानिया के। इसके लक्षण क्या होते हैं? साधारणतया मरीज आकर के बोलते हैं कि डॉक्टर साहब, मैं जब भी खांसता हूँ, हंसता हूँ या कुछ भारी चीज उठा लेता हूँ तो एक उभार जैसा दिखता है, जो कि शुरुआती दिनों में तो लेट जाने पे वो उभार खत्म हो जाता था, लेकिन हो सकता है उस पे उन्होंने बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया हो, या कहीं लोकल के किसी चिकित्सालय में या किसी डॉक्टर से उन्होंने परामर्श किया हो, इसको सीरियसली नहीं लिया हो। ऐसी भी उत्पन्न हो सकती है कि वो उभार जो लेटने पे अपने आप अंदर चला जाता था वो अब ना जाए। कभी कभी हो सकता है कि जब आंत फंस जाए तो विंड पास करने में भी दिक्कत हो, ना हो, लैट्रिन भी नहीं हो, स्टूल भी पास नहीं हो, तो ये स्थिति जो होती है जिसको कि हम लोग कहते हैं ऑब्स्ट्रक्टेड हर्निया। ये कॉम्प्लिकेटेड हर्निया की श्रेणी में आते हैं। जब ऑब्स्ट्रक्टेड हर्निया होता है तो जो आंत की जो ब्लड सप्लाई होती है वो कहीं ना कहीं से प्रभावित होती है, और जब आंत की ब्लड सप्लाई प्रभावित होगी तो आंतों में शरान उत्पन्न होना शुरू हो जाता है। ऐसी स्थिति जब होती है तो इसको हम लोग स्ट्रैंगुलेटेड हर्निया कहते हैं। इस स्थिति में मरीज को काफी दर्द भी होता है, उल्टियां भी होती हैं, विंड पास नहीं कर पाते हैं, स्टूल नहीं पास कर पाते हैं, उनका चेहरा बिल्कुल टॉक्सिक हो जाता है, एक बड़ा डायर इमरजेंसी कंडीशन हो जाता है जिस मरीज को बचाना बड़ा मुश्किल भी हो सकता है। मेरा संदेश है कि यदि किसी को इस तरीके की समस्या आए कि खांसने पर, बोलने पे, छींकने पे किसी तरीके का उभार शरीर के किसी भाग में भी दिखे तो इसको इग्नोर न करे और तुरंत किसी योग्य चिकित्सक से वो सलाह ले ताकि इसका समय रहते इलाज हो जाए। अधिकांश समय लोग दवाओं का ये करते हैं कि दवा दे दीजिए डॉक्टर साहब, कोई ऐसी दवा दे दीजिए जिससे बीमारी ठीक हो जाए। मैं बताना चाहूंगा कि हर्निया किसी दवा से ठीक नहीं होती है, यह एक एनाटॉमिकल डिफेक्ट है और इसको ठीक करना पड़ता है सर्जरी के माध्यम। अब हम आते हैं कि इसका इलाज कैसे कर, क्या इसका इलाज होगा, आखिर समस्या है उसका समाधान भी हमको ढूंढना है, देना है।
1: हार्निया कारण, लक्षण और बचाव, अभी आपने इस विषय पर जानकारी सुनी। विशेषज्ञ थे डॉक्टर प्रेम प्रकाश। इसी के साथ स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम अब संपन्न होता है। प्रसारण आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से हो रहा था।

मीडियम वेव के मीटर पर हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है श्री रामचरितमानस से संगीतमय पाठ।

परशुराम पर श्रीराम का वास्तविक स्वरूप प्रकट होने के साथ ही राजा जनक का धनुष यज्ञ पूर्ण रूप से संपन्न हो गया। मिथिलेश को अपने सम्मुख नतमस्तक देख मुनिवर विश्वामित्र बोले, हे राजन, यूं तो विवाह धनुष के अधीन था जो उसके टूटते ही संपन्न हो गया। फिर भी ब्राह्मणों, कुलगुरु तथा अन्य आदरणीय जनों से पूछकर जो भी आपके कुल की रीतियां हों उन्हें पूरा कीजिए। अयोध्या दूत भेजकर राजा दशरथ को ये शुभ संवाद दीजिए ताकि उनके आगमन पर ये मंगल कार्य विधिपूर्वक पूरा हो सके। दूत अयोध्या को चले और इधर राजा जनक ने सगे संबंधियों तथा राज कर्मचारियों को पूरी नगरी, बाजार, राजमार्गों, भवनों, देवालयों को सजाने के आदेश दिए। मंडप बनाने वाले कुछ

छल कारीगरों को बुला भेजा गया, जिन्होंने हरित मणियों के पत्तों तथा फूलों और पद्मराग माणिकों के फलों से ऐसा मंडप बनाया जिसकी शोभा देख ब्रह्मा भी अपनी रचना भूल गए। भांति भांति के माणिक मोतियों, बहुमूल्य रत्नों तथा अन्य उपकरणों से नगर की सजावट होने लगी। जिस मंडप में जनक नंदिनी दुल्हन और रूप और गुणों के भंडार श्री राम दुल्हा होंगे, वो मंडप त्रिलोक में अनूठा होना ही चाहिए।

अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस से संगीतमय पाठ। गायक कलाकार थे ए हरिहरन। प्रसारण आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से हो रहा था।

मीडियम वेव के मीटर पर और न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी वाराणसी के कार्यक्रम। इसी क्रम में अब सुनिए कार्यक्रम विवरण में हमारे केंद्र से आज दिन भर प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों की संक्षिप्त जानकारी। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रमों में आप सुनेंगे प्रातः 7:31 पर और दिन 12:45 पर सितार वादन। कलाकार होंगे अमरनाथ मिश्र और रात्रि 10:30 पर आप सुनेंगे शहनाई वादन, जिसमें कलाकार होंगे विष्णु प्रसन्ना और साथी। रात्रि 10 बजे आप सुनेंगे रूपक, जिसे हम अपने लखनऊ केंद्र से रिले करेंगे। सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर विशेष श्रृंखला, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे रात्रि 8:10 पर।

डॉक्टर राकेश कुमार दुबे और सुधीर कुमार श्रीवास्तव की बातचीत। शाम 5:15 पर युववाणी कार्यक्रम में युवा साथी सुनेंगे आज की बात के अलावा मार्गदर्शन में आकाशवाणी के 90 वर्ष के अंतर्गत 90 वर्ष पूरे होने के अंतर्गत ये कार्यक्रम आप सुनेंगे। हिंदी के प्रचार प्रसार में आकाशवाणी की भूमिका विषय पर डॉक्टर विवेक सिंह की चर्चा, साथ ही यूथ डायरी इतिहास में आज का दिन, रोजगार सूचना और साथ ही साथ आनंद लेंगे गीत संगीत का।

सुगम संगीत के कार्यक्रमों में रात्रि 8 बजे कलाकार होंगे पलाश चंद्र विश्वास और दिन 12:30 पर मोनिका मिश्रा। लोक संगीत के कार्यक्रमों में प्रातः 9:50 पर और दिन 1:45 पर कलाकार होंगे तेज बहादुर सिंह यादव और साथी। इन्हीं का गाया लोकगीत आप शाम 6:30 पर कृषि जगत कार्यक्रम में भी सुन सकते हैं। कृषि जगत कार्यक्रम में ही किसान भाई सुनेंगे बेल वाली सब्जियां विषय पर

दिन 1:15 पर गृह लक्ष्मी कार्यक्रम में बहनें सुनेंगी चर्चा के अलावा स्वामी विवेकानंद कर्म ज्ञान और भक्ति का समन्वय इस विषय पर वार्ता। वार्ताकार होंगी कल्पना आनंद, साथ ही साथ बहनें आनंद लेंगी जायका और गीत संगीत का।

अब से थोड़ी देर बाद यानी 7 बजे आप आनंद लेंगे गुड मॉर्निंग बनारस कार्यक्रम का। 8:45 पर मधुरिमा, 10 बजे झंकार और 11 बजे फरमाइशी गीत एक्सप्रेस। ये थी संक्षिप्त जानकारी हमारे केंद्र से आज दिन भर प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों की। मीडियम वेव 241.54 मीटर अर्थात 1242 किलो हर्ट्स पर यह आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। प्रातः के 6:55 होने को हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे संस्कृत में समाचार, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

0: शकम वर्तते।
1: जुबा हमारे राष्ट्र की शक्ति, आशा और उज्जवल भविष्य के प्रतीक है। मेरी सभी युवाओं, विशेषकर जनजातीय समुदाय के युवाओं से अनुरोध है कि उन्हें अपने जोड़ों और अपने लोगों को नहीं भूलना चाहिए। युवा शक्ति विरासत पर गर्व करते हुए आधुनिक शिक्षा और तकनीकों के बल पर आगे बढ़े तो सशक्त, समृद्ध और आत्मनिर्भर भारत का निर्माण होगा।
0: भारतस्य मुख्य न्यायाधीशः न्यायमूर्तिः सूर्यकान्तः गतवासरे सर्वोच्च न्यायालयस्य पञ्च न्यायाधीशेभ्यः पदगोपनीयतायै प्रतिश्रावितवान्। न्यायमूर्तिः शीलनागो, श्रीचन्द्रशेखरः, संजीव सचदेवा, अरुणपल्ली, वरिष्ठाधिवक्त्री वी मोहना च सर्वोच्च न्यायालयस्य न्यायाधीशत्वेन शपथवचनं स्वीकृतवन्तः। अवधेयं यत् केन्द्रेण सर्वोच्च न्यायालयीय न्यायविद समितेः अनुशंसाम् आलक्ष्य एव एतेषां नियुक्ति विषयणे स्वीकृतिः दत्ता। राष्ट्रिय पञ्चायत पुरस्कार समारोहः अद्य नवदिल्ल्याम् आयोजयिष्यते। एते पुरस्काराः देशस्य 42 संख्याकेभ्यः उत्कृष्ट पञ्चायतेभ्यः प्रदास्यन्ते। समारोहावसरे दीनदयालोपाध्याय पञ्चायत सतत विकास पुरस्कारः इत्यस्यां श्रेण्यां 34 ग्राम पञ्चायतेभ्यः, नानाजी देशमुख सर्वोत्तम पञ्चायत सतत विकास पुरस्कार श्रेण्यां च 8 पञ्चायतेभ्यः पुरस्काराः प्रदास्यन्ते। भारतीयर्थ विभागेन सूचितं यत् अद्य कर्णाटकस्य आभ्यन्तरीणेषु भागेषु, केरल माहे, लक्षद्वीप, तमिलनाडु, पुदुच्चेरी, कराईकलेषु च तीव्रवृष्टिः भविष्यति। आगामि दिवसद्वय पर्यन्तं हरियाणा, चण्डीगढ, दिल्ली, छत्तीसगढ, झारखण्ड, गुजरात, गोवा, महाराष्ट्र, आन्ध्रप्रदेश, तेलंगाना, पश्चिमोत्तर प्रदेशेषु तीव्र झंझावातेन सह गर्जनस्य, तडित्पातस्य च संभावना वर्तते। अन्ते क्रीडा वार्तासु, महिलानां अन्ताराष्ट्रिय क्रिकेट क्रीडा मालिकायां गतरात्रौ इंग्लैण्ड देशस्य टाउनटन नगरे काउंटी क्रीडांगणे आयोजिते तृतीये अन्तिमे च द्वन्द्वे इंग्लैण्डेन भारतं 6 क्रीडकैः पराजितम्। इत्थम् इंग्लैण्डेन 2-1 इत्यतेन स्पर्धान्तरालेन श्रृंखला जिता। इति वार्ताः।
2: मीडियम वेव के मीटर पर यह आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। सुबह के 7 बज रहे हैं, सुनिए कार्यक्रम गुड मॉर्निंग बनारस।

0: 6, 5, 4, 3, 2, are you ready?
1: Good morning and a very, very, very good morning. लीजिए एक बार फिर हाजिर हो गई हूँ मैं आपकी रेडियो दोस्त वो जिसके नाम से होती है आपके दिन की शुरुआत.
2: हेलो, मैं पूजा. पहचाना?
3: इस नाम से उसे कोई नहीं जानता. वो बुलाने जो सब बुलाते हैं.
1: जी हाँ, पूजा और लेकर हाजिर हो गई हूँ कार्यक्रम गुड मॉर्निंग बनारस. दोस्तों, आज सुबह जब मैं सोकर उठी ना और अपना फोन चेक किया तो ध्यान गया कि मेरे फोन की कॉन्टेक्ट लिस्ट में हजारों नाम हैं. फेसबुक, इंस्टाग्राम पर भी सैकड़ों दोस्त हैं. लेकिन फिर मैंने खुद से एक सवाल पूछा कि इस डिजिटल दुनिया में हमारे पास कॉन्टेक्ट तो बहुत हैं, पर सच में कनेक्शन कितने लोगों से है. आज बात इसी बेहद खूबसूरत और जरूरी एहसास की. दोस्तों, कॉन्टेक्ट होना एक तकनीकी चीज है. आपने किसी का नंबर सेव कर लिया, वो आपका कॉन्टेक्ट बन गया, राइट? आप सोशल मीडिया पर किसी की पोस्ट लाइक कर रहे हैं, वो संपर्क है. लेकिन कनेक्शन वो रूहानी जुड़ाव है जहां आपको शब्दों की भी जरूरत नहीं पड़ती. वो दोस्त जिससे आपकी 6 महीने से बात नहीं हुई हो, लेकिन जब आप उसे फोन मिलाएं तो ऐसा लगे कि कल ही तो मिले थे. वो है कनेक्शन. जी हाँ, वो माँ

जो दूर होकर भी फोन पर आपकी हल्की सी हेलो सुनते ही ताड़ जाए कि आज उसका बच्चा उदास है, वो है कनेक्शन। वैसे भी हमारे बनारस से बेहतर कनेक्शन का मतलब और कौन समझा सकता है गुरु। ये वो शहर है जो कॉन्टेक्ट लिस्ट देखकर रिश्ते नहीं निभाता। यहाँ 80 पर अजनबी भी एक ही चटाई पर बैठकर एक ही कुल्हड़ से चाय पीते पीते न जाने कब दिल से दिल जोड़ लेते हैं। यहाँ का बंदा जब किसी राह चलते को गुरु बोलता है ना, तो वो सिर्फ एक शब्द नहीं होता, वो सीधे दिल से दिल का कनेक्शन जोड़ता है। हमारा ये शो भी तो यही है, जहाँ हम और आप किसी तार या केबल से नहीं बल्कि बनारसी बन की एक अनकही मोहब्बत से जुड़े हैं, है ना। तो आज इस भागती दौड़ती जिंदगी में स्क्रीन से थोड़ा सा ध्यान हटाइए गुरु, अपनी कॉन्टेक्ट लिस्ट के स्क्रॉल को रोकिए और किसी ऐसे शख्स को फोन लगाइए जिससे जुड़कर आपको सुकून मिलता है। आज सिर्फ मैसेज मत करिए, उनकी आवाज सुनिए, उनके साथ बैठकर चाय पी लीजिए। कॉन्टेक्ट्स बढ़ाना तो दुनिया का काम है, चलिए हम और आप मिलकर कनेक्शन मजबूत करते हैं। बने रहिए मेरे साथ गुड मॉर्निंग बनारस पे, क्योंकि अभी तो सुबह की ताज़ा खबरें, मौसम का हाल और आपके पसंदीदा गानों का कारवां आगे बढ़ाना बाकी है। गुड मॉर्निंग।

वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग बनारस मेरे यानी पूजा के साथ। आज दिन है बुधवार का और तारीख है 3 जून। तो चलिए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और जानते हैं क्या खास हो रहा है अपने शहर बनारस में आज। बनारस रामनगर स्थित लाल बहादुर शास्त्री LBS अस्पताल को प्रदेश के शीर्ष 10 अस्पतालों की सूची में 6वां स्थान मिला है। जिला स्तरीय अस्पतालों की रैंकिंग सूची में पहली बार LBS अस्पताल ने 6वीं रैंक प्राप्त की है। बीते 2 वर्षों में अस्पताल में 200 से अधिक सफल ऑपरेशन के साथ ही दूरबीन विधि से स्टोन निकालने के सैकड़ों ऑपरेशन भी हुए हैं। प्रदेश सरकार द्वारा कराए गए सर्वे में अस्पताल में पर्याप्त मानव संसाधन की उपलब्धता भी दिखी है। अगली खबर यह है बनारस की। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की 10वीं व 12वीं बोर्ड परीक्षा 2026 के परिणाम के बाद अब ऐसे छात्रों को एक और मौका मिला है जो अपने अंकों से संतुष्ट नहीं है। बोर्ड ने री इवोल्यूशन और आंसर शीट में संभावित कमियों की जांच के लिए ऑनलाइन पोर्टल खोल दिया है। यह प्रक्रिया 2 जून से शुरू हो चुकी है और 6

जून 2026 की रात 12 बजे तक चलेगी। वाराणसी में अब तक 3500 से ज्यादा छात्र इस प्रक्रिया के लिए आवेदन कर चुके हैं। CBSE की ओर से जारी सूचना के अनुसार केवल वही छात्र आवेदन कर सकते हैं जिन्होंने पहले अपनी जांची हुई आंसर शीट की फोटोकॉपी या स्कैन कॉपी प्राप्त की है। छात्र अपनी उत्तर पुस्तिका में किसी तकनीकी कमी की जांच कराने या किसी सवाल के अंकों की दोबारा जांच के लिए आवेदन कर सकते हैं। बोर्ड ने आवेदन प्रक्रिया को पूरी तरह ऑनलाइन रखा है। छात्रों को CBSE की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आधार नंबर के माध्यम से लॉगिन करना होगा। इसके बाद वे संबंधित विषय और सवाल का चयन कर आवेदन कर सकते हैं। रिजल्ट जारी होने के बाद बड़ी संख्या में छात्र अपनी उत्तर पुस्तिका की दोबारा जांच कराने में रुचि दिखा रहे हैं। जिले में अब तक 3500 से अधिक छात्र री इवेल्यूशन और उत्तर पुस्तिका सत्यापन प्रक्रिया के लिए आवेदन कर चुके हैं। बनारस उत्तर प्रदेश राज्य सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में वाराणसी के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया है। प्रयागराज में हुई प्रतियोगिता में कृति यादव ने 100 मीटर हर्डल रेस में सबको पीछे छोड़ते हुए गोल्ड मेडल जीता है। रेस को पूरा करने में कृति ने सबसे कम 18.40 सेकंड का समय लिया। वाराणसी के ही मनीष राजभर ने 110 मीटर हर्डल रेस में गोल्ड मेडल जीता। दोनों एथलीट सेगरा स्टेडियम में शिक्षण प्राप्त करते हैं। दोनों एथलीट को जिला एथलेटिक्स संघ के अध्यक्ष और सचिव ने बधाई दी है। इस प्रतियोगिता में 60 जिलों के 459 खिलाड़ियों ने 40 स्पर्धाओं में भाग लिया। बनारस ब्रिक्स देशों के सांस्कृतिक कार्य समूह की बैठक वाराणसी में 4 और 5 जून को होटल ताज में होगी। इसमें भारत समेत ब्रिक्स से जुड़े 11 देशों के 30 से अधिक प्रतिनिधि भाग लेंगे। इंडोनेशिया समेत कई देशों का प्रतिनिधिमंडल मंगलवार देर रात और बुधवार दोपहर तक वाराणसी पहुंचेगा। G20 सम्मेलन की तर्ज पर उनके भव्य स्वागत की तैयारी की गई है। लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट से होटल ताज तक स्कूली बच्चे विभिन्न देशों के झंडे लहराकर मेहमानों का स्वागत करेंगे। हर हर महादेव के उद्घोष के बीच सांस्कृतिक दल और डमरू वादन दल काशी की लोक परंपरा और सांस्कृतिक विरासत की झलक पेश करेगा। सरकार की ओर से सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण, पर्यटन विकास, स्थानीय उत्पादों के संवर्धन और रोजगार सृजन के लिए लगातार किए जा रहे प्रयासों का ही परिणाम है कि काशी को एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपनी समृद्ध कला संस्कृति को पहचान का वैश्विक अवसर प्राप्त होगा। ब्रिक्स बैठक में काशी के विश्व प्रसिद्ध GI टैग एवं ODOP उत्पादों की विशेष प्रदर्शनी भी आयोजित की जाएगी। इस प्रदर्शनी में वाराणसी की समृद्ध शिल्प परंपरा के 6 शिल्पियों के 6 विशिष्ट उत्पाद प्रदर्शित करेंगे। ये सभी उत्पाद काशी की सदियों पुरानी कला, शिल्प कौशल और सांस्कृतिक विरासत के जीवंत प्रतीक हैं। प्रदर्शनी के माध्यम से विदेशी प्रतिनिधियों को न केवल इन उत्पादों की विशिष्टता से परिचित कराया जाएगा बल्कि स्थानीय कलाकारों और कारीगरों को अपने उत्पादों को वैश्विक बाजार तक पहुंचाने का अवसर भी मिलेगा। श्रोताओं, हम आपको बता दें कि नदेसर स्थित ताज होटल में 3 जून से होने वाले ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की मीटिंग और आने वाले VIP आगमन को देखते हुए यातायात विभाग की ओर से रूट डायवर्जन किया गया है। बाबतपुर स्थित लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से VIP सड़क मार्ग से होटल ताज समेत अन्य होटल में जाएंगे। VIP आगमन से 2 घंटे पहले सभी वाहनों को रोक दिया जाएगा। डायवर्जन स्थल से 50 मीटर दूरी तक सभी वाहन रहेंगे। राहगीर बदले गए रूट के मुताबिक चलें जिससे आवागमन सुगम रहेगा। और अब बात करें मौसम की। बनारस तो जिले में भीषण गर्मी के बीच मौसम का मिजाज लगातार मिलाजुला बना हुआ है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार वाराणसी और आसपास के क्षेत्रों में पिछले 24 घंटों में हुई हल्की बूंदाबांदी ने लोगों को उमस भरी तपिस से आंशिक राहत जरूर दी है, लेकिन मौसम वैज्ञानिकों का अनुमान है कि यह राहत बेहद अस्थायी है। आने वाले दिनों में तापमान में एक बार फिर भारी बढ़ोतरी दर्ज की जाएगी। इसलिए बनारस अपना ध्यान रखिए, अपने घर के बुजुर्गों का, बच्चों का भी खूब ख्याल रखिए। गर्मी के मौसम में पानी का सेवन ज्यादा से ज्यादा करिए और घर से बाहर निकलते समय जो भी जरूरी नियम है ना, उनको फॉलो जरूर करिए। सो बनारस, ये तो बात हो गई क्या खास हो रहा है शहर बनारस में आज। और अब बात करते हैं इतिहास की। तो चलिए चलते हैं इतिहास की गलियों में और जानते हैं आज के दिन के इतिहास को। ९९४ में आज ही के दिन भारत सहायता क्लब का नया नाम भारत सहायता मंच किया गया। 1867 में आज ही के दिन भारत के प्रसिद्ध शिक्षाविद, राजनेता, समाज सुधारक, न्यायविद और लेखक हरविलास शारदा का जन्म हुआ था। और 1844 में आज ही के दिन आधुनिक हिंदी साहित्य के शीर्ष निर्माताओं में से एक बालकृष्ण भट्ट का भी जन्म आज ही के दिन हुआ था।
सो बनारस ये तो बात हो गई इतिहास की, और अब जानते हैं आज के स्पेशल

0: दिन के बारे में। आज है 3 जून, यानी आज है वर्ल्ड बाइसिकल डे। दोस्तों, जब हम साइकिल की बात करते हैं तो हम बनारसियों का दिल तो वैसे ही धक धक करने लगता है ना। एक वो भी दौर था जब हमारी काशी के इन गलियों में साइकिल का ही भौकाल हुआ करता था। याद करिए अपने बचपन के वो दिन जब पापा की साइकिल की कैंची चलाकर हम सब ने साइकिल चलाना सीखा था। आधी दूर तक पैर मारकर पैडल मारना, जैसे ही पूरी गद्दी पर बैठना आया तो लगता था कि भाई साहब, अब तो ये सारी दुनिया हमारी है और हम इस दुनिया के राजा हैं, है ना। आज के इस दौर में जहां हर कोई जिम जाकर हजारों रुपए फूंक रहा है, हमारी पुरानी दोस्त साइकिल चुपचाप कोने में खड़ी मुस्कुरा रही है। ये वो सवारी है जो आपकी सेहत भी दुरुस्त रखती है, पर्यावरण को भी साफ रखती है, और सबसे बड़ी बात, बनारस के ट्रैफिक में बड़े बड़े वीआईपी लोगों को पीछे छोड़ते हुए गलियों से शॉर्टकट निकालकर सीधे मंजिल तक पहुंचा देती है। तो आज इस विश्व साइकिल दिवस पर क्यों न एक छोटी सी शुरुआत की जाए। लंबी दूरी के लिए भले ही आप बाइक या कार उठाएं, लेकिन सुबह सुबह दूध लाने, सब्जी मंडी जाने या पास की अड़ी पर चाय पीने के लिए अपनी उस पुरानी साइकिल की धूल को झाड़िए और निकल पड़िए। घाट की तरफ साइकिलिंग करने का जो मजा सुबह सुबह है ना, वो किसी और चीज में नहीं है। इससे पेट्रोल के पैसे भी बचेंगे, प्रदूषण भी कम होगा और आपकी फिटनेस भी एकदम टकाटक रहेगी। तो गुरु, उठिए, पैडल मारिए और अपनी सुबह को एक हेल्दी और हैप्पी शुरुआत दीजिए। आप बने रहिए मेरे साथ गुड मॉर्निंग बनारस में। बात हो गई है आज के स्पेशल डे की, और अब बात करते हैं उस सेगमेंट की जिसका रहता है आपको इंतजार।
1: काशी रत्न, द जेम्स ऑफ वाराणसी।
0: दोस्तों, हमारे बनारस की एक खास बात है, यहाँ सिर्फ गंभीर साहित्य ही नहीं रचा गया, बल्कि यहाँ हंसने और हंसाने की भी एक बहुत बड़ी परंपरा रही है। एक ऐसा दौर भी था जब देश के बड़े बड़े कवि सम्मेलनों में, जब तक बनारस का ये लाल मंच पर नहीं पहुँचता था, तब तक महफिल अधूरी मानी जाती थी। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ ठेठ बनारसी हास्य व्यंग के सम्राट आचार्य कांतानाथ पांडे चोंच जी की। अब आप सोच रहे होंगे कि इतना सुंदर नाम, कांतानाथ पांडे, लेकिन आगे ये चोंच कैसे लग गया? तो दोस्तों, ये बनारस है, यहाँ बिना किसी मजेदार उपनाम के तो बात ही पूरी नहीं होती। कहते हैं कि चोंच जी अपनी कविताओं से समाज की कुरीतियों और पाखंड पर ऐसी चोंच मारते थे कि सामने वाला तिलमिला भी जाता था और हंसते हंसते लोटपोट भी हो जाता था। उनकी भाषा में वही कड़क बनारसीपन था जो गदौलिया के चौराहे पर मिलने वाली कचौड़ी जलेबी में होता है, एकदम तीखा और मीठा मिक्स। पुराने लोग बताते हैं कि चोंच जी जब मंच पर आकर अपनी खास बनारसी तान में कविता पढ़ना शुरू करते थे तो सन्नाटा खिंच जाता था, और फिर जो ठहाके गूंजते थे वो घाटों तक सुनाई देते थे। उन्होंने भोलेनाथ का ब्याह और बनारसी जीवन पर ऐसी ऐसी मजेदार कविताएं लिखी हैं जो आज भी लोगों की जुबान पर हैं। उनकी कविताओं की सबसे बड़ी खूबसूरती ये थी कि वो आम आदमी की भाषा में बात करते थे, चाय की अड़ी से लेकर देश की राजनीति तक। उनकी चोंच हर जगह कमाल करती थी। आज के इस दौर में जहां लोग मुस्कुराना भूल गए हैं, चोंच जी का साहित्य हमें याद दिलाता है कि चाहे लाइफ में कितनी भी टेंशन हो, थोड़ा सा बनारसी अक्खड़पन और हास्य अपने अंदर जिंदा रखो। यही तो है असली बनारसी पहचान, जहां शब्दों में धार भी हो और सुनने वाले के चेहरे पर मुस्कान भी आ जाए। तो आज काशी रत्न के इस अंक से हम बनारस के इस अनमोल रत्न कांतानाथ पांडे जी को कोटि कोटि नमन करते हैं, जिन्होंने हमारी लोक संस्कृति और हमारे देसी लहजे को साहित्य के ऊंचे मंचों तक पहुंचाया। काशी रत्न में आज के लिए बस इतना ही।
1: काशी रत्न, द जेम्स ऑफ वाराणसी।
2: सो बनारस बहुत सारी बातें आपके साथ हो गई और अब घड़ी की सुइयां इशारा कर रही हैं कि समय हो गया है मेरे आपसे टाटा बाय बाय कहने का। लेकिन जाने से पहले वही बात जो मैं हमेशा कहती हूँ कि खुद से प्यार करना, खुद की देखभाल करना बेहद जरूरी है, क्योंकि जब हम खुश होंगे ना तभी

0: गुड मॉर्निंग बनारस।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गुड मॉर्निंग बनारस, ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। अब से कुछ ही पलों में ठीक 7:20 पर आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार। समाचारों के लिए कृपया थोड़ी प्रतीक्षा करें।

0: संकल्प ये लें कि मैं दुनिया में किसी से नहीं डरूंगा, केवल भगवान से डरूं। मैं किसी के प्रति बुरा भाव न रखूं, मैं किसी के अन्याय के समक्ष झुकू नहीं, मैं असत्य को सत्य से जीतूं और असत्य का विरोध करते हुए मैं सभी कष्टों को सह सकूं। महात्मा गांधी।
1: मन का धर्म है मनन करना, मनन में ही उसे आनंद है, मनन में बाधा प्राप्त होने से उसे पीड़ा होती है। रविंद्रनाथ ठाकुर।
0: अपने ज्ञान पर जरूरत से ज्यादा यकीन करना मूर्खता है। सबसे मजबूत कमजोर हो सकता है और सबसे बुद्धिमान गलती कर सकता है। एपीजे अब्दुल कलाम।
1: जैसे सूर्य सबको एक सा प्रकाश देता है, बरसात सबके लिए बरसती है, उसी तरह विद्या वृष्टि सब पर बरकरार होनी चाहिए। महात्मा गांधी।
0: आकाश की तरफ देखिए, हम अकेले नहीं हैं, सारा ब्रह्मांड हमारे लिए अनुकूल है और जो सपने देखते हैं, मेहनत करते हैं, उन्हें प्रतिफल देने की साजिश करता है। एपीजे अब्दुल कलाम।
2: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं वेद प्रकाश पाठक। पहले मुख्य समाचार। सरकार ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई द्वारा ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली के सेवा अनुबंध से संबंधित मामलों की जांच के लिए एक सदस्यीय समिति का किया गठन। एक माह के अंदर कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग को अपनी रिपोर्ट देगी यह समिति। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कुशीनगर में 424 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कहा, डबल इंजन सरकार ने तैयार किया विकास, सुरक्षा और रोजगार का नया वातावरण। नई दिल्ली में आज आयोजित हो रहा है राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार समारोह। सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत पुरस्कार से सम्मानित होगी आगरा जिले की बिरहरू ग्राम पंचायत। और वाराणसी में कल से शुरू होगी ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की बैठक। संस्कृति विरासत संरक्षण और आपसी सांस्कृतिक सहयोग से जुड़े विभिन्न विषयों पर चर्चा करेंगे 11 देशों के प्रतिनिधि। अब समाचार विस्तार से। सरकार ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई द्वारा ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली के लिए सेवा अनुबंध से संबंधित मामलों की जांच के लिए एक सदस्यीय समिति का गठन किया है। समिति की अध्यक्षता क्षमता निर्माण आयोग के अध्यक्ष एस राधा चौहान करेंगी। समिति एक माह के अंदर कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। इस बीच बोर्ड ने कल कक्षा 12वीं के छात्रों के लिए उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियों में पाई गई त्रुटियों के सत्यापन और उत्तरों के पुनर्मूल्यांकन के लिए ऑनलाइन पोर्टल खोल दिया। यह सुविधा केवल उन्हीं छात्रों के लिए उपलब्ध है जिन्होंने अपनी मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियां प्राप्त कर ली हैं।
3: पोर्टल शुरू होते ही इसे बड़े स्तर पर साइबर हमलों के जरिए इसकी सेवाओं को बाधित करने का प्रयास किया गया। सीबीएसई ने बताया कि इन्हीं प्रयासों के क्रम में मात्र 2 मिनट में पोर्टल पर 15 लाख हिट दर्ज की गईं और अनधिकृत रूप से फाइलों तक पहुंचने के लिए 1 लाख से अधिक प्रयास किए गए। बोर्ड ने साफ किया कि उसकी टीमें पूरी सतर्कता और तत्परता के साथ काम कर रही हैं ताकि छात्रों को हर संभव सुविधा प्रदान की जा सके। छात्रों से प्राप्त फीडबैक के आधार पर सीबीएसई ने प्लेटफॉर्म में और कई सुधार किए हैं। इसके तहत प्रक्रिया को अधिक सुविधाजनक और निर्बाध बनाने के लिए सेशन की समय सीमा भी बढ़ा दी गई है। पुनर्मूल्यांकन पोर्टल पर वर्तमान में 8,000 से अधिक उपयोगकर्ता एक साथ काम कर रहे हैं। अब तक 16,000 से अधिक छात्र सफलतापूर्वक अपना मूल्यांकन जमा कर चुके हैं। पोर्टल 6 जून तक खुला रहेगा। आनंद कुमार के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: इस बीच भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी लोखंडे प्रशांत सीताराम को सीबीएसई का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। श्री सीताराम इससे पहले गृह मंत्रालय में अपर सचिव के रूप में कार्यरत थे। सीबीएसई के सचिव का भी तबादला कर दिया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल कुशीनगर में 424 करोड़ रुपए से अधिक लागत की 278 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि डबल इंजन सरकार ने विकास, सुरक्षा और रोजगार का नया वातावरण तैयार किया है। श्री योगी ने कहा कि सरकार अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए कार्य कर रही है।
4: मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र में सत्ता की बागडोर भारत के उस समय के लोकप्रिय नेता श्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों में सौंपी। पिछले 12 वर्ष में मोदी जी के नेतृत्व में बिना रुके, बिना डिगे, बिना थके, बिना झुके जो कार्य प्रारंभ हुआ, आज परिणाम है डबल इंजन सरकार आने के उपरांत अकेले कुशीनगर में लगभग 90,000 गरीबों के लिए एक एक आवास बने हैं।
2: मुख्यमंत्री ने कल ही गोरखपुर के चिलुआ ताल में 20 करोड़ 35 लाख रुपए की लागत से पर्यटन विकास और सौंदर्यीकरण कार्यों का लोकार्पण किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों में ताल और पोखरों की उपेक्षा होती थी, लेकिन डबल इंजन की सरकार ताल और पोखरों का संरक्षण करती है। अपने गोरखपुर दौरे के तीसरे दिन मुख्यमंत्री आज गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण क्षेत्र में 42 करोड़ 50 लाख रुपए की लागत से बने फ्लैटेड फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स का लोकार्पण करेंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कल आगरा में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि एक शुद्ध मतदाता सूची ही निष्पक्ष चुनावों की नींव होती है। उन्होंने मतदाताओं से आग्रह किया है कि वे अपना वोटर आईडी कार्ड अवश्य बनवाएं और चुनाव में अपना वोट डालें।
5: आगे आने वाले चुनाव भी पारदर्शी और ट्रांसपेरेंट होंगे। शुद्ध मतदाता सूची ही पारदर्शी चुनावों की आधारशिला है। आइए अपना वोट जरूर बनवाइए और चुनावों में वोट जरूर करिए।
2: मुख्य चुनाव आयुक्त ने अपने 2 दिवसीय आगरा दौरे के दौरान कल वहां के कैलाश मंदिर में विधि विधान के अनुसार भगवान शिव की पूजा अर्चना भी की। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR न्यूज _GKP पर भी उपलब्ध है। राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार समारोह आज नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। देश भर की 42 उत्कृष्ट पंचायतों को ये पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। इसमें प्रदेश के आगरा जिले के बिरहरू ग्राम पंचायत को भी नानाजी देशमुख सर्वोत्तम पंचायत सतत विकास पुरस्कार के तहत सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत का पुरस्कार मिलेगा। बिरहरू ग्राम पंचायत के ग्राम प्रधान भूरी सिंह परमार आज नई दिल्ली में यह सम्मान ग्रहण करेंगे। उन्होंने इस उपलब्धि के लिए सरकार और ग्राम पंचायत का विशेष आभार जताया।
6: ये गांव की जनता का पूरा सहयोग रहो, सरकार का भी बहुत सहयोग रहो। पहली बार मैं प्रधान बनूं और लोगों के हिसाब से सरकार को सहयोग और सब गलियां पक्की, इंटरलॉक, सीसी सब कराई गई। बाकी पंचायत घर, सचिवालय, RRC सेंटर, लैब, लाइब्रेरी, ऐसे बहुत से कार्य करे गए। सरकार को बहुत धन्यवाद।
2: वाराणसी में कल और 5 जून को ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की महत्वपूर्ण बैठक होगी। इस अंतर्राष्ट्रीय आयोजन में ब्राजील, चीन, मिस्र, इथियोपिया, भारत, इंडोनेशिया, ईरान, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका और संयुक्त अरब अमीरात सहित 11 देशों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। बैठक के दौरान संस्कृति, विरासत संरक्षण और आपसी सांस्कृतिक सहयोग से जुड़े विभिन्न विषयों पर चर्चा की जाएगी। ब्रिक्स देशों के प्रतिनिधियों की काशी यात्रा को यादगार बनाने के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जाएगा। क्षेत्रीय सांस्कृतिक अधिकारी वाराणसी डॉ. राम नरेश पाल ने बताया कि प्रतिनिधियों के आगमन पर एयरपोर्ट से लेकर शहर के विभिन्न स्थलों तक लोक नृत्यों की प्रस्तुति होगी। देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के तहत पिछले 12 वर्षों में उल्लेखनीय बदलाव आया है। आज महिला सशक्तिकरण की दिशा में हुए प्रयासों को लेकर प्रस्तुत है एक विशेष रिपोर्ट।
7: साल 2015 में शुरू की गई प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत लाखों महिलाओं को बिना किसी गारंटी के ऋण मिल रहा है, जिसके कारण उन्हें अपना व्यवसाय शुरू करने और आगे बढ़ाने में मदद मिली है। वहीं प्रधानमंत्री जनधन योजना, सुकन्या समृद्धि योजना और भूमिनिया जैसी प्रमुख योजनाओं ने महिलाओं की बैंकिंग, बचत और उद्यमिता से जुड़ने की क्षमता को मजबूत किया है। जनधन योजना के तहत अब तक 58 करोड़ से अधिक खाते खोले जा चुके हैं, जिनमें से लगभग 33 करोड़ खाते महिलाओं के नाम पर हैं। मोदी सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल लखपति दीदी है, जिसका उद्देश्य महिलाओं को सालाना कम से कम 1 लाख रुपए की स्थायी आय प्राप्त करने में सक्षम बनाना है। वहीं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के कारण राष्ट्रीय लिंगानुपात वर्ष 2014-15 के 918 से बढ़कर वर्ष 2024-25 में 929 हो गया है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: मौसम विभाग ने इस सप्ताह के दौरान प्रदेश में अधिकतम तापमान में धीरे धीरे 6 से 8 डिग्री सेल्सियस की क्रमिक बढ़ोतरी की संभावना जताई है। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE द्वारा ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली के सेवा अनुबंध से संबंधित मामलों की जांच के लिए एक सदस्यीय समिति का किया गठन। 1 माह के अंदर कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग को अपनी रिपोर्ट देगी यह समिति। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कुशीनगर में 424 करोड़ रुपए से अधिक की लागत की विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कहा, डबल इंजन सरकार ने तैयार किया विकास, सुरक्षा और रोजगार का नया वातावरण। नई दिल्ली में आज आयोजित हो रहा है राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार समारोह। सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत पुरस्कार से सम्मानित होगी आगरा जिले की बिरहरू ग्राम पंचायत। और वाराणसी में कल से शुरू होगी ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की बैठक। संस्कृति, विरासत संरक्षण और आपसी सांस्कृतिक सहयोग से जुड़े विभिन्न विषयों पर चर्चा करेंगे 11 देशों के प्रतिनिधि। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
0: असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो ये दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। APJ अब्दुल कलाम।
8: यदि युवा को है रोजगार पाना तो होगा उसे कौशल बढ़ाना। अपने कौशल का विकास कीजिए, अपने भविष्य को संवारिए। वृद्धों का सम्मान करें, मर्यादा का ध्यान रखें। बड़े बुजुर्गों की करें मदद, आशीर्वाद मिले वही बड़ी दौलत। जो सिखाएं हमें व्यवहारिक ज्ञान, करें ज्येष्ठ लोगों का सम्मान। सड़क पार करवाएं, करें बुजुर्गों की मदद। अंदर से अच्छा लगेगा भले ही लगे थोड़ा वक्त। यातायात नियमों का करें पालन, कभी ना करें उनका उल्लंघन। यातायात सुरक्षा है अति आवश्यक, यही बने आपकी रक्षक। जब भी आप चलाएं कोई वाहन, ध्यान रखें, करें नियमों का पालन।
9: मीडियम वेव 241.54 मीटर अर्थात 1242 किलोहर्ट्ज़। न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से

बोल रहे हैं। प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में सुनिए सितार वादन। कलाकार हैं अमरनाथ मिश्र, राग है गुर्जरी तोड़ी। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं विनोद कुमार मिश्र।

अभी आपने अमरनाथ मिश्र का सितार पर बजाया राग गुर्जरी तोड़ी सुना। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे थे विनोद कुमार मिश्र। और अब सुनिए इन्हीं की राग भैरवी में बजाई ये धुन। आप

0: अभी आपने अमरनाथ मिश्र की सितार पर बजाई राग भैरवी में निबद्ध धुन सुनी। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे थे विनोद कुमार मिश्र। इसी के साथ शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम अब संपन्न होता है। प्रसारण आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से हो रहा था। मीडियम वेव 241.54 मीटर अर्थात 1242 किलोहर्ट्ज़। न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। प्रातः के 8 बजने को हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार प्रभात, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।
1: सुनिए, क्या आपने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
2: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
1: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov.in पर।
3: हर घर सूर्य घर।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी एलोइना रोड्रिग्स गोमेज आज से 5 दिन की भारत यात्रा पर। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डी के शिवकुमार आज दोपहर कर्नाटक के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। पश्चिम बंगाल में आज से शुरू होगी अन्नपूर्णा योजना, पात्र महिलाओं को हर महीने मिलेगी 3,000 रुपए की सहायता। बांग्लादेश के विदेश मंत्री खलीलुर रहमान संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के अध्यक्ष निर्वाचित हुए, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दी बधाई। जर्मनी ने हवाई मार्ग से यात्रा करने वाले भारतीय नागरिकों के लिए ट्रांजिट वीजा की अनिवार्यता आज से समाप्त की। भारत ने कहा इससे दोनों देशों के लोगों के बीच आपसी संपर्क बढ़ेगा। और महिला क्रिकेट में मेजबान इंग्लैंड ने तीसरे और अंतिम T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच में भारत को 6 विकेट से हराकर 3 मैचों की श्रृंखला 2-1 से अपने नाम की। अब समाचार विस्तार से। वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी एलोइना रोड्रिग्स गोमेज आज से 5 दिन की भारत यात्रा पर रहेंगी। उनके साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी होगा। एक रिपोर्ट।
5: भारत और वेनेजुएला के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध हैं, विशेषकर ऊर्जा और व्यापार के क्षेत्र में। इस यात्रा से दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंध और मजबूत होंगे तथा कई क्षेत्रों में सहयोग और गहरा होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बातचीत के दौरान दोनों पक्ष आपसी हित के क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा करेंगे, जिनमें ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार और निवेश, दवाएं, स्वास्थ्य सेवा, परिवहन और नवीकरणीय ऊर्जा शामिल हैं। वेनेजुएला का प्रतिनिधिमंडल ऊर्जा, दवा और ऑटोमोबाइल क्षेत्रों से जुड़ी सुविधाओं का दौरा करेगा। इस यात्रा का उद्देश्य सहयोग के अवसर को तलाशना और भारत की तकनीकी तथा औद्योगिक क्षमताओं के बारे में जानकारी हासिल करना है। दीपेंद्र और ईशानी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
4: कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डी के शिवकुमार

0: आज कर्नाटक के 25वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। 8 बार के विधायक डीके शिवकुमार बेंगलुरु के लोकभवन स्थित ग्लास हाउस में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। उनके साथ कुछ कैबिनेट मंत्री भी शपथ लेंगे। 28 मई को सिद्धरमैया के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद कांग्रेस विधायक दल ने 64 वर्षीय डीके शिवकुमार को अपना नेता चुना था। शपथ ग्रहण समारोह में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी, राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल और रणदीप सिंह सुरजेवाला सहित कई प्रमुख नेता शामिल होंगे। पश्चिम बंगाल सरकार आज एक महत्वपूर्ण सामाजिक कल्याणकारी पहल अन्नपूर्णा योजना का शुभारंभ करने जा रही है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी इस योजना का औपचारिक उद्घाटन करेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: पहले चरण में लाभार्थियों को बैंक खाते में आज से ही 3,000 रुपए भेजना शुरू होगा। इस योजना से लगभग 2 करोड़ महिला उपभोक्ताओं को लाभ मिलने की संभावनाएं है। नवन्नों में दोपहर 12:30 बजे उद्घाटन समारोह में महिला एवं बाल विकास तथा समाज कल्याण विभाग की मंत्री अग्निमित्रा पल उपस्थित रहेंगी। साथ ही राज्य की सभी ब्लॉक नगर पालिकाएं और कलकत्ता नगर निगम क्षेत्र में वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन कार्यक्रम आयोजित होगा। मुख्यमंत्री का कार्यक्रम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राज्य के प्रत्येक ब्लॉक और नगर पालिका से जुड़ा रहेगा। पूरे कार्यक्रम को सुचारू रूप से संपन्न करने के लिए जिला अधिकारियों को आवश्यक व्यवस्था करने का निर्देश दिया गया है। उद्घाटन के बाद प्रत्येक ब्लॉक और नगर पालिका क्षेत्र में चुने गए 100 अन्नपूर्णा योजना लाभार्थियों को अनुमोदन पत्र प्रदान किया जाएगा। काशफी नाहर, आकाशवाणी संवाद, कोलकाता।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के अंतर्गत देश में पिछले 12 वर्ष में उल्लेखनीय बदलाव आया है। इस दौरान मोदी सरकार ने निर्धनों, किसानों, महिलाओं और युवाओं के कल्याण और सशक्तिकरण के लिए अनेक महत्वपूर्ण पहल शुरू की हैं। आकाशवाणी समाचार पिछले 12 वर्ष में प्रमुख क्षेत्र में सरकार के प्रयासों पर विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज चर्चा मध्यम वर्ग के कल्याण के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की।
2: केंद्र सरकार ने पिछले 12 वर्षों में विभिन्न योजनाओं और सुधारों के माध्यम से मध्यम वर्ग के लोगों को सशक्त बनाया है। सरल कर व्यवस्था, बेहतर बैंकिंग, बीमा और पेंशन जैसी सुविधाओं ने मध्यम वर्ग की आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित की है। नई कर व्यवस्था के तहत सालाना 12 लाख रुपए तक कमाने वाले लोगों को कोई आयकर नहीं देना पड़ता। वहीं जीएसटी ने भी कर व्यवस्था को सरल बनाकर और रोजमर्रा की चीजों की लागत कम करके मध्यम वर्ग को राहत पहुंचाया है। 2015 में शुरू की गई प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन ने लाखों लोगों को पक्का घर उपलब्ध कराया है। इस योजना के तहत स्वीकृत 1,25,00,000 घरों में से 98,00,000 से अधिक घर बनकर लाभार्थियों को दिए जा चुके हैं। उत्तर प्रदेश के अभिषेक कुमार ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कहा कि इस योजना के जरिए गरीबों को अपना घर मिल रहा है और किराए के मकान से मुक्ति मिल रही है।
3: मैंने प्रधानमंत्री आवास योजना में आवेदन किया था। आवेदन करने के बाद मेरे को लॉटरी ड्रॉ के माध्यम से मकान आवंटित होगी। स्कीम बहुत ही बढ़िया है जिससे गरीब लोगों को आवास मिल रहे हैं, सबको सहूलियत हो रही है।
2: वहीं आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 43,52,00,000 स्वास्थ्य कार्ड जारी किए जा चुके हैं जिससे लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुरक्षा मिली है। इसके अलावा प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के अंतर्गत जन औषधि केंद्रों के माध्यम से लोगों को सस्ती और गुणवत्तापूर्ण दवाइयां मिल रही है जो बाजार से 50-80% सस्ती दरों पर उपलब्ध है। बिहार के रहने वाले ब्रह्मदेव ने बताया कि इन केंद्रों पर दवाइयां बहुत कम कीमत पर मिलती है।
4: दवाई ले रहा हूँ, सच्ची दवाई मिलती है, डॉक्टर का विश्वास है कि जन औषधि से दवाई खरीदे।
2: वहीं 2015 में शुरू की गई प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के कारण लोग अपना व्यवसाय शुरू कर रहे हैं और दूसरों को भी रोजगार दे रहे हैं। इस योजना के तहत अब तक लाभार्थियों को 40,00,000 करोड़ रुपए के ऋण दिए जा चुके हैं। भारत के मध्यम वर्ग के लोगों की आय बढ़ने और नए अवसर मिलने के कारण अब वे देश की आर्थिक प्रगति, विकास और समृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। जनजातीय कार्य मंत्रालय आज नई दिल्ली में एकीकृत जनजातीय विकास एजेंसियों और एकीकृत जनजातीय विकास परियोजनाओं को सुदृढ़ करने पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन करेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगी। सम्मेलन में 26 राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। ये आयोजन जनजातीय गरिमा उत्सव 2026 के अंतर्गत हो रहा है। राष्ट्रपति बेंगलुरु के भारतीय विज्ञान संस्थान के नैनो विज्ञान और इंजीनियरिंग केंद्र में प्रशिक्षण केंद्र का वर्चुअल रूप से उद्घाटन करेंगी। वे देश के विभिन्न हिस्सों में स्थित एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों में स्थापित 75 अंतरिक्ष प्रयोगशालाओं का भी उद्घाटन करेंगी। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के तहत आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्य समूह की पहली प्रत्यक्ष तकनीकी बैठक आज ओडिशा के पुरी में शुरू होगी। 3 दिन की इस बैठक में ब्रिक्स सदस्य और साझेदार देशों के प्रतिनिधि, नीति निर्माता और आपदा प्रबंधन विशेषज्ञ भाग लेंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि विवाहित बेटियों को अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति से वंचित नहीं किया जा सकता। न्यायालय ने कहा कि परिवार की परिभाषा से विवाहित बेटियों को बाहर रखना स्पष्ट रूप से अनुचित और संवैधानिक रूप से गलत है। न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति आलोक आराधे की पीठ ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के एक आदेश को रद्द करते हुए यह टिप्पणी की। जम्मू कश्मीर में पंचायत और जिला विकास परिषद चुनावों की तैयारियों की समीक्षा के लिए राज्य चुनाव आयोग की 2 दिन की उच्च स्तरीय बैठक आज से शुरू होगी। बैठक की अध्यक्षता राज्य चुनाव आयुक्त शांत मनु करेंगे। सरकार ने थोक मूल्य सूचकांक WPI को धीरे धीरे समाप्त करने और उसकी जगह एक व्यापक उत्पादक मूल्य सूचकांक PPI प्रणाली लागू करने का निर्णय लिया है। ये निर्णय देश की मुद्रास्फीति और मूल्य निर्धारण डेटा संरचना को आधुनिक बनाने और इसे वैश्विक सर्वोत्तम पद्धतियों के अनुरूप बनाने के लिए लिया गया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा है कि WPI के आधार वर्ष को 2011-12 से संशोधित करके 2022-23 करने की मंजूरी दी गई है। संशोधित थोक मूल्य सूचकांक और नया उत्पादक मूल्य सूचकांक 15 जून को जारी किया जाएगा। सरकार ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2026 के लिए नामांकन आमंत्रित किए हैं। नामांकन जमा करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई है। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने बताया कि नामांकन केवल राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल awards.gov.in के माध्यम से ही स्वीकार किए जाएंगे। बांग्लादेश के विदेश मंत्री खलीलुर रहमान संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं। उनका कार्यकाल इस वर्ष सितंबर से शुरू होगा। संयुक्त राष्ट्र महासभा में उन्हें 99 वोट मिले। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 193 सदस्य देश कल 2027-28 कार्यकाल के लिए सुरक्षा परिषद के 5 नए अस्थायी सदस्यों का भी चुनाव करेंगे। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने डॉ खलीलुर रहमान को अध्यक्ष निर्वाचित होने पर बधाई दी है। डॉ जयशंकर ने कहा है कि वे भारत और बांग्लादेश की साझा प्राथमिकताओं को आगे बढ़ाने और बहुपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के लिए डॉ रहमान के साथ मिलकर काम करने के इच्छुक हैं। जर्मनी से होकर हवाई मार्ग से यात्रा करने वाले भारतीय नागरिकों के लिए ट्रांजिट वीजा की अनिवार्यता आज से समाप्त हो गई है। भारत ने इस फैसले का स्वागत किया है। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस नई व्यवस्था से भारत और जर्मनी के बीच लोगों के आपसी संपर्क बढ़ेंगे और संबंधों को मजबूती मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज के बीच इस वर्ष जनवरी में भारत यात्रा के दौरान इसकी घोषणा की गई थी। और बात खेलों की, तीसरे और अंतिम महिला 2020 क्रिकेट मैच में भारत को इंग्लैंड से 6 विकेट से हार का सामना करना पड़ा। इंग्लैंड ने श्रृंखला 2-1 से अपने नाम कर ली है। इंग्लैंड के टॉन्टन में खेले गए इस मुकाबले में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड को 181 रन का लक्ष्य दिया। इंग्लैंड ने 18 ओवर 3 गेंदों में 4 विकेट पर 184 रन बनाकर मैच जीत लिया। एलिस कैप्सी प्लेयर ऑफ द मैच चुनी गई, साथ ही प्लेयर ऑफ द सीरीज का खिताब भी उन्हीं को मिला। मौसम विभाग ने आज दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, गुजरात, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में गरज चमक के साथ आंधी चलने की चेतावनी जारी की है। विभाग ने अगले 2 से 3 दिनों तक केरलम और माहे में अत्यधिक वर्षा का अनुमान भी व्यक्त किया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
5: धन्यवाद विशाल। CBSE के ऑन स्क्रीन मार्किंग विवाद के बीच केंद्र सरकार की बड़ी कार्रवाई, आज के सभी अखबारों के मुख्य पृष्ठ पर है। अमर उजाला की सुर्खी है, CBSE चेयरमैन और सचिव हटाए गए, OSM टेंडर की जांच के लिए समिति गठित, 1 महीने में देगी रिपोर्ट। वहीं जनसत्ता ने लिखा है, पुनर्मूल्यांकन पोर्टल पर साइबर हमला, CBSE ने कहा सेवाओं को बाधित करने का प्रयास। नेपाल से सीमा विवाद

0: chairman, secretary shunted amid outcry, while the Tribune adds, government forms panel to probe on-screen marking. Pioneer reports CBSE re-evaluation portal faces new cybersecurity challenges. Indian Express on its editorial page writes, girls rewrite G-script, campus must keep pace. For the first time, more than 10,000 girls have qualified for admission to premier engineering institutions, including IITs. This year, G witnessed a striking improvement that has pushed the number of successful females up by almost 89% since 2019. In international news, Asian Age mentions Israel PM calls off Beirut strike after heated call with Trump, while the Pioneer reports Trump slams Netanyahu over Lebanon offensive. Times of India informs El Nino is rapidly developing and is set to impact global temperature and rainfall patterns under the headline World Meteorological Organization's El Nino Alert raises odds of severe impact on monsoon with 80% chance of onset during June-August period. And finally, under a piece titled Tigress Zenith Gives Birth to Four Cubs in Odisha Simlipal, the Hindu informs the translocation effort aimed at enhancing the genetic diversity of tigers in Odisha Simlipal Tiger Reserve has reserved major boosting, adding a proud chapter to Odisha's natural resources and wildlife conservation efforts. With that, it's back to you, Shagun.
1: Thank you, Subhadra. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Venezuela's acting President Delcy Rodriguez to be on a five-day visit to India beginning today. Senior Congress leader D.K. Shivkumar to be sworn in as Chief Minister of Karnataka this afternoon. West Bengal Chief Minister Suvendu Adhikari to launch Annapurna Yojana to provide 3,000 rupees every month to eligible women in the state today. Bangladesh Foreign Minister Khalilur Rahman elected President of 81st Session of UN General Assembly. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar congratulates him. And in women's cricket, host England beat India by 6 wickets in third and final T20 International to seal 3-match series to 1. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
2: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं कौनैन हैदर। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। वेनेजुएला की कारगुजार सदर डेल्सी रोड्रिग्ज आज से भारत के 5 रोजा दौरे पर रहेंगी। सीनियर कांग्रेस रहनुमा डीके शिवकुमार को आज से पहर कर्नाटक के वजीर आला के तौर पर हलफ दिलाया जाएगा। मगरबी बंगाल के वजीर आला शुभेंदु अधिकारी रियासत में अहल खवातीन को 3,000 रुपए माहाना फराहम करने की अन्नपूर्णा योजना का आगाज करेंगे। बांग्लादेश के वजीर खारजा खलीलुर रहमान को अकवाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली के 81वें सेशन का सदर मुंतखब किया गया है। वजीर खारजा एस जयशंकर ने उन्हें मुबारकबाद दी। जर्मनी ने भारतीय बाशिंदों के लिए उसके हवाई अड्डे से गुजर कर जाने वाले मुसाफिरों के लिए ट्रांजिट वीजा की जरूरत आज से खत्म कर दी है। और खवातीन क्रिकेट में तीसरे और आखिरी T20 बैनल अक्वामी मैच में मेजबान इंग्लैंड ने भारत को 6 विकेट से हराकर 3 मैचों की सीरीज 2-1 से जीत ली। अब खबरें तफसील से। वेनेजुएला की कारगुजार सदर डेल्सी रोड्रिग्ज आज से भारत के 5 रोजा दौरे पर रहेंगी। अपने दौरे के दौरान वो भारत वेनेजुएला के ताल्लुकात के पूरे मंजरनामे का जायजा लेने के लिए वजीर आजम नरेंद्र मोदी के साथ दो तरफा बातचीत करेंगी। दोनों ममालिक तिजारत सरमायाकारी तवानाई काबिल तजदीद तवानाई हिफ्जान सेहत और दवा साजी समेत अहम शोबों में बाहमी तआवुन के इम्कानात का जायजा लेंगे। कल नई दिल्ली में मीडिया को जानकारी देते हुए वजारत खारजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने बताया कि वेनेजुएला के उमूर खारजा मईशत खजाने और साइंस और टेक्नोलॉजी से मुतालिक वजरा पर मुश्तमिल एक आला सतही वफद भी मोहतरमा रोड्रिग्स भी के हमरा भारत पहुंचेगा। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से।
3: भारत और वेनेजुएला के दरमियान खास तौर पर तवानाई और तजारत के शोबों में दोस्ताना ताल्लुकात हैं। इस दौरे से दो तरफा ताल्लुकात के मुस्तहकम होने और मुख्तलिफ शोबों में दोनों मुल्कों के दरमियान बाहमी ताउन में मजीद इजाफा होने की उम्मीद है। वजीर आजम के साथ बातचीत के दौरान तवानाई की यकीनी फराहमी तजारत और सरमायाकारी दवासाजी हिफ्जान सेहत नकलो हमल और काबिल तजदीद तवानाई समेत बाहमी मफाद के शोबों में ताउन को मुस्तहकम करने के तरीकों पर तबादला ख्याल किया जाएगा। वेनेजुएला का वफद तवानाई दवासाजी और ऑटोमोबाइल से मुतालिक शोबों से वाबस्ता इदारों का दौरा करेगा। इस दौरे

0: करोड़ हेल्थ कार्ड्स बनाए हैं, जिससे सेहत की देखभाल के तहफुज तक रसाई में इजाफा हुआ है, जबकि प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि योजना स्कीम जन औषधि केंद्रों के जरिए 50-80% कम कीमतों पर मयारी जेनरिक अद्वियात फराहम कर रही है। आकाशवाणी न्यूज से बात करते हुए बिहार के ब्रह्मदेव ने कहा कि इन केंद्रों पर अद्वियात मार्केट के मुकाबले इंतहाई सस्ती कीमत पर दस्तयाब हैं।
1: लगभग एक साल से यहाँ से दवाई ले रहा हूँ, सस्ती दवाई मिलती है। डॉक्टर का भी सलाह है कि जन औषधि से दवाई खरीदें।
0: आनंद कुमार की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं असलम बे।
2: ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। बांग्लादेश के वजीर खारजा खलीलुर रहमान को अकवामे मुत्तहिदा की जनरल असेंबली के 81वें सेशन का सदर मुंतखब किया गया है। डॉक्टर रहमान को अकवामे मुत्तहिदा की जनरल असेंबली के लिए कराए गए इंतखाब में कामयाबी हासिल हुई है। उन्हें 99 वोट मिले, जबकि इस कसीर मुल्क निज़ाम के लिए कुब्रुस के खसूसी सफीर एंड्रिस काकोरिस को 91 वोट मिले। अकवामे मुत्तहिदा के आला मुज़ाकराती पॉलिसी साज और नुमाइंदगी करने वाले इदारे के सरबराह के तौर पर उनकी एक साल की मुद्दत सितंबर में शुरू होगी। ये सदारत अलग अलग खित्तों के पास बारी बारी रहती है और इस मुकर्रा उसूल के मुताबिक 81वें सेशन के सदर को एशिया बहरुल काहिल ग्रुप से मुंतखब किया जाना था। अकवामे मुत्तहिदा की जनरल असेंबली के मुंतखबा सदर डॉक्टर रहमान ने कहा कि वो अपनी मुद्दत कार के दौरान इस इदारे का काम इंसानी हकूक पर खसूसी तवज्जो मरकूज करते हुए करेंगे और सभी रुकन मुल्कों को फ़ाल रखेंगे। वजीर खारजा डॉक्टर एजय शंकर ने अकवामे मुत्तहिदा की जनरल असेंबली का सदर मुंतखब होने पर डॉक्टर रहमान को मुबारकबाद दी है। भारतीय शहरी जब जर्मन हवाई अड्डों से होकर किसी तीसरे मुल्क जाएंगे तो उन्हें आज से ट्रांजिट वीजा की जरूरत नहीं होगी। भारत में जर्मन सिफारतखाने ने ऐलान किया है कि इस छूट से उन भारतीय शहरियों के सफर में सहूलत हो जाएगी जो जर्मनी के रास्ते किसी दूसरे मुल्क जाते हैं। भारत ने अपने शहरियों के लिए ट्रांजिट वीजा को खत्म करने के लिए जर्मनी के इस ऐलान का खैर मकदम किया है। वजारत खारजा ने कहा कि यह ऐलान इस साल जनवरी में वजीर आजम नरेंद्र मोदी और जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज के दरमियान बातचीत के बाद किया गया है, जब जनाब फ्रेडरिक भारत के दौरे पर आए थे। वजारत ने कहा कि इस नए इंतजाम से दोनों मुल्कों के दरमियान अवाम से अवाम के दरमियान रिश्तों को मजीद फरोग हासिल होगा। जम्मू कश्मीर में रियासती इंतखाबी कमीशन आज से आला सतह की एक दो रोजा मीटिंग मुनाकिद करेगा। यह मीटिंग जिला इंतखाबी अफसरान और दीगर शख्सियतों के साथ की जाएगी, जिसका मकसद मरकज के ज़ेर इंतज़ाम इस इलाके में पंचायत और ज़िला तरक्याती कौंसिल के इंतखाबात की तैयारियों का जायजा लेना है। हमारे नामा निगार ने बताया कि रियासती इंतखाबी कमिश्नर शांत मनु इस मीटिंग की सदारत करेंगे। जम्मू कश्मीर में पंचायत और ब्लॉक तरक्याती कौंसिलों का कामकाज 9 जनवरी 2024 को रोक दिया गया था। बल्दियाती इदारों की मुद्दत कार 2 अक्टूबर 2023 और ज़िला तरक्याती कौंसिलों की मुद्दत कार 24 फरवरी 2026 को मुकम्मल हो गई थी। हुकूमत ने साल 2026 के प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार के लिए नामजदगियां तलब की हैं। नामजदगी जमा कराने की आखिरी तारीख 31 जुलाई है। यह बावकार अवार्ड सदर जमहूरिया की जानिब से ऐसे बच्चों को अता किया जाता है जिन्होंने बहादुरी, समाजी खिदमत, माहौलियात, खेलकूद, आर्ट और कल्चर और साइंस और टेक्नोलॉजी समेत मुख्तलिफ मैदानों में गैर मामूली खिदमत अंजाम दी हों। भारत के महकमे मौसमियात IMD ने आज दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गुजरात, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में गरज चमक के साथ तूफानी झक्कड़ की सूरत हाल के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। IMD ने केरला और माहे में अगले 2 से 3 दिनों के लिए शदीद से बहुत शदीद बारिश की पेशगोई की है। महकमे मौसमियात ने कल तक अंडमान और निकोबार जजायर, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कोंकण, गोवा, लक्षद्वीप, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल, उत्तराखंड, मगरबी उत्तर प्रदेश और शिमाल मशरकी खित्ते में गरज चमक और तेज हवाएं चलने की भी पेशगोई की है। खवातीन क्रिकेट में कल रात टॉन्टन में खेले गए तीसरे और आखिरी T20 बैन अल-अक़वामी मैच में मेजबान इंग्लैंड ने 6 विकेट से जीत हासिल करके भारत के खिलाफ 3 मैचों की सीरीज 2-1 से अपने नाम कर ली। हेथर नाइट और एलिस कैप्सी की शानदार शराकतदारी की बदौलत इंग्लैंड ने आसानी से 180 रन का निशाना हासिल कर लिया। एलिस कैप्सी को इस मैच और सीरीज की बेहतरीन खिलाड़ी करार दिया गया। इससे पहले बल्लेबाजी कर

0: ते हुए भारतीय खवातीन ने 5 विकेट के नुकसान पर 180 रन बनाए थे। इसके जवाब में इंग्लैंड ने 18.3 ओवर्स में 4 विकेट पर 184 रन बनाए। ये थी खबरें और अब अखबारात के आईने के साथ हैं फहीम अहमद।
1: शुक्रिया कौनन। कौमी राजधानी दिल्ली से शाया होने वाले आज के उर्दू अखबारात की शह सुर्खियां एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। अखबार इनकलाब ने सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की हलफबरदारी से मुतल्लिक खबर को शह सुर्खी बनाया है। अखबार की सुर्खी है, 5 नए जजों को हलफ दिलाया गया, सुप्रीम कोर्ट में जजों की तादाद 37 हुई। अखबार प्रताप की शह सुर्खी है, मोदी सरकार ने CBSE चेयरमैन व सेक्रेटरी को ओहदे से हटाया, पेपर लीक मामले में कोताहियों की जांच कराएगी हुकूमत। इसी अखबार की एक और सुर्खी है, दिल्ली में बीजेपी सदर से नेपाल के वफद की मुलाकात। अखबारात की एक और अहम सुर्खी है, भारत और जनूबी अफ्रीका ने दो तरफा रिश्तों को और मजबूत बनाने के अज़्म का इजहार किया। अखबार प्रताप ने सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू के इस बयान को सफ़े अव्वल पर जगह दी है कि मजबूत खुशहाल और खुदकफील भारत की तामीर में ताउन दे कबायली नौजवान।
0: आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। वेनेजुएला की कारगुजार सदर डेल्सी रोड्रिग्स आज से भारत के 5 रोजा दौरे पर रहेंगी। सीनियर कांग्रेस रहनुमा DK शिवकुमार को आज सुपहर कर्नाटक के वजीर आला के तौर पर हलफ दिलाया जाएगा। मगरबी बंगाल के वजीर आला शुभेंदु अधिकारी रियासत में अहल खवातीन को 3,000 रुपये माहाना फराहम करने की अन्नपूर्णा योजना का आगाज करेंगे। बांग्लादेश के वजीर खारजा खलीलुर रहमान को अक़वामे मुत्तहिदा की जनरल असेंबली के 81वें सेशन का सदर मुंतखब किया गया है। वजीर खारजा एस जयशंकर ने उन्हें मुबारकबाद दी। जर्मनी ने भारतीय बाशिंदों के लिए उसके हवाई अड्डे से गुजर कर जाने वाले मुसाफिरों के लिए ट्रांजिट वीजा की जरूरत आज से खत्म कर दी है। और खवातीन क्रिकेट में तीसरे और आखिरी T20 बैन अलावा मैच में मेजबान इंग्लैंड ने भारत को 6 विकेट से हराकर 3 मैचों की सीरीज 2-1 से जीत ली। इसके साथ ही ये खबरनामा खत्म हुआ।
2: मीडियम वेव 241.54 मीटर अर्थात 1242 किलोहर्ट्ज़। न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम मधुरिमा। कार्यक्रम में गीत सुनने से पहले आइए सुनते हैं कुछ संदेश।
3: कम ब्याज पे लोन चाहिए, वो भी ऐप से।
4: अनजान ऐप से बचें।
5: RBI कहता है,
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
6: हमारी जनगणना हमारा विकास।
7: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
8: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
9: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
8: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
9: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
8: बुकिंग है तो संपर्क करें
10: 0542227658
11: 0542227658।
2: कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। श्रोताओं, आज इस कार्यक्रम में हम बातें करेंगे फिल्म अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा के बारे में, और जिनका जन्म 2 जून यानी कल के दिन हुआ था, और वो अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा और अभिनेत्री पूनम सिन्हा के पुत्री हैं। और उन्होंने फिल्म दबंग 2010 में जो कि आई थी, उस फिल्म से फिल्मी दुनिया में उन्होंने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई थी, और जिस फिल्म के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ पदार्पण अभिनेत्री का फिल्म फेयर पुरस्कार भी मिला था। तो आइए सुनते हैं दबंग फिल्म का ये गीत।

0: और अब हम बात करते हैं कि वो शत्रुघ्न सिन्हा, और जैसा कि हमने बताया, और पूनम सिन्हा जो कि एक सिंधी फैमिली से बिलोंग करती थी, उनकी वो बेटी हैं, और उनके दो भाई जुड़वा भाई हैं जिनका नाम लव सिन्हा और कुश सिन्हा है, और तीन बच्चों में वो अपने माता पिता की सबसे छोटी बच्ची हैं यानी संतान हैं। सोनाक्षी मुंबई में आर्य विद्या मंदिर से अपनी इन्होंने स्कूली शिक्षा पूरी की, और श्रीमती नाथीबाई दामोदर थ्रैक से महिला विश्वविद्यालय मुंबई महाराष्ट्र से इन्होंने फैशन डिजाइनिंग में स्नातक की उपाधि प्राप्त की है।
1: ये

सोनाक्षी सिन्हा की बात करें तो उन्होंने सीधे अभिनेत्री के तौर पर फिल्मी दुनिया में पदार्पण नहीं किया था, बल्कि सबसे पहले 2005 में मेरा दिल लेके देखो जैसे फिल्मों के लिए वस्त्र डिज़ाइन करके एक कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर के रूप में उन्होंने अपने पेशे की शुरुआत की थी। उसके बाद फिर लैक्मे फैशन वीक 2008 2009 में वो रैम पर भी चली और उन्होंने अपने अभिनय की जो पहली प्रस्तुति थी वो सलमान खान के साथ दबंग फिल्म से की थी। और सोनाक्षी सिन्हा यो-यो हनी सिंह के साथ एक संगीत वीडियो में भी इसके बाद दिखाई दी थी जिसका शीर्षक सुपरस्टार था।

0: जन कल्याण
1: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
2: आकाशवाणी वाराणसी से प्रत्येक सोमवार से शुक्रवार तक दिन में 12 बजे सुनिए NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम

अगर हम आगे की बात करें तो 2019 में सोनाक्षी सिन्हा ने कॉमेडी फिल्म टोटल धमाल में एक गीत मुंगड़ा में अभिनय किया था, और इसके बाद उन्होंने आदित्य रॉय कपूर, संजय दत्त, माधुरी दीक्षित, आलिया भट्ट और वरुण धवन सहित कई कलाकारों की टुकड़ी के साथ पीरियड रोमांस फिल्म कलंक में अभिनय किया, और ये फिल्म व्यावसायिक रूप से बहुत अच्छा प्रदर्शन करने में विफल रही थी। सोनाक्षी ने फिल्म खानदानी शफाखाना में भी काम किया था।

0: सोनाक्षी सिन्हा की जो फिल्म दबंग थी उसकी अपार सफलता के बाद सोनाक्षी ने कई बड़ी और व्यावसायिक रूप से सफल फिल्मों में काम किया, जिनमें से मसाला और एक्शन फिल्मों में थी उनकी राउडी राठौर, सन ऑफ सरदार, दबंग टू, आर राजकुमार और मिशन मंगल जैसी कई 100 करोड़ी फिल्मों में उन्होंने काम किया था। और उनके अगर सराहनीय अभिनय की बात करें तो साल 2013 में आई फिल्म लुटेरा, जिसमें वो रणवीर सिंह के साथ उन्होंने अभिनय किया था, तो उनके इस फिल्म में उनके अभिनय को आलोचकों द्वारा बेहद सराहा गया था। और इस फिल्म में उन्होंने एक गंभीर और भावुक किरदार निभाया था, जिसे उनके करियर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन माना जाता है। साथ ही साथ उन्होंने महिला प्रधान फिल्में अकीरा और नूर जैसी फिल्मों में मुख्य भूमिका निभाकर ये भी साबित किया कि वो अकेले अपने दम पर किसी भी फिल्म को खींच सकती हैं। और जब ओटीटी का जमाना आया तो उन्होंने ओटीटी पर भी एक बहुत ही अच्छा मुकाम बनाया। और इसके साथ ही साथ उन्होंने दहाड़ वेब सीरीज में एक निडर पुलिस अधिकारी अंजलि भाटी का किरदार निभाया, जिसके लिए उन्हें बहुत सारी तारीफें मिली। और हीरा मंडी, जो कि 2024 में संजय लीला भंसाली की भव्य वेब सीरीज थी, जिसमें उन्होंने रेहाना और फ्रीदन की दोहरी भूमिका निभाकर अपने अभिनय क्षमता का एक नया स्तर दर्शकों के सामने रखा। और अगर हम उनके निजी जीवन की बात करें तो उन्होंने हाल ही में जून 2024 में अपने बॉयफ्रेंड और अभिनेता जहीर इकबाल के साथ एक निजी और खूबसूरत समारोह में शादी की।
1: घटाओं में रहेंगे तू बरखा मेरी।
0: सोनाक्षी को उनके प्रशंसक और इंडस्ट्री के लोग प्यार से शॉटगन जूनियर यानी उनके पिता के उपनाम पर और दबंग गर्ल के नाम से भी बुलाते हैं। वो अपनी कला के साथ साथ अपनी बेबाकी और सकारात्मक सोच के लिए भी जानी जाती हैं।
1: दीवानी तू मेरी मैं तेरा पागल।
0: तो ये थी बहुत सारी बातें सोनाक्षी सिन्हा के बारे में। हम उनको उनके आगामी जीवन के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं देते हैं। और इसी के साथ अपने इस कार्यक्रम को समेटने का वक्त भी आ चुका है दोस्तों। तो आप सभी को हम नमस्कार कहते हैं। आज का सफर ये आपने तय किया अपनी रेडियो सखी सुषमा गुप्ता के साथ।

0: अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम मधुरिमा।
1: दिल का भरम
0: मीडियम वेव 241.54 मीटर अर्थात 1242 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 9:15 होने को हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे जिले की हलचल, जिसे हम अपने लखनऊ केंद्र से रिले करेंगे।
2: जिले की हलचल।
3: जिले की हलचल आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है। जिले की हलचल आज सुनिए लखनऊ और गाजियाबाद जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं लखनऊ जिले की हलचल। आलेख और स्वर है मुमताज अली का।
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 23 मई 2026 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 19वें रोजगार मेले में विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में 51,000 से अधिक नव नियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए। 19वां रोजगार मेला देश भर में 47 स्थानों पर आयोजित किया गया, जिनमें से लखनऊ भी एक था। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर अपने संबोधन में कहा,
5: दुनिया भारत के युवाओं और भारत की टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस को लेकर बहुत उत्साहित है। भारत के युवाओं को अवसर मिले, रोजगार मिले, उनका सामर्थ्य खिल उठे। साथ साथ मैं चाहता हूँ मेरे देश के नौजवानों को ग्लोबल एक्सपोजर भी मिले।
4: लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में केंद्रीय सामाजिक न्याय अधिकारिता उपभोक्ता मामले खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री बीएल वर्मा ने 300 से अधिक उम्मीदवारों को सरकारी सेवा की सौगात दी, जिनमें से 198 उम्मीदवार भारतीय रेलवे का हिस्सा बने। श्री वर्मा ने कहा कि रोजगार मेला आरंभ किए जाने के बाद देश भर में अब तक आयोजित 18 रोजगार मेलों के माध्यम से लगभग 12 लाख नियुक्ति पत्र वितरित किए जा चुके हैं। इस प्रक्रिया में पूरी पारदर्शिता के साथ नौकरियां दी गई हैं। केंद्रीय कृषि किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान 6 मई को 2 दिवसीय लखनऊ दौरे पर प्रदेश की राजधानी पहुंचे। 6 मई की रात को उन्होंने लखनऊ के निजी होटल में फल निर्यातकों के साथ निर्यात को बढ़ाने पर चर्चा की। अगले दिन भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR के तहत आने वाले केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान रहमान खेड़ा में उन्होंने फ्रूट होराइजन 2026 कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र में भाग लिया। श्री चौहान ने साफ कहा कि अब केवल ज्यादा उत्पादन से बात नहीं बनेगी, बल्कि भारत को वैश्विक फल बाजार में मजबूत पहचान लाने के लिए गुणवत्ता, शेल्फ लाइफ, प्रसंस्करण, लॉजिस्टिक और निर्यात मानकों पर गंभीरता से काम करना होगा। उन्होंने जोर दिया कि खेती को खेत तक सीमित नहीं रखा जा सकता, अब उत्पादन से लेकर प्रोसेसिंग, बाजार और निर्यात तक पूरी वैल्यू चेन को मजबूत करना समय की मांग है। भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए किसानों का विकास आवश्यक है। श्री चौहान ने कहा कि निर्यात बढ़ाने के लिए बागवानी क्षेत्र के सभी पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करना होगा। उन्होंने कहा कि इस दिशा में समग्र सरकारी दृष्टिकोण के साथ काम करने के लिए एक कार्यबल का गठन किया जाएगा। कार्यक्रम में प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही और उद्यान राज्य मंत्री दिनेश प्रताप सिंह के साथ भारत सरकार के कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग के सचिव और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक डॉक्टर ML जाट भी उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 26 मई 2026 को लखनऊ वासियों को विकास की सौगात दी। उन्होंने इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित कार्यक्रम में 413 करोड़ की 342 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर उन्होंने स्वच्छ, सुंदर, समर्थ लखनऊ पुस्तिका का विमोचन किया। इस दौरान लघु फिल्म भी दिखाई गई। मुख्यमंत्री ने सभी 17 नगर निगमों के महापौर, 200 नगर पालिका परिषद, 545 नगर पंचायतों के चेयरमैन और लगभग 14,000 पार्षदों को 3 वर्ष का कार्यकाल संपन्न होने पर शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि जनता का पैसा जनहित में ही खर्च होगा। उन्होंने कहा लखनऊ को स्वच्छता रैंकिंग में 3रा स्थान मिला है, अब इसे पहले स्थान पर लाना है। श्री योगी ने कहा
6: 25 करोड़ की आबादी ही हमारा परिवार है और नगर निगम लखनऊ ने कहा कि पूरा नगर निगम ही हमारा परिवार है, इसलिए बिना भेदभाव की योजनाओं का लाभ उन तक पहुँचाना है।
4: जनगणना 2027 के तहत स्वगणना का काम लखनऊ में 7 मई 2026 से शुरू हुआ और 21 मई 2026 तक चला।

0: लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित विभिन्न मंत्रियों और अधिकारियों ने स्वगणना में भाग लिया। अब जनगणना के प्रथम चरण के तहत प्रगणक घर घर जाकर मकान की गणना कर रहे हैं। 22 मई को शुरू हुआ यह कार्य 20 जून 2026 तक चलेगा। उत्तर प्रदेश की मुख्य प्रधान जनगणना अधिकारी और निदेशक शीतल वर्मा ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि मकान की गणना के पहले दिन 1 करोड़ से अधिक मकान को सूचीबद्ध किया गया है। लखनऊ में जेठ मास के बड़े मंगलों की धूम मची हुई है। लखनऊ के अलीगंज स्थित पुराने हनुमान मंदिर से शुरू हुई यह परंपरा अब प्रदेश के कई जिलों तक पहुंच चुकी है। लखनऊ में प्रत्येक बड़े मंगल पर हनुमान जी के विभिन्न मंदिरों में दर्शन पूजन के साथ भंडारों का आयोजन किया जा रहा है। अब तक हजारों भंडारे आयोजित हो चुके हैं। इस बार अधिमास लगने के कारण 8 बड़े मंगल पड़ रहे हैं। प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 28 मई को ईद उल अजहा की नमाज शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हुई। 30 मई तक चले बकरीद पर्व पर लोगों ने कुर्बानी की परंपरा का निर्वहन किया। लखनऊ स्थित इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया ने बकरीद के लिए 12 बिंदुओं की एडवाइजरी जारी की थी। इंडियन प्रीमियर लीग यानी IPL 2026 के संस्करण में 7 मुकाबले लखनऊ के भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी कान्हा स्टेडियम में खेले गए, जिनका लुत्फ शहरवासियों के साथ साथ अन्य राज्यों और शहरों से आए लोगों ने भी उठाया। अब कान्हा स्टेडियम में 17 जून 2026 को भारत और अफगानिस्तान के बीच एक दिवसीय मैच खेला जाएगा।
1: लखनऊ जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं गाजियाबाद जिले की हलचल। आलेख और स्वर है मनोज शर्मा का।
2: भारत सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के साथ साथ समाज के आखिरी पायदान पर खड़े व्यक्ति के भी सपने पूरे हो रहे हैं। सरकार का संकल्प है कि हर वर्ग को सरकार द्वारा चलाए जा रही योजनाओं का लाभ मिले। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत ऐसे गरीबों को रहने के लिए अपना छत मिली है जो किराए पर रहते थे। गाजियाबाद के रहने वाले पवन कौशिक ने बताया कि पहले वो किराए के मकान में रहते थे और हर एक 2-4 साल में उनको मकान बदलना पड़ता था, जिससे उन्हें बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता था। गाजियाबाद की बापूधाम योजना में उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत अपना मकान लेने का सपना देखा, जो कि पूरा भी हुआ। लाभार्थी पवन कौशिक ने बताया,
3: मुझे पता चला कि प्रधानमंत्री आवास योजना के थ्रू जो है वो GDA में फ्लैट आवंटन के लिए योजना निकाली गई है, तो मैंने उसमें 2020 में आवेदन किया था। अभी मुझे 1.5 महीने पहले मेरी रजिस्ट्री हुई है, साथ के साथ कब्जा भी हो गया। सरकार ने बहुत अच्छा किया।
2: वहीं गाजियाबाद के अभिषेक कुमार कहते हैं कि एक मकान हर इंसान का सपना होता है। भारत सरकार ने मकान देकर निम्न वर्ग के सपने को पूरा किया। उन्होंने सरकार की भागीदारी से कम कीमत में उपलब्ध हुए मकान के लिए सरकार का आभार भी जताया। वहीं GDA उपाध्यक्ष नंद किशोर कलाल ने सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न आवासीय योजनाओं के बारे में बताया। सरकार समाज के आखिरी पायदान पर खड़े व्यक्ति को हर वो सुविधा देना चाहती है जिससे वह अपने आप को सक्षम महसूस कर सके। मकान हर किसी का एक बहुत बड़ा सपना होता है। उस मकान को सरकार गरीबों के लिए भी आसानी से उपलब्ध करा रही है। उन्होंने जनपद गाजियाबाद में चल रही अन्य आवासीय योजनाओं के बारे में बताया और EWS के तहत भविष्य में आने वाली योजनाओं का जिक्र भी किया। उन्होंने बताया,
4: सरकार की भी नीति है कि गरीब लोग अधिकतम से अधिकतम इसमें लाभान्वित हो। जो हमारे प्राधिकरण की खुद की योजनाएं हैं, उसमें भी हम छोटे साइज के 40 स्क्वायर मीटर के, 60 स्क्वायर मीटर के, 90 स्क्वायर मीटर के प्लॉट्स, जो कि निम्न आय वर्ग के लोगों के लिए सुलभ होते हैं, उसको हम लॉटरी के माध्यम से अधिक जनता को उपलब्ध कराने का प्रयास कर रहे हैं।
2: गाजियाबाद के सिकंदरपुर में बने हिंडन एयरपोर्ट के विस्तार को लेकर तैयारी तेज कर दी गई है। हवाई अड्डे का विस्तार 14 एकड़ जमीन पर किया जाएगा। इसमें से 6.8 एकड़ जमीन की खरीद को लेकर किसानों ने सहमति बनाने का जिला प्रशासन द्वारा प्रस्ताव तैयार कर शासन को भेज दिया है। शेष 7.2 एकड़ जमीन की खरीद के लिए सिकंदरपुर गांव के किसानों से अब जिला प्रशासन द्वारा वार्ता शुरू कर दी गई है। ऐसे में हिंडन हवाई अड्डे की उड़ान बेंगलुरु, मुंबई, चेन्नई, वाराणसी, अयोध्या, लखनऊ जैसे सीमित शहरों तक नहीं बल्कि देश के कोने कोने तक होगी। इस गाजियाबाद के विकास को पंख लगेंगे और आसपास के जिलों के लोगों के लिए भी एयर कनेक्टिविटी की सुविधा बेहतर होगी। शासन के निर्देश पर जनपद की 67,000 ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया जाएगा। इसके लिए उन्हें राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा प्रशिक्षण भी दिलाया जाएगा। इसके लिए तैयारी शुरू कर दी गई है। महिलाओं को स्वयं सहायता समूह बनाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को जागरूक करने के लिए उनको सिलाई कढ़ाई से लेकर मोबाइल रिपेयरिंग, खेती करने, बैंकिंग कार्य करने सहित अन्य कार्य करने के लिए प्रशिक्षण दिलाया जाता है। प्रशिक्षण देने के बाद सरकार की ओर से महिला स्वयं सहायता समूह को कारोबार शुरू करने के लिए आर्थिक रूप से सहायता भी दी जाती है। कम ब्याज पर बैंक से लोन दिलाया जाता है। वर्तमान में 2400 महिला

0: स्वयं सहायता समूह हैं। वित्तीय वर्ष 26-27 में सरकार ने जिले में 6,700 नए महिला स्वयं सहायता समूह बनाने के निर्देश दिए हैं। एक महिला स्वयं सहायता समूह में न्यूनतम 10 महिलाएं शामिल होती हैं। ऐसे 67,000 महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए 6,700 महिला स्वयं सहायता समूह से जोड़ा जाएगा। सरकार की एक जिला एक उत्पाद और एक जिला एक खेल की सफलता के बाद अब ODOC एक जनपद एक व्यंजन योजना शुरू की गई है। इसमें स्थानीय खान पान और स्वाद को ध्यान में रखते हुए इसे प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाना आवश्यक है। इसी क्रम में गाजियाबाद को सोया चाप के बाद हरी मिर्च के अचार को भी इस योजना के लिए चिन्हित किया गया है। जनपद में सोया चाप के कारोबार से 10,000 से अधिक लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिल रहा है। वहीं हरी मिर्च से तैयार अचार को भी एक जनपद एक व्यंजन योजना में शामिल किया गया है। इस अचार के निर्माण और व्यापार से 2500 से अधिक लोगों को रोजगार मिल रहा है।
1: ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।
2: जिले के हलचल कार्यक्रम समाप्त हुआ।
3: मीडियम वेव 241.54 मीटर अर्थात 1242 किलो हर्ट्ज। न्यूज ऑन AIR ऐप पर हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। अब सुनिए खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में सूचना। सहायक पुलिस आयुक्त भेलूपुर वाराणसी से प्राप्त सूचना के अनुसार प्रियंका पुत्री नारायण कुमार निवासिनी किरहिया अखाड़ा खुजवा वाराणसी 11 अप्रैल 2026 से लापता हैं। इनके विषय में जानकारी की बातें इस प्रकार है। इनकी उम्र है 24 वर्ष, ऊंचाई 5 फीट 4 इंच, इकहरा बदन, रंग साफ है, चेहरा गोल, आंखें सामान्य और काली है, बालों का रंग भी काला है, शारीरिक विकृति कोई नहीं है। घटना के समय इन्होंने लाइट ग्रीन कलर का टी शर्ट और पैंट, काले रंग का सलवार सूट पहन रखा था। इनके विषय में कोई भी जानकारी प्राप्त होने पर आप नजदीकी थाना या थाना भेलूपुर वाराणसी को सूचित कर सकते हैं।

सहायक पुलिस आयुक्त भेलूपुर वाराणसी से ही प्राप्त सूचना के अनुसार मुस्कान कसेरा, पुत्री दीपक कुमार, निवासिनी बड़ी पियरी थाना कोतवाली और वर्तमान पता इनका है गोवर्धन कुंज अपार्टमेंट दुर्गा कुंड। ये 13 अप्रैल 2026 से लापता हैं। इनके विषय में जानकारी की बातें इस प्रकार है। इनकी उम्र है 18 वर्ष, इकहरा बदन है, रंग सांवला, चेहरा लंबा, आंखें सामान्य और काली हैं, बालों का रंग भी काला है। इनके विषय में कोई भी जानकारी प्राप्त होने पर आप नज़दीकी थाना या थाना भेलूपुर वाराणसी को सूचित कर सकते हैं।

सहायक पुलिस आयुक्त राजा तालाब कमिश्नरेट वाराणसी से प्राप्त सूचना के अनुसार हेमा शुक्ला पत्नी अशोक शुक्ला निवासिनी लोहराडीह पोस्ट कपसेठी थाना कपसेठी जिला वाराणसी 13 अप्रैल 2026 से अपने घर से ही लापता हैं। इनके विषय में जानकारी की बातें इस प्रकार है। इनकी उम्र है

वर्ष, ऊंचाई 5 फीट 3 इंच, शरीर की बनावट सामान्य है, बालों का रंग काला है, शारीरिक विकृति कोई भी नहीं है। इनकी लंबाई है 5 फुट 2 इंच, रंग हल्का गोरा है और घटना के समय इन्होंने लाल और हरे रंग की साड़ी पहन रखी थी। इनके विषय में कोई भी जानकारी प्राप्त होने पर आप नज़दीकी थाना या थाना प्रभारी थाना कपसेठी वाराणसी को सूचित कर सकते हैं। सूचना संपन्न हुई।

मीडियम वेव 241.54 मीटर अर्थात 1242 किलोहर्ट्स। न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। प्रातः के 9:30 होने को है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे उर्दू कार्यक्रम, जिसे हम अपने लखनऊ केंद्र से रिले करेंगे।

0: रात मै खाने के दिन क्यों न वो बामे तकबुर से उतरते हैं जफर, क्यों न वो बामे तकबुर से उतरते हैं जफर, हैं यही अहदे वफा के गरचे दोहराने के दिन याद आते हैं तेरी जुल्फों के बल खाने के दिन, जो गजल कहने के दिन थे, जो गजल गाने के दिन।
1: डॉक्टर

0: गाने के दिन।
1: डॉक्टर जफरुल्ला अंसारी के कलाम के साथ ही आज का उर्दू प्रोग्राम खत्म होता है।
2: आकाशवाणी के लखनऊ मरकज से उर्दू प्रोग्राम नशर किया जा रहा था। प्रत्येक बुधवार शाम 6:30 पर सुनिए।

मीडियम वेव 241.54 मीटर अर्थात 1242 किलोहर्ट्स। न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी वाराणसी के कार्यक्रम। इसी क्रम में अब प्रस्तुत है लोक संगीत का कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में आज कलाकार हैं तेज बहादुर सिंह यादव और साथी। सबसे पहले इनके स्वर में हम सुनेंगे ये देवी गीत, लेकिन उसके पहले सुनते हैं एक संदेश।

0: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
0: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
0: डायल कीजिए
2: 0542227658।
1: नंबर एक बार फिर नोट करें
3: 0542227658।

तेज बहादुर सिंह यादव और साथियों के गाए इसी झूमर के साथ लोक संगीत का कार्यक्रम अब संपन्न होता है। आकाशवाणी वाराणसी से अब प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम झंकार। इस कार्यक्रम में गीत सुनने से पहले सुनते हैं ये संदेश।

स्वास्थ्य संबंधी फोन इन कार्यक्रम आरोग्यम आप सुनते हैं प्रत्येक रविवार दिन में 11:30 बजे। इस रविवार दिनांक 7 जून 2026 को प्रसारित होने वाले कार्यक्रम का विषय है थायराइड की समस्या और इसकी चिकित्सा। इस विषय पर जानकारी देने के लिए हमारी डॉक्टर होंगी डॉक्टर ऋचा त्रिपाठी। कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी गुरुवार 4 जून 2026 को प्रातः 10 बजे से 11 बजे के बीच। तो हमें फोन करना ना भूलें। हमारा फोन नंबर है 222-1052। बनारस का एसटीडी कोड है 0542। तो सुनते रहिए आरोग्यम आकाशवाणी वाराणसी के साथ।

आशिकी फिल्म से ये गीत आपने सुना, आवाज़ अनुराधा पौडवाल और कुमार शानू की थी, शब्द रचना समीर और संगीत निर्देशन नदीम श्रवण का था। आइए कार्यक्रम का अगला गीत सुनते हैं। आन फिल्म से आवाज़ें अलका याग्निक सोनू निगम की है, संगीतकार समीर हैं और संगीत निर्देशन है अनु मलिक का।

आकाश वाणी एट 90.90 दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल, पुरानी यादें नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है, आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

फोन इन कार्यक्रम आरोग्यम आप सुनते हैं प्रत्येक रविवार दिन में 11:30 बजे। इस रविवार दिनांक 7 जून 2026 को प्रसारित होने वाले कार्यक्रम का विषय है थायराइड की समस्या और इसकी चिकित्सा। इस विषय पर जानकारी देने के लिए हमारी डॉक्टर होंगी डॉक्टर ऋचा त्रिपाठी। कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी गुरुवार 4 जून 2026 को प्रातः 10 बजे से 11 बजे के बीच। तो हमें फोन करना न भूलें। हमारा फोन नंबर है 222-1052। बनारस का एसटीडी कोड है 0542। तो सुनते रहिए आरोग्यम आकाशवाणी वाराणसी के साथ।

ये गीत आपने आन फिल्म से सुना और इसे आवाज दी थी अलका याग्निक और सोनू निगम ने। इसे लिखा था समीर ने और इसे संगीतबद्ध किया था अनु मलिक ने। इस गीत में आए हुए व्यवधान के लिए हम आपसे क्षमा प्रार्थी हैं। और अगला गीत हम आपको आरजू फिल्म से सुनवा रहे हैं, जिसे आवाज दी है अलका याग्निक और साथियों ने। शब्द रचना आनंद बख्शी की है, संगीत निर्देशन

और संगीतबद्ध किया था अनु मलिक ने, और अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं बागी फिल्म से अंकित तिवारी की आवाज़ में। संगीत निर्देशन भी अंकित तिवारी का है और गीत को लिखा है अभेंद्र कुमार उपाध्याय ने।

स्वास्थ्य संबंधी फोन इन कार्यक्रम आरोग्यम आप सुनते हैं प्रत्येक रविवार दिन में 11:30 बजे। इस रविवार दिनांक 7 जून 2026 को प्रसारित होने वाले कार्यक्रम का विषय है थायराइड की समस्या और इसकी चिकित्सा। इस विषय पर जानकारी देने के लिए हमारी डॉक्टर होंगी डॉक्टर ऋचा त्रिपाठी। कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी गुरुवार 4 जून 2026 को प्रातः 10 बजे से 11 बजे के बीच। तो हमें फोन करना न भूलें। हमारा फोन नंबर है 222-1052। बनारस का एसटीडी कोड है 0542। तो सुनते रहिए आरोग्यम आकाशवाणी वाराणसी के साथ।

ऐतराज फिल्म से ये गीत आपने सुना, आवाज थी उदित नारायण और अलका याग्निक की। संगीतकार थे समीर और संगीत निर्देशन था हिमेश रेशमिया का। और कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं अरमान फिल्म से, आवाज उदित नारायण महालक्ष्मी की है।

ये गीत आपने सुना अरमान फिल्म से, आवाज़ें थी उदित नारायण और महालक्ष्मी की। और इस गीत को लिखा था जावेद अख्तर ने, संगीत निर्देशन दिया था इस गीत का शंकर एहसान लॉय ने। और अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं गुलाम फिल्म से, आवाज़ कुमार शानू और अलका याग्निक की है।

0: अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम झनकार, प्रसारण आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से हो रहा था।
1: आकाशवाणी @90 90 साल की आवाज।

दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल, पुरानी यादें नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है, आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

मीडियम वेव के 241.54 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये वाराणसी केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में दिन के 11 बजे हैं। लीजिए सुनिए फरमाइशी गीत एक्सप्रेस कार्यक्रम। श्रोताओं, आज का ये कार्यक्रम आपके ईमेल संदेशों पर आधारित है। आपकी पसंद के गीत जो आपने ईमेल संदेश के माध्यम से हम तक पहुंचाए हैं, वही गीत हम आज आपको सुनवाएंगे इस कार्यक्रम में। और आज का कार्यक्रम लेकर हाजिर हूं मैं, आपके रेडियो हमसफर अंजना झा।

0: और फिर क्या होगा?
1: पार्टियां, दावतें,

जमाने को दिखाना है। इस फिल्म का गीत आप सुन रहे थे और आज के इस कार्यक्रम का पहला फरमाइशी गीत था ये। श्रोताओं के नाम हम आपको बता देते हैं जिन्होंने इस गीत की फरमाइश हम तक भेजी थी। पोटिया कला दुर्ग से संजय साहू, सुजाता, शशांक और सीमा। ग्राम डाकघर निम्नाबाद जिंद हरियाणा से जसवीर सिंह अरोड़ा, जतिंदर कौर, गुरप्रीत सिंह, लवप्रीत कौर, कर्मजीत कौर। टैगोर गार्डन नई दिल्ली से रविंद्र सिंह छाबड़ा, इंद्रजीत कौर और स्वीटी का ईमेल संदेश शामिल हुआ। फरमाइश आई संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव। एयरपोर्ट रोड वंदना नगर इंदौर मध्य प्रदेश से नारायण खर्चे, ललिता, गणेश, कार्तिक, परी, स्वाति, प्रयाग चौधरी, देविका चौधरी और इनके परिवार के सभी सदस्य। सुनना चाहा बबलू यादव, सुनील यादव, रोहित यादव, रजईपुर पोस्ट उगापुर भदोई से। पलारी छत्तीसगढ़ से नितेश कुमार देवांगन, दुर्गा प्रसाद, पूनाराम देवांगन और कृष्णा देवांगन। रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा और ये फरमाइश जोधपुर राजस्थान से रमेश चंद्र चौहान, मोहिनी चौहान, कल्पित चौहान, बेबी गर्वी और हिमाक्ष।

जायसवाल, चकिया बाजार चंदौली से सुंदर जायसवाल और सुमन जायसवाल। गीत को सुनना चाहा, बक्सर बिहार से शरफुद्दीन अंसारी, फातिमा खातून अंसारी, रमेश साहू, डुमराव बिहार से डॉक्टर डब्लू अंसारी, डॉक्टर सोना मदीबा और दानिश अंसारी। राहुल नगर अमरावती से सिद्धार्थ गोंडाने, अर्चना गोंडाने, हीरामन शिंदे, प्रणय प्रसिद्धि और प्रतिभा। खरगोन सनावद मध्य प्रदेश से मास्टर अशोक वर्मा, अर्चना वर्मा, अनुज वर्मा, आयुषी वर्मा, रमेश चंद्र वर्मा, शेख मूसा, राजकुमार बुडाना। और सुदामा नगर खंडवा से लक्ष्मी नंदिनी, रोहित, ऋतु, मुकेश और जगताप। नेपानगर मध्य प्रदेश से सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर शाह, कुशल शाह, नीति सुरभि, अश्विन, मंगलाबेन शाह और राजेंद्र जी शाह। फरमाइशाही हयात कॉलोनी अररिया बिहार से फैजल इमाम, मोहम्मद अफसल, मोहम्मद अकमल और नफीसा। ऊपरकोट मोहल्ला चौखुंटी बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निखत परवीन अब्बासी, शहनवाज अब्बासी, सरफराज अब्बासी, फरदीन अब्बासी, सुहान अब्बासी, अरजान अब्बासी, अबान अब्बासी और इनके परिवार के सभी सदस्य। और ये फरमाइश भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छिपा, कपिल छिपा, ईशान, पूजा परिहार।

मुकेश और लता मंगेशकर की आवाज़ों में आप सुन रहे थे गोरा और काला फिल्म का गीत, और इस गीत की फरमाइश हम तक आई गम्हरिया जमशेदपुर से रोहन जायसवाल, आर्य जायसवाल, बबूरी बाजार चंदौली से विजय और सरोज जायसवाल, रामनगर कदमा जमशेदपुर से मुराहू जायसवाल, देवंत

लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज़ों में आप सुन रहे थे रोटी कपड़ा और मकान फिल्म का गीत, और इस गीत को सुनने की फरमाइश आप सभी श्रोताओं की बड़ी गैबी वाराणसी से अरुण कुमार मालवीय, त्रिभुवननाथ मालवीय, आकाश अनमोल, श्लोक और इनके परिवार के सभी सदस्य। सुनना चाहा था झज्जर हरियाणा से बिट्टू भाटिया और रीटा भाटिया ने। प्रज्ञानंद देवांगन, नंदिनी प्रकाश देवांगन कोमा खान छत्तीसगढ़ से, और यहीं से गायत्री यशवर्धन और यशस्वी देवांगन। सहारनपुर कुम्हार हेड़ा से सैयद मसरूर, साइना हसन, नाजिया इब्राहिम और इनके मित्रगण। जनकपुरी सहारनपुर से जॉन डिकैस्टो, रोजी डिकैस्टो, पर्ल डिकैस्टो और विलिस डिकैस्टो। मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा।

0: ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह ठाकुर, डॉक्टर अमनदेव, कालका से शुभचंद्र बजाज, साहिल बजाज और बिट्टा बजाज, फरमाइशाही ग्राम लसूरिया पाता, तहसील नरसिंहगढ़, राजगढ़, मध्य प्रदेश से गोविंद वैष्णव, दिव्या, सुमन, कोमल, परी, कृतिका और रमेश चंद्र डांगी, दिलदार नगर पश्चिम मोहल्ला गाजीपुर से जनार्दन पांडे, लक्ष्मीकांत पांडे, श्याम नारायण सिंह यादव, दीनानाथ सिंह यादव और कयूम शाह, साउथ दिल्ली से गुरमीत सिंह मीता का ईमेल संदेश और एक और फरमाइशी संदेश है ये, मलियान सरधना मेरठ से अनिल जैन, संयम जैन, मुस्कान जैन, जीवीएम जैन और इनके परिवार के सभी सदस्य। और अब कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवाएंगे, लेकिन उसके पहले ये संदेश सुन लीजिए।
1: श्रोताओं, स्वास्थ्य संबंधी फोन इन कार्यक्रम आरोग्यम आप सुनते हैं प्रत्येक रविवार दिन में 11:30 बजे। इस रविवार दिनांक 7 जून 2026 को प्रसारित होने वाले कार्यक्रम का विषय है थायराइड की समस्या और इसकी चिकित्सा। इस विषय पर जानकारी देने के लिए हमारी डॉक्टर होंगी डॉक्टर ऋचा त्रिपाठी। कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी गुरुवार 4 जून 2026 को प्रातः 10 बजे से 11 बजे के बीच। तो हमें फोन करना न भूलें। हमारा फोन नंबर है 222-1052। बनारस का एसटीडी कोड है 0542। तो सुनते रहिए आरोग्यम आकाशवाणी वाराणसी के साथ।

आप सुन रहे थे मुकेश की आवाज में पत्थर के सनम फिल्म का गीत, और इस गीत की फरमाइश आप सभी श्रोताओं की गांधी चौक बाड़मेर राजस्थान से बवलेश पवार, डैनी पवार, मनीष पवार, रामदेवरा से दिनेश चौहान, डांगरी से बाबू राम जयपाल और खलीफों की बावड़ी से खुदा बख्श। पसंद आई भाटापारा छत्तीसगढ़ से हिमकेश्वर साहू, करण राहुल साहू और चंपा साहू। परभणी महाराष्ट्र से रूपेश, संघई, महेश, प्रगेश, प्रीतेश और इनके परिवार के सभी सदस्य। भाटापारा छत्तीसगढ़ से हीरामणि वर्मा, पारसमणि वर्मा, पुष्पेंद्र मणि वर्मा और नोखेलाल वर्मा।

नागपुर महाराष्ट्र से विठल जाधव अनसुईया और पवन राजे जाधव। आर्यनगर कोहका भिलाई से उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंघेल, नंदिनी जंघेल, धमधा ग्राम सुखरी कला से अमित शकुन, आरुषि, अंशिका, आदित्य और अंजलि। हरियाणा से अंकित कांगड़ा, मोनी कांगड़ा, प्रिंस बोध, सीताराम कांगड़ा और साहिल कांगड़ा। लच्छनपुर छत्तीसगढ़ से विश्वनाथ साहू, पंकज साहू और तिरुपति साहू। नागर कोहरा राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से बबलू, जामुन देवी प्रेम, पूजा, दुष्यंत, प्रांजल, समीक्षा और बेबी आराध्या। संदीप मक्कड़, ज्योति मक्कड़, मन्नत मक्कड़, भरत मक्कड़, कमल साहनी, पिंगावाला चौक जालंधर से आपका ईमेल संदेश। और ये फरमाइश आई शिवाजी चौक कटनी से अनिल ताम्रकार, अमर ताम्रकार, दिलीप वर्मा, संजय सोनी, अरुण कन्नौजिया, पवन यादव, संजीव वर्मा, सुनील जैन, रज्जन रजक, लालू, सोना मोना, हनी, यश और उनके मम्मी पापा का। और अब कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं और इस फिल्म का नाम है जीवन मृत्यु।

लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में आप सुन रहे थे जीवन मृत्यु फिल्म का गीत, और इस गीत की फरमाइश आप सभी श्रोताओं की जमानिया गाज़ीपुर से सुरेश जायसवाल, उर्मिला जायसवाल, दीपक जायसवाल, स्वाति जायसवाल, गम्हरिया जमशेदपुर से विपिन जायसवाल, स्वाति जायसवाल, देव कुमार जायसवाल और आर्य कुमार जायसवाल, जमानिया रेलवे स्टेशन से SP जायसवाल, डिम्पल जायसवाल और आशुतोष जायसवाल, और यहीं से अभिनव जायसवाल। जवाहर नगर दुर्ग से RC कांबड़े, करुणा, मीना, अश्विनी और विपुल। जाकिर मोलानी, सुमैया, सुवान, समीर, सलमा, मुमताज, दिलशाद और नसीर मोलानी का ये संदेश है पंढरपुर से। लोरमी चचेरी छत्तीसगढ़ से कमलकांत मरावी, प्रमीला मरावी, नेहा पुष्पराज और ऋषभ।

किशनगंज बिहार से रविंद्र मोहन दास आशा देवी। संदेश है अडार नांदघाट छत्तीसगढ़ से माखन वर्मा, चांदनी भूपेश और दीपेश वर्मा। नागचुन रोड संजय कॉलोनी खंडवा से अब्दुल गफ्फार, अब्दुल हक डाबर, जियाउल हक डाबर और मोहम्मद उमर डाबर। पटेल नगर मुगलसराय से सुनील कुमार सिंह,

फाजिल्का पंजाब से भूषण खेरा, विशाल विशु, लाडी खेड़ा और तिवांशी खेड़ा। संदेश है ग्राम पंचायत कालेगांव जफराबाद से सुधाकर राजे जाधव, प्रशांत राजे जाधव, कुमार संचित वायाल, प्रथमेश देशमुख, कुमारी प्रणाली देशमुख, सर्वत देशमुख, कुमारी सानवी देशमुख और कुमारी कल्पना। गाजीपुर गांव नारी पचदेवरा से अजय सिन्हा, कैलाश सिन्हा, भोले सिन्हा, सचिन और उनके मम्मी पापा। और ये संदेश आया धरदेई सरगांव छत्तीसगढ़ से चंदूलाल पटवा, सुनीता पटवा और हर्ष कुमार पटवा का। लता मंगेशकर की आवाज में अब हम आपको सुनवाने जा रहे हैं अभिमान फिल्म का गीत।

अभिमान फिल्म का गीत आप सुन रहे थे और कार्यक्रम का जो अगला गीत हम आपको सुनवाएंगे उस फिल्म का नाम है दुल्हन वही जो पिया मन भाए, आवाज हेमलता की। इन दोनों ही गीतों के लिए फरमाइशें इन सभी श्रोताओं की। वाड़ी गांव खाम गांव से अनंता, रामेश्वर, शुभम, साक्षी, खुशी और इनके परिवार के सभी सदस्य। गुवाहाटी असम से हरेन पांड्या, नरेन पांड्या और वीरेन। मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर, रतनमाला और ओम कुमार सुरलकर। अस्तुपुरा मऊ से मजहर अली अंसारी, रजिया बेगम अंसारी, मोहम्मद सादिक अंसारी। बहादुरगंज गाजीपुर से आजाद अली अनवर, रिजवाना परवीन और अब्दुल्ला आजाद। गिर्रा पलारी छत्तीसगढ़ से वीरेंद्र कुमार, सोनू, आशीष और कपिल साहू। ये ईमेल फरमाइश ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही, मेहराज जहां, आजाद नगर, लक्सर, हरिद्वार से। कुरावली से राशिद हुसैन अंसारी, नसरीन अंसारी, नौरीन अंसारी, आसना अंसारी और मोहम्मद कैफ अंसारी। रघुनाथपुरा गंगानगर राजस्थान से लालगिरी गोस्वामी, हेमलता, हिना, हर्षित और खुशी। गजानन येले, नवदीप येले, विश्वदीप और अवंतिका दरियापुर बाबली से। मऊनाथ भंजन उत्तर प्रदेश से राजेश कुमार वर्मा, प्रीति वर्मा, कार्तिक आर्यन वर्मा। शिव मंदिर हकीकतपुरा मऊ से मुन्ना भाई, पिंकी, आर्यन, कृष्णा और पीहू। कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, उषा राय, अमित कुमार राय, हैप्पी राय। दुबिहा नेवादा गाजीपुर से प्रतीक राय, रोशनी राय, प्रांजल राय। शेरपुर कला गाजीपुर से अवधेश राय, प्रीति राय और नवनीत राय। ये फरमाइश है नूर महल महसौल सीतामढ़ी बिहार से, मुसर्रत जहानाज, तलत जहानाज, फरत जहानाज, रिफत जहानाज, नुजहत जहानाज, साजिया शाहीन और नाजिया नूरी नाज। कोलकाता से वसंत कुमार, रेखा देवी, अजय कुमार गुप्ता, रिम्मी, तनुश्री गुप्ता और अवंतिका का ये संदेश है। और अब हम आपको सुनवा रहे हैं आपकी ही पसंद पर ये गीत। फिल्म का नाम है दुल्हन वही जो पिया मन भाए।

श्रोताओं, आप कार्यक्रम के आखिर में सुनिए देवता फिल्म का ये गीत, और इस गीत को सुनने की फरमाइश तेलंगाना भोंगीर से मोहम्मद बुरहानुद्दीन, सुनना चाहा पलेरा टीकमगढ़ से ब्रजेंद्र विश्वकर्मा, तारा देवी, सोनाली, सोनम और आशीष विश्वकर्मा, चौटाला हरियाणा से दारा पंडित, संजय शर्मा और प्रियंका शर्मा, और ये फरमाइश आई है

पंचकुला सेक्टर 9 से आशु, अश्विनी, गोविंद, टोनी, लव दीवान और इनके परिवार के सभी सदस्य।

श्रोताओं, ये था आज का कार्यक्रम फरमाइशी गीत एक्सप्रेस। आज का ये कार्यक्रम आप सुन रहे थे अपनी रेडियो हम सफर अंजना झा के साथ।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम फरमाइशी गीत एक्सप्रेस, आकाशवाणी का ये वाराणसी केंद्र है। लीजिए अब सुनिए NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम।

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोता मित्रों को विमलेश का नमस्कार
3: और अजीत का भी नमस्कार। आइए सुनते हैं सबसे पहले सुविचार, जिसे हमें भेजा है अकोला महाराष्ट्र राधेनगर से राजेश पी कारिया जी ने। लिखते हैं,
2: गलत लोग आपकी अच्छाई से भी नफरत करते हैं और सही लोग आप में बुराई जानकर भी आपसे प्यार करते हैं और यही मानव संबंध की विडंबना है।
3: बहुत सुंदर संदेश राजेश पी कारिया जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आइए सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है बड़ा बम चौक खंडवा से ममता मार्कंडेय, संजय मार्कंडेय और बेबी किट्टू का।
2: महाराष्ट्र से प्रशांत रमेश पाटिल।
3: और धमधा ग्राम सुखरी कला से अमित जंघेल, शकुन जंघेल, आरुषि ओशिका, आदित्य जंघेल और अंजलि जंघेल जी का।
2: कस्बा बराड़ा जिला अम्बाला हरियाणा से रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका और मन्नत।
3: और साथ ही साथ हमें संदेश मिला है करसोग जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से योगेश ठाकुर जी का।
2: जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए।
3: और अब प्रस्तुत है श्रृंखला ये भी जानिए। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं, इस सप्ताह हम चर्चा कर रहे हैं पृथ्वी के प्रसिद्ध शीत मरुस्थलों की।
2: इस क्रम में कल हमने चर्चा की थी अंटार्कटिक के शीत मरुस्थल की और जाना था इससे जुड़ी रोचक बातों को। आज हम चर्चा करेंगे एक और अनोखे शीत मरुस्थल की और वो है गोभी का मरुस्थल। तो अजीत जी, चर्चा को विस्तार दीजिए।
3: जी विमलेश जी, आइए चर्चा को विस्तार देते हैं। तो श्रोताओं, आपको हम बताना चाहते हैं कि अंटार्कटिक का शीत मरुस्थल क्षेत्रफल की दृष्टि से पृथ्वी का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल है
2: जी।
3: लेकिन यदि एशिया महादेश की बात करें तो यहाँ का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल है गोभी। इसका क्षेत्रफल है 13 लाख वर्ग किलोमीटर। विमलेश जी, अब आपकी बारी।
2: जी श्रोताओं, ये मरुस्थल मुख्य रूप से मंगोलिया और चीन के उत्तरी भाग में फैला हुआ है। स्थानीय भाषा में गोभी को गोब कहते हैं, जिसका अर्थ है निर्जल स्थान। एक बात और आपको बता दें कि ये रेत का नहीं लेकिन पत्थरों का मरुस्थल है, क्योंकि इसका अधिकांश भाग चट्टानी और पथरीला है। केवल 5% भाग ही रेतीला है।
3: तो श्रोताओं, अब बात करते हैं इस मरुस्थल के तापमान की। जहाँ तक तापमान का प्रश्न है, यहाँ तापमान बहुत कम होता है
2: जी।
3: सर्दियों में ये -40 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है, जबकि गर्मी के मौसम में यहाँ का तापमान 45 से 50 डिग्री सेल्सियस तक भी पहुँच जाता है।
2: यानी एक ही मरुस्थल में कड़कती ठंड भी और झुलसाने वाली गर्मी भी
3: जी।
2: लेकिन इसे शीत मरुस्थल इसलिए कहा जाता है कि यहाँ अधिकांश समय सर्दियों का ही होता है। अजीत जी, एक बड़ी विशेष घटना हुई है जिसके कारण गोभी का मरुस्थल बहुत प्रसिद्ध हुआ है। क्या थी वो घटना?
3: विमलेश जी, वो घटना थी जब वैज्ञानिकों को इस क्षेत्र में डायनासोर के अंडे और जीवाश्म मिले
2: जी।
3: यहाँ और भी कई दुर्लभ प्राणियों के जीवाश्म मिले हैं, जिसके कारण वैज्ञानिकों और संचार माध्यमों ने इसे प्राचीन जीव जगत के खजाने की संज्ञा दी है।
2: अजीत जी, अब श्रोताओं को जरा यहाँ रहने वाले लोगों की जानकारी दे दें।
3: जी हाँ, जरूर।
2: श्रोताओं, गोभी मरुस्थल में रहने वाले अधिकांश लोग आज भी घुमंतू जीवन यानी नोमेडिक लाइफ जीते हैं। मंगोल परिवारों का पारंपरिक घर गोलाकार का होता है, जिन्हें यर्ट कहते हैं।

0: इन घरों की सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये आसानी से खोले और दूसरी जगहों पर ले जाए जा सकते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लोग यहाँ मौसम को देखते हुए जगह बदलते हैं। वैसे गोबी मरुस्थल के बाहरी इलाकों में आधुनिक शहर भी हैं।
1: तो श्रोताओं, आपको ये भी बता दें कि आज के आधुनिक वाहन यहाँ बहुत कम मिलते हैं। यहाँ के ऊंट दो कूबड़ वाले होते हैं
0: जी
1: जो अत्यधिक ठंड और गर्मी दोनों सह सकते हैं। एक बात और आपको बता दें कि ठंड के समय ये ऊंट बर्फ खाकर अपनी पानी की जरूरत को पूरा करते हैं।
0: जी
1: घुड़सवारी यहाँ के प्रतिदिन के लोक जीवन का हिस्सा है और घुड़दौड़ है यहाँ का प्रिय खेल और मनोरंजन का माध्यम।
0: जी अजीत जी, क्योंकि उमंग रेडियो कार्यक्रम है तो ये बताना तो बहुत ही प्रासंगिक होगा कि गोबी मरुस्थल के दूर दराज के इलाकों में भी आज भी टेलीविजन की पहुंच बहुत कम या नहीं के बराबर है।
1: जी
0: यहाँ लोग रेडियो सुनकर ही मौसम का हाल जानते हैं, समाचार सुनते हैं और मनोरंजन भी करते हैं। अब आधुनिकता के दौर में पर्यटन बढ़ गया है, सैलानी देश विदेश से आते हैं और यहाँ के घुमंतू परिवारों के साथ होम स्टे करते हैं।
1: श्रोताओं, यहाँ की दिनचर्या भी बहुत मजेदार और गतिविधियों से भरी हुई है। सुबह उठकर दूध दुहना महिलाओं का काम है, जबकि पुरुष मवेशी चराने का काम करते हैं।
0: जी
1: दिन भर की मेहनत के बाद शाम को पूरा परिवार एक साथ भोजन करता है और कहानियों और गीतों के द्वारा मनोरंजन करता है। ये गाते हैं, बजाते हैं।
0: बजाने के लिए इनके खास वाद्य यंत्र हैं, जैसे मोरिन खोर।
1: ये किस प्रकार का वाद्य यंत्र है?
0: ये दो तारों वाला वाद्य यंत्र है। एक और बहुत लोकप्रिय वाद्य यंत्र है लिम्बे, ये बांसुरी जैसा वायु वाद्य यंत्र है। एक रोचक बात यह है कि यहाँ लोग अपने संगीत को ऊंट, घोड़े और प्रकृति से जोड़ते हैं। कई धुनें यहाँ ऐसी होती हैं जो जानवरों को बुलाने और शांत करने के लिए बनाई गई हैं।
1: बहुत सुंदर जानकारी विमलेश जी। सचमुच गोवी का शीत मरुस्थल जीवन की कठिनाइयों और उसे सुंदर ढंग से जीने का अनूठा उदाहरण है।
0: तो श्रोताओ, ये थी रोचक जानकारी गोबी के शीत मरुस्थल की।
1: अब आज का प्रश्न सुनिए आज की ही जानकारी से। आज का प्रश्न है, गोवी मरुस्थल के उन घरों को क्या कहते हैं जो खोलकर एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाए जा सकते हैं। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: गोबी मरुस्थल के उन घरों को क्या कहते हैं जो खोलकर एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाए जा सकते हैं?
1: श्रोताओं, आप प्रश्नों के उत्तर और संदेश हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर या हमारे IVRS नंबर यानी 8800440559 पर भेज सकते हैं।
0: जी,
1: हमें आपके संदेशों का इंतजार रहेगा।
0: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT को जरूर फॉलो करें। और हाँ, NCERT की पाठ्य पुस्तकों की ध्वनि पुस्तकें यानी ऑडियो बुक्स आप दीक्षा या NCERT ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर सुन सकते हैं।
1: तो आइए अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। हमारा आज का पहला कार्यक्रम है दोस्त की पहचान।
0: कक्षा 4 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित इस लोक कथा में बताया गया है कि एक सच्चे मित्र की पहचान कैसे की जाती है। संदेश दिया गया है कि सच्चा मित्र वही है जो विपत्ति के समय काम आए।
2: एक जंगल से दो दोस्त गुजर रहे थे।
3: कितने बड़े बड़े पेड़ हैं यहाँ तो।
4: हाँ, बहुत बड़े पेड़ हैं।
3: अरे देखो देखो, कितने अच्छे पक्षी हैं यहाँ पर। अरे वो देखो चिड़िया।
5: अरे वो देखो बंदर।
4: ओ, मुझे तो बड़ा मजा आ रहा है।
3: मुझे तो थोड़ा थोड़ा डर भी लग रहा है।
4: हाँ, ये तो सही कह रहे हो। अरे कोई जानवर आ गया तो क्या करेंगे हम?
3: क्या करेंगे, देखेंगे जब जानवर आएगा तब।
2: अचानक
4: ओ, ये तो रीछ की आवाज है। अरे अरे, मुझे तो लगता है रीछ आ रहा है। ओ, अब हम अपनी जान कैसे बचाएंगे?
3: क्या करे क्या करे, जल्दी सोचो क्या करे।
4: मुझे तो बहुत डर लग रहा है।
3: अरे मुझे तो पेड़ पर चढ़ना आता है।
2: रीछ को देखकर उनमें से एक दोस्त झट से दरख्त पर चढ़ गया।
3: ओ, ऐसा करता हूँ, पेड़ पर चढ़ जाता हूँ।
2: और दरख्त की टहनियों में छुपकर बैठ गया। दूसरा दोस्त नीचे अकेला रह गया।
4: ओ, अब मैं क्या करूं? मैं
2: जब उसको कुछ नहीं सूझा,
4: मैं ऐसा करता हूँ, जमीन पर लेट जाता हूँ और अपनी सांस रोक लेता हूँ, तभी जान बचेगी।
2: तो वो सांस रोककर चुपचाप जमीन पर लेट गया। रीच उसके करीब आया, उसने उसे सूंघा।
4: ये रीच तो मुझे सूंघ गया।

0: सांस रोक के डर है तुम, तभी जान बच पाएगी।
1: और मुर्दा समझकर छोड़ दिया।
0: बच गए, लगता है रीच चला गया।
1: रीच जब चला गया तो दूसरा दोस्त,
2: अरे रीच तो चला गया, अब मैं पेड़ से नीचे उतर सकता हूँ।
1: और अपने साथी से जाकर पूछा,
2: एक बात तो बताओ, रीच ने तुम्हारे कान में क्या कहा?
1: पहले दोस्त ने जवाब दिया,
0: मेरे कान में कहा, ऐसे दोस्त से दोस्ती मत करो जो मुसीबत के समय काम न आए और तुम्हारा साथ छोड़ दे।
1: पंचतंत्र की कहानी मश्क। सोचिए और बताइए,
3: महफूज तरीके से जंगली जानवरों को कैसे देखा जा सकता है? जंगलों में कौन कौन से जानवर पाए जाते हैं, उनकी फेहरिस्त बनाइए। अगर आप उन दोस्तों में होते तो दोस्त की मदद कैसे करते? दोस्त की पहचान। अभी आप सुन रहे थे ये प्रोग्राम, अकादमिक समन्वय डॉक्टर रिजवानुल हक, रिकॉर्डिंग मंजू कुमारी, फनकार फरहान अली नकवी, बाल कलाकार सोहम और वान्या, हिदायतकार विमलेश चौधरी, पेशकश कुसुमलता। ये प्रोग्राम CIET NCERT नई दिल्ली भारत के जरिए पेश किया गया। अभी आपने सुना कार्यक्रम दोस्त की पहचान।

0: जादुई पिटारा, है ना मजेदार साथियों? जी हाँ, आप भी अब अपने आसपास की स्थानीय चीजों से बना सकते हैं अपना मजेदार जादुई पिटारा। क्या
1: जादुई पिटारा?
0: और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम गौरा देवी।
2: इस कार्यक्रम में एक सुंदर नाट्य प्रस्तुति के द्वारा चिपको आंदोलन की जानी मानी नायिका गौरा देवी के जीवन और उनके द्वारा प्रारंभ किए गए प्रसिद्ध चिपको आंदोलन की जानकारी दी गई है।

0: भारत के सबसे रमणीक राज्यों में से एक है उत्तराखंड। इसी उत्तराखंड के चमोली जिले में एक गांव है लाटा। ये गांव विशेषकर बड़े बड़े पेड़ों के कारण जाना जाता है।
1: लाटा गांव के ग्रामीण खेती बाड़ी और पशुपालन द्वारा अपनी जीविका चलाते थे। दिन भर खेतों और जंगलों में काम करने के बाद जब ग्रामीण शाम को घर आते तो उनके नृत्य और लोक संगीत से सारी घाटी गूंज जाती।
0: इसी गांव में सन 1925 में एक प्यारी सी बालिका ने जन्म लिया। नाम रखा गया गौरा। गौरा का बचपन से ही पेड़ पौधों के प्रति बहुत लगाव था। यदि गांव के बच्चे किसी भी प्रकार से फूल पत्तियों और पौधों को कष्ट पहुंचाते तो वो उन्हें मना करती और उन्हें समझाती भी।
2: मारो, मारो, ठीक से निशाना लगाओ।
3: अरे इस बार भी नहीं लगी। अरे
2: नहीं लगा ना? लाओ लाओ, रुको रुको रुको। अरे मैं
4: तुम लोग इस पेड़ पर पत्थर फेंक रहे हो।
2: हा?
4: अभी तो फल भी नहीं लगे। गोविंद, तुम तो सबसे बड़े हो, इनको क्यों नहीं समझाते?
2: अरे पत्थर फेंका है तो क्या हो गया, पेड़ ही तो है ना। देखो।
4: मैंने मना किया है ना कि पेड़ पौधों को पत्थर मत मारो, उन्हें चोट लगती है।
3: तुम हमें इस तरह रोका टोका मत करो।
4: मैं तो टोकूंगी और बार बार रोकूंगी।
2: बड़ी आई रोकने वाली। हाँ, वही करेंगे।
0: तो साथियों, ये था गौरा का पेड़ पौधों के प्रति लगाव और स्नेह। स्थानीय लोग बताते हैं कि गौरा ने अपने गांव में कई पौधे लगाए थे जो आज भी जिंदा हैं।
1: समय बदला। उस समय की रीति के अनुसार गौरा की शादी मात्र 12 वर्ष की उम्र में पास के गांव रैणी के मेहरबान सिंह के साथ हो गई।
0: सब कुछ ठीक चल रहा था कि तभी शादी के मात्र 10 वर्षों के बाद पति मेहरबान सिंह की मृत्यु हो गई। गोद में 2.5 वर्ष का बच्चा था। पति के निधन के बाद 22 वर्ष की गौरा देवी पर अपने बच्चे और बूढ़े सास ससुर के भरण पोषण का पूरा बोझ आ गया। उन्हें काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों को निभाते हुए जितना भी समय गौरा के पास बचता था वो उसे गांव के कामों में लगा देती थी। गौरा अपने गांव के महिला मंगल दल की अध्यक्ष भी बनी।
1: महिला मंगल दल का विशेष काम था गांव की महिलाओं के रोजगार और उनकी स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं पर ध्यान देना। स्त्रियों पर होने वाली घरेलू हिंसा की स्थिति में महिलाओं के समूह द्वारा हस्तक्षेप करना और ये भी सुनिश्चित करना कि ग्रामीण बालिकाओं की पढ़ाई नियमित रूप से चल रही है या नहीं।
5: बहनों, अब हमें ये देखना है कि हमारे गांव में शराबखोरी तो कम हो गई है और इसके चलते चलते आगे बच्चियों की पढ़ाई भी शुरू करनी पड़ेगी हमें।
4: हाँ, बहुत जरूरी है। मेरी बेटी तो पढ़ने जाने लगी है अब।
5: अरे वाह, कितनी अच्छी बात बताई इसने।
6: लेकिन मेरा आदमी तो अभी काम ही पे नहीं जाता।
5: आप तो काम करती है ना?
6: हाँ मैं करती हूँ, लेकिन उसे होता क्या है?
5: मैं तो ये मानती हूँ कि नारी सशक्तिकरण एक बहुत जरूरी अंग है हमारे समाज का। नारी सशक्त बनेगी तभी तो परिवार सशक्त बनेगा।
0: समय बीतता गया। सन 1962 की बात है। चमोली के ग्रामीण अंचल में विकास के लिए तत्कालीन प्रशासन द्वारा सड़क बनाने का निर्णय लिया गया, जिसके कारण गौरा के गांव रैणी और आसपास के गांवों के लोगों की पुश्तैनी जमीन छिन गई।
1: गढ़वाल क्षेत्र के जंगलों में अंगू का पेड़ प्रचुरता में पाया जाता है। खेती करने के लिए पारंपरिक कृषि के औजार अंगू पेड़ों की लकड़ी से बनाए जाते हैं। स्थानीय ग्रामीणों ने वन विभाग के अधिकारियों से निवेदन किया कि उन्हें खेती करने के औजार बनाने के लिए अंगू के पेड़ों को काटने की अनुमति दी जाए।
0: लेकिन वन विभाग भला कहां सुनने वाला।

0: चला था, एक ओर वन विभाग ने ग्रामीणों को साफ इनकार कर दिया तो दूसरी ओर जंगल की जमीन का कुछ हिस्सा खेल सामग्री बनाने वाले एक निर्माता को व्यावसायिक इस्तेमाल के लिए आवंटित कर दिया। अंगू पेड़ों की लकड़ी से उम्दा स्तर की खेल सामग्री भी बनाई जाती थी। दिन था 24 मार्च 1976। इस दिन रैणी और आसपास के गांवों के कुल 2400 पेड़ों को काटने का आदेश दे दिया गया। इन जंगलों को बचाने के लिए लंबे समय से आंदोलन चल रहा था। गांवों के स्त्री पुरुषों ने बड़ी मुस्तैदी से मोर्चा संभाल रखा था और हर परिस्थिति का सामना करने के लिए वे तैयार थे।
1: लेकिन संयोग कहिए कि उसी दिन गांव के लोगों को उनके उन खेतों का मुआवजा दिए जाने का आदेश हुआ जो सन 1962 के अधिग्रहण के कारण उनसे छिन गए थे। रैणी, मलारी और लाता गांव के लगभग सभी पुरुष मुआवजा लेने जिला मुख्यालय चमोली चले गए।
0: इधर पुरुषों की अनुपस्थिति में 100 से भी अधिक मजदूर रैणी और उसके आसपास के गांवों के जंगलों की ओर बढ़ने लगे। गौरा देवी उस समय गांव में ही महिला मंगल दल की स्त्रियों के साथ बातचीत कर रही थीं। उन्हें नहीं पता था कि ठेकेदारों की अगुवाई में मजदूरों का दल जंगल की ओर आ रहा है।
1: और तभी गांव की एक लड़की दौड़ती हुई आई। वो बहुत डरी हुई थी।
2: गौरमा, गौरमा,
3: क्या बात है चंपा, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? कहां से आ रही हो?
2: गौरमा, वो लोग आ रहे हैं।
3: कौन लोग आ रहे हैं? अरे कहां आ रहे हैं, कुछ तो कहो।
2: गौरमा,
3: हाँ,
2: पहाड़ की ओर से ठेकेदार के बहुत से मजदूर जंगल की ओर आ रहे हैं।
3: क्या?
2: हाँ गौरमा, उनके हाथों में कुल्हाड़ियाँ, रस्सियाँ और पेड़ काटने वाली आरी है। मैं बकरी चराने गई थी तो देखा कि 3-4 ट्रक आकर रुके। उनसे मजदूर उतरे और जंगल की ओर बढ़ने लगे।
3: अच्छा, तो ये बात है। बहनों,
4: हाँ गौरमा, हाँ गौरमा,
3: चलो हम सब तैयार हो जाएं।
5: बिल्कुल,
3: समय आ गया है अब इस गांव के जंगल को बचाने का।
4: हाँ, हाँ, हाँ,
6: सब तैयार हैं।
4: किसी भी हाल में जंगल कटने
6: नहीं कटने देंगे।
2: बिल्कुल नहीं कटने देंगे।
0: और चल पड़ी गौरा जंगल की ओर। उसके साथ गांव की 27 स्त्रियां थीं। उनकी चाल में दृढ़ता थी, आंखों में संकल्प झलक रहा था और उनके नारों में ओज था।
3: ये है जंगल के उपकार,
7: मिट्टी पानी और बयान,
3: मिट्टी पानी और बयान,
7: जिंदा रहने के आधार।
1: और अब वो स्त्रियां वहां पहुंच गईं, जहां मजदूर पेड़ों को काटने के लिए तैयार खड़े थे।
3: अरे ओ हरिया, तू तो इसी गांव का है ना रे, जिस जंगल ने तुझे पाला पोसा बड़ा किया, तेरी सारी जरूरतों को पूरा किया, उसे नष्ट करने के लिए कुछ पैसों के लालच में आकर तूने कुल्हाड़ी उठा ली। शर्म आनी चाहिए तुझे।
8: सुनो, आगे बढ़ो।
5: अरे कहां से
8: तुम इनकी बातों में बताओ। मैंने तुम्हें पेश की थी, पेश की इस काम के लिए। बोलो शुरू,
5: काटो पे। पेड़ों से चिपक जाएंगे, चिपक जाएंगे, ऐसा नहीं होने देंगे हम।
3: आगे बढ़कर तो दिखाओ तुम। एक भी पेड़ को हम हाथ नहीं लगाने देंगे आज।
2: नहीं लगाने देंगे।
3: बहनों, आगे बढ़कर चिपक जाओ पेड़ों से।
4: हाँ, हम चिपक जाएंगे।

0: ठीक है तो वहां चलो, उन पेड़ों को काटो, चलो।
1: मजदूरों के सामने एक विचित्र स्थिति उत्पन्न हो गई थी। वे जिस पेड़ की ओर बढ़ते, गांव की स्त्रियां भागकर उसी पेड़ से चिपक जाती। इस संघर्ष में लगभग 4 घंटे बीत गए थे। इस दौरान किसी ने भागकर ये सूचना गांव के पुरुषों तक पहुंचा दी।
2: ये खबर वैसे भी जंगल की आग की तरह फैल चुकी थी। आसपास के गांवों से सैकड़ों की संख्या में लोग जंगल की तरफ आने लगे। स्थिति बिगड़ती देख ठेकेदार और जंगल काटने वाले मजदूर वहां से भाग खड़े हुए।
0: ठीक है, तो वहां चलो, उन पेड़ों को काटो, चलो।
1: बता दें कि इन पेड़ों की कटाई को रोकने के प्रयास में ये आंदोलन 3 साल पहले 1973 में शुरू हुआ था। इसकी नींव सुंदरलाल बहुगुणा, कॉमरेड गोविंद सिंह रावत और चंडी प्रसाद भट्ट के नेतृत्व में रखी गई थी।
2: इस घटना ने गौरा देवी को चिपको आंदोलन की महान नेत्री बना दिया और इसकी गूंज पूरे विश्व में सुनाई पड़ी। गौरा देवी विश्व मीडिया में चिपको वुमन के नाम से मशहूर हुई। इस घटना का बहुत बड़ा प्रभाव ये पड़ा कि सरकार ने हिमालयी क्षेत्र में आगामी 15 वर्षों के लिए वनों की कटाई पर प्रतिबंध लगा दिया और राष्ट्रीय स्तर पर पहली बार पर्यावरण मंत्रालय गठित करने पर विमर्श संभव हुआ।
1: जुलाई सन 1991 में 66 साल की उम्र में इस महान पर्यावरण नेत्री का निधन हो गया।
2: एक साक्षात्कार में गौरा देवी ने जंगल के प्रति अपना स्नेह दर्शाते हुए कहा था,
3: ये जंगल हमारी माता के घर जैसा है। यहां से हमें फल, फूल और सब्जियां मिलती हैं। अगर यहाँ के पेड़ पौधों को काटोगे तो निश्चित ही बाढ़ आएगी।
1: चिपको आंदोलन अहिंसक आंदोलन था, जिसमें ग्रामीणों और गढ़वाल की बहनों ने पेड़ों को कटने से रोकने के लिए उन्हें गले लगा लिया। इस महान पर्यावरण नेत्री को हमारा नमन।
4: अभी आपने सुना कार्यक्रम गौरा देवी, एक महान पर्यावरण नेत्री। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, तकनीकी समन्वय बटी लैंगलिंगडो, ध्वन्यांकन विकास सांगवान, कलाकार बाबला कोचर, पूनम एस कुदेसिया, ममता मलकानी, प्रज्ञा प्रवीण शर्मा और गीतांजलि। आलेख एवं मार्गदर्शन अजीत होरो। निर्माण सहायक कुसुम लता। निर्देशन एवं निर्माण विमलेश चौधरी। प्रिय श्रोता, यदि आप हमारे कार्यक्रमों पर अपनी प्रतिक्रियाएं देना चाहते हैं तो हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। साथ ही आप ईमेल पर भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@ciet.nic.in। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली, भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया।

0: तो श्रोताओं, अभी आपने सुना कार्यक्रम गौरा देवी, और इसी के साथ हमारा आज का प्रसारण यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।
2: उमंग उमंग उमंग उमंग।
3: अभी आप सुन रहे थे NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम। आकाशवाणी का ये वाराणसी केंद्र है।

0: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
1: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
2: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
1: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
2: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
1: डायल कीजिए
3: 0542227658।
2: नंबर एक बार फिर नोट करें
4: 0542227658।
5: और अब आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से सुनिए सुगम संगीत का कार्यक्रम। कलाकार हैं मोनिका मिश्रा, इनकी आवाज में आज आप सुनेंगे भजन। पहली रचना सूरदास की है।

आप सुन रहे हैं सुगम संगीत का कार्यक्रम। कलाकार है मोनिका मिश्रा। अब सुनिए नानक की रचना।

ये था आज का सुगम संगीत का कार्यक्रम। कलाकार थी मोनिका मिश्रा। आकाशवाणी का ये वाराणसी केंद्र है। लीजिए अब सुनिए शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम। आज के इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे सितार वादन। कलाकार हैं अमरनाथ मिश्रा। राग है वृंदावनी सारंग।

0: अभी आप सुन रहे थे सितार पर प्रस्तुत राग बृंदावनी सारंग। कलाकार थे अमरनाथ मिश्रा। शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये वाराणसी केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में दिन का 1 बजने वाला है। हिंदी में समाचार आप सुनेंगे दिल्ली केंद्र से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। दिल्ली के मालवीय नगर स्थित एक होटल में आज आग लगने से 10 लोगों की मौत हो गई। कई अन्य लोगों को बचा लिया गया है। दिल्ली अग्निशमन सेवा के अनुसार आग बुझाने के लिए 15 दमकल गाड़ियां मौके पर पहुंची। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आग की घटना में हुई जानमाल की हानि पर गहरा दुख व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में मुख्यमंत्री ने कहा कि घटना की सूचना मिलते ही दिल्ली अग्निशमन सेवा, दिल्ली पुलिस, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, एम्बुलेंस सेवा, अन्य आपातकालीन एजेंसियों के दल बचाव और राहत कार्य में लगे हुए हैं। उन्होंने कहा कि त्वरित कार्यवाही से प्रभावित परिसरों से कई लोगों को बचाने और सुरक्षित निकालने में मदद मिली। मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली सरकार स्थिति पर कड़ी नजर रख

0: रही है और प्रभावित परिवारों को सभी आवश्यक चिकित्सा सहायता प्रदान की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आग की घटना में हुई जानमाल की हानि पर गहरा दुख व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि अधिकारी प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता प्रदान कर रहे हैं। श्री मोदी ने प्रत्येक मृतक के परिजन को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि दिए जाने की घोषणा की है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में एकीकृत जनजातीय विकास एजेंसियों और एकीकृत जनजातीय विकास परियोजनाओं को सुदृढ़ करने के लिए राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि देश भर में रहने वाला जनजातीय समाज सांस्कृतिक रूप से बहुत समृद्ध है और इन्हें आगे बढ़ाने के प्रयास किए जाने चाहिए।
1: मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई है कि इस कॉन्क्लेव में ट्राइबल डेवलपमेंट से जुड़े संस्थाओं और मानव संसाधन के विकास से लेकर के वित्तीय व्यवस्थाओं तक तथा मॉनिटरिंग से लेकर के स्किल स्कीम डिलीवरी तक अत्यंत महत्वपूर्ण आयामों पर चर्चा होगी।
0: भारत अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए वार्षिक सौर ऊर्जा क्षमता वृद्धि में 2025 तक विश्व का दूसरे सबसे बड़ा और ऊर्जा विकास बाजार बन गया है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि देश की सौर ऊर्जा विकास गाथा वैश्विक मानक स्थापित कर रही है और मजबूत नीतिगत समर्थन, नवाचार और विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे के माध्यम से रिकॉर्ड क्षमता वृद्धि को गति दे रही है। वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रॉड्रिक्स आज से 5 दिन की भारत यात्रा पर रहेंगी। उनके साथ उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी होगा। यात्रा के दौरान वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगी। दोनों पक्ष व्यापार, निवेश, ऊर्जा, स्वास्थ्य और औषधि क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा करेंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने अरावली पर्वत श्रृंखला की परिभाषा सीमांकन संबंधी केंद्र सरकार की रिपोर्ट की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद की महानिदेशक कंचन देवी करेंगी। समिति को इस वर्ष 31 अगस्त तक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है। कर्नाटक में कांग्रेस विधायक दल के नेता डीके शिवकुमार को आज शाम बेंगलुरु में मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी। राज्यपाल थावरचंद गहलोत लोकभवन में उन्हें 25वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ दिलाएंगे। पूर्व गृह मंत्री डॉ जी परमेश्वर उप मुख्यमंत्री के रूप में तथा लगभग 10 विधायक मंत्री पद की शपथ लेंगे। पश्चिम बंगाल की पूर्व सत्ताधारी पार्टी तृणमूल कांग्रेस टीएमसी में उथल पुथल मची हुई है और वो विभाजन के कगार पर है। टीएमसी से निष्कासित विधायक ऋतुव्रता बनर्जी का दावा है कि उन्हें लगभग 60 विधायकों का समर्थन प्राप्त है। उनके गुट ने विधानसभा अध्यक्ष रथिंद्र बोस को पत्र लिखकर खुद को टीएमसी के रूप में मान्यता देने की मांग की है। भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति की 3 दिवसीय बैठक आज मुंबई में शुरू हुई। विशेषज्ञों का मानना है कि पश्चिम एशिया में जारी तनाव के कारण अस्थिर वैश्विक परिस्थितियों को देखते हुए आरबीआई ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं करेगा। नीतिगत निर्णय शुक्रवार को घोषित किया जाएगा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने बताया है कि लगभग 40,000 छात्रों ने सफलतापूर्वक पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन जमा कर दिए हैं। ये प्रक्रिया बिना किसी समस्या के पूरी कर ली गई है। घरेलू शेयर बाजार में संविदी सूचकांक में आज 0.5% की गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 558 अंक की गिरावट के साथ 74,092 पर, जबकि निफ्टी 155 अंक फिसल कर 23,329 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: आकाशवाणी का ये वाराणसी केंद्र है। मीडियम वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्ज़ पर। लीजिए सुनिए कार्यक्रम विवरण और खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में सूचना।

पहले कार्यक्रम विवरण में हम आपको बताते हैं आज प्रसारित होने वाले शेष प्रमुख कार्यक्रमों के बारे में। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आज रात्रि 10:23 पर आप सुनेंगे विष्णु प्रसन्ना और साथियों का शहनाई वादन। गैर फिल्मी गीतों और गजलों के कार्यक्रम अंजुमन का प्रसारण समय होगा रात्रि 9:30 का। सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर

विशेष श्रृंखला आपको सुनवाएंगे आज रात्रि 8:10 पर। सुगम संगीत के कार्यक्रम में कलाकार होंगे पलाश चंद्र विश्वास। समय रात्रि 8 बजे का होगा।

आज शाम 6:30 पर किसान भाई सुनेंगे कृषि जगत कार्यक्रम, जिसमें बेल वाली सब्जियां इस विषय पर डॉक्टर राकेश कुमार दुबे से सुधीर कुमार श्रीवास्तव की बातचीत सुनवाई जाएगी। और इसके साथ ही किसान भाई सुनेंगे लोकगीत, कलाकार होंगे तेज बहादुर सिंह यादव और साथी। इन्हीं के गाए लोकगीत अब 1:45 पर लोक संगीत के कार्यक्रम में भी सुन सकते हैं। युवा साथी अपना युववाणी कार्यक्रम सुनेंगे शाम 5:15 पर, जिसमें होगी आज की बात, यूथ डायरी, इतिहास में आज का दिन, रोजगार सूचना और मार्गदर्शन के अंतर्गत हिंदी के प्रचार प्रसार में आकाशवाणी की भूमिका विषय पर डॉक्टर विवेक सिंह की वार्ता। बहने अपना गृह लक्ष्मी कार्यक्रम सुनेंगे 1:15 पर, जिसमें स्वामी विवेकानंद कर्म ज्ञान और भक्ति का समन्वय, इस विषय पर बहनों को सुनवाएंगे वार्ता। वार्ताकार होंगी कल्पना आनंद। कुछ बातें कुछ गीत 2:30 पर सुनिएगा। फिल्म संगीत आप सुनेंगे शाम 5:00 और शाम 6:10 पर। फिल्म संगीत का ही कार्यक्रम रसरंग का प्रसारण समय होगा शाम 7:31 का। ये थे आज प्रसारित होने वाले शेष प्रमुख कार्यक्रम।

0: और अब आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से सुनिए खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में सूचना। कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद चंदौली से प्राप्त सूचना के अनुसार राम देहिया, जिनके पति का नाम है जगन्नाथ, ये निवासिनी है ग्राम पटना थाना रामपुर बरकुनिया जनपद सोनभद्र की। राम देहिया की उम्र है 54 वर्ष, चेहरा लंबा, रंग सांवला और इनकी लंबाई है 5 फीट की। इनके बारे में विशेष बात यह है कि ये मानसिक रूप से कमजोर हैं। अगर आपको रामदैया के बारे में जानकारी प्राप्त हो तो आप पुलिस अधीक्षक सोनभद्र को सूचित कर सकते हैं और सूचना के लिए फोन नंबर है 6386802415। नंबर एक बार फिर से सुन ले, नंबर है 6386802415। कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद चंदौली से ही प्राप्त सूचना के अनुसार गुंजा कुमारी, जिनके पिता का नाम है राजनाथ, ये निवासिनी है वार्ड नंबर 3 नई बस्ती अली नगर जनपद चंदौली की। ये 8 मई 2026 से लापता है। गुंजा कुमारी के बारे में जानकारी की बातें इस प्रकार। उम्र है 20 वर्ष, रंग गोरा, चेहरा गोल और लंबाई है 5 फीट 2 इंच की। अगर आपको गुंजा कुमारी के बारे में कोई भी जानकारी प्राप्त हो तो आप थानाध्यक्ष अली नगर चंदौली को सूचित करें और सूचना के लिए नंबर 8381914462 8381914462। खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में सूचना समाप्त हुई। आकाशवाणी का ये वाराणसी केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में 1:10 होने वाले हैं। इलाकाई खबरें आप सुनेंगे लखनऊ केंद्र से।
1: लखनऊ है इलाकाई खबरों के साथ, मैं आमिर हुसैन सिद्दीकी। वज़ीर-आला योगी आदित्यनाथ ने आज गोरखपुर में मुश्तरका डिवीजनल खरीफ पैदावारी सेमिनार 2026 का इफ्तिताह किया। तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर-आला ने कहा कि खरीफ सेमिनार के जरिए हुकूमत किसानों को बीज के मेयार, टेक्नोलॉजी और जदीद ज़रई तरीक़ों के साथ साथ हुकूमती मंसूबों और तैयारियों से आगाह करती है। वज़ीर-आला ने कहा कि उत्तर प्रदेश अनाज पैदा करने वाली सबसे बड़ी रियासत है। उन्होंने मजीद कहा कि उत्तर प्रदेश चीनी, आलू, दूध और एथेनॉल पैदावार में पहले नंबर पर है। वज़ीर-आला ने कहा कि खरीफ सेमिनार कीमियाई खादों और कीड़े मार अदवियात को कम से कम करने और ज़रात को मजीद कुदरती सतह पर बहाल करने में फ़ायदेमंद साबित होगा। अपने गोरख

0: गोरखपुर दौरे के तीसरे दिन वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने आज गोरखपुर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी के इलाके में 42 करोड़ 50 लाख रुपए की लागत से तामीरशुदा फ्लैटेड फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स का इफ्तिताह कर रहे हैं। इससे कबल कल वजीर आला ने कुशीनगर में 424 करोड़ रुपए से ज्यादा लागत के 270 तरक्याती मंसूबों का इफ्तिताह किया और संग बुनियाद रखा। इस मौके पर वजीर आला ने कहा कि डबल इंजन हुकूमत ने तरक्की, तहफ्फुज़ और रोज़गार का नया माहौल बनाया है। जनाब योगी ने कहा कि हुकूमत इस बात को यकीनी बनाने के लिए काम कर रही है कि स्कीमों का फायदा आखिरी शख्स तक पहुंचे।
1: मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र में सत्ता की बागडोर भारत के उस समय के लोकप्रिय नेता श्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों में सौंपी। पिछले 12 वर्ष में मोदी जी के नेतृत्व में बिना रुके, बिना डिगे, बिना थके, बिना झुके जो कार्य प्रारंभ हुआ, आज परिणाम है डबल इंजन सरकार आने के उपरांत अकेले कुशीनगर में लगभग 90,000 गरीबों के लिए एक एक आवास बने हैं।
0: वजीर आला ने कल ही गोरखपुर के चिलुआ ताल में 20 करोड़ 35 लाख रुपए की लागत से सियाहत की तरक्की और खूबसूरती के मंसूबों का इफ्तिताह किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि साबका हुकूमतों ने झीलों और तालाबों को नज़रअंदाज किया, लेकिन डबल इंजन हुकूमत उनकी हिफाजत कर रही है। ब्रिक्स वर्किंग ग्रुप की एक अहम मीटिंग 4 और 5 जून को वाराणसी में होगी। इस बैन अल-अक़वामी इवेंट में ब्राज़ील, चीन, मिस्र, इथियोपिया, भारत, इंडोनेशिया, ईरान, रूस, सऊदी अरब, जनूबी अफ्रीका और मुत्तहदा अरब अमीरात समेत 11 ममालिक के नुमाइंदे शिरकत करेंगे। मुलाकात के दौरान सकाफत, विरसे के तहफ़ और बाहमी सकाफती तआवुन से मुतालिक मुख्तलिफ मौजूआत पर तबादला ख्याल किया जाएगा। ब्रिक्स के मंदूबीन के काशी दौरे को यादगार बनाने के लिए सकाफती प्रोग्राम भी मुनक्किद किए जाएंगे। वाराणसी के रीजनल कल्चरल ऑफिसर डॉक्टर राम नरेश पाल ने बताया कि मंदूबीन की आमद पर हवाई अड्डे से लेकर शहर के मुख्तलिफ मकामात पर फोक डांस पेश किया जाएगा। हुकूमत ने सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के जरिए अख्तियार करदा ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम के सर्विस कॉन्ट्रैक्ट से मुतालिक मामलात की जांच के लिए एक रुकनी कमेटी तश्कील दी है। इस कमेटी की सरबराही कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन की चेयरमैन एस राधा चौहान करेंगी। कमेटी 1 माह के अंदर अपनी रिपोर्ट पर्सनल और ट्रेनिंग महकमे को पेश करेगी। इस दरमियान बोर्ड ने कल दर्जा 12 के तलबा के लिए स्कैन शुदा जवाबी पर्चों में पाई जाने वाली गलतियों की तस्दीक और जवाबात का दोबारा जायज़ा लेने के लिए ऑनलाइन पोर्टल खोल दिया है। यह सहूलत सिर्फ उन तलबा के लिए दस्तियाब होगी जिन्होंने अपनी जाँचशुदा जवाबी पर्चों की स्कैन कॉपियां हासिल कर ली हैं। इस दरमियान इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के सीनियर अफसर लोखंडे प्रशांत सीताराम को CBSE का नया चेयरमैन मुकर्रर किया गया है। जनाब सीताराम इससे कबल वजारत दाखिला में एडिशनल सेक्रेटरी के तौर पर खिदमात अंजाम दे चुके हैं। CBSE सेक्रेटरी का भी तबादला कर दिया गया है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में मुल्क ने गुज़िश्ता 12 बरसों में गैर मामूली तब्दीली देखी है जो कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के उसूल पर कारफरमा है। आज हम ख़वातीन को बाख्तियार बनाने के लिए की जाने वाली कोशिशों पर एक खसूसी रिपोर्ट पेश कर रहे हैं।
2: साल 2015 में शुरू की गई प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत लाखों महिलाओं को बिना किसी गारंटी के ऋण मिल रहा है, जिसके कारण उन्हें अपना व्यवसाय शुरू करने और आगे बढ़ाने में मदद मिली है। वहीं प्रधानमंत्री जनधन योजना, सुकन्या समृद्धि योजना और भूमिनिया जैसी प्रमुख योजनाओं ने महिलाओं की बैंकिंग, बचत और उद्यमिता से जुड़ने की क्षमता को मजबूत किया है। जनधन योजना के तहत अब तक 58 करोड़ से अधिक खाते खोले जा चुके हैं, जिनमें से लगभग 33 करोड़ खाते महिलाओं के नाम पर हैं। मोदी सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल लखपति दीदी है, जिसका उद्देश्य महिलाओं को सालाना कम से कम 1 लाख रुपए की स्थायी आय प्राप्त करने में सक्षम बनाना है। वहीं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के कारण राष्ट्रीय लिंगानुपात वर्ष 2014-15 के 918 से बढ़कर वर्ष 2024-25 में 929 हो गया है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार।
0: इसी के साथ आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
3: मीडियम वेव 401.6 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, हमारे स्टूडियो की घड़ी में इस समय दिन के 1:15 और 49 सेकंड हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है मातृ शिशु स्वास्थ्य का कार्यक्रम आंगनबाड़ी।

0: आकाशवाणी का ये वाराणसी केंद्र है। मीडियम वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्ज पर। स्टूडियो की घड़ी में दिन के 1:15 हो चुके हैं। बहने सुने अपना कार्यक्रम गृहलक्ष्मी।
1: सखियों के साथ,
2: सखियों की बात,
1: सखियों के जज्बात,
2: गृहलक्ष्मी।

0: कार्यक्रम सुनने वाली सभी श्रोता सखियों को मेरा यानी सुरेखा का प्यार भरा नमस्कार, और मेरी सखी शबनम को भी हमारा नमस्कार।
1: नमस्कार, और श्रोता सखियों को शबनम का प्यार भरा नमस्कार। और सुरेखा जी, देखिए ना, हमारी सखियां भी बहुत इंतजार कर रही होंगी। और वैसे भी हर दिन ना कुछ खास होता है।
0: हाँ हाँ, बिल्कुल होता है और होना भी चाहिए।
1: हाँ, जब हम सखियों से मिलने आते हैं, और ऐसा भी होता है ना कि कुछ बातें ऐसी होती हैं जो उस दिन खास हुई रहती हैं, चाहे वर्तमान में हो जाए या पहले हो चुकी हो। जैसे कि आज का दिन ही अगर हम देखें तो आज है 3 जून, और आज ही के दिन 2018 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने 3 जून को विश्व साइकिल दिवस के रूप में घोषित किया था।
0: और देखिए, जब आप खास बात की बात कर रही हो ना, तो मैं अपनी सखियों से एक बात बताऊं और आपको भी बताऊं शबनम, कि मेरे यहाँ ना इस समय बड़ी धमाचौकड़ी मची हुई है। काफी सारे बच्चे आए हुए हैं, तो मुझे कभी कभी ना वो अपने पुराने दिन याद आते हैं, वो किस्से, कहानियों और पहेलियों के दिन। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं आपसे कुछ पूछूं।
1: बिल्कुल पूछिए।
0: देखिए, जरा एक पहेली बताइएगा, और सखियों आप भी गेस करिए कि मैं क्या पूछ रही हूँ। दो पैरों पर चलती हूँ, पेट्रोल बिना ही दौड़ती हूँ, पहियों से मिलती है ताकत, बताओ मैं हूँ कौन?
1: आज का दिन है साइकिल, और हमें लगता है कि सखियों को भी पता चल गया होगा, क्योंकि साइकिल जब हम लोग बचपन की बात आप कर रही हैं, तो शुरू में तो साइकिल पे बैठना, चलाना एक अपने में रोमांच था, और कुछ नहीं तो साइकिल का पहिया मिल जाए, उसे ही लकड़ी से चलाओ
0: और साइकिल भी हम 2-3 स्टेप में सीखते थे। खुद तो छोटे थे, लेकिन साइकिल बड़ी होती थी।
1: और बिना गिरे, कहते हैं, साइकिल चलानी सीखने आती ही नहीं है। जब तक आप गिरेंगी नहीं, साइकिल की सही सवारी नहीं होगी।
0: तो इन्हीं सब विषय को ध्यान में रखते हुए, जैसे आप अगर पर्यावरण की बात करें या फिर इकोनॉमिक की बात करें, तो इसी सब बातों को ध्यान में रखते हुए आज ही के दिन यानी 3 जून को मनाया जाता है विश्व साइकिल दिवस।
1: और ये भी बात है ना, देखिए, साइकिल चलाने से जहाँ हमारा स्वास्थ्य बहुत अच्छा होता है, फिटनेस के लिए अगर देखा जाए, तो लोग जिम में जा करके साइकिल चलाते एक ही जगह पे, तो बेहतर तो ये हो सकियों कि आप साइकिल का इस्तेमाल करें। एक तो हमारा पर्यावरण भी शुद्ध रहेगा उससे, और उसके बाद किफायती भी है, कोई
0: किफायती
1: खर्चा
0: भी
1: नहीं
0: बहुत
1: है।
0: बाकी और दूसरे कोई भी साधन अगर हम इस्तेमाल करते हैं, तो वो साइकिल के कंपैरेटिवली तो महंगा है, लेकिन साइकिल एक ऐसा साधन है जिसे हर घर के लोग अफोर्ड कर सकते हैं,
1: और पहले करते भी थे, अभी भी बहुत सारे लोग करते हैं, बहुत सारी कंट्री में लोग यूज करते हैं।
0: बिल्कुल।
1: और बहुत मॉडल साइकिल भी आ गई है, वो पुराने जमाने वाली साइकिल भी नहीं रहेगी, उसका रूप भी बदला है, रंग भी बदला है, और स्पीड भी बदली है।
0: बिल्कुल
1: तो
0: सही है।
1: बस आप अगर इसे अपनी जिंदगी में ले आइए, तो बहुत सारे काम बहुत आसान हो जाएंगे।
0: हाँ, और देखिए, आप साइकिल सीखने की बात कर रही थी, तो आपको बताऊं कि कभी ना एक जमाने में जो भी आदमी सीखना शुरू करता है, तो उसके लिए ये एक बहुत बड़ी चुनौती होती है।
1: बिल्कुल।
0: और अगर कुछ भी सीखना है सखियों, तो चुनौतियों से घबराना क्या है?
1: और ये भी कहते हैं ना कि कुछ नया सीखने से एक तो आपके अंदर एक नई एनर्जी आती है, एक नई ऊर्जा आती है। फिर आप कहते भी हैं, कुछ लोग ये कह चुके हैं कि अगर आप हर दिन कुछ नया सीखते हैं, तो आप चिर युवा बने रहते हैं।
0: ये तो बात है ही, लेकिन ये भी बात है कि हमारा जो जीवन है ना, मनुष्य का जीवन है, ये बहुत ही उतार चढ़ाव से
1: भरा हुआ है,
0: और अगर उतार चढ़ाव ना हो, तो जीवन की पहचान ही नहीं हो पाती है। और इससे घबराना क्या है? घबराना बिल्कुल भी नहीं है। तो कोशिश ये करनी है कि आप उन चुनौतियों को कैसे स्वीकार कर पाते हैं। और एक और खास बात होती है, जब हम चुनौतियों को स्वीकार करते हैं ना, तो अपनी कंफर्ट जोन से बाहर आते हैं,
1: बिल्कुल,
0: जो हमें आराम करने की जो आदत हो जाती है, तो ये लगता है कि नहीं, इसके लिए मुझे बहुत मेहनत करनी है, बहुत कोशिश करनी है, बहुत प्रयास करना है, तभी तो हम उन चुनौतियों का सामना कर पाएंगे।
1: और अगर हम सुरेखा जी कहें

0: कि महिलाओं के लिए हर पल चुनौती है। एक नए घर में प्रवेश करना चुनौती से कम नहीं है, किसी नए का आगमन होना वो भी चुनौती से कम नहीं है,
1: सही है।
0: और हमेशा हर पल हर पड़ाव पे महिलाओं को चुनौती का सामना करना पड़ता है। बेटी से बड़ी होना, बड़ी होके ब्याह के जाना, ब्याह के जाने के बाद घर संसार बसाना, और उसे बसाने के बाद एक नए परिवार में एक नए सदस्य को ले आना, ये सब पल जो है ना चुनौती
1: बहुत
0: भरे
1: है पूरा
0: और
1: जीवन।
0: हमें नहीं लगता कि कोई भी महिला इन चुनौतियों से घबराती है, वो डट के सामना करती है।
1: सिर्फ ये घर परिवार की ही बात नहीं है, इसके अलावा आज की जो महिला है ना वो तो बहुत आगे भी बढ़ रही है, घर के साथ साथ बाहर भी संभाल रही है। और अब जो माता पिता है ना वो भी बड़े ध्यान से अपनी बेटियों को भी आगे बढ़ा रहे हैं कि नहीं आप भी आगे बढ़िए और कुछ ना कुछ करिए।
0: लेकिन महिलाओं का एक बड़ा सॉफ्ट सा कॉर्नर होता है, बड़ा रोमानी सा होता है, जो कुछ इस तरह से होता है

0: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
1: सुनो ना।
2: हाँ?

0: रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों न बढ़ा लूँ।
1: तो रोका किसने है? हा?
0: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
1: मुझसे?
0: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
1: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
0: पर उससे मेरा क्या फायदा?
1: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
0: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
1: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो
2: 0542227658।
0: ओ
3: 0542227658।
0: लो अभी फोन लगाता हूँ।
3: 0542227658।
4: आकाशवाणी वाराणसी से प्रत्येक सोमवार से शुक्रवार तक दिन में 12 बजे सुनिए NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम।
5: सुरेखा, कभी कभी हमारी सखियां कहती हैं कि अब क्या कर सकते हैं, अब उम्र हो गई है, अब ऐसा हो गया, अब सब कुछ सेट हो गया।
6: लेकिन ऐसी बात नहीं है शबनम, उम्र चाहे जो भी हो, जैसे अभी आप कह रही थी ना कि हम महिलाओं और सखियों का काम कभी समाप्त नहीं होता है, और यही एक कर्म है और काम है जो सारे दिन हमें बांधे रखता है। अगर जिस दिन हमने ये सोच लिया कि हमारे पास कोई काम नहीं है या काम नहीं कर सकते, तो फिर समझ लीजिए वो जीवन लगभग समाप्त सा हो जाएगा।
5: हाँ, और इसीलिए स्वामी विवेकानंद ने भी कहा था कि कभी ये ना कहें कि मैं नहीं कर सकता, क्योंकि आप अनंत हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। और जब हम स्वामी विवेकानंद की बात कर रहे हैं ना, तो आज एक वार्ता लेकर के आए हैं सखियों के लिए, स्वामी विवेकानंद, कर्म, ज्ञान और व्यक्ति का समन्वय। तो चलिए सुनते हैं ये कल्पना आनंद से ये वार्ता।
7: युग प्रवर्तक, महान सन्यासी और आधुनिक भारत के निर्माता स्वामी विवेकानंद जी का दर्शन केवल आध्यात्मिक नहीं है, बल्कि जीवन को पूर्णता की ओर ले जाने वाला व्यवहारिक मार्ग है। स्वामी विवेकानंद का सबसे बड़ा योगदान यह है कि उन्होंने कर्म, ज्ञान और भक्ति, इन तीनों मार्गों का अद्भुत समन्वय प्रस्तुत किया, जिसे उन्होंने राजयोग से संबोधित किया। आज का विमर्श स्वामी विवेकानंद के इसी समन्वयवादी दर्शन पर केंद्रित है, जिसमें उन्होंने भारतीय दार्शनिक परंपरा के तीन प्रमुख साधना मार्गों, कर्मयोग, ज्ञान योग और भक्ति योग को एक समग्र जीवन दर्शन के रूप में प्रस्तुत किया। स्वामी विवेकानंद का यह समन्वय न केवल आध्यात्मिक है, बल्कि सामाजिक, नैतिक और राष्ट्रीय पुनर्निर्माण से भी गहराई से जुड़ा हुआ है। स्वामी विवेकानंद के अनुसार जीवन का उद्देश्य आत्मबोध है, और इस आत्मबोध तक पहुंचने के लिए कोई एक मार्ग पर्याप्त नहीं है। मनुष्य की प्रकृति बहुआयामी है, इसीलिए साधना भी समन्वित होनी चाहिए। उनके अनुसार कर्म, ज्ञान और भक्ति, तीनों का संतुलन ही पूर्ण मानव का निर्माण करता है। स्वामी विवेकानंद की विशेषता यह थी कि उन्होंने कर्म को ज्ञान से जोड़ा और ज्ञान को भक्ति से सींचा। उनके लिए ये तीनों मार्ग अलग अलग नहीं, बल्कि एक ही सत्य की ओर जाने वाले रास्ते हैं। उन्होंने कहा कि आदर्श जीवन वही है जिसमें हाथ कर्म में लगे हों, मस्तिष्क ज्ञान से प्रकाशित हो और हृदय भक्ति से परिपूर्ण हो। गीता से प्रेरित होकर स्वामी विवेकानंद ने कर्म को बंधन नहीं बल्कि मुक्ति का साधन माना। उन्होंने सामाजिक सेवा को आध्यात्मिक साधना का केंद्र बताया, जिसका उदाहरण उनके द्वारा स्थापित रामकृष्ण मिशन है। स्वामी विवेकानंद का कर्मयोग गीता प्रेरित होते हुए भी सामाजिक चेतना से युक्त है। उनके लिए कर्म केवल व्यक्तिगत मोक्ष का साधन नहीं, बल्कि सामाजिक दायित्व है। वे कहते हैं, वर्क इज वर्शिप व्हेन इट इज डन विदाउट अटैचमेंट, सेवा ही धर्म है। स्वामी जी का यह कथन कर्म योग को सामाजिक नैतिकता से जोड़ता है। उनके लिए निस्वार्थ कर्म व्यक्ति को अहंकार से मुक्त कर समाज के प्रति उत्तरदायी बनाता है। तो स्वामी विवेकानंद का दर्शन अद्वैत वेदांत पर आधारित दिखाई देता है। उन्होंने आत्मज्ञान को मानव की सर्वोच्च उपलब्धि माना।

उनके अनुसार अज्ञान ही सभी प्रकार के भय, शोषण और दासता का मूल कारण है। ज्ञान योग व्यक्ति को बौद्धिक स्वतंत्रता प्रदान करता है और उसे आत्मविश्वास से भर देता है। उनका कथन ईच सोल इज पोटेंशियली डिवाइन, मानव गरिमा और आत्मसम्मान की दार्शनिक आधारशिला को प्रस्तुत करता है। विवेकानंद का ज्ञान शुष्क बौद्धिकता नहीं है, यही कारण है कि वे भक्ति योग को अनिवार्य मानते हैं। भक्ति उनके लिए भावनात्मक पलायन नहीं बल्कि प्रेम, करुणा और समर्पण का परिष्कृत रूप है। भक्ति अहंकार को गलाती है और ज्ञान को मानवीय बनाती है। रामकृष्ण परमहंस के जीवन और शिक्षाओं में उन्हें कर्म, ज्ञान और भक्ति का जीवन समन्वय दिखाई देता है। स्वामी विवेकानंद जी की भक्ति भावुकता नहीं बल्कि प्रेम और समर्पण से भरी हुई थी। उनके अनुसार भक्ति वह शक्ति है जो अहंकार को गलाकर मानव को मानव से और ईश्वर से जोड़ती है। कर्म और ज्ञान तब तक अधूरे हैं जब तक उसमें भक्ति का भाव न हो। उनके अनुसार कर्म ज्ञान के बिना अंधा है और ज्ञान भक्ति के बिना शुष्क है और भक्ति विवेक के बिना अंधविश्वास में बदल सकती है। विवेकानंद का यह दर्शन हमें एक ऐसा मानवीय दृष्टिकोण देता है जिसमें बौद्धिकता, संवेदना और क्रियाशीलता तीनों का संतुलन हो। स्वामी विवेकानंद जी ने स्पष्ट रूप से कहा है, रिलीजन इज नॉट इन बुक्स नॉर इन थ्योरीज नॉर इन डॉगमास बट इन रियलाइजेशन। यह कथन उनके दर्शन की आधारशिला है जो कर्म, ज्ञान और भक्ति तीनों को अनुभव और व्यवहार से जोड़ता है। द आइडियल मैन इज ही हु कम्बाइन इन हिमसेल्फ द थ्री पाथ वर्क, नॉलेज एंड डिवोशन। वे ऐसे मनुष्य की कल्पना करते हैं जिसके हाथ कर्म में, मस्तिष्क ज्ञान में और हृदय भक्ति में रचा बसा हो। स्वामी विवेकानंद का दर्शन एक समग्र मानव दर्शन है जो आध्यात्मिक साधना के साथ साथ सामाजिक चेतना और बौद्धिक स्वतंत्रता का मार्ग प्रशस्त करता है। स्वामी विवेकानंद एक समाजवादी चिंतक हैं। उन्होंने स्पष्ट कहा है, मैं एक समाजवादी हूँ, किंतु स्वामी जी का समाजवाद अन्य समाजवादी विचारकों से भिन्न है क्योंकि इसमें ना तो वर्ग विहीन समाज की कल्पना की गई है और ना इतिहास की आर्थिक व्याख्या को स्वीकार किया गया है। स्वामी जी समाज में वर्ण व्यवस्था के समर्थक थे। वे समाज में प्रत्येक मनुष्य को आगे बढ़ने का समान अवसर देते हुए प्रत्येक को उसकी योग्यता के अनुसार सामाजिक स्थिति प्रदान करना चाहते थे। उन्होंने वर्ग संघर्ष को उचित नहीं माना बल्कि उसके स्थान पर विश्व बंधुत्व पर जोर दिया। उनकी समाजवाद को मानवतावादी समाज दर्शन भी कहा जा सकता है। विवेकानंद जी ने युवाओं को राष्ट्र निर्माण की केंद्रीय शक्ति माना और उनके व्यक्तित्व निर्माण के लिए भक्ति को सकारात्मक जीवन ऊर्जा के रूप में प्रस्तुत किया। वे कहते हैं, एराइज अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच्ड। यह कथन युवाओं को निरंतर प्रेरित करता रहता है। विवेकानंद जी की भक्ति का केंद्रीय तत्व सेवा है। स्वामी विवेकानंद जी का वेदांत दर्शन युवाओं के लिए निष्क्रिय आस्था नहीं बल्कि सक्रिय जीवन दर्शन है। इसका क्रियान्वयन युवाओं को आत्मविश्वासी, नैतिक, सामाजिक रूप से उत्तरदायी और राष्ट्र निर्माता बनाता है। विवेकानंद समाज में प्रत्येक मानव को महत्वपूर्ण व मूल्यवान मानते थे। उन्होंने प्रत्येक मानव को शिक्षा के द्वारा आत्मज्ञान प्राप्त करने के अवसर पर बल दिया ताकि वह स्वयं अपना मार्ग खोज सके। विवेकानंद के विचार व्यष्टि और समष्टि के संबंध में मानवतावादी दृष्टिकोण को दिखाते हैं जो कि वेदांत दर्शन पर आधारित है। यह वेदांत दर्शन मानव धर्म है। विवेकानंद वेदांत के आधार पर एक ऐसा दर्शन विकसित करना चाहते थे जो समस्त संघर्षों को दूर करके मानव जाति को बहुमुखी

0: ही संपूर्णता के स्तर पर उठा सके। वेदांत व्यक्ति के उत्थान और समाज के निर्माण तथा राष्ट्र के समन्वय का शास्त्र है। स्वामी जी इसी वेदांत के आधार पर एक वर्ग विहीन समाज का निर्माण करना चाहते थे। इस आदर्श समाज में वे वर्ग संघर्ष को उचित नहीं मानते थे, बल्कि उसके स्थान पर विश्व बंधुत्व पर जोर देते थे। स्वामी जी के अनुसार वेदांत का आदर्श है मनुष्य के सच्चे स्वरूप को जानना, और वेदांत का सही संदेश है कि यदि तुम व्यक्त ईश्वर रूप अपने भाई की उपासना नहीं कर सकते, तो तुम उस ईश्वर की कैसे उपासना करोगे जो अव्यक्त है। इस प्रकार वेदांत दर्शन को आधार मानते हुए विवेकानंद जी एक समता मूलक समाज की स्थापना करना चाहते थे। इसी कारण विवेकानंद के समाजवाद को नव्य वेदांत समाजवाद कहा जा सकता है। आज के भौतिकवादी और संघर्षपूर्ण युग में स्वामी विवेकानंद का यह समन्वय अत्यंत प्रासंगिक है। यदि हम केवल ज्ञान पर जोर दें और कर्म न करें तो विचार निष्फल रह जाते हैं। यदि केवल कर्म करें और भक्ति ना हो तो जीवन यांत्रिक बन जाता है, और यदि केवल भक्ति हो बिना विवेक के तो अंधविश्वास जन्म लेता है। आधुनिक भौतिकतावादी समाज में जहां जीवन तनाव और आत्म केंद्रिता से ग्रस्त है, विवेकानंद का वेदांत दर्शन प्रेम करुणा और मानवीय मूल्यों को पुनर्स्थापित करता है। यह व्यक्ति को संकीर्णता से निकलकर सार्वभौमिक चेतना से जोड़ता है। अतः कहा जा सकता है कि स्वामी विवेकानंद का वेदांत दर्शन एक विवेक युक्त मानवतावादी और समन्वयवादी दर्शन है। यह न तो कर्म से अलग है न ज्ञान का विरोधी, बल्कि दोनों का पूरक है। उनकी भक्ति भावुकता नहीं बल्कि प्रेम के माध्यम से आत्मबोध की यात्रा है। स्वामी विवेकानंद ने मानव जाति को विश्व प्रेम, परस्पर सहायता व सहयोग तथा सामंजस्य का संदेश दिया, विरोध और संघर्ष का नहीं। उनका कहना था, हमको देश में समाजवादी विचारों की बाढ़ लाने से पहले यहाँ आध्यात्मिक विचारों की धारा प्रवाहित करनी चाहिए। स्वामी जी के समाजवादी चिंतन का मूल आधार आध्यात्मिकता है।
1: मैंने अभी सुन रही थी वार्ता। वार्ता का विषय था स्वामी विवेकानंद, कर्म ज्ञान और व्यक्ति का समन्वय। वार्ताकार थी कल्पना आनंद।
2: श्रीखा, देखिए जब हम किसी की जीवनी पढ़ते हैं या उनके ज्ञान की बात सुनते हैं तो लगता है ना कि कुछ अगर दिमाग में कोई भी निराशावादी बातें हैं तो वो हट जाती हैं, छट जाती हैं। और ऐसे ही जब हम धूप से घर में आते हैं तो लगता है कि इससे ज्यादा सुकून वाली जगह कहीं
1: घर ही सबसे ज्यादा सुकून वाली जगह लगती है।
2: और मौसम ऐसा है ना कि कभी कभी लगता है कि बादल जलचा के चले जाते हैं और कभी बारिश आ जाती है।
1: लेकिन महीना तो बहुत गर्म है ना, ये जो जेठ वाली गर्मी आती होती है ना, ये इतनी ज्यादा गर्म होती है कि इस समय बहुत ज्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता होती है। तो सखियों, वैसे तो गर्मी बहुत ज्यादा है लेकिन हमें कभी कोई चैन नहीं मिलता है, लेकिन फिर भी थोड़ा चैन ले लेना चाहिए।
2: देखिए, सावधानी अगर हम बरते ना तो हर मौसम बहुत खूबसूरत है, क्योंकि गर्मी में जो चीजें मिलती हैं वो सर्दियों में नहीं मिलती हैं, उनका आनंद भी अलग होता है। लेकिन जरूरत इस बात की है कि गर्मी से आप परेशान ना हो, उसका हल निकालें। और जैसे कि मौसम की बात अगर हम करें तो लू भी चल रही है, कभी ज्यादा हो रही, तो अगर कहते थे पहले लोग की प्याज रख लीजिए तो लू नहीं लगती, कच्चा प्याज इस्तेमाल कीजिए,
1: बहुत छोटे छोटे
2: आम इस्तेमाल कीजिए,
1: छोटे छोटे टिप्स ऐसे है ना जिन्हें आप अपना सकती हैं। जैसे सबसे बड़ी बात यह है कि आप पानी ज्यादा से ज्यादा पीजिए। पानी के साथ साथ जो इस समय फल मिलते हैं मौसमी फल, वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके साथ ही साथ अगर आप बाहर निकल रहे हैं तो अपने चेहरे को ढक कर निकलें। कोशिश करें कि ये 12 से 4 वाली गर्मी में ना निकलना पड़े, लेकिन निकलना ही अगर पड़ जाए तो इन सब खास बातों का ध्यान रखें। और उसके साथ ही साथ कच्चे आम का पन्ना भी
2: किया जा सकता है। अगर पन्ना बनाना ना सकी तो अगर खट्टा खाती हैं, ज्यादा पसंद नहीं है, तो उसमें थोड़ा सा गुड़ या चीनी शक्कर मिला लीजिए, तो वो जो पन्ना बनेगा ना वो खट्टा मीठा सा बन जाएगा। पन्ना तो सभी को बनाने आता है,
1: सबको आता है।
2: फिर चलिए एक प्यारा

0: अरे शबनम जी, आप गीत से थोड़ा बाहर आ
1: गीत से बाहर आ
0: जाइए।
1: गए क्योंकि घड़ी भी इशारा कर रही है सुरेखा। लेकिन चलते चलते सखियों से कहना है कि सखियों अपना बहुत ख्याल रखिए इस गर्मी में, अपना भी और बच्चों का भी और घर वालों का भी।
0: बिल्कुल, और रखना ही चाहिए। तो सखियों, अगले साल अगले कार्यक्रम में हम आपसे फिर मिलने आएंगे। तब तक
1: तक के
0: के
1: लिए
0: लिए हमें
1: हमें
0: इजाजत दीजिए।
1: नमस्कार।
0: नमस्कार।
1: सखियों के साथ,
2: सखियों की बात,
1: सखियों के जज्बात,
2: गृह लक्ष्मी।

कार्यक्रम आरोग्यम आप सुनते हैं प्रत्येक रविवार दिन में 11:30 बजे। इस रविवार दिनांक 7 जून 2026 को प्रसारित होने वाले कार्यक्रम का विषय है थायराइड की समस्या और इसकी चिकित्सा। इस विषय पर जानकारी देने के लिए हमारी डॉक्टर होंगी डॉक्टर ऋचा त्रिपाठी। कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी गुरुवार 4 जून 2026 को प्रातः 10 बजे से 11 बजे के बीच। तो हमें फोन करना न भूलें। हमारा फोन नंबर है 2221052। बनारस का एसटीडी कोड है।

0: कार्यक्रम आकाशवाणी वाराणसी के साथ।
1: और अब आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से सुनिए लोक संगीत का कार्यक्रम। कलाकार हैं तेज बहादुर सिंह यादव और साथी। इनकी आवाज में पहले आपको सुनवा रहे हैं सोरठी।

आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से आप सुन रहे हैं लोक संगीत का कार्यक्रम। कलाकार हैं तेज बहादुर सिंह यादव और साथी। इनकी आवाज में अब सुनिए निर्गुण।

एस निर्गुण के साथ ही लोक संगीत का कार्यक्रम समाप्त होता है। कलाकार थे तेज बहादुर सिंह यादव और साथी। आकाशवाणी का ये वाराणसी केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में दिन के 2 बजने वाले हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे मिड डे न्यूज, उसके बाद दोपहर समाचार। इसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं।

0: घटना में 21 लोगों की मौत हो गई है। दक्षिण दिल्ली के पुलिस उपायुक्त अनंत मित्तल ने बताया कि 8 दमकल कर्मियों की मदद से आग पर काबू पा लिया गया है। एक रिपोर्ट।
1: दिल्ली के मालवीय नगर में आज सुबह करीब 9 बजे एक होटल में भीषण आग लग गई। इसके बाद दिल्ली दमकल विभाग, दिल्ली पुलिस, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, कैट एम्बुलेंस सेवा और अन्य आपातकालीन एजेंसियों की टीमें तुरंत मौके पर पहुंची और राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया। दिल्ली पुलिस के अनुसार अब तक 40 से अधिक लोगों को सुरक्षित बाहर निकालकर इलाज के लिए नजदीकी अस्पतालों में भेजा गया है। 8 दमकल की गाड़ियों की मदद से आग पर काबू पा लिया गया है। हालांकि बचाव और तलाश अभियान अभी भी जारी है और सभी संबंधित एजेंसियां मौके पर तैनात हैं। आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। इस संबंध में दिल्ली पुलिस ने FIR दर्ज कर ली है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: दिल्ली के शहरी विकास मंत्री आशीष सूद ने कहा है कि लापरवाही करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी।
2: जिनके लापरवाही के कारण ये हुआ है, पुलिस जांच करके उसे तुरंत अभी गिरफ्तार करेंगी। आसपास के इस एरिया में ऐसी जितनी इमारतें चल रही हैं, जिसमें राई बराबर भी वॉयलेशन होगी, शाम तक उसकी जांच करके ऐसी सभी इमारतों को सील किया जाएगा। एक भी दोषी छोड़ा नहीं जाएगा।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आग की घटना में हुई जानमाल के हानि पर गहरा दुख व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि अधिकारी पीड़ित लोगों को हर संभव सहायता प्रदान कर रहे हैं। उन्होंने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। श्री मोदी ने प्रत्येक मृतक के परिजन को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपए तथा घायलों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि दिए जाने की घोषणा की है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और गृहमंत्री अमित शाह ने इस घटना पर शोक व्यक्त किया है। राष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यह घटना बहुत दुखद है। उपराष्ट्रपति ने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना की। उन्होंने शोक संतप्त परिवारों को इस दुख की घड़ी में शक्ति और साहस प्रदान करने की भी कामना की। गृहमंत्री ने बताया कि स्थानीय प्रशासन राहत और बचाव कार्यों में लगा हुआ है। उन्होंने कहा कि घायलों को सर्वोत्तम चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार स्थिति पर कड़ी नजर रख रही है और प्रभावित परिवारों को सभी आवश्यक चिकित्सा सहायता प्रदान की जा रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में एकीकृत जनजातीय विकास एजेंसियों और एकीकृत जनजातीय विकास परियोजनाओं को सुदृढ़ करने के लिए राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि देश भर में रहने वाला जनजातीय समाज सांस्कृतिक रूप से समृद्ध है और इन्हें आगे बढ़ाने के प्रयास किए जाने चाहिए। राष्ट्रपति ने कहा कि देश के प्रत्येक गाँव और व्यक्ति तक विकास पहुँचना चाहिए।
3: जनजातीय समुदाय के अनेक गांव और बस्तियां दूर दराज के क्षेत्र में जंगलों और पहाड़ों तली इलाकों में होते हैं। ऐसे इलाकों को विकास की मुख्य धारा से पूरी तरह जोड़ना आपका कर्तव्य है। अंतिम गांव और अंतिम बस्ती के अंतिम घर तक विकास कार्यक्रम को पहुंचाना आपका उत्तरदायित्व है।
0: सूचना प्रसारण और संसदीय कार्य राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने मिजोरम में जनता से राष्ट्र निर्माण प्रक्रिया में विकसित भारत पहल के तहत 2047 तक एक विकसित भारत के लक्ष्य को सरकार साकार करने में योगदान करने का आह्वान किया है। राज्य के कोलाबिस जिले में सरकारी अधिकारियों के साथ बातचीत के दौरान श्री मुरुगन ने कहा कि केंद्र सरकार पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास को उच्च प्राथमिकता दे रही है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे newsonair ऐप पर भी उपलब्ध हैं। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस में उथल पुथल के बीच राजनीतिक घटनाक्रम तेज हो गया है। तृणमूल कांग्रेस से निष्कासित विधायक ऋतव्रता बनर्जी ने राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता पद पर दावा करते हुए 58 विधायकों के समर्थन का दावा किया है। विधानसभा सूत्रों के अनुसार 58 विधायकों द्वारा हस्ताक्षरित एक पत्र अध्यक्ष रथिंद्र बोस को सौंपा गया है, जिसमें बनर्जी के गुट को वास्तविक तृणमूल कांग्रेस के रूप में मान्यता देने की मांग की गई है। इस गुट ने मुर्शिदाबाद के रघुनाथगंज से विधायक अखरुजमान को मुख्य सचेतक नामित किया है। एंटाली से संदीप अंसाहा और कस्बा से जावेद खान को उपनेता के रूप में प्रस्तावित किया गया है। पश्चिम बंगाल की सामाजिक सुरक्षा योजना अन्नपूर्णा योजना का आज औपचारिक रूप से शुभारंभ किया गया। शहरी विकास, महिला और बाल विकास तथा समाज कल्याण मंत्री अग्निमित्रा पॉल ने नबन्ना में इसका उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी भी इस अवसर पर उपस्थित थे। पहले चरण में लाभार्थियों को आज से उनके बैंक खातों में 3,000 रुपए मिलने शुरू हो जाएंगे। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि

0: राज्य प्रशासन के अधिकारियों के अथक प्रयासों से ही योजना का संचालन तुरंत शुरू करना संभव हो पाया है। पश्चिम बंगाल में मॉनसून से पहले चलाए जा रहे नियमित सफाई अभियान के दौरान कल शाम कोलकाता के सुरेंद्रनाथ कॉलेज में नोटों के बंडल बरामद किए गए। एक बंद कमरे में दो पुराने सूटकेसों में रखे गए ये नोट बुरी तरह क्षतिग्रस्त अवस्था में मिले। भाजपा विधायक सजल घोष ने आरोप लगाया है कि ये कमरा एक स्थानीय तृणमूल कांग्रेस नेता ने बनवाया था, जिसका इस्तेमाल वो अपनी अवैध गतिविधियों को अंजाम देने के लिए करता था। हालांकि पार्टी सदस्यों ने इन दावों को निराधार बताया है। कर्नाटक में कांग्रेस विधायक दल के नेता डीके शिवकुमार को आज शाम बेंगलुरु में मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी। राज्यपाल थावरचंद गहलोत लोकभवन में उन्हें 25वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ दिलाएंगे। पूर्व गृह मंत्री डॉ जी परमेश्वर उप मुख्यमंत्री के रूप में तथा 12 विधायक मंत्री पद की शपथ लेंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी, राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल और रणदीप सिंह सुरजेवाला, मजदूर, लेखक, अभिनेता, प्रमुख व्यवसायी तथा उद्योगपति शपथ ग्रहण समारोह में आमंत्रित हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने अरावली पर्वत श्रृंखला की परिभाषा के पुनर्विचार और सीमांकन संबंधी केंद्र सरकार की रिपोर्ट की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद की महानिदेशक कंचन देवी करेंगी। समिति को इस वर्ष 31 अगस्त तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है। समिति इस बात की जांच करेगी कि क्या अरावली पहाड़ियों की पहचान के लिए प्रस्तावित मानदंड पर्यावरण संरक्षण के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र को काफी हद तक कम कर सकते हैं और पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में खनन या अन्य गतिविधियों की अनुमति दे सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के लेख को साझा किया है, जिसमें लद्दाख में खुल रहे नए अवसरों पर प्रकाश डाला गया है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि लद्दाख में पाई जाने वाली ये खास बेरी नवोन्मेष और अवसरों की कहानी लिख रही है। उन्होंने कहा कि ये लेख बताता है कि कैसे उद्यमिता और मूल्यवर्धन लद्दाख में समृद्धि के नए द्वार खोल रहे हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। भारत अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए वार्षिक सौर ऊर्जा क्षमता वृद्धि में 2025 तक विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा विकास बाजार बन गया है। भारत ने सौर ऊर्जा के स्थापित क्षमता में उल्लेखनीय 155 गीगावाट का आंकड़ा पार कर लिया है। इससे देश के 50% गैर जीवाश्म ईंधन क्षमता लक्ष्य को प्राप्त करने और राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान को समय से पहले पूरा करने में मदद मिली है। प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना जैसी प्रमुख पहल लोगों के जीवन में बदलाव ला रही है। घरों पर लगे सौर पैनल से 40 लाख से अधिक परिवारों को बिजली मिल रही है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि देश की सौर ऊर्जा विकास गाथा वैश्विक मानक स्थापित कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में नेपाल के राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के अध्यक्ष रवि लामिछाने से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि नेपाल भारत की पड़ोसी पहली नीति के अंतर्गत एक प्रमुख साझेदार है। उन्होंने कहा कि भारत दोनों देशों के बीच विशेष और बहुआयामी संबंधों को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए नई सरकार के साथ सहयोग करने के लिए उत्सुक है। ईरान ने कल बहरीन और कुवैत में अमरीकी सैन्य ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए हैं। ईरान के एक सैन्य ठिकाने पर अमरीकी सेना के हमले के बाद हुए इस घटनाक्रम से तनाव और बढ़ गया है। इससे क्षेत्रीय स्तर पर संघर्ष विराम को लेकर नई चिंताएं पैदा हो गई हैं। एक रिपोर्ट।
1: अमरीकी केंद्रीय कमान के अनुसार अमरीकी सेना द्वारा ईरानी बंदरगाहों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे एक तेल टैंकर को निष्क्रिय करने के बाद यह तनाव शुरू हुआ है। अमरीकी अधिकारियों ने बताया कि हेलफायर मिसाइल ने जहाज के इंजन पर हमला किया। ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने कहा कि अमरीका ने केशम द्वीप के दक्षिण में स्थित उनके एक संचार केंद्र को निशाना बनाया था। जवाब में ईरान ने बहरीन में अमरीकी नौसेना के 5वें बेड़े के मुख्यालय और कुवैत में एक सैन्य हवाई अड्डे पर मिसाइल और ड्रोन दागे। हालिया तनाव बढ़ने के बावजूद अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ संपर्क जारी है और कूटनीति के विफल होने की खबरों को खारिज कर दिया। हालांकि मसौदा समझौते पर बातचीत अभी भी अधूरी है, क्योंकि दोनों पक्षों के नेतृत्व ने अभी तक प्रस्ताव को मंजूरी नहीं दी है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमन यादव।
0: भारतीय रिजर्व बैंक RBI की मौद्रिक नीति समिति की 3 दिवसीय बैठक आज मुंबई में शुरू हुई। विशेषज्ञों का मानना है कि पश्चिम एशिया में जारी तनाव के कारण अस्थिर वैश्विक परिस्थितियों को देखते हुए

0: आरबीआई ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं करेगा। नीतिगत निर्णय शुक्रवार को घोषित किया जाएगा। सरकार ने उस अंतर्राष्ट्रीय समाचार रिपोर्ट का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने लगभग 12 अरब अमरीकी डॉलर मूल्य का सोना बेचा है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांचाई इकाई ने कहा कि समाचार एजेंसी का यह दावा फर्जी है। पंजाब की मुख्य चुनाव अधिकारी अनिंदिता मित्रा ने सूचित किया है कि विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के अंतर्गत मतदाताओं की पूर्व मैपिंग प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए राज्य भर के सभी मतदान केंद्रों पर 7 जून को विशेष शिविर आयोजित किए जाएंगे। अब तक राज्य में 90% से निर्धारित लक्ष्य के मुकाबले 84.62% पूर्व SIR मैपिंग हो चुकी है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने बताया है कि लगभग 40,000 छात्रों ने सफलतापूर्वक पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन जमा कर दिए हैं। ये प्रक्रिया बिना किसी समस्या के पूरी कर ली गई है। आज विश्व साइकिल दिवस है। इस साल का विषय है हरित भविष्य के लिए साइकिल चलाना। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने युवाओं से साइकिल चलाने और एक स्वस्थ तंदुरुस्त और हरित राष्ट्र के निर्माण में अग्रणी भूमिका निभाने का आग्रह किया है। विश्व साइकिल दिवस के अवसर पर एक वीडियो संदेश साझा करते हुए उन्होंने ये बात कही।
1: साइकिलिंग को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। साइकिलिंग केवल एक व्यायाम या एक दिन की हॉबी नहीं बल्कि स्वस्थ और सशक्त जीवन शैली की पहचान है। यह हमारे स्वास्थ्य के साथ साथ पर्यावरण को सुरक्षित रखने का सबसे सस्ता, सुंदर और टिकाऊ माध्यम है। जितना अधिक हम साइकिल का उपयोग करेंगे उतना ही प्रदूषण कम होगा और पेट्रोल डीजल की बचत के माध्यम से देश को भी लाभ मिलेगा।
0: इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन में आज पुरुष सिंगल्स में HS प्रणय आयरलैंड के नहन ग्वेन से और आयुष शेट्टी चीन के वेन होंगयांग से मुकाबला करेंगे। लक्ष्य सेन पहले ही दौर में हारकर बाहर हो गए हैं। महिला सिंगल्स में PV सिंधु ने थाईलैंड की बुसानन ओमबाम रुंगफान को हराकर दूसरे दौर में प्रवेश किया। पुरुष डबल्स में भारत के सात्विक साईराज रिंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी को आज मलेशिया के खाई शिंगकांग और आरोई ताई ने 6-11 से हार का सामना करना पड़ा। वहीं महिला सिंगल्स में आज उन्नति हुडा का सामना जापान की पूर्व विश्व चैंपियन नोजोमी ओकुहारा से होगा। मौसम विभाग ने आज पूर्वोत्तर क्षेत्र के कुछ हिस्सों ओडिशा, कोंकण, गोवा और पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों में गर्म और उमस भरे मौसम का अनुमान है। आज दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गुजरात, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में आंधी आ सकती है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दिल्ली के मालवीय नगर स्थित एक होटल में भीषण आग लगने से 21 लोगों की मौत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्घटना पर दुख व्यक्त किया। प्रत्येक मृतक के परिजन को 2-2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा। पश्चिम बंगाल विधानसभा से निष्कासित विधायक ऋतव्रता बनर्जी के लगभग 58 विधायकों के समर्थन का दावा करने के बाद तृणमूल कांग्रेस में उथल पुथल मची। सर्वोच्च न्यायालय ने अरावली पर्वत श्रृंखला की परिभाषा के पुनर्विचार के लिए उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता DK शिवकुमार अब से कुछ देर में कर्नाटक के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। और इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन में HS प्रणय और आयुष शेट्टी आज पुरुष सिंगल्स मैच खेलेंगे। इसके साथ ही दोपहर समाचार का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी का ये वाराणसी केंद्र है।
3: श्रोताओं, स्वास्थ्य संबंधी फोन इन कार्यक्रम आरोग्यम आप सुनते हैं प्रत्येक रविवार दिन में 11:30 बजे। इस रविवार दिनांक 7 जून 2026 को प्रसारित होने वाले कार्यक्रम का विषय है थायराइड की समस्या और इसकी चिकित्सा। इस विषय पर जानकारी देने के लिए हमारी डॉक्टर होंगी डॉक्टर ऋचा त्रिपाठी। कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी गुरुवार 4 जून 2026 को प्रातः 10 बजे से 11 बजे के बीच। तो हमें फोन करना न भूलें। हमारा फोन नंबर है 222-1052। बनारस का STD कोड है 0542। तो सुनते रहिए आरोग्यम आकाशवाणी वाराणसी के साथ।
2: और अब आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से सुनिए कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत।
4: श्रोताओं, कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम लेकर एक बार फिर हाजिर हूँ मैं आपकी रेडियो दोस्त पूजा। तो चलिए करते हैं कार्यक्रम की शुरुआत इस गीत के साथ।

दिल की तो बस यही तमन्ना होती है कि बस कोई आए और आकर हमारे नजदीक बैठे और प्यार के दो शब्द कहे, शब्दों से ज्यादा महसूस हो किसी के साथ होने का एहसास। कोई रिश्ता भले ही ना तय हो, लेकिन उस रिश्ते की खुशबू जरूर हम तक पहुंचनी चाहिए।

लेकिन एक ऐसे साथ की हमें हमेशा जरूरत होती है। इंतजार हमेशा रहता है किसी का जो आकर प्यार के दो मीठे बोल बोल सके। इंतजार रहता है किसी का जिसके होने से ही जमाने की खुशियां मिल जाती हैं। लगता है बस वो ही हमारी जिंदगी है।

इंतजार में अक्सर लगता है कि दरवाजे पर बस वो ही खड़ा है, लेकिन जब हमारा प्यार हमसे बिछड़ जाए और किसी और का हो जाए तो वो दर्द सिर्फ वही समझ सकता है, सिर्फ वो ही महसूस कर सकता है जिसने दिल की पूरी गहराइयों से प्यार किया हो। उनके लिए तो अपने बिछड़े प्यार के आगे सब कुछ बेकार सा लगता है।

इतना दर्द लेकर जीने से बेहतर तो यही है कि जब प्यार की राहों पर आगे बढ़ चले हैं तो फिर उसका इजहार कर कम से कम उसको तो बता दें जिसके लिए दिल में मोहब्बत है। प्यार अगर दो जिस्मों को एक ना भी कर पाए तो कम से कम दिल तो एक हो जाए, अपने प्यार के दिल में कुछ जगह तो बना सकें। जिस्म एक ना सही, मन तो एक हो जाए।

तेरे प्यार के साज का असर हुआ है यूं कि, तेरे प्यार के साज का असर हुआ है यूं कि, अब आरजू है कि उसके साथ उम्र भर गाता चला जाऊं।

0: कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम में आज सिर्फ इतना ही। और भी बातें होंगी और भी गीतों के साथ, लेकिन तब तक के लिए अपनी रेडियो दोस्त पूजा को दीजिए अनुमति। नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत।
2: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

मीडियम वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्ज़। न्यूज़ ऑन AIR ऐप DTH DRM 1233 किलोहर्ट्ज़ और वेव्स OTT पर आकाशवाणी का ये वाराणसी केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में दिन के 3 बजे हैं। संपन्न होती है आज की ये सभा। हमारी दूसरी सभा आरंभ होगी शाम 5 बजे। तब तक के लिए अनुमति दीजिए।

0: What music?
1: Indeed it is. Dosto, aaj punya tithi hai Tribhuvan Das Krishi Bhai Patel ki. भारत में दुग्ध क्रांति, जिसे दरअसल श्वेत क्रांति या व्हाइट रेवोल्यूशन भी कहा जाता है, उसके जनक वर्गीज कुरियन साहब के साथ मिलकर जिस हस्ती ने देश में सहकारी दूध उद्योग के मॉडल की आधारशिला रखी थी, उनका ही नाम है त्रिभुवन दास कृषि भाई पटेल।

दोस्तों वर्गीज कुरियन और त्रिभुवनदास पटेल ने मिलकर दूध के पाउडर, कंडेंस्ड मिल्क और बच्चों के लिए मिल्क फूड का भारत में पहला संयंत्र स्थापित किया था। ये दुनिया में अनोखा अकेला प्लांट था।

मीडियम वेव 241.5 चार मीटर यानी 1242 किलो हर्ट्स, डीटीएच डीआरएम 1233 किलो हर्ट्स, ओटीटी प्लेटफॉर्म वेब्स और मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर यह आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में शाम के 5 बज रहे हैं। आरंभ होती है आज की सांध्यकालीन सभा।

सभा के आरंभ में प्रस्तुत है फिल्म संगीत। अनुराधा पौडवाल और कुमार सानू की युगल आवाजों में सुनिए आशिकी फिल्म का ये गीत।

श्रोताओं, कुछ तकनीकी कारणों की वजह से हम आपको आशिकी फिल्म का यह पूरा गीत नहीं सुना पाए, इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। आइए सुनते हैं अकेले हम अकेले तुम इस फिल्म का गीत। मिली जुली आवाजें ही एक बार फिर अलका याग्निक और कुमार जानू की।

अकेले हम अकेले तुम इस फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे अलका याग्निक और कुमार सानू की युगल आवाजों में। अब आइए सुने दिल है कि मानता नहीं इस फिल्म का गीत। मिली जुली आवाजें हैं अनुराधा पौडवाल और बाबला मेहता की।

0: रफ्तार की अंधी दौड़ में हम सुकून की तलाश भूल गए। जब से छोड़ी वो दो पहियों की सवारी, हम खुली हवा की सांस भूल गए। गमों के पैडल मारकर खुशियों का बैलेंस बनाना सीख लिया। जब से इस जिंदगी को मैंने साइकिल की तरह चलाना सीख लिया।
1: तो बस यूं ही पैंडल मारते मारते युववाड़ी के इस सुहाने सफर के साथ हम भी तो आ पहुंचे हैं आप दोस्तों तक। तो आज की इस शाम की सुरमई शुरुआत के साथ कीजिए न कबूल आपकी वही पुरानी अतरंगी दोस्त तैयबा मारूफ
0: और श्रीची को नमस्कार।

0: जन कल्याण जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
1: आकाशवाणी वाराणसी से प्रत्येक सोमवार से शुक्रवार तक दिन में 12 बजे सुनिए NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम।
2: सुनो ना।
3: हाँ?
2: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
3: तो रोका किसने है? हाँ?
2: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
3: मुझसे।
2: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
3: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
2: पर उससे मेरा क्या फायदा?
3: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ।
2: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
3: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो
4: 0542227658।
2: ओ
1: 0542227658।
2: लो अभी फोन लगाता हूँ।
1: 0542227658।
5: तैयबा, पता है आज मैंने क्या देखा? आज मैं जब यहाँ साइकिल से आ रही थी तो रास्ते में एक भाई साहब बुलेट पे जा रहे थे और समझ लो पूरा मोहल्ला आवाज से कांप रहा था। तभी बराबर से एक छोटा सा लड़का साइकिल पर जिगजैग कट मारता हुआ कान में ईयरफोन ठूस कर ऐसे निकला जैसे बुलेट नहीं वो धूम फिल्म का जॉन अब्राहम हो। उसे देखकर मुझे याद आया कि अरे भाई, ये असली स्वैग तो साइकिल में ही है।
6: बिल्कुल सही कह रही हो तुम शिची। और तुमने वो बचपन की कैंची वाली साइकिल चलाई है या? तुम्हें याद है जब हमारे पैर ना गद्दी तक पहुंचते भी नहीं थे तो हम फ्रेम के बीच में से अपने पैर फंसाकर टेढ़े होकर साइकिल चलाते थे और ऐसा लगता था जैसे हम साइकिल नहीं कोई स्पेसशिप उड़ा रहे हैं। और वो चेन उतरने का दुख कसम से ब्रेकअप से भी बड़ा दुख होता था, वो जब हाथ काले करके चेन चढ़ानी पड़ती थी। और शिची आज तो तुमने वही किया भी है तो तुमको बेहतर पता होगा।
5: बिल्कुल। तो दोस्तों, आज का दिन भी उसी दो पहियों की सवारी को याद करने का है जिसने हमें गिरकर संभलना सिखाया और ये बताया कि बस लाइफ में अगर बैलेंस चाहिए तो पैडल तो मारना ही पड़ेगा।
6: बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि दोस्तों आज हम साइकिल की इतनी बातें कर रहे हैं, आप भी जरा सोच रहे होंगे कि ये इतनी सारी बातें बस साइकिल जैसे विषय पर क्यों हो रही हैं। तो मेरे दोस्तों सुन लीजिए कि आज है विश्व साइकिल दिवस। समझ लीजिए साइकिल का भी दिवस मनाया जाता है और पूरे वैश्विक फलक पर, जिसे 3 जून 2018 को यूएन ने मान्यता दी थी। इसका उद्देश्य था कि लोगों को साइकिल के फायदे के प्रति जागरूक किया जाए। और अगर फायदे की बात हो रही है दोस्तों तो कुछ फायदे आप भी सुनते चलिए। जैसे साइकिल चलाने से क्या होता है, देखिए एक तो प्रदूषण कम होता है, पैसों की बचत होती है, चोट लगने का खतरा कम होता है, और अगर स्वास्थ्य की दृष्टि से देखा जाए तो मोटापा कम होता है, इम्यूनिटी मजबूत होती है, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, हार्ट अटैक का खतरा कम रहता है, एंजाइटी डिप्रेशन कम होता है और हैप्पी हार्मोन रिलीज होता है।
5: तैयबा, यानी साइकिल केवल एक वाहन नहीं बल्कि स्वस्थ जीवन और स्वच्छ पर्यावरण की निशानी है, क्यों सही कहा ना?
6: बिल्कुल। न पेट्रोल का खर्चा, न चलान का डर और न ही नो पार्किंग का झंझट, जहाँ जगह मिली बस वहीं स्टैंड पर खड़ी कर दी।
5: देखो ना

0: अबा, आजकल लोग जिम जाकर हजारों रुपए खर्च करते हैं, वो भी साइकिलिंग मशीन पर एक ही जगह खड़े खड़े पैदल मारते हैं।
1: और जो एक बड़ा वायरल तुमने मीम्स देखा होगा, जो बहुत ही ट्रेंड में हमेशा रहता है और बहुत ही हास्यास्पद बात लगती है कि लोग जिम जाते हैं कार से या फिर बाइक से जाते हैं और जाके वहां साइकिल चलाते हैं।
0: तो दोस्तों, इससे अच्छा है ना कि आप अपनी पुरानी साइकिल की धूल झाड़िए, सड़कों पर निकलिए और बनारस की सुबह की ठंडी ठंडी हवा में पैडल मारिए। फिटनेस की फिटनेस और यादों की नॉस्टैल्जिया, वो भी फ्री।
1: तो मेरे दोस्तों, आइए हम भी साइकिल को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं और स्वस्थ शरीर, स्वच्छ पर्यावरण और सुरक्षित भविष्य की दिशा में एक कदम बढ़ाएं। और श्री जी, इसी कदम से ना मुझे एक किस्सा याद आया जो मैं पिछले महीने नोटिस किया मैंने, कि एक दिन जब मैं सुबह घर से निकल रही थी तो मैंने रास्ते में एक छोटी सी बच्ची को देखा जो अपने हाथ में रंग बिरंगा स्कूल का बैग टांगे, बालों में बहुत अच्छी सी दो दो चोटियां बनाए छोटी छोटी, वो अपनी माँ की उंगली पकड़कर बड़े हौसले से स्कूल की तरफ बढ़ रही थी। हालांकि उसकी आंखों में जो चमक थी वो महज एक स्कूल जाने की खुशी नहीं थी, वो चमक थी अपने सपनों को सच करने की, वो चमक थी अपने पैरों पर खड़े होने की। और उसे देख कर ना मुझे वो नारा याद आ रहा था जो बड़ा ही चर्चित है।
0: कौन सा? वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। दोस्तों, सच बताऊं तो मुझे भी कभी कभी ऐसा लगता है कि आज के दौर में भी हमें ये नारा समाज में देना पड़ रहा है। ये अपने आप में सोचने वाली बात है। आज की बेटियां कहाँ कम है। कल्पना चावला से लेकर PV सिंधु तक हर जगह ही लड़कियां ही छा रही हैं।
1: तुम्हारी बात से मैं भी पूरी तरह सहमत हूँ श्री जी, क्योंकि शहरों में तो बदलाव दिख रहा है, लेकिन आज भी ना अगर हम थोड़ा सा अंदरूनी इलाकों या ग्रामीण अंचलों में जाएं ना, तो वहाँ की कहानी थोड़ा अलग है। आज भी कई जगहों पर बेटियों को पराया धन समझ कर ना उनकी पढ़ाई बीच में ही छुड़ा दी जाती है कि आगे जाकर तो इन्हें चूल्हा चौका ही संभालना है। और ना इसी सोच को हम सबको बदलना होगा साथियों, यही आज के समय की सबसे बड़ी ज़रूरत भी है और मांग भी।
0: क्योंकि ये भला कैसे हम सब भूल जाते हैं कि जब एक बेटा पढ़ता है तो सिर्फ एक इंसान आगे बढ़ता है, लेकिन जब एक बेटी पढ़ती है तो वो दो दो परिवारों को रोशन करती है और पूरी पीढ़ी को संवारती है।
1: बिल्कुल, और इसी दिशा में कदम बढ़ाते हुए हमारी भारत सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत 22 जनवरी 2015 में की थी, जिसका मुख्य उद्देश्य ही है कि कन्या भ्रूण हत्या को रोकना, बेटियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना और उन्हें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दिलाना।
0: हम बेटियों को पढ़ाने का मतलब सिर्फ ये नहीं कि उन्हें कोई डिग्री दिला दी जाए, इसका असली मतलब तो ये है कि उन्हें आत्मनिर्भर बनाया जाए, उन्हें अपने पैरों पर खड़ा करना ताकि वो अपने फैसले खुद ले सके और दुनिया की आंखों में आंखें डालकर जी सके।
1: बात तो सही है ना दोस्तों, अब अगर हम किसी चिड़िया को पिंजरे में रखकर उसकी उड़ान का अंदाजा थोड़ी लगा सकते हैं, उसे खुला आसमान तो देना ही पड़ेगा उसकी उड़ान देखने के लिए। तो मेरे दोस्तों, अपने घर की लाडो बिट्टी बहिनी इनके सपनों को ना कम मत आंकिए, उन्हें पंख दीजिए और उड़ने दीजिए।
0: क्योंकि बेटियां वो नींव होती हैं जिस पर पूरा समाज खड़ा होता है। अगर हम एक बेटे को पढ़ाते हैं तो शायद एक व्यक्ति शिक्षित होता है, लेकिन जब हम एक बेटी को पढ़ाते हैं तो हम आने वाले पूरी पीढ़ी को, पूरे परिवार को और पूरे समाज को शिक्षित करते हैं।
1: तो श्री जी, इसी बात पर क्यों ना अपने उन सहेलियों को एक गीत भी समर्पित करते चले।
0: अरे वाह तैयबा, ये तो बिल्कुल सोने पर सुहागा ही हो जाएगा।
1: तो चलो फिर हम भी साथ मिलकर
0: बिल्कुल
1: गुनगुनाते हैं।
0: बिल्कुल।

0: तो मेरे सनशाइन दोस्तों, ठहरिए जरा, उड़ान अभी भी बाकी है। जी हाँ मेरे दोस्तों, क्योंकि हर रोज की तरह हम आज भी लाए हैं आकाशवाणी के 90 वर्ष पर विशेष कार्यक्रम, जिसमें मार्गदर्शन सेगमेंट के अंतर्गत आप सुनेंगे हिंदी के प्रचार प्रसार में आकाशवाणी की भूमिका। डॉक्टर विवेक सिंह से शिवानी गुप्ता की ये बातचीत।
1: नमस्कार श्रोताओं, आप सभी का स्वागत है आज के युववाणी के खास अंक मार्गदर्शन में। दोस्तों, आपके साथ आज हूं मैं, आपकी युवा साथी शिवानी। दोस्तों, हम हमेशा मार्गदर्शन लेकर आते हैं और उसमें चुनते हैं कुछ खास विषय जिस पर चर्चाएं होती हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आकाशवाणी अपने गौरवशाली 90 वर्ष पूरा करने वाला है, तो आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने पर इसके सुहाने सफर को हम यादों के रूप में ताजा कर रहे हैं। आज के मार्गदर्शन में भी इस सफर को जारी रखते हुए हम जानेंगे कि हिंदी के प्रचार प्रसार में आकाशवाणी की क्या भूमिका रही है। और दोस्तों, इस विषय पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ आकाशवाणी के स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर विवेक सिंह। सबसे पहले तो

0: सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में और हमारे कार्यक्रम में। सर आप
1: धन्यवाद।
0: हैं बीएचयू के हिंदी विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर। तो सर हमारा आपसे सबसे पहला आज के इस चर्चा का विषय रहेगा कि आपने अपने आंखों से देखा है कि आकाशवाणी का दिनों दिन प्रसार होते हुए, तो सबसे पहला सवाल ये आपसे है कि आपके अनुसार पहले के समय से अब के समय में आकाशवाणी कितनी अलग है?
1: देखिए, मेरा अपना जो अनुभव रहा है वो ये है कि प्रतिभागिता का स्तर बढ़ा है। ये मामला बहुत हद तक एक पक्षीय था, यानी ब्रॉडकास्टिंग से जुड़े हुए लोग और आकाशवाणी एक संस्था के तौर पर एक अलग यूनिट थी और उसके श्रोताओं का एक बड़ा वर्ग था जो एक अलग। पर अब ज्यादा से ज्यादा लोग उन कार्यक्रमों में शरीक हो रहे हैं, कार्यक्रमों की बनावट भी कुछ इस तरह से बनाई जा रही है कि तुरंत कॉल अटेंड किए जा रहे हैं, लोगों की राय ली जा रही है, लोगों के जीवन से जुड़ी हुई जमीनी हकीकत उनको सबके सामने लाया जा रहा है। तो इस प्रतिभागिता के बढ़ते स्तर ने कहीं न कहीं लोगों का आकर्षण फिर से एक बार बहुत बढ़ा दिया है इसके प्रति। ये हम जानते हैं कि इस देश के लगभग 96% भूभाग और 99% जनसंख्या पर आकाशवाणी की पहुंच है
0: जी।
1: और ये कोई छोटी मोटी संख्या नहीं है। अगर सिर्फ हिंदी भाषियों की बात करें तो 74 करोड़ से ऊपर ये जनसंख्या है। इसका थोड़ा प्रतिशत भी किसी भी जन संप्रेषण के माध्यम को बहुत सफलता की ऊंचाइयों तक ले जा सकता है। तो अपने बचपन से अभी के आकाशवाणी में मैं एक सबसे बड़ा फर्क तो ये देख रहा हूं। दूसरा ये कि विविधताएं बहुत आई हैं, हर वर्ग के श्रोता के लिए, हर आयु के श्रोता के लिए, हर प्रांत और हर मैं कहूंगा सांस्कृतिक परिवेश से आने वाले श्रोता के लिए आकाशवाणी बहुत ही शोध परक, बहुत ही सोच समझ के कार्यक्रमों का चुनाव कर रहा है और चीजों को देने की कोशिश कर रहा है। एक कार्यक्रम से बहुत बड़े मास्कों की जरूरतों को कैटर करने की जरूरत अब नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल ऑडियंस स्पेसिफिक कार्यक्रम आ रहे हैं और इससे उनकी उपयोगिता बढ़ी।
0: अगला सवाल अगर हम आपसे करें तो सबसे पहले तो हमने श्रोताओं से आकाशवाणी रेडियो के इतिहास पर प्रकाश डाल देना चाहिए कि कब शुरू हुआ, इसकी शुरुआत करने की मतलब इसकी जरूरत क्यों पड़ी और रेडियो प्रसारण से क्या क्रांति आई
1: थी? जी बिल्कुल, आप सही कह रही हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से ही इसकी आवश्यकता भारत में महसूस की जाने लगी थी
0: जी।
1: श्रेय तो जाहिर सी बात है उस औपनिवेशिक युग में अंग्रेजों को ही जाता है। 1936 में इसकी स्थापना हुई और 1956 में मूलतः पंडित नरेंद्र शर्मा के सुझाव पर और गुरुदेव रविन्द्रनाथ के सुझाव पर इसका नाम आकाशवाणी रख दिया गया। और ऐसी कुछ विरासत रही है हमारी कि हिंदी के श्रेष्ठतम साहित्यकार समर्पित रूप से आकाशवाणी से शुरू से ही जुड़े रहे हैं। हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए इसकी जो भूमिका रही है वो तो अन्यतम है ही। एक बात जो मैं विशेष रूप से यहां कहना चाहूंगा कि विभाजन और आजादी मिलने के समय का वो जो दौर है आपाधापी का, उस समय की आकाशवाणी की भूमिका हर बच्चे को बताई जानी चाहिए, क्योंकि जन संप्रेषण का कोई और माध्यम हिन्दुस्तान में तब उपलब्ध नहीं था।
0: जी बिल्कुल।
1: महीनों शरणार्थी अपने कैंपों में किसी पब्लिक एड्रेस सिस्टम से सटे हुए बैठे रहते थे ताकि उनके परिवार के किसी भूले बिछड़े की खबर उनको मिल सके और वो उनसे फिर से जुड़ सके। और इस दायित्व को आकाशवाणी ने बहुत निष्ठा से वर्षों निभाया। आप कह सकते हैं कि शहरों की डेमोग्राफी को प्रभावित किया आकाशवाणी ने, क्योंकि लोग उस प्रसारण एरिया से दूर नहीं जाना चाहते थे। ये एक ऐसा पक्ष है जिस पर कम बात होती है, लेकिन ये योगदान आकाशवाणी का कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। 1957 में विविध भारती की स्थापना होती है और उसके बाद विस्तृत रूप से कार्यक्रमों का तैयारी की जाती है विविध वर्गों को ध्यान में रखते हुए
0: जी, बिल्कुल।
1: और अचानक लोकप्रियता के सारे मापदंड ये पार करता है। एक मीडिया के शिक्षक के तौर पे मैं एक चीज जरूर महसूस करता हूं कि अगर भाषा संस्करण और शुद्धता और मानकीकरण की बात करें तो रेडियो की बराबरी कोई माध्यम नहीं कर सकता। इसलिए क्योंकि श्रव्य माध्यम होने के कारण हमारा सारा फोकस उस आवाज की ओर होता है और उच्चारण, उसका शुद्ध प्रयोग, व्याकरणिक शुद्धता ये अनजाने में ही हम सीखते हैं। कहीं ना कहीं दृश्य माध्यम में भी ये भटकाव रहता है, क्योंकि एक हमारे अटेंशन का बड़ा हिस्सा जो है वो पिक्चर्स ले जाती हैं, लेकिन रेडियो में हमारा पूरा ध्यान जो है वो भाषा के ऊपर रहता है। तो इस दृष्टिकोण से रेडियो ने कई दशकों से समाज की सेवा की है और शिक्षण के लिए शिक्षण कभी नहीं रहा। विभिन्न माध्यमों, विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से चूंकि उसकी वाहिका हिंदी रही है तो हिंदी, सही हिंदी लोगों तक पहुंचती रही।
0: बिल्कुल। और रेडियो की बात

0: हिंदी भाषा जितने लोगों तक ज्यादा पहुंचती है और लोगों को समझ आती है, तो रेडियो ने वो काम उन लोगों के लिए आसान किया जो हिंदी ज्यादा समझते हैं। तो जैसे हिंदी की बात हो रही है, वैसे तो सर कोई भी भाषा किसी से कमतर नहीं है, और आकाशवाणी वैसे भी 23 भाषाओं और 182 से अधिक बोलियों में प्रसारण करती है अलग अलग कार्यक्रम, लेकिन फिर भी हिंदी के प्रचार प्रसार में आकाशवाणी की क्या भूमिका रही है?
1: देखिए, मैं एक हिंदी तर प्रदेश में मेरा बचपन बीता है, बंगाल में, और उसके बाद भी अपने ग्रेजुएशन के दिनों और मास्टर्स के दिनों से आकाशवाणी कोलकाता के हिंदी कार्यक्रमों से मैं जुड़ा रहा हूं। और जो कार्यक्रमों की संख्या रही है, उनकी गुणवत्ता रही है, उसके आधार पर मैं कह सकता हूं कि आकाशवाणी का ये प्रयास पूरे भारत भर में रहा है। जाहिर सी बात है कि वहां बांग्ला कार्यक्रमों की संख्या ज्यादा है, उनकी रिकॉर्डिंग्स ज्यादा हो रही हैं, उनके प्रतिभागी भी ज्यादा हैं, लेकिन हिंदी कार्यक्रमों की भी संख्या कहीं से भी नकार देने लायक नहीं थी। और ये प्रयास आकाशवाणी का अपने हिंदी तर क्षेत्रों में भी रहा है। प्रादेशिक भाषाएं उतनी ही महत्वपूर्ण है मेरी नजर में, क्योंकि वो इस देश की सामाजिक संस्कृति को एक नया आयाम देती हैं। हमारे देश की बहुभाषीयता, हमारे देश की बहुसंस्कृति, हमारे देश की बहुधर्मिता, ये भारत को एक अलग ही रूप देती है। लेकिन इन सबको जोड़े रखने के लिए
0: जी
1: कहीं ना कहीं केंद्रीय भूमिका में, अपनी भौगोलिक दृष्टि से कह लीजिए, उसके बोलने वालों के स्थापन के हिसाब से कह लीजिए, हिंदी की एक अलग ही महती भूमिका है। मेरे एक गुरुदेव हमेशा एक बात कहा करते थे कि स्वाधीनता संग्राम का पूरा जो आंदोलन है, उसको अपने कंधों पर हिंदी ने वहन किया। और हिंदी तर नेताओं ने, गांधी हो, गोखले हो, तिलक हो, नेताजी हो, ये सब, इन किसी की भाषा मातृभाषा हिंदी नहीं थी, लेकिन इन सब ने कहा कि इस स्वतंत्रता संग्राम को अगर किसी भाषा के कंधे पर चढ़ के लड़ा जा सकता है, अंग्रेजी के खिलाफ, उपनिवेशवाद के खिलाफ, तो वो हिंदी हो सकती है, अपनी क्षेत्रीय केंद्रीय स्थिति के कारण।
0: जी
1: ये लगभग वैसी ही स्थिति है, वो एक रूपक करते थे हमेशा कि राक्षसों से लड़ने के लिए जब दुर्गा की कल्पना की गई, तो हर देवी देवता ने अपना श्रेष्ठ हथियार
0: उन्हें दिया।
1: उन्हें दिया। तो सिर्फ प्रादेशिक भाषाओं का ही सवाल नहीं है, हिंदी खुद दर्जन भर बोलियों से मिलकर बनी है, आज की आपकी खड़ी बोली हिंदी। और हिंदी साहित्य इस बात का बहुत बड़ा प्रमाण है कि हिंदी की ज्यादातर बड़े साहित्यकारों ने मां से ज्यादा मौसी की सेवा की है। एक आध आपको नागार्जुन या केदारनाथ सिंह जैसे एक आध रचनाकार मिलेंगे जिन्होंने पलट कर अपनी मैथिली में या अपनी भोजपुरी में कोई कविता लिखी है, ज्यादातर ने अपना पूरा जीवन खपा दिया है खड़ी बोली हिंदी के लिए। उसमें मुक्तिबोध जैसे भी रचनाकार हैं जो कि मराठी मूल के थे। तो आप समझ सकते हैं कि हिंदी आज जिस स्थिति में है, अपनी ताकतवर स्थिति में, उसके पीछे कईयों का त्याग है, कईयों का समर्पण है, और हमारी प्रादेशिक भाषाओं और हमारी बोलियों का पूरा पूरा समर्थन है। इस परिवेश में हमें आगे के भविष्य के बारे में ऐसे ही सोचना चाहिए कि प्रादेशिक भाषाएं भी फलें फूलें, और उन सबको लेकर बड़ी बहन के तौर पर अपनी केंद्रीय स्थिति को मजबूत रखते हुए इस देश की संवैधानिक और बाकी गणतांत्रिक जरूरतों को एक राजभाषा के तौर पर हिंदी भलीभांति पूरा करें।
0: बिल्कुल।
1: और मुझे लगता है कि ये संदेश आकाशवाणी बहुत अच्छी तरह समझता है और वो इन्हीं आदर्शों को लेकर आगे चल रहा है।
0: बिल्कुल, जैसा आपने ये सारी बातें बताई, क्योंकि जब आकाशवाणी सर शुरू हुआ तो रेडियो के प्रसारण में पहले अंग्रेजी और हिंदुस्तानी भाषा, जिसमें हिंदी और उर्दू जो मिश्रित रहता था, पहले लोगों को हिंदी और उर्दू मिश्रित भाषाएं बोलते थे, तो रेडियो का भी प्रसारण उसी तरीके से हुआ कि हमारे श्रोता जो सुनते हैं उन्हें समझ आए, और रेडियो ने हर उस वर्ग को अपनी पहुंच बनाई और हर उस वर्ग के लिए जानकारी निकाली, और उनको जानकारी देनी भी चाहिए जो जैसे महिलाएं हो गई, ग्रामीण किसान हो गए, ग्रामीण बुजुर्ग हो गए, स्वास्थ्य से लेकर युवाओं से लेकर हर चीज आकाशवाणी ने हर एक विषय पर प्रकाश डाला, और हिंदी नहीं हर भाषाएं जिस भाषा में लोग समझ सके वहां तक गए। तो आकाशवाणी का खैर ये 90 वर्ष का जो सफर है काफी ही अच्छा रहा है, और आगे भी हम चाहेंगे कि ऐसा ही रहे। तो आगे बढ़ते हुए, आकाशवाणी का ये जो 90 वर्ष है अपनी सेवा तो दे ही रहा है, रेडियो ही नहीं अब तो डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी अपना विस्तार कर रही है, तो इसकी लोकप्रियता यूं ही बनी रहे और पुराने लोगों के साथ साथ नई युवा पीढ़ी भी इसके महत्व को समझे, इसके साथ जुड़े रहे, इस बारे में आप युवाओं

0: क्या मार्गदर्शित करना चाहेंगे?
1: देखिए, मामला मार्गदर्शन का है ही नहीं। आपको इतने अच्छे विकल्प रखने होंगे कि स्वाभाविक तौर पे वो युवा आपकी ओर खींचा चला आए। आज आप हर बात मार्केट स्ट्रेटेजी के तहत करते हैं। आपने पाठक को, श्रोता को उपभोक्ता बना दिया है, तो जब वो कंज्यूमर है और आप सर्विस प्रोवाइडर हैं, तो ये जिम्मेदारी आपकी बनती है कि आप उसकी हर जरूरत को समझें, उस पर विशेष तरीके से शोध करें, परीक्षण करें और फिर उसके अनुकूल चीजें उसके सामने पेश करें।
0: बिल्कुल।
1: आज एआई के जमाने में हम एक सेंटेंस कहते हैं कि प्राइवेसी इज अ मिथ। आप कुछ भी फेसबुक पर सर्च कर रहे हैं, अगले 2-3 दिनों तक उससे जुड़ी हुई चीजें का विज्ञापन आपके पास आता रहता है। तो जब इतनी सुविधाएं आपके पास मुहैया हैं, तो जाहिर सी बात है कि आज का युवा क्या चाहता है,
0: ये सोचने की,
1: ये समझ और ये जानकारी आपके पास पुख्ता रूप से मौजूद है। और बिल्कुल क्षेत्रीय स्तर पे, लोकल लेवल पे जाके, माइक्रो लेवल पे जाके आप ये शोध कर सकते हैं। तो वो कामकाजी युवा, वो सपने देखने वाला युवा, वो बेरोजगार युवा, वो अपने कैरियर के लिए दौड़ता हुआ युवा, वो हर बात पे असंतुष्ट हो जाने वाला और थोड़ी हड़बड़ाहट वाला युवा, जोश से भरा हुआ युवा, उसको क्या क्या परोसना है जो उसकी मानसिक शांति के लिए, उसकी समझ के लिए, उसकी जानकारी के लिए, उसकी खुशियों के लिए, और सबसे बड़ी बात है कि उसके एक नैतिक राष्ट्रीय बल के लिए उसकी एक समेकित कोशिश की जानी चाहिए। मुझे एक बात जो आपके माध्यम से विशेष तौर पे कहनी है कि अभी भी हम 140 करोड़ की आबादी हैं। एक स्वच्छ नागरिक समाज का गठन हिंदुस्तान में हो सका है। वी आर स्टिल नॉट द सिटीजन्स ऑफ इंडिया। 140 मिलियन सिटीजन्स नहीं है हम। 140 करोड़ आबादी है। और अब समय आ गया है आजादी के 75 सालों बाद कि हर जन संप्रेषण का माध्यम उन विषयों को साथ में रखे। तो और ये चीजें ऊपर से थोपे जाने की नहीं है, ये युवा के अंदर खुद पैदा होनी होंगी। तो इसका बीज वपन का काम जो है वो जनसंचार के जो माध्यम है, जिसमें कि रेडियो सबसे अहम है, क्योंकि आज वो ईयरपीस लगा के गाड़ी चलाता हुआ युवा, वो अपनी जिम में कुछ करता हुआ युवा, वो नौकरी करता हुआ युवा, वो चाहे वो कुछ भी कर रहा हो, उसकी व्यस्त जिंदगी में उसने कुछ भी चुन रखा है, रेडियो उसका हर वक्त का साथी है।
0: जी।
1: वैसे में मैं कहता हूं, जिसको कि आप दिन भर में बहुत धीरे धीरे 100 बार एक बात को कहेंगे तो कभी ना कभी तो वो उसके गले से उतरेगी। तो बहुत ही समझदारी के साथ और उसकी रुचि के अनुसार ये चीजें उसको परोसे जाने की जरूरत है। लोकप्रियता तो खैर बढ़ ही रही है
0: जी।
1: इसमें हड़बड़ाने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि आकाशवाणी का दूर दूर तक कोई कॉम्पिटिटर नहीं है बाजार में
0: जी।
1: तो ऐसा कोई व्यावसायिक रेस तो है नहीं। हमें खुद अपने लक्ष्य सामने तय करने होंगे और उसके साथ बढ़ना होगा। देश के सामग्रिक विकास के लिए वो एक बड़ी शर्त है
0: जी। इतनी जानकारी देने के लिए आप धन्यवाद कि आपने इतनी सारी जानकारियां दी हैं। और आकाशवाणी जो 9 दशकों से जनमानस के लिए अपनी सेवाएं दे रहा है, हर वर्ग के लिए, हर विषय पर और हर भाषा में, और भारत में ही नहीं, इसके अलावा बाहरी सेवा प्रभाग के द्वारा विदेशों में 11 भारतीय और 16 अन्य विदेशी भाषाओं में भी आकाशवाणी का प्रसारण किया जाता है और वहां भी आकाशवाणी अपनी सेवाएं दे रहा है और आगे भी जल्दी ही 100 वर्ष और इससे ज्यादा भी आकाशवाणी को इसके गौरवशाली जो वर्ष हैं वो पूरे होते रहे और अपनी सेवा देती रहे और जानकारी भी आकाशवाणी देती रहेगी सभी के लिए। ध्वनि के माध्यम से ये जो एक जन जागरूकता शुरू हुई थी वो आज अनवरत जारी है। तो अब हमारे स्टूडियो आए सर, आपने हमारे श्रोताओं के बीच अपनी बातें रखी, हमसे जानकारी साझा की, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद
2: धन्यवाद सर, इतने महत्वपूर्ण विषय पर इतनी बारीकी से अपने विचार रखने के लिए। दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे मार्गदर्शन, जिसका विषय था हिंदी के प्रचार प्रसार में आकाशवाणी की भूमिका। डॉक्टर विवेक सिंह से शिवानी गुप्ता की ये बातचीत। और दोस्तों, जहां भाषा की बात हो रही है तो शब्दों की बात भी अब कर ही ली जाए, क्योंकि वो कहते हैं ना कि शब्दों में वो ताकत होती है जो पूरी दुनिया को बदल सकती है, और वो भी बिना किसी हथियार के। तो आप भी अपनी दुनिया में मजबूत हो, इसके लिए हम भी हर दिन एक छोटा सा प्रयास करते हैं, आपको रूबरू कराते हैं अपने नए नए शब्दों के साथ। तो चलिए इसी सिलसिले को आज भी आगे बढ़ाते हुए आपको बताते हैं सबसे पहले हमारा हिंदी शब्द,
3: जो कि है दुष्चक्र, जिसका मतलब होता है बुरी परिस्थितियों का ऐसा जाल जो लगातार चलता रहे। दुष्चक्र के समानार्थक शब्द कुछ इस प्रकार हैं, कुचक्र, कुटिल जाल या बुरा चक्र। दोस्तों, आप इसका अगर वाक्य प्रयोग करना चाहते हैं तो कुछ इस प्रकार कर सकते हैं कि गरीबी का एक ऐसा दुष्चक्र है जिससे बाहर

0: करने के लिए शिक्षा और सही अवसरों की बहुत आवश्यकता होती है।
1: और इसी के साथ आज का हमारा अंग्रेजी शब्द है क्रिप्टिक, जिसका मतलब होता है रहस्यमय, गुप्त, पहेली, और इसके सिनोनिम्स होंगे मिस्टीरियस, एनिग्मैटिक, ऑब्स्क्यूरस, पजलिंग, कोडेड। और अगर इसका हम सेंटेंस फॉर्मेशन देखें तो कुछ इस तरह कह सकते हैं, शी लेफ्ट अ क्रिप्टिक नोट ऑन द टेबल एंड नो वन कुड अंडरस्टैंड वॉट इज मेंट।
0: तो साथियों, इसी के साथ हमने जान लिया आज के इन दो शब्दों को। अब बारी है अपने ज्ञान के पिटारे में और इजाफा किया जाए आज के दिन के इतिहास के साथ।
1: तो मेरे ज्ञानी विज्ञानी दोस्तों, अगर आप भविष्य को साफ देखना चाहते हैं तो आपको इतिहास को ध्यान से तो पढ़ना ही होगा, क्योंकि पीछे मुड़कर देखना ही आगे बढ़ने की सबसे सही नक्शा देता है। इसीलिए जरूरी है कि इतिहास से रूबरू होते रहें हम। तो चलिए सबसे पहले आपको ले चलते हैं साल 1867 में, जब आज ही के दिन भारत के प्रसिद्ध शिक्षाविद, राजनेता, समाज सुधारक, न्यायविद और लेखक हरविलास शारदा का जन्म हुआ था।
0: दोस्तों, साल 1901 में आज ही के दिन ज्ञानपीठ पुरस्कार के प्रथम विजेता महाकवि जी शंकर कुरूप का जन्म हुआ था। और आज ही के दिन 1915 में ब्रिटिश सरकार ने लाल नाथ टैगोर को नाइटहुड की डिग्री से नवाजा था।
1: 3 जून 1918 को गांधी जी की अध्यक्षता में हिंदी साहित्य सम्मेलन का 8वां अधिवेशन इंदौर में आयोजित किया गया था। दोस्तों, इसी ऐतिहासिक अधिवेशन में गांधी जी ने हिंदी को भारत की राष्ट्रभाषा बनाने का प्रस्ताव पारित किया था।
0: साथ ही 1924 में आज ही के दिन तमिलनाडु के 5 बार मुख्यमंत्री रहे एम करुणानिधि का जन्म हुआ था। 1930 में आज ही के दिन पूर्व रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस का जन्म हुआ था।
1: बात करते हैं वर्ष 1943 की, जहां आज ही के दिन संयुक्त राष्ट्र संघ ने राहत और मंदी प्रशासन की स्थापना की थी।
0: आज ही के दिन 1959 में सिंगापुर को स्वयंभू राज्य घोषित किया गया था।
1: और वर्ष 1965 में आज ही के दिन जेमिनी 4 मिशन के दौरान अंतरिक्ष यात्री एड वाइट अंतरिक्ष में जाने वाले पहले अमेरिकी बने थे।
0: 1972 में आज ही के दिन देश के पहले आधुनिक युद्धक पोत नीलगिरी को देश की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने जलावतरण किया था।
1: वर्ष 2005 में आज ही के दिन फ्रांस ने सुरक्षा परिषद में भारत का समर्थन किया था। तो इसी अच्छी अच्छी जानकारी के साथ दोस्तों, अब थोड़ा सा विश्राम नहीं, विराम लेते हैं और गुनगुनाते हैं इस गीत को।
2: ये वर्ल्ड है ना वर्ल्ड, इसमें दो तरह के लोग होते हैं। एक जो सारी जिंदगी एक ही काम करते रहते हैं और दूसरे जो एक ही जिंदगी में सारे काम कर देते हैं। ये मैं नहीं, ये वो दोनों कहते थे। और कहते क्या थे, करते थे, और ऐसा करते थे जैसा ना किसी ने किया और ना शायद कोई कर पाएगा।

0: तो दोस्तों अब बात करते हैं अपने परिश्रमी युवा साथियों के रोजगार की खबर की। तो 18 से 32 वर्ष की आयु के जो भी उम्मीदवार हैं उनके लिए एसएससी सीजीएल 2026 के लिए वैकेंसीज निकाली गई हैं।
1: आपको बता दें कि यह भर्ती 12,256 पदों के लिए आयोजित की जा रही है, जिसकी आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है और आप में से इच्छुक उम्मीदवार 22 जून 2026 तक आवेदन कर सकते हैं।
0: बाकी इससे जुड़ी जानकारियों के लिए आप एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट ssc.gov.in पर विजिट कर सकते हैं। बाकी हमने अपने क्वेश्चन ऑफ द डे के विनर्स को भी विजिट कर लिया है श्रीचि, तो क्यों ना पहले हम इनको अपना कल का सवाल दोहराते चलें।
1: बिल्कुल, एशियन अंडर 20 एथलीट्स चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं, जिसका सही जवाब है 19 पदक। और हमारे जिन साथियों ने सही जवाब दिया है उनके नाम हैं,
0: उनके नाम बहुत सारे हैं और हमारे पास चूंकि जो समय है उसकी तंगी है, इस कारण दोस्तों हम आपको ये सारे नाम अपने इंस्टाग्राम पेज पे अवेलेबल कराएंगे और हम आपको अपनी शुभकामना देते चल रहे हैं कि आप दोस्तों को हमारी बहुत सारी शुभकामनाएं कि आपने हमें सही सही आंसर दिया। इसी के साथ हमारा आज का प्रश्न भी सुनते चलिए।
1: तो दोस्तों हमारा आज का प्रश्न है, सीबीएसई के नए चेयरपर्सन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो भेजिए अपने उत्तर हमारे इंस्टाग्राम हैंडल यूथ AIR वाराणसी या मेल कीजिए youth@venus.gmail.com पे।
0: तो दोस्तों आपके लिए एक और सूचना, एक जानकारी छोटी सी देते चलिए कि अगर आप अपना खुद का कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं या कोई जुगाड़ लगा रहे हैं तो आपके लिए एक अच्छी बात ये है कि आप अब जुगाड़ नहीं लगाइए, कमाल करिए, क्योंकि
1: हमारी भारत सरकार दे रही है आपको प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। और इस ये स्कीम दोस्तों तीन कैटेगरी में है, शिशु लोन, किशोर लोन और तरुण लोन। तो दोस्तों चाहे आपको शॉप खोलनी हो, बुटीक शुरू करना हो या ऑटो रिक्शा लेना हो, कोई छोटा सा मैन्युफैक्चरिंग ही क्यों ना डालना हो, ये योजना आपके सपनों को पंख देती है। अब नौकरी मांगने वाला बनने के बजाय खुद नौकरी देने वाला बनने का जमाना आ गया है।
0: यानी दोस्तों जब सरकार आपके हुनर पर भरोसा कर रही है तो आप भी खुद पर भरोसा कीजिए। और इसी संदेश के साथ अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। जाते जाते बस यही कहूंगी, ख्याल रखिएगा मेरे दोस्तों अपना, अपनों का और अपने आसपास के लोगों का भी।

अभी युवा साथी सुन रहे थे अपना मनपसंद कार्यक्रम युवाणी। ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में शाम के 6 बजने को है। थोड़ी ही देर में आप हमारे गोरखपुर केंद्र से भोजपुरी में समाचार सुनेंगे। कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार।

0: आकाशवाणी गोरखपुर से भोजपुरी समाचार। नमस्कार, समाचारन के साथ हम वेद प्रकाश पाठक। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण गीडा क्षेत्र में फ्लैटेड फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स के सतहें 208 करोड़ रुपया के लागत वाली कई गो विकास परियोजनन का लोकार्पण आ शिलान्यास कैल। ए मौका पर वहां के देश आ प्रदेश में हो रहा बदलाव के बारे में जिक्र कैली।
1: प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश के अंदर सरकार 14 में बनी तो आज भारत बदल गया। भारत के प्रति लोगों का दृष्टिकोण बदला है, नए भारत का हम दर्शन कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर 2017 में यूपी में सरकार बनी, जनता की जो भी आकांक्षा थी उस आकांक्षा से दो कदम आगे जाकर के इस डबल इंजन की सरकार ने कार्य किया होगा, दो कदम पीछे नहीं।
0: ऐसे पहले मुख्यमंत्री गोरखपुर में अजुए गोरखपुर बस्ती और आजमगढ़ मंडल के संयुक्त मंडली खरीफ उत्पादकता गोष्ठी 2026 के शुभारंभ कार्यक्रम में शामिल भेल। ए मौका पर श्री योगी कहलन कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में पछिला 12 साल में कृषि क्षेत्र में अभूतपूर्व सकारात्मक बदलाव भेल हो। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के मालवीय नगर के एगो होटल में आग लगने के घटना में आज 21 लोगों का मौत हो गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आ प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सतही देश का कई गो प्रमुख नेता दिल्ली में भीषण आग दुर्घटना में भेल जनहानि पर शोक जतौले हमें। प्रधानमंत्री श्री मोदी हादसा के शिकार हर मृतक के परिजन के प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपया आ घाही लोगिन के 50-50 हजार रुपया का अनुग्रह राशि दिहल गैले का घोषणा कैले। वाराणसी में बिहने आ 5 जून के ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह का खास बैठक हुई। एह अंतर्राष्ट्रीय आयोजन में ब्राजील, चीन, मिस्र, इथियोपिया, भारत, इंडोनेशिया, ईरान, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका आ संयुक्त अरब अमीरात के सतही 11 देशन का प्रतिनिधि हिस्सा ली हैं। एगो रिपोर्ट।
2: बैठक के दौरान संस्कृति, विरासत संरक्षण और आपसी सांस्कृतिक सहयोग से जुड़े विभिन्न विषयों पर चर्चा की जाएगी। इस दौरान काशी के विश्व प्रसिद्ध जीआई टैग एवं ओडीओपी उत्पादों की विशेष प्रदर्शनी भी आयोजित की जाएगी। इस प्रदर्शनी में वाराणसी की समृद्ध शिल्प परंपरा के 6 शिल्पियों के 6 विशिष्ट उत्पाद प्रदर्शित करेंगे। प्रदर्शनी के माध्यम से विदेशी प्रतिनिधियों को न केवल इन उत्पादों की विशिष्टता से परिचित कराया जाएगा बल्कि स्थानीय कलाकारों और कारीगरों को अपने उत्पादों को वैश्विक बाजार तक पहुँचाने का अवसर भी मिलेगा। ब्रिक्स देशों के प्रतिनिधियों की काशी यात्रा को यादगार बनाने के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जाएगा। प्रतिनिधियों के आगमन पर एयरपोर्ट से लेकर शहर के विभिन्न स्थलों तक लोक नृत्यों की प्रस्तुति होगी। मनीष सिंह, आकाशवाणी समाचार, वाराणसी।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के अंतर्गत देश में पछिला 12 बरिस में उल्लेखनीय बदलाव आयल हो। आकाशवाणी समाचार पछिला 12 बरिस में प्रमुख क्षेत्र में सरकार के कोशिशन पर विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा हो। यही कड़ी में प्रस्तुत बा मध्यम वर्ग के कल्याण बदे सरकार के ओर से उठावल गए कदमन के लेके

0: एगो खास रिपोर्ट।
1: सरल कर व्यवस्था, बेहतर बैंकिंग, बीमा और पेंशन जैसी सुविधाओं ने मध्यम वर्ग की आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित की है। नई कर व्यवस्था के तहत सालाना 12 लाख रुपए तक कमाने वाले लोगों को कोई आयकर नहीं देना पड़ता। वहीं जीएसटी ने भी कर व्यवस्था को सरल बनाकर और रोजमर्रा की चीजों की लागत कम करके मध्यम वर्ग को राहत पहुँचाया है। 2015 में शुरू की गई प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन ने लाखों लोगों को पक्का घर उपलब्ध कराया है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 43 करोड़ 52 लाख स्वास्थ्य कार्ड जारी किए जा चुके हैं, जिससे लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुरक्षा मिली है। इसके अलावा प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के अंतर्गत जन औषधि केंद्रों के माध्यम से लोगों को सस्ती और गुणवत्तापूर्ण दवाइयां मिल रही है, जो बाजार से 50 से 80% सस्ती दरों पर उपलब्ध है। वहीं 2015 में शुरू की गई प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के कारण लोग अपना व्यवसाय शुरू कर रहे हैं और दूसरों को भी रोजगार दे रहे हैं। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: गोरखपुर के साथ ही प्रदेश के कई गो और जिलन में आज दोपहरिया बादे कहीं कहीं बरखा भइले से लोगिन के भीषण गर्मी या उमस से फिलहाल राहत मिलल हो। मौसम विभाग पूर्वी जिलन में 7 जून ले कहीं कहीं बरखा आ गरज चमक के साथे बौछार पड़े का संभावना जतौले हो। समाचार पूरा भइल, नमस्कार।
2: निजी वेब 241.54 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्ज़, डीटीएच डीआरएम 1233 किलोहर्ट्ज़, मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन एआईआर और ओटीटी प्लेटफॉर्म वेब्स पर यह आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। इस स्टूडियो की घड़ी में शाम के 6:05 हो रहे हैं। कार्यक्रम विवरण के तहत सुनिए आज के शीर्ष और कल प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों के बारे में। पहले सुनिए आज प्रसारित होने वाले शीर्ष कार्यक्रम। गैर फिल्मी गीत और गजलों पर आधारित कार्यक्रम अंजुमन का प्रसारण समय होगा रात्रि 9:30 पर। सुगम संगीत के कार्यक्रम में रात्रि 8:15 पर सुनेगा पलाश चंद विश्वास के गाए गजल, और कृषि जगत में शाम 6:30 पर सुनेगा बेल वाली सब्जियां। इस विषय पर डॉक्टर राकेश कुमार दुबे से सुधीर कुमार की बातचीत, साथ ही साथ सुनेगा तेज बहादुर सिंह यादव का गाया लोकगीत भी। तो श्रोताओं, ये थी जानकारी आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की। अब सुनिए कल यानी 4 जून 2026 दिन गुरुवार को प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों के बारे में। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रमों में आप सुन सकेंगे प्रतिचि सहस्त्र बुद्धि का गायन दिन में 12:45 पर, और सुबह 7:31 पर आनंद कुमार मिश्रा का सितार वादन आप सुनेंगे। क्षेत्रीय लोक और सुगम संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम आप सुनेंगे हमारे दिल्ली केंद्र से रात्रि 10:00। और संदेश टू सोल्जर्स, इस कार्यक्रम का प्रसारण समय होगा शाम 4:00। प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से किया जाएगा। गैर फिल्मी गीत और गजलों का कार्यक्रम अंजुमन लेकर हम हाजिर होंगे रात्रि 9:30 पर। सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर विशेष श्रृंखला की चौथी कड़ी आप सुनेंगे रात्रि 8:10 पर। सुगम संगीत के कार्यक्रम में रात्रि 8:00 कलाकार होंगे आबिदा परवीन, और दिन 12:30 पर आप सुनेंगे मनोहर सिंह के गाए भजन। संस्कृत कार्यक्रम आप सुनेंगे शाम 7:00। किसान भाई सुनेंगे अपना पसंदीदा कार्यक्रम कृषि जगत शाम 6:30 पर। अन्य बातों के अलावा सुनेगा मुर्गियों में कृत्रिम उष्मायन और चूजों की हैचिंग, इस विषय पर डॉक्टर अनुराधा कुमारी से सतीश कुमार की बातचीत, और साथ ही साथ सुनेगा श्याम सुंदर पाल का गाया लोकगीत। श्रोताओं, इन्हीं के गाए लोकगीत आप सुन सकते हैं सुबह 9:50 पर और दिन 1:45 पर भी। युवा साथी सुनेंगे अपना कार्यक्रम युववाणी शाम 5:15 पर। आज की बात, यूथ डायरी, मेरी पसंद, इतिहास में आज का दिन और रोजगार सूचना के अलावा आनंद लीजिएगा गीत संगीत का भी। धरती के गीत इस कार्यक्रम में आप

0: সিনিংয়ে সঞ্জীব মণ্ডলকে গায়ে বাংলা গীত শাম 5 বজে গ্রামীণ বহনো কা কার্যক্রম অঙ্গনৈয়া দিন মে 1:15 পর আর ফরমাইশ গীত এক্সপ্রেস ইয়ে কার্যক্রম আপ সুনেগে দিন মে 11 বজে সে শ্রী রামচরিত মানস সঙ্গীত মে পাঠ সুনিয়েগা সুবহ 6:40 পর আর স্বাস্থ্য চর্চা কার্যক্রম মে হার্নিয়া কারণ লক্ষণ আর বচাও এস বিষয় পর জানকারী দেঙ্গে ডক্টর প্রেম প্রকাশ ভক্তি সঙ্গীত কাজ দৈনিক কার্যক্রম আরাধনা কাজ প্রসারণ সময় হোক সুবহ 6:10 পর আর খেতী কী বাতে কার্যক্রম মে সুবহ 6:05 পর বৃক্ষারোপণ হেতু তৈয়ারি এস বিষয় পর জানকারী দেঙ্গে দীনেশ কুমার সিং तो श्रोताओं ये थी जानकारी आज के शेष और कल प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों के बारे में। यह आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। इस स्टूडियो की घड़ी में शाम के 6:10 हो रहे हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत, लेकिन इससे पहले सुनिए ये संदेश।
1: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
2: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
3: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
4: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
3: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
4: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
3: डायल कीजिए
5: 0542227658।
4: नंबर एक बार फिर नोट करें
6: 0542227658।
0: स्वागत है आप सभी का फिल्म संगीत के कार्यक्रम में। सुनिए एयरलिफ्ट फिल्म का गीत अरिजीत सिंह की आवाज में।

वजीर फिल्म के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। यह आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में शाम के 6:20 होने को हैं। थोड़ी ही देर में आप हमारे दिल्ली केंद्र से समाचार सुनेंगे। कीजिए बस थोड़ा सा इंतज़ार।

0: प्रत्येकं जनजातीय बालकाय विद्यालय शिक्षायाः सुनिश्चितीकरणं क्रियताम्।
1: ये दूरदराज के लोग जो जंगलों में रहते हैं उन तो एक रोडमैप बनाना चाहिए। आप कौन सी गांव को कवर किया, कौन सी पॉपुलेशन के थे, ट्राइबल के कितने लोग हैं, कहां तक हम पहुंच पाए, कहां तक नहीं पाए। पढ़ा लिखा होते हुए भी बहुत लोग बहुत चीजें जानते हैं लेकिन वो खुलते नहीं। लेकिन उनको खुलना पड़ेगा, शामिल होना पड़ेगा देश के विकास के लिए, समाज के विकास के लिए, आदिवासी लोगों को आगे लाने के लिए तो खुद को ही कुछ करना पड़ेगा।
0: कर्नाटक से नूतन मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार शपथ ग्रहण कृतवान। कर्नाटक राज्ये कांग्रेस विधानमंडलस्य दलस्य नेता डीके शिवकुमार अद्य बेंगलुरु नगरे राज्यस्य 25तमः मुख्यमंत्री रूपेण शपथग्रहणं कृतवान्। राज्यपाल थावरचंद गहलोत तस्मै पदस्य गोपनीयतायाश्च शपथं प्रदापितवान्। वरिष्ठ कांग्रेस नेता डॉक्टर जी परमेश्वर उपमुख्यमंत्री पदेन शपथं गृहीतवान्। अन्ये च द्वादश मंत्रिणः अपि मंत्रिपरिषदि सम्मिलिताः। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी मुख्यमंत्रिणे शुभकामनाः प्रदत्तवान्। संस्कृत वार्तायाः संस्करणम् इदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। समम् एव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज ऑन एआईआर चलदूरभाषीय तन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। पश्चिम बंगालस्य पूर्व सत्तारूढ़ दले तृणमूल कांग्रेस दले आंतरिक मतभेदाः प्रतीताः। दलात् निष्कासितः टीएमसी विधायकः ऋतव्रत बनर्जी इत्यनेन उक्तं यत् तस्य पक्षे प्रायः 60 विधायकाः सन्ति। अस्य कथनस्य कारणेन राज्य विधानसभायां सत्ता संतुलन परिवर्तनस्य संभावनां प्रति चर्चाः तीव्रः जाताः। तस्य समूहेन विधानसभायाः अध्यक्षाय रतेन्द्र बोस महोदयाय पत्रं प्रेषितं यत् स्वदलस्य वास्तविक तृणमूल कांग्रेस इति नाम्ना मान्यतां दातुम् आग्रहः कृतः। अस्मिन् अन्तरे पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कोलकाता नगरे आयोजितायां जनसभायां भारतीय जनता पार्टी इत्यस्य उपरि दलविभाजनस्य षड्यंत्र रचनायाः आरोपं कृतवती। एतेषां राजनैतिक घटनाक्रमाणां प्रति संपूर्ण राज्यस्य दृष्टिः केन्द्रीभूता वर्तते। दिल्ली नगरस्य मालवीय नगरे विश्रांति निलये भीषणाग्नि कण्डः 21 जनाः मृताः। राष्ट्रीय राजधान्यां दिल्ल्यां मालवीय नगर क्षेत्रस्य एकस्मिन् विश्रांति निलये भीषणाग्नि कांडे 21 जनाः मृत्युम् उपगताः, अनेके च आहताः अभवन्। दक्षिण दिल्ल्यारक्षी विभागस्य उपायुक्तः अनंत मित्तलः अवदत् यत् अग्निशमन विभागस्य 8 वाहनैः सह अग्निः नियन्त्रितः। आरक्षिणाम् अग्निशमनस्य तथा अन्येषाम् आपत्कालिक सेवानां संयुक्त प्रयत्नैः 40+ जनाः सुरक्षित रूपेण उद्धृताः, चिकित्सोपचारार्थं च चिकित्सालयेषु प्रेषिताः। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, गृहमंत्री अमित शाह तथा दिल्ली राज्यस्य मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता अस्मिन् दुखदे घटनाक्रमे शोकं प्रकटितवन्तः। वार्षिक सौर क्षमता वृद्धौ भारतम् अमेरिकाम् अतिक्रमितवत्। भारतं 25+ वर्षे विश्वस्य द्वितीयं बृहत्तमं सौर विकास विपणकम् अभवत्। भारते स्थापित सौर क्षमतायाः उल्लेखनीयं 55+ GW परिमितं अतिक्रमितम् अस्ति, येन देशस्य 50% जीवाश्महीन इंधन क्षमतायाः लक्ष्यं साधयितुं नियत समयात् पूर्वमेव तस्य राष्ट्रीय निर्धारितं योगदानं पूरयितुं च सहायं भवति। केन्द्रीय नवीन नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी वर्यः अद्य उक्तवान् यत् देशस्य सौर विकास गाथा वैश्विक मानदंडानि स्थापयति। अरावली पर्वत श्रेण्याः सीमांकन समीक्षार्था सर्वोच्च न्यायालयेन विशेषज्ञ समितिः निर्मिता। सर्वोच्च न्यायालयेन अरावली पर्वत श्रेण्याः परिभाषा सीमांकन संबद्ध विषयाणां स्वतंत्र समीक्षार्थं उच्चाधिकार युक्तायाः विशेषज्ञ समितेः गठनस्य निर्देशः प्रदत्तः। अस्याः समितेः अध्यक्षतां भारतीय वानिकी अनुसंधान शिक्षा परिषदः महानिदेशिका कंचन देवी वहिष्यति।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर प्रस्तुत है कार्यक्रम ग्राम संसार।

ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में शाम के 6:30 हो रहे हैं। किसान भाई सुने अपना मनपसंद कार्यक्रम कृषि जगत।

0: पंचो
1: राम राम
0: राम राम हो भैया, का हालचाल बा?
1: अरे मोहन भैया, कुल हालचाल ठीक है। ये बताओ कि बेहन ओहन डलला कि ना?
0: देखा धान का जोन बिया है ना, देखा ओकर खेत देखा अगरी बनाओ थी, आ जोताई खेत कर दले है, ओमे जितना घास पात है ना ओके कुल निकाल के एकदम बढ़िया खेत बनाओ थे कि ताकि बिया में डाली ना तब बढ़िया से जामे आ ओमे खर पतवार भी ना रहे।
1: यानी तू रोहिणी नक्षत्र में मन ना बनौले हुआ, अदरा में डाले के फेर में हुआ।
0: एकदम सही बुझला है, अदरा में डाला चाहे रोहिणी में डाला, आ देखा बिया अगर जब खेत में पड़े ले ना तो देखा वो जम्बे करी, बस खाली ओके तरीका से जो ना कि जमावो की जरूरत है।
1: हाँ भैया, अदरवा के बीवा में तनी झाँप फू भगवानों तनी लरक जाना हो ना, तो बीवा जल्दी तैयार होले। तो देखा भैया, किसान भैया लोग हमार जौन खेती बाड़ी करत बना, आ देखा वो तरह तरह के कुल योजना हमार राज्य सरकार भारत सरकार द्वारा मिलत है, आ ओकर लोग बड़ा बढ़िया से लाभ उठावत हो लोग
0: के मिलत है
1: किसान भैया लोग के।
0: अच्छा, तो तू किसान भैया लोग के कहत हुआ, हम तो ये कहते कि देखा किसान भैया लोग के संगे संगे जोन अपने समाज के जोन अल्पसंख्यक भैया लोग बहिन लोग हुआ ना, उन लोग के लिए भी देखा सरकार तरह तरह की योजना चलाओ थे ताकि उनका सामाजिक आर्थिक उत्थान हो सका।
1: हाँ भैया, शैक्षणिक विकास भी हो।
0: हाँ, चौमुखी विकास कह सकल है ना, उनका चौमुखी विकास हो गए और वो जो है कि समाज के मुख्य धारा में आकर के अपन विकास कर सकें।
1: तो देखा भैया, ये बात कैला है जब ना कल्याणकारी योजना के बारे में, तो जहाँ जैसे मान लीजिए 25% अल्पसंख्यक भैया लोग आबादी बा, वहाँ हमारा समझला कि राज्य सरकार भारत सरकार स्कूल कॉलेज अस्पताल कौशल केंद्र सामूहिक जौन घर जैसन बुनियादी ढांचा के निर्माण कराओ के पूरी जिम्मेदारी सरकार हमारे लेते लोग भैया लोग बदे।
0: एक संगे संगे देखा यो कहम ना भैया कि देखा बिरजू भैया, जितना भी अल्पसंख्यक समाज के लड़की लड़का हुआ जोन जो न कि पढ़ाई लिखाई में कमजोर बना है या धन के अभाव में ना पढ़ सकत रहना, अब उनके देखा सरकार जो है ना कि निःशुल्क व्यवस्था जो है ना कि प्राथमिक शिक्षा से लेकर के और उच्च शिक्षा तक
1: बिल्कुल एकदम भैया
0: व्यवस्था कर ले कि वो
1: हाँ।
0: पढ़ लिख के जो है ना कि अपन रोजगार पा सके। आइयो देखा यो कहम ना कि देखा उनके रोजगार का भी व्यवस्था है आप पढ़े लिखे के लिए ऋण का भी व्यवस्था है।
1: हाँ आ देखा भैया, जे जिसे मान ला कुछ लोग ना पढ़ लिख पौल तो उन हर लोगन बदे भी सरकार समझ ला कि जैसे अल्पसंख्यक कारीगर भैया बाण, शिल्पकार भैया जौन उद्यमी लोग बाण, उनके बदे

0: कौशल प्रशिक्षण ऋण भी मतलब हमार समला की सरकार देते आ उसे भैया लोग ऋण लेके आ अपन योजना का लाभ उठावत हूँ।
1: ओकरे संगे संगे देखा यो कहम ना बिरजू भैया कि मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण ऋण योजना जोन है, एमे देखा 5 लाख रुपया तक अल्पसंख्यक भाइयन के ऋण मिलत है ताकि वो अपन रोजगार कर सकें और पढ़ाई लिखाई कर सकें। और ओकरे संगे संगे देखा प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम भी चलत है, ओमे देखा जोन की अल्पसंख्यक एरिया बा क्षेत्र बाय जोन है वहाँ स्कूल अस्पताल और कौशल विकास का जोन है कि कुल व्यवस्था करके उनकर तरह तरह का जोन आवश्यकता हुआ ओकर पूर्ति करके समाज में उनके उचित स्थान दिलावा का प्रयास करत है
0: आ
1: सरकार।
0: देखा भैया 1 से 10 तक के जो लड़िका बाड़ा ना तेज तरह बड़ा उनके प्रोत्साहन के रूप में हमन के जो सरकार बा ना
1: हाँ हाँ
0: छात्रवृत्ति भी मुहैया करत है ताकि उनके प्रोत्साहन मिले और आगे बढ़ सकें।
1: हाँ हाँ और योजना के बात कहला तो देखा जो है कि उस्ताद योजना भी चलत है, उस्ताद योजना जो है कि जिनमें कि जो शिल्पकार भाई लोग हुआ दस्तकार भाई लोग हुआ अल्पसंख्यक वर्ग का उनके देखा ऋण का व्यवस्था करल जाता और उनके जो है कि जितना उनकर शिल्प का बाय ओकर कुल जितना व्यवस्था हुआ वो सरकार उठावत था।
0: आ देखा भैया अभी कला तो हमारे एक ठे याद आल जो प्रतियोगी परीक्षा बा
1: हाँ
0: यूपीएससी भैल एसएससी भैल एकरे बदे समय ला कि अल्पसंख्यक भैया लोग बदे हमन के सरकार एकदम फ्री कोचिंग मुहैया करावत है।
1: एकदम सही बात कला। आज देखा सरकार देखा हर कदम पे अल्पसंख्यक भाई लोग के साथ में खड़ा है हुआ आ एक संगे संगे देखा यो कहम ना कि सरकारे का देने की देखा राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास और वित्त निगम जोन बनावल गया ये अल्पसंख्यक भाइयन के लिए हुआ। इसमें देखा कृषि से रोजगार के लिए कम ब्याज पर उनके ऋण उपलब्ध होगी, अगर उनके पास पैसा रुपया ना बाय तो ये यहाँ से जा करके वित्त विकास निगम से ऋण लेकर के रोजगार कर सकें, खेती कर सकें, किसानी कर सकें, बढ़िया से अपने के स्थापित करें।
0: आ देखा ये मोहन भैया
1: हाँ
0: अभी
1: बिरजू भैया
0: अल्पसंख्यक भैया लोग के साथ साथ ना जो अल्पसंख्यक बहन लोग हैं
1: हाँ
0: उन्हों बदे सिलाई कढ़ाई बुनाई का भी हमार
1: हाँ
0: रोज जौन सरकार बा बहुत योजना चलावत बा वो लोग लाभ उठावत है।
1: मतलब तोहरे कहे का मतलब ये कि लड़कन से लेके लड़कीन से
0: हाँ
1: लेके
0: महिला
1: आ
0: सशक्तिकरण से
1: महिलान
0: लेके
1: से लेकर के आ बुजुर्ग से लेकर युवा से लेकर सब सब अल्पसंख्यक वर्ग जितना भी हुआ हर आयु वर्ग के सरकार देखा योजना चला कर कि उनकी सशक्त बनावत है।
0: ये मोहन भैया
1: हाँ बिरजू
0: देखा भैया
1: भैया
0: बात कही तो हमन को होबे करी हो
1: हाँ
0: आप तनि सनेस हो जाओ पंच लोग
1: सुनवा
0: सुन लें।
1: दा भैया
2: QR कोड स्कैन करो 5,000 का कैशबैक पाओ। वाह दिन बन गया।
3: यूपीआई पिन एंट्रिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है।
4: RBI कहता है
3: जानकार बनिए सतर्क रहिए।
5: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शोर में सोचो असली ओजी कौन है। बॉस रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 ईयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।
0: मोहन भैया देखा संदेश तो होगल।
1: हाँ संदेश तो सुन ले लीजा।
0: आज के बत कही में का पंच लोग के सुनवाओ था तनी भैया लोग के बतावा।
1: देखा किसान के देखा धन जो है ना उनकर खेती किसानी खेत बारी ही होला।
0: हाँ भैया एकदम
1: वो में
0: सही
1: देखा
0: कहा।
1: जो है कि अगर जो ना सब नगद फसल करत है तरह तरह का अब उनमें भी अगर सब्जी अगर अगर कोई बोले बा ना तो ओक तक तो और नगद बा कि रोज सवेरे जो है कि तोड़ला ले जाके मंडी में बेच देला 10 रुपया ले घरे आ गिला। तो देखा आज जो ना सुनवाओ थी बातचीत जो है ना कि बेल वाली सब्जियां डॉक्टर राकेश कुमार दुबे से अपने सुधीर कुमार श्रीवास्तव भैया बातचीत के लिए हुआ तो हूँ सुना किसान भाई लोग भी सुना।
0: एकदम भैया सही कला।
6: डॉक्टर राकेश कुमार दुबे आप प्रधान वैज्ञानिक हुए भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान शहनशाहपुर वाराणसी में आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत हो। आज हम आपसे चर्चा ही करना चाहते कि

0: जौन लता वाली सब्जी हैं, ये अपने खेती बाड़ी के बड़ी महत्वपूर्ण हिस्सा होनी और नगदी फसल हैं और हमहन के बहुत संभार देनी है। तो इस समय जौन हमारे खेत में साग सब्जी लगल हैं, उनके कैसे देख रेख करे के हो, जैसे कि उनसे उत्पादन बढ़िया हो, स्वस्थ हो, बताओ।
1: नमस्कार किसान भाइयों, बहुत ही सामयिक प्रश्न है। हमारी जो लतादार सब्जियां, जिनको हम कुकुरबिट्स के नाम से, जिनमें लौकी, कोहड़ा, करेला, नेनुआ, तोरई, खीरा, इस प्रकार से परवल, बहुत सारी 12-14 सब्जी, लतादार सब्जी फसलें हैं जिनको हम इस लतादार सब्जी वाले ग्रुप में शामिल करते हैं। तो देखें अगर, तो इस समय हमारे किसान भाइयों के खेत में ये फसलें चल रही हैं, जिन्होंने बुआई इसकी फरवरी मार्च के महीने में कर दिया है,
0: जी,
1: तो उन फसलों की लगभग फसल चल रही है, तुड़ाई चल रही है और उस तरीके से उनका उत्पादन हो रहा है। हाँ, लेकिन एक अभी इस समय जैसा कि आपने विषय उठाया कि क्या देख रेख विशेष रूप से करें, तो जैसा कि हम लोग आज अनुभव कर रहे हैं कि तापमान जो है वो काफी हद तक बढ़ गया है, लगभग 45 से 47 डिग्री सेल्सियस तापमान चल रहा है। तो ऐसे में क्या होता है कि चूंकि ये जो लता वाली फसलें होती हैं, ये इनके क्रॉस पॉलिनेटेड होते हैं, यानी इनका जो जो इसका पॉलन है, जो परागकण है, उसको इंसेक्ट, कीड़ा लेके जाता है। इसमें नर फूल अलग होते हैं, मादा फूल अलग होते हैं, तो उन्हीं मादा फूल से फल विकसित होता है, तो उनको पॉलिनेट करना पड़ता है, मतलब कि इंसेक्ट जो कीड़े तो ले जाते हैं, पॉलिनेट करते हैं मुख्यतः जो हमारी लतादार सब्जियां हैं। तो ऐसे में क्या कि जब अधिक तापमान हो जाता है, तो उसमें एक तो ये देखने को मिलता है कि वो इंसेक्ट जो कीड़े हैं, जो कीट लेके जाते हैं पॉलन को, परागकण को,
0: जी,
1: वो बिल्कुल निष्क्रिय हो जाते हैं, एक तरीके से उनकी एक्टिविटी ना के बराबर हो जाती है। तो ऐसी दशा में जो फीमेल, जो जिनको हम मादा पुष्प से जो फल बनना था, उसमें फल का विकास नहीं होता है। तो ऐसी दशा में एक तो ये देखना है कि हमें जो अभी तिल की फसलें चल रही हैं, तो अब उनको क्या करना है कि तापमान पर तो कोई कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, तो ऐसी दशा में हम कुछ प्रबंधन पर ध्यान दे सकते हैं, जैसे खेत में रेगुलर सिंचाई करते रहें, ताकि खेत में अगर नमी रहेगी तो, चूंकि ये फसलें अधिक तापमान और अधिक आर्द्रता, ह्यूमिडिटी जिसको हम बोलते हैं, को बहुत ही पसंद करती हैं, तो ऐसी दशा में खेत में जो आर्द्रता बनी रहनी चाहिए, ह्यूमिडिटी बनी रहेगी, तो कुछ हद तक इंसेक्ट का, जो कीट है उनका जो एक्टिविटी है, जो उनका विजिट है एक तरीके से एक फूल से दूसरे फूल पर, वो बना रहेगा। तो ऐसी दशा में कुछ फूल, जो फूल से फल आ जाएंगे, क्योंकि एक हर फसल की अपनी एक तापमान सहन करने की क्षमता होती है, जैसे खास करके जो 25 से 35 डिग्री सेल्सियस तापमान के बीच ये लता वाली फसलें तो अच्छा करती हैं जब, लेकिन अब आज की डेट में हम उसके ऊपर देखें तो काफी हद तक तापमान बढ़ गया है। तो ऐसी दशा में एक तो उनको जो कीट व्याधियों की एक्टिविटी बनी रहे, नमी बरकरार उसमें रखें खेत में, और साथ ही साथ हो सके तो अगर पहले से प्रबंध है या कुछ ऐसा कर सकते हैं कि खेत के चारों तरफ, मतलब एटलीस्ट जहां से, जिस दिशा से गर्म हवाएं आती हैं, उनकी तरफ एक, जैसे कहते हैं ना, मतलब स्ट्रक्चर या इस तरह से कुछ बनाएं एक तरीके से,
0: टकली वगैरह बना के
1: हाँ कर सकते, ताकि
0: सीधी हवा न लगे,
1: सीधी हवा, गर्म हवा फसल को न लगे। इस तरह से हमारे किसान भाई, अच्छा थोड़ा ये भी ध्यान रखें कि जब हम सिंचाई करते हैं तो ऐसा न करें कि जब अधिक तापमान है या खड़ी दोपहरी में हम सिंचाई देने जा रहे हैं, क्योंकि उस थोड़ा थोड़ी छोटी छोटी चीजें हैं जिनका हमें प्रबंधन करना चाहिए। तो हो सके तो या तो अर्ली सुबह, जिसे कहते हैं ना कि सुबह में ही जब हम, मौसम ठंडा रहे उस समय सिंचाई कर दें, या शाम को करें, ताकि जो है फसल को भी नुकसान ना हो और साथ साथ जो है उनकी गतिविधियों में पॉलिनेशन हो सके, अच्छा खासा फ्रूट सेट हो सके और उन फलों में वृद्धि हो सके। इसके लिए विशेष ध्यान किसान भाई ने तो अच्छा रहेगा।
0: तो का एक पाली हाउस में भी कर सकन, या ग्रीन नेट वगैरह लगा करके भी तापमान के नियंत्रित कर जा सकन
1: हाँ,
0: है?
1: इस तरह से बहुत अच्छा आपका प्रश्न है। देखिए, इसकी खेती, जैसे लतादार सब्जियां की खेती, एक तो खुले मैदान जिसे हम ओपन फील्ड जिसे कहते हैं, किसान
0: जी
1: भाई जिसमें करते हैं, इसकी तुलना में अगर ये हम लोगों को ये जो शोध में पाया गया देखने में आता है कि अगर किसान, जैसे खीरा हो गया, करेला हो गया, टमाटर हो गया, इस तरह से जो असीमित वृद्धवारी वाली जो प्रजातियां होती हैं, उनकी जब खेती करते हैं, तो उसमें अधिक पैदावार, उसमें जिसे, इसमें एक्चुअली क्या होता है कि नर, जैसे मैंने पहले बताया कि नर पुष्प अलग, मादा पुष्प अलग होते हैं,
0: जी
1: इनका एक रेशियो होता है। जनरली ये देखा जाता है कि एक

0: नर फूल के औसतन जो 20 जो है क्या नाम नर और मादा का देखेंगे तो आप देखते हैं शुरू में बहुत सारे पुष्प आते हैं, तो 20 नर फूल आएगा तो तब जाके कहीं एक मादा फूल आता है। तो हम जब पाली हाउस में किसान भाई इसकी खेती करेंगे तो इसमें पुष्पन मादा पुष्पन की संख्या भी बढ़ जाती है, साथ साथ इनके जो ग्रोथ होती है बढ़ने की पूरी जो प्रवृत्ति होती है वो भी काफी बढ़ती है, तो इस तरीके से पाली हाउस में। हाँ, लेकिन ये है कि चूंकि गर्मी के दिनों में बाहर ही इतना अधिक तापमान हो जाता है तो पाली हाउस वगैरह स्ट्रक्चर में जो पॉलिथीन से कवर है तो वहां तो और तापमान 10-12 डिग्री सेल्सियस अधिक हो जाता है। तो ऐसी दशा में हमें जो हम जिसे कहते हैं कंट्रोल एटमोसफेयर, जिसमें एक तरीके से रेगुलेटेड तापमान जिसमें हम व्यवस्था आती है, एक लो कास्ट होता है मीडियम का, तो खास करके जैसे उसके ऊपर ग्रीन शेड का हो और साथ साथ उसमें फैन पैड सिस्टम जो कूलिंग की व्यवस्था हो जिसमें वो ठंडा बरकरार रख सके, तो ऐसे पाली हाउस इस तरह के अगर स्ट्रक्चर हैं तो उसमें निश्चित तौर पर खेती किसान भाई अगर करेंगे तो उनको अधिक उत्पादन भी मिलेगा और केवल उत्पादन ही नहीं बढ़ता बल्कि कीट व्याधियों का भी प्रकोप कम होता है,
1: जी
0: तो जो उनका जो फल लत आती है जो प्रोड्यूस होता है उसमें भी गुणवत्ता युक्त रहता है, उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी रहती है। लेकिन गर्मी के दिनों में फैन पैड उसको कूलिंग व्यवस्था की उतनी ही आवश्यकता है जितना कि हम अन्य रिसोर्स का प्रबंधन करते हैं।
1: माने पहली बात और सबसे जरूरी बात यह हो
0: जी
1: कि तापमान नियंत्रित रहे।
0: तापमान नियंत्रण का
1: जी
0: करना
1: जी
0: है।
1: ये समय में कुछ कीट व्याधि भी लगा नवमन की, जैसे कि जो अपन फल जैसे छेद हो जाला
0: जी जी
1: या
0: एक्चुअली
1: पत्ती छेद हो जाला।
0: हाँ, ये भी
1: जी
0: एक समस्या आती है। तो जैसे अगर हम व्याधियों की बात करें तो इसमें जो एक तरीके से पाउडरी मिल्डू जिसको चूड़ी लास्ता बीमारी कहते हैं उसका है, और साथ साथ में खास करके इंसेक्ट जिसका आपने फल छेदक की बात किया,
1: जी
0: तो देखेंगे शुरू में जो लतादार सब्जी वाली फसलें हैं शुरू के दिनों में जब ये लगभग 25 से 30 दिन की होती हैं तो एक रेड पंपकिन बिटिल छोटा सा लाल सा कीड़ा होता है वो आकर के अटैक करता है और पत्तियों को खा जाता है। इसके अलावा एक इसमें फ्रूट फ्लाई के रूप में जिसे मतलब उसके अंदर पूरा देखते हैं कीड़ा खा करके फिर छेद करके बाहर निकलता है।
1: जी
0: तो ऐसी दशा में कि हमें एक तो जैसे छोटे वाले कीड़े के लिए है, अब देखना यह है कि पहले तो किसान भाई अगर जैसे रासायनिक प्रबंधन है कि
1: जी
0: केमिकल की दवा डाल दें, दूसरा यह है कि जैविक नियंत्रण के द्वारा आजकल नीम ऑयल के बेस में बहुत सारे ट्राइकोडर्मा है, नीम ऑयल है, इसके अलावा और भी प्रोडक्ट है केमिकल का थोड़ा सा जब अगर बहुत ही मजबूरी बन जाती है तो
1: अच्छा
0: जैसे इंसेक्टिसाइड आते हैं उनको आप छिड़काव करके कीट व्याधियों को रोका जा सकता है। लेकिन एक जरूर ध्यान रखें कि किसान भाई जब भी कोई सी केमिकल किसी दवा को डालते हैं तो दवा डालने हर एक दवा की अपनी वेटिंग पीरियड जिसको हम कहते हैं एक अवधि होती है, उसका असर होता है। जैसे आपने आज दवा का छिड़काव किया तो उसका तुरंत अब ये आपको जानना जरूरी है कि इस दवा को जिसका हमने छिड़काव किया है इसका उस फल के ऊपर उस पौधे में असर कितना दिन रहेगा, यानी किसी का 1 हफ्ते होता है, किसी का 10 दिन है, किसी का 2 दिन है, किसी का 5 दिन। तो ऐसी दशा में किसान भाइयों को अवश्य जान लें कि कौन सी दवा डालने जा रहे हैं, तो पहले या तो फल को तोड़ लें
1: जी
0: फिर जब फूल है उस समय दवा को डाल दें, या दवा डाल दिए हैं अगर मान लीजिए छोटे फल हैं दवा का छिड़काव उन्होंने कर दिया है तो एक निश्चित कम से कम 8 से 10 दिन के बाद ही फलों की तुड़ाई करें, तब उसको अपने स्वयं के खाने के लिए या बाजार में बेचने के लिए प्रयोग करें। अन्यथा क्या होता है कि इन जो केमिकल है रसायन है इनका बुरा प्रभाव फलों में समाहित रहता है और जब उसको हम खाते हैं अपने प्रयोग में लाते हैं तो स्वास्थ्य के लिए हानिप्रद होता है। तो किसान भाई खास करके मैं तो ये सलाह दूंगा कि दरअसल एकीकृत प्रबंधन ज्यादा जरूरी है और इफेक्टिव होगा वनस्पति की एक केमिकल दवा डाल देने से। एकीकृत प्रबंधन में क्या है कि जैसे हम उनको बीज जब बुआई करने जाते हैं तो बीज का शोधन होता है वहां से करना शुरू कर दें, जब किसी में अगर नर्सरी ट्रांसप्लांट कर रहे हैं तो उसके जड़ों को ट्रीट कर लेना है, और एक सर्टेन इंटरवल पर। और होता क्या है कि शुरू में ही बहुत तगड़ी दवा को नहीं डाल देना होता है क्योंकि उसके प्रति फिर कीट व्याधियों में एक रेसिस्टेंस पावर डेवलप हो जाता है। तो ऐसी दशा में उनको जैसे नीम ऑयल बेस्ड प्रोडक्ट हैं, ट्राइकोडर्मा है और बहुत सारे मित्र कीट हैं जिनको खेत में पहचानना है, इन सबको छोटे छोटे जो कंपोनेंट है सबको समाहित करके फिर अगर कहीं लगता है कि नहीं अभी हमारे खेत में इस तरह से कीट व्याधियों का प्रकोप है तो निश्चित

0: तौर पर उनको दवाइयों का प्रयोग करना चाहिए। लेकिन मैं यहां पर यह भी बात अपनी रखूंगा कि किसान भाई डायरेक्ट अपने से या उस तरह से किसी के बताए हुए उसमें दवा का प्रयोग करने से बेहतर होगा कि वो वैज्ञानिकों से, वैज्ञानिक संस्थाओं से जरूर एक बार संपर्क करें।
1: जी
0: अगर उनके खेत में, फल में कुछ इस तरह का दिख रहा है सिम्टम, तो खास करके मैं तो अपने संस्थान की बात करूंगा कि वो भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान, अगर हमारे पूर्वांचल के किसान भाई हैं तो निश्चित आ सकते हैं। और उनको क्या है कि कम लागत वाले दवाओं का जो अधिक इफेक्टिव होंगी, जिससे इनका रोग किया जा सके, क्योंकि दवा का असर जानना बहुत जरूरी है,
1: जी
0: अन्यथा स्वास्थ्य के लिए, मानव स्वास्थ्य के लिए उतना अच्छा नहीं रहेगा। तो किसान भाई जरूर एक बार संस्थान में आए, वहां पर हमारे विशेषज्ञ हैं जो उन कीट को पहचान लेंगे। और हो सकता है कि बहुत महंगी दवा जो किसान बाजार से खरीद ला के डालना चाहता है या डालने को मजबूर है, उसकी जगह पर हो सकता है कोई सस्ती दवा
1: जी
0: कम
1: जी
0: मात्रा में उसके लिए उपयोगी हो जाए, तो
1: जो स्वास्थ्य
0: निवेदन
1: पर नुकसान भी ना हो।
0: नुकसान भी ना हो, तो इस तरह से पर्यावरण भी सुरक्षित रहे। क्या होता है जब हम कभी कभी दवा डालते हैं, हम टारगेट एक इंसेक्ट को, एक कीट को करते हैं, लेकिन उसका असर इतना होता है, हो सकता है कि जो हमारे मित्र कीट हैं उस फसल में,
1: जी
0: जो हमारी फसल को और फायदा कर रहे थे, उनकी भी मृत्यु हो जाती है।
1: बिल्कुल
0: तो ऐसी दशा में यही सुझाव होगा कि दवा डालने से पहले विशेषज्ञों से एक बार जरूर संपर्क करें, तो उससे उनको, किसान भाइयों की लागत भी कम हो जाएगी, साथ साथ अच्छा प्रोड्यूस भी आ जाएगा।
1: जी डॉक्टर साहब, एक बात और जानना चाहें कि कुछ किसान भैया लोग हमारे जैसे प्रकाश प्रपंच के माध्यम से भी कीट पतंगा के नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे ना, तो क्या इस समय में उससे कुछ फायदा हुई?
0: जी बिल्कुल, ये भी बहुत ही अच्छा आपका प्रश्न है, क्योंकि अभी जैसे जो फसल अभी खेत में चल रही है,
1: जी
0: और उसमें खास करके जैसे मैंने ये बताया कि ये जो फ्रूट फ्लाई है, जो फल मक्खी है, ये खेत में एक्चुअली होता क्या है कि ये शुरू से अटैक करती है जिस समय फूल बनना शुरू होता है, उसी फूल के अंदर बैठ जाती है,
1: जी
0: फूल से फिर फल का विकास होता है, और फल के अंदर ही रहती है, जब अंदर के पोर्शन को खा लेती है उसके बाद ये बाहर निकलती है। अब उसके बाद क्या होता है कि कभी कभी जैसे बारिश हो गई या कोई और कुछ होता है, अब वो जो छिद्र इन्होंने कर दिया उससे फिर बीमारियां फैलने लगती है।
1: बिल्कुल
0: तो निश्चित है कि जो फेरोमोन ट्रैप आपने अच्छा बताया कि इसको खेत में अगर हमारे किसान भाई लगा दें, तो देखते हैं कि वो स्टिकी पूरा रहता है, चिपकने वाला रहता है,
1: जी
0: और उसका कलर भी अलग अलग होते हैं, और उसमें जैसे ये देखेंगे कभी एक येलो कलर का है, कोई नीले कलर का भी होता है, तो उसमें जो एक तरीके से वो जब जाते हैं, केमिकल भी लगा होता है, तो वो चिपक जाते हैं, जो
1: जी
0: छूटते नहीं। तो एक तरीके से ये बहुत अच्छा प्रबंधन का है, साधन की बिना पूरे फसल में, पूरे पौधों पर,
1: जी जी
0: पूरे फल में दवा डालने से बेहतर है कि काफी हद तक जो है इसमें कीड़े चिपक जाते हैं और वो मर जाते हैं इस तरीके से।
1: जी
0: तो निश्चित, जिसे कहते हैं ना, मैंने जो पहले शुरू में कहा इंटीग्रेटेड, एकीकृत जो प्रबंधन करना
1: प्रबंधन,
0: है, तो
1: जी
0: उसमें
1: जी
0: ये भी एक अवयव है, कंपोनेंट है। तो किसान भाई इसको लगाएं, बहुत सस्ते रेट पे मिलता है, और बहुत सारी सरकारी स्कीमों में भी बहुत सारे संस्थान इसको देते हैं, तो ये पर्यावरण के एक तरीके से अनुकूल भी है, जहां पर हम दवाओं का प्रयोग कम कर पाएंगे तो उससे पर्यावरण भी सुरक्षित होगा और किसान भाई के खेत में कीट प्रबंधन भी हो जाएगा।
1: जी
0: तो फेरोमोन ट्रैप ट्रैप का प्रयोग करना, साथ साथ में जो बहुत सारे रेसिस्टेंट वैरायटी जिसमें सहिष्णुता है, प्रतिरोधक क्षमता है, वो भी प्रजातियां विकसित हैं। तो जैसे किसान भाई सबसे पहले कोई फसल लगाने जा रहे हैं, मान लीजिए पंपकिन, लौकी, इसकी कद्दू की खेती कर रहे हैं, लौकी की खेती करना चाह रहे हैं, तो एक बार जरूर विशेषज्ञों से संपर्क करें
1: जी जी
0: कि कौन सी प्रजातियां हैं जिनमें पैदावार अच्छी है, गुणवत्ता अच्छी है, साथ साथ ये जो जलवायु परिवर्तन जिसमें खास करके बढ़ता हुआ तापमान
1: जी जी
0: इसका प्रभाव कम पड़े,
1: जी
0: और साथ साथ में बरसात अधिक हो गई कभी अचानक से, तो क्या उसके प्रति कुछ सहनशीलता है, और मतलब इस तरह की जो चीजें आज हमारा किसान जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को सामने संघर्ष करता है, तो मुझे लगता है कि फसल लगा करके फिर प्रबंधन के लिए उतरने से तो बेहतर है अगर हम
1: पहले से
0: पहले से
1: प्रबंध
0: ही
1: कर लें।
0: जानकारी रख लें, तैयारी कर लें, प्रबंधन काफी हद तक हो जाएगा,
1: जी
0: इस
1: जी
0: तरीके से सफलतापूर्वक फसल उगा सकते हैं।
1: डॉक्टर राकेश कुमार दुबे, आप हमारे पंचायती में ही ना, और इतनी अच्छी जानकारी देना कि हाँ कैसे जन अपने फसल के बचा सकना कीट पतंगा से और उत्पादन अच्छा ले सकना, ये जानकारी दे बदे आपके बहुत बहुत धन्यवाद।
2: मोहन भैया।

0: हाँ बिरजू भैया,
1: देखा भैया बड़ा बढ़िया लतादार सब्जी के बारे में, जो बेल वाली सब्जी रहल है
0: हाँ
1: तो ओके लतादार भी सब्जी कहल जाला। तो बड़ा बढ़िया जानकारी दे हाँ डॉक्टर राकेश कुमार दुबे, और भैया बतेवल हाँ बहुत समाला तिखार तिखार के पूछल हाँ सुधीर भैया, आ सुधीर कुमार श्रीवास्तव भैया पूछल हाँ, आ पंच
0: हाँ
1: लोग के सुनले हुई ओके बड़ा बढ़िया से अमल करी हैं। तो ये भैया अपने पंचायती में यार

0: ये भी आपने पंचायती में यार मर मनसाय ना होला तबले जीव ना
1: वो
0: जुड़ात।
1: हम जानत रहिए कि यह बात तो कहे वाला हुआ। ये तुहरे मन में चलत भी है कि खाली बतीबे करिए, कुछ सुनइबे करिए।
0: वे देखा मेरे पंच भैया लोग एकदम जोहत हुई
1: हाँ
0: हैं
1: तो देखा पंच
0: पलक
1: भैया,
0: बिछाए के।
1: पंच भैया से ज्यादा तू जो हुआ तो देखा, ये सुना तो हूँ, पंच भैया लोग भी सुने। ये तेज बहादुर सिंह यादव और साथी लोगों का गीत हुआ तो सुना।
0: विकास गीत भैया,
1: हाँ
0: विकास गीत है, पंच लोग सुना है।

0: धारा में अब जुड़ गल है।
1: और देखा ही कहम ना कि बिरजू भैया की लगे हाथे जो ना कि काल जो ना अपने पंचायती में जो कार्यक्रम हुई ओकर भी जानकारी पंच लोग के दे देवल जाए। तो देखा काल सवेरे जो ना कि 6:05 पर अपने खेती की बातें कार्यक्रम में वृक्षारोपण हेतु तैयारी विषय पर जानकारी दी है अपने दिनेश कुमार सिंह भैया।
0: आ देखा भैया,
1: हाँ
0: आ सांझ के बेला में अपने ना छः
1: हाँ
0: बज के 30 मिनट पर कृषि जगत में
1: अच्छा
0: आ बतकही हुई मुर्गियों में कृत्रिम उष्मायन और चूजों की हैचिंग के बारे में डॉक्टर अनुराधा कुमारी और सतीश कुमार यादव को बतकही हुई आप पंचलों के सुनिए।
1: जरूर जरूर सुनिए
0: हाँ
1: एक जो ना देखा ये कहम ना
0: हाँ
1: कि
0: हाँ भैया
1: देखा गर्मी देखा पड़त है आ गर्मी के हिसाब से जो ना कि बढ़िया से जो ना कि शरीर के ढक के आ पानी ठंडा पी के घरे से बाहर पंच लोग निकलें आ खेती कियारी अगर जाए हो ना तो सवेरे संझा जाए दोपहरिया में
0: बिल्कुल
1: उतारे
0: सही
1: न्यारा।
0: कला ये भैया देखा है भमन के
1: हाँ
0: सुई भी बतावत है समय हो गल बेला हो गए चले का तो पंचो राम
1: राम
0: राम।
1: राम।

0: देखा गांव में विकास का किरणिया देखाइल, ये देखा तेज बहादुर सिंह यादव और साथी लोग का विकास गीत रल,
1: हाँ मोहन
0: आ
1: भैया।
0: देखा कितना बढ़िया कना कि अब वो देखा गांव जो है ना कि अब पहले वाला गांव ना रह गए ला कि लोग जो है कि डिबरी में या ललटेन में पड़त रहना, अब देखा गांव में हर सुविधा हो गई, विकास बहुत ज्यादा हो गए ला।
1: बहुत बहुत भैया हो गला, देखा है अब पाइपलाइन भी बीच के घरे घरे अब गैसो हो जाए गांव घर में
0: हाँ तो
1: भैया।
0: विकास देखा चहुओर हो गए ला, आ गांव अब जो है सरकार की योजना के मुख्य जो है कि उद्देश्य पर चलत बा कि उनके गांव का विकास करल जाए।
1: हाँ भैया, गांव शहर एकदम मुख्य।

0: अभी किसान भाई सुन रहे थे अपना मनपसंद कार्यक्रम कृषि जगत। ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है।
1: पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शोर में सोचो असली ओजी कौन है। बॉस रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 ईयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज़।

0: for the poems of Gitanjali, he himself composed music for these lyrics. The songs of Gitanjali have a deep connection with nature. These songs have been composed in context of monsoon, autumn or spring. To categorize Rabindranath in any specific genre is a bit difficult. Gitanjali is a representation of his innermost feelings. To categorize Rabindranath in any category or in any genre is a bit difficult. Gitanjali is a representation of his innermost feelings. Not only is this a classic which must be read by anyone who wants to experience the true essence of Tagore and the Bengali Renaissance, but is also a necessary reading for anyone interested in philosophy. In many of his poems, devotional mysticism have been described. Tagore followed the religion in which God was defined in humanity and came close to him so as to need his love and support. This God does not have any particular shape or figure. He resembles the God of the Upanishads, the concept of supernatural power. The first song, Amar Mata Nata Kare, is a request to God to bend the poet's mind before the Almighty. So we can sum up by saying that he was a great philosopher, he was a great nationalist, and he was a great poet of the time, and word is going to remember him forever and forever.
1: अंग्रेजी कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे रविंद्रनाथ टैगोर एंड हिज कॉन्ट्रीब्यूशन टू इंग्लिश लिटरेचर, इस विषय पर श्रेया कश्यप की वार्ता. इसी के साथ ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है. यह आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है. सुनिए खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में सूचनाएं. कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद मिर्जापुर से प्राप्त सूचना अनुसार साहनी देवी पत्नी राधेश्याम 26 फरवरी 2026 को अपने घर से लगभग 11 बजे दिन में बिना बताए निकली और वापस नहीं आई. परिवार ने आसपास के कई जगहों पर खोजबीन की पर कुछ भी पता नहीं चला. इनके बारे में जानकारी की बातें इस प्रकार हैं. इनका कद है 4 फीट 5 इंच, रंग गोरा और ये लाल रंग की साड़ी पहनी हुई हैं. इनकी उम्र है 32 वर्ष. इनका चेहरा गोल और आंखों का रंग काला है और बाल काले और लंबे हैं. इनके बारे में किसी भी प्रकार की जानकारी मिलने पर कृपया अपने निकटतम थाना या 8400971749 इस नंबर पर सूचित करें. सुनिए एक और सूचना. कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद मिर्जापुर से प्राप्त सूचना अनुसार आरुषि पटेल पुत्री मनोज कुमार सिंह 22 अक्टूबर 2025 को सुबह लगभग 10 बजे से कोलना अदलहाट से लापता हैं. इनके बारे में जानकारी की बातें इस प्रकार हैं. कद लगभग 5 फीट, उम्र 17 वर्ष और इनका रंग गेहुआ है. इनके बारे में किसी भी प्रकार की जानकारी मिलने पर कृपया अपने निकटतम थाना को सूचित करें. सूचना समाप्त हुई. यह आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है. स्टूडियो की घड़ी में 7:18 हो रहे हैं. थोड़ी ही देर में यानी ठीक 7:20 पर आप हमारे लखनऊ केंद्र से प्रादेशिक समाचार सुनेंगे. कृपया कुछ पल प्रतीक्षा करें.

0: बिजली योजना। जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
1: महात्मा गांधी ने कहा था, स्वयं के साक्षात्कार का अनुपम रास्ता है दूसरों की सेवा में स्वयं को होम कर देना।
2: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल ने आज 24 प्रस्तावों को किया पारित। नगरीय परिवहन सेवा को बेहतर बनाने के लिए 1725 नई इलेक्ट्रिक बसें चलाने को मिली मंजूरी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दिल्ली NCR में पुराने ट्रक और बसों को बदलने के लिए योजना को दी मंजूरी। उत्तर प्रदेश समेत अन्य राज्यों के सहयोग से लागू होगी पहल। मुख्यमंत्री ने गोरखपुर में 208 करोड़ रुपए की 71 विकास परियोजनाओं का किया शुभारंभ। कहा, सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति से प्रदेश में निवेश को मिली है गति। और वाराणसी में कल शुरू होगी ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की 2 दिवसीय बैठक। चीन, ब्राजील और मिस्र समेत 11 देशों के प्रतिनिधि होंगे शामिल। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं शैलेंद्र, और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आज हुई मंत्री परिषद की बैठक में 24 प्रस्ताव पारित किए गए हैं। नगर विकास मंत्री AK शर्मा ने बताया कि मंत्री परिषद ने नगरीय परिवहन सेवा को बेहतर बनाने के लिए 1725 नई इलेक्ट्रिक बसें चलाने को मंजूरी दी है।
3: नगरीय क्षेत्रों में जो हमारे 17 नगर निगम हैं और नोएडा, कुल 18 हमारे जो बड़े शहर हैं, उनमें ई बसें संचालित करने के लिए हम लोग प्रस्ताव लेकर के गए थे और उसमें 1725 नई बसें चलाने का हमारा प्रस्ताव था, जिसे माननीय मंत्री परिषद ने मंजूरी दिया है। और ये बसें 17 नगर निगम है और प्लस नोएडा, उसमें जेवर जो एयरपोर्ट है उसको भी हम लोग कवर करने वाले हैं।
2: कैबिनेट ने सरकारी वकीलों के भत्तों में बढ़ोतरी के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में दिल्ली NCR में पुराने ट्रक और बसों को बदलने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड को सहायता प्रदान करने वाली योजना को मंजूरी दे दी गई है। मीडिया को जानकारी देते हुए केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस परियोजना को उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान के भागीदार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सहयोग से लागू किया जाएगा।
4: कैबिनेट में अप्रूव हुआ रिप्लेसमेंट ऑफ ओल्ड ट्रक्स एंड बसेस रजिस्टर्ड इन दिल्ली NCR टू BS6 और EV और CNG व्हीकल्स। इस स्कीम के लिए 5041 करोड़ रुपीज का आउटले है। सपोर्ट लेंगे गवर्नमेंट्स ऑफ दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश एंड राजस्थान। इनकी मदद से करीब 2 लाख के आसपास ट्रक्स हैं जिनको रिप्लेस करने का प्रोग्राम बनाया जाएगा और करीब 16,000 बसेज हैं जिनको रिप्लेस करने का प्रोग्राम है। इससे हमारा मीडियम टर्म में और लॉन्ग टर्म में दिल्ली में पोल्यूशन सिग्निफिकेंटली कम होगा।
2: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गोरखपुर में गीडा के विभिन्न क्षेत्रों के लिए करीब 208 करोड़ रुपए के 71 विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने 42 करोड़ 50 लाख रुपए की लागत से बने फ्लैटेड फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स का लोकार्पण भी किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि विकास और उद्यम के लिए सुरक्षा सबसे जरूरी है। उन्होंने कहा कि साल 2017 के बाद से सरकार अपराध और अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ आगे बढ़ी है। इसी का परिणाम है सरकार को 50 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं।
5: सुरक्षा का मॉडल क्या होना चाहिए, अब यूपी में वह उपलब्ध है और सरकार की अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति इसी भाव के साथ आगे बढ़ रही और आज इसी का परिणाम है प्रदेश में 50 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव प्राप्त। 15 लाख करोड़ का हमने जमीनी धरातल पर उतारने का काम किया। 7.5 लाख करोड़ का हमारे पास तत्काल तैयार है, इसको कभी भी हम ग्राउंड ब्रेकिंग कर सकते हैं। लाखों नौजवानों को इसके माध्यम से कार्य मिला है।
2: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गोरखपुर में आजमगढ़, बस्ती और गोरखपुर की संयुक्त मंडलीय खरीफ उत्पादकता संगोष्ठी 2026 का भी शुभारंभ किया। कार्यक्रम

यार सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और साथ 7,000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। पीएम सूर्य घर मुफ्त।

0: को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीते 12 वर्षों में अन्नदाता किसानों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में किसानों को सशक्त बनाने के लिए कई प्रभावी कदम उठाए गए हैं। मुख्यमंत्री ने निर्यात के मानकों पर खरा उतरने पर जोर देते हुए प्राकृतिक खेती पर बल दिया।
1: जो औद्यानिक फसल हम पैदा करें, न्यूनतम केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड का उपयोग कर न्यूनतम उन मानकों पर खरा उतर सके जो निर्यात करने लायक भी हो, और इसके लिए प्राकृतिक खेती एक बेहतरीन ऑप्शन है भारतवासियों के सामने। गौ आधारित खेती है ये, गौ माता के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए गौ माता की रक्षा भी होगी, लेकिन केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड से आपकी खेती को बचाव करने के साथ साथ लागत को कम करने का भी एक माध्यम हो सकता है। हमें इसमें कार्य
0: ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। वाराणसी में कल और 5 जून को ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की महत्वपूर्ण बैठक होगी। इस अंतर्राष्ट्रीय आयोजन में ब्राजील, चीन, मिस्र, इथोपिया, इंडोनेशिया, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका सहित 11 देशों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। पेश है एक रिपोर्ट।
2: बैठक के दौरान संस्कृति, विरासत संरक्षण और आपसी सांस्कृतिक सहयोग से जुड़े विभिन्न विषयों पर चर्चा की जाएगी। इस दौरान काशी के विश्व प्रसिद्ध GI टैग एवं ODOP उत्पादों की विशेष प्रदर्शनी भी आयोजित की जाएगी। इस प्रदर्शनी में वाराणसी की समृद्ध शिल्प परंपरा के 6 शिल्पियों के 6 विशिष्ट उत्पाद प्रदर्शित करेंगे। प्रदर्शनी के माध्यम से विदेशी प्रतिनिधियों को न केवल इन उत्पादों की विशिष्टता से परिचित कराया जाएगा, बल्कि स्थानीय कलाकारों और कारीगरों को अपने उत्पादों को वैश्विक बाजार तक पहुँचाने का अवसर भी मिलेगा। ब्रिक्स देशों के प्रतिनिधियों की काशी यात्रा को यादगार बनाने के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जाएगा। प्रतिनिधियों के आगमन पर एयरपोर्ट से लेकर शहर के विभिन्न स्थलों तक लोक नृत्यों की प्रस्तुति होगी। मनीष सिंह, आकाशवाणी समाचार, वाराणसी।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में पिछले 12 वर्षों में उल्लेखनीय बदलाव आया है। आकाशवाणी समाचार पिछले 12 वर्ष में प्रमुख क्षेत्र में सरकार के प्रयासों पर विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज चर्चा मध्यम वर्ग के कल्याण के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की।
3: केंद्र सरकार ने पिछले 12 वर्षों में विभिन्न योजनाओं और सुधारों के माध्यम से मध्यम वर्ग के लोगों को सशक्त बनाया है। सरल कर व्यवस्था, बेहतर बैंकिंग, बीमा और पेंशन जैसी सुविधाओं ने मध्यम वर्ग की आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित की है। नई कर व्यवस्था के तहत सालाना 12 लाख रुपए तक कमाने वाले लोगों को कोई आयकर नहीं देना पड़ता है। वहीं GST ने भी कर व्यवस्था को सरल बनाकर और रोजमर्रा की चीजों की लागत कम करके मध्यम वर्ग को राहत पहुंचाई है। 2015 में शुरू की गई प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन ने लाखों लोगों को पक्का घर उपलब्ध कराया है। इस योजना के तहत स्वीकृत 1,25,00,000 घरों में से 98,00,000 से अधिक घर बनकर लाभार्थियों को दिए जा चुके हैं। गाजियाबाद के अभिषेक कुमार ने बताया कि इस योजना के जरिए गरीबों को अपना घर मिल रहा है और किराए के मकान से मुक्ति मिली है।
4: मैंने प्रधानमंत्री आवास योजना में आवेदन किया था। आवेदन करने के बाद मेरे को लॉटरी ड्रॉ के माध्यम से मकान आवंटित हो गया। स्कीम बहुत ही बढ़िया है, जिससे गरीब लोगों को आवास मिल रहे हैं, सबको सहूलियत हो रही है।
3: वहीं आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 43,52,00,000 स्वास्थ्य कार्ड जारी किए जा चुके हैं, जिससे लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुरक्षा मिली है। वहीं 2015 में शुरू की गई प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के कारण लोग अपना व्यवसाय शुरू कर रहे हैं और दूसरों को भी रोजगार दे रहे हैं। समाचार कक्ष से तन्वीर फातिमा।
0: प्रदेश के 36 जिलों में आज और कल TGT भर्ती परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के तहत होने वाली ये परीक्षा आज पहले दिन सकुशल संपन्न हुई। 3,539 पदों के लिए होने वाली इस परीक्षा में 8,00,000 से अधिक अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। मौसम विभाग ने कल प्रदेश के पश्चिमी और पूर्वी हिस्सों में कहीं कहीं हल्की बारिश का अनुमान जताया है। वहीं पश्चिमी जनपदों में कुछ स्थानों पर तेज हवाएं चलने और गरज चमक का ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल ने आज 24 प्रस्तावों को किया पारित। नगरीय परिवहन सेवा को बेहतर बनाने के लिए 1725 नई इलेक्ट्रिक बसें चलाने को मिली मंजूरी। केंद्रीय मंत्रिमंडल

मंत्रिमंडल ने दिल्ली एनसीआर में पुराने ट्रक और बसों को बदलने के लिए योजना को दी मंजूरी। उत्तर प्रदेश समेत अन्य राज्यों के सहयोग से लागू होगी पहल। मुख्यमंत्री ने गोरखपुर में 208 करोड़ रुपए की 71 विकास परियोजनाओं का किया शुभारंभ। कहा सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति से प्रदेश में निवेश को मिली गति। और वाराणसी में कल शुरू होगी ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की 2 दिवसीय बैठक। चीन, ब्राजील और मिस्र समेत 11 देशों के प्रतिनिधि होंगे शामिल। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: जीवन कठिन प्रतीत हो सकता है, लेकिन आपके करने योग्य हमेशा कुछ न कुछ होता है जिसे करके आप सफल हो सकते हैं। ये विचार है स्टीफन हॉकिंग के।
1: मीडिया वेब के मीटर पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र को। इस स्टूडियो की घड़ी में शाम के 7:31 हो रहे हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम रसरंग।

0: अलका याग्निक और कुमार सानू की युगल आवाजों में अभी आप सुन रहे थे राजू बन गया जेंटलमैन, इस फिल्म का ये गीत।
1: पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शोर में सोचो असली ओजी कौन है। बॉस रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 ईयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।
0: आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम रसरंग, और अब आइए सुने कुमार सानू और अनुराधा पौडवाल की मिली जुली आवाजों में दाग द फायर फिल्म का ये गीत।

0: फोन इन कार्यक्रम आरोग्यम आप सुनते हैं प्रत्येक रविवार दिन में 11:30 बजे। इस रविवार दिनांक 7 जून 2026 को प्रसारित होने वाले कार्यक्रम का विषय है थायराइड की समस्या और इसकी चिकित्सा। इस विषय पर जानकारी देने के लिए हमारी डॉक्टर होंगी डॉक्टर ऋचा त्रिपाठी। कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी गुरुवार 4 जून 2026 को प्रातः 10 बजे से 11 बजे के बीच। तो हमें फोन करना न भूलें। हमारा फोन नंबर है 222-1052। बनारस का एसटीडी कोड है 0542। तो सुनते रहिए आरोग्यम आकाशवाणी वाराणसी के साथ।
1: आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम रस रंग। अलका याग्निक की आवाज में सुनिए जख्म फिल्म का ये गीत।

संघर्ष फिल्म के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम रसरंग अब यहीं संपन्न होता है। यह आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है।

आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

यह आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 8 बज रहे हैं। सुगम संगीत के कार्यक्रम में आइए सुने पलाश चंद विश्वास की गाई गजल।

0: रात्रि के 8:10 होने को हैं।
1: पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शोर में सोचो असली ओजी कौन है। बॉस रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉनस्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 ईयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।
0: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र। सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर विशेष श्रृंखला की चौथी कड़ी सुनिए।
2: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है विशेष श्रृंखला। इसके अंतर्गत आज सुनिए मोदी सरकार के 12 साल सुधार, सुशासन और जन कल्याण से सशक्त होता मध्यम वर्ग। इसमें भाग ले रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक अशोक टंडन और आर्थिक विश्लेषक शरद कोहली। कार्यक्रम का संचालन कर रही हैं अनुभा रोहतगी।
3: दिस इज आकाशवाणी। इन द स्पेशल सीरीज नाउ वी ब्रिंग यू अ डिस्कशन ऑन 12 इयर्स ऑफ द मोदी गवर्नमेंट ट्रांसफॉर्मिंग मिडिल क्लास लाइव्स थ्रू रिफॉर्म एंड वेलफेयर। पार्टिसिपेंट्स आर अशोक टंडन, पॉलिटिकल एनालिस्ट, एंड शरद कोहली, इकोनॉमिक एनालिस्ट। मॉडरेटर इज अनुभा रोहतगी।
4: India has undergone significant economic, technological and social transformation in the 12 years of the NDA government under the stewardship of Prime Minister Narendra Modi. For the country's middle class, the focus on infrastructure expansion, welfare initiatives, tax reforms, financial inclusion and digital governance has given wings to their hopes and aspirations on the one hand and made their lives easier, fairer and more dignified on the other. And that is the topic of our discussion today. To share their insights and views on this issue, I'm now joined by political analyst Ashok Tandon and economic analyst Sharad Kohli. Mr. Tandon, Mr. Kohli, welcome to the program.
5: Thank you very much.
6: Thank you.
4: I'll start with a question to both of you. What are the most crucial and significant initiatives that have made the most impact on the middle class in the last 12 years?
5: Well, Anubha, if you see down the line, you know, 12 years, it may sound like a very long period. But then if you work out from the government perspective, there's been so much which has been done in these 12 years. It's almost seems like 120 years from the kind of output that we've had. I think it is transformational for the people of the country, especially and the burgeoning middle class of the country. To my estimate, as an economic analyst, I would say the total size of middle class is probably 65 to 70 crores today. Mm-hmm. This includes those 25 crore people who move from poverty to the neo-middle class. So if we add them, so we've got, I mean, we're almost twice the population of United States of the size of the middle class in India itself. I think every aspect of their life has seen a transformation. As you said, roti kapra makan once, I remember. I think the way they eat, the way they live, the way they travel, their own lifestyles, just about everything has been impacted. And as we go forward, we would love to, you know, go in, deep dive into each of those aspects.
4: Absolutely. Mr. Tandon.
6: मोदी सरकार ने जो सुधार कार्यक्रम लिए पिछले 12 साल में
4: जी,
6: उसमें जो मध्यम वर्ग की आर्थिक उत्थान में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। टैक्स में छूट, जीएसटी का सरलीकरण, डिजिटल क्रांति, हाउसिंग सब्सिडी जैसे बड़े सुधारों से मध्यम वर्ग की बचत बढ़ी है, उनके पास जो डिस्पोजेबल इनकम बढ़ी है और उससे उनका जीवन स्तर भी ऊपर उठा है। अगर मैं कुछ चीजों की बात करूं, जैसे हमने बात की तो टैक्स में बड़ी राहत, मैं उसकी अभी डिटेल में नहीं जाना चाहूंगा। जीएसटी, रोजगार और स्टार्टअप को बढ़ावा दिया गया है और रेरा जैसे सुरक्षित घर का सपना लोगों का पूरा हुआ है पीएम आवास योजना के अंतर्गत। तो ऐसे कई कल्याणकारी योजनाएं हैं, जैसे आयुष्मान भारत की हम बात करें, प्रधानमंत्री आवास योजना की बात करें, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की बात करें, उज्ज्वला योजना की बात करें, जनधन योजना की बात करें, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की बात करें, सामाजिक सुरक्षा की बात करें, पीएम स्वनिधि योजनाओं की बात करें, तो ऐसी कई योजनाएं हैं जो केवल मध्यम वर्ग को तो सहायक तो नहीं हो रही, लेकिन जो मध्यम वर्ग नहीं था उनको मध्यम वर्ग में लाने का जो काम किया।
4: जैसे भी शरद जी ने
6: बिल्कुल ठीक कहा, क्योंकि भारत में हम जैसे कहते थे कि गरीबी रेखा के नीचे इतने प्रतिशत लोग हैं, कितने लोगों को गरीबी रेखा से उठाकर मध्यम वर्ग में लाया गया, क्योंकि भारत

सुगम संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे पलाश चंद्र विश्वास विश्वास की गाई गजल। इसके साथ ही ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। यह आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। इस स्टूडियो की घड़ी में

0: में मध्यम वर्ग की आप 15-16 कैटेगरी बना सकते हैं, तो उन सब कैटेगरीज को लाभ हुआ है। और जिसकी जो पहचान है वो ये है कि आज लोगों की जेब में खर्च करने के लिए पैसा आ गया है।
1: आपने और शरद जी ने दोनों ने अभी जितनी एक जो सरकार की जितनी पहल थी इनिशिएटिव्स की उनकी बात की, और आप दोनों ने एक जो बात की उसी से बात आगे बढ़ाते हैं कि जो पॉवर्टी लाइन के नीचे जो लोग थे उनको, गरीबी रेखा से नीचे लोगों को जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से उठाकर ऊपर लेकर आए हैं, तो देर हैज बीन अ सिग्निफिकेंट एक्सपेंशन ऑफ द मिडिल क्लास इन द लास्ट 12 ईयर्स विद मोर देन 25 करोड़ पीपल एग्जिटिंग मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी एंड एंटरिंग द न्यू मिडिल क्लास। हाउ बिग एन अचीवमेंट would do you think that is of the government, of the Modi government, Sharad ji?
2: I think it's a huge achievement, because 25 crore may be a very easy number to speak, yes, but this number itself may be more than Anubha the population of many of the countries around the world. Aur dekhiye hua kya ke poverty index ki jo definition badla gaya, you know, we've changed the definition, because poverty ko pehle kaise define karte the itne rupaye roz ka. I think Niti Aayog came out with a very new and a promising definition कि आपका अगर जीवन का स्तर सुधर रहा है, यू नो, ऑन न्यूट्रिशन, ऑन हेल्थ, आपके पास घर नहीं है, टुमारो यू गेट अ हाउस, यू डोंट हैव अ वाटर कनेक्शन, नाउ यू हैव अ वाटर कनेक्शन, लेट्स नॉट फॉरगेट अबाउट द टॉयलेट्स व्हिच इज बीइंग, यू नो, सैनिटेशन हैज बीन वेरी क्लोज टू प्राइम मिनिस्टर्स हार्ट, यू नो, जंगल में और खेतों में जाके यू नो टॉयलेट का इस्तेमाल करना या वहां पर इधर उधर बैठ के महिलाओं के लिए खासकर बहुत, सो आई थिंक नाउ देर आर टॉयलेट्स एट, सो द मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स नीड्स टू बी अंडरस्टूड अनुभव from the point of view that not that a person has a very huge bank balance, mm-hmm, but he's able to afford and live a lifestyle which any other normal middle class lives. So I think that has been the paradigm shift in the way we look at poverty, because those people are financially fine, they may be earning whatever they earn, but today they have facilities which are probably being enjoyed by some of the people who lead a more prosperous life.
1: The facilities that are very basic facilities. Absolutely. Which is everybody's right and which should they should get.
2: No, but the thing is that me and you can call them basic, but for them it was a luxury at one point of right. time. And today they feel that these were basic amenities which I was lacking, and it is thanks to the government schemes like Pradhan Mantri Awas okay. Yojana, you know, the whole sanitation program which has been done. You know, Arba, before you move forward, I would like to highlight that for me as an economic analyst, the biggest takeaway, because there's a long list. In fact, if we just name all the developmental and welfare schemes, I think the next half an hour may not be enough. So biggest takeaway for me, because we are hardcore economic analysts, for me is the massive 100 lakh crore plus infrastructure spend. Because that is one, in economics we call it, Anubha, the trickle-down effect. That has impact हर वर्ग को समाज के उसने फायदा पहुंचाया, और मिडिल क्लास तो उसमें आती आती, क्योंकि इससे नौकरियां बनी हैं, इससे लोगों की इनकम। और मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग बात बताऊं जो टंडन साहब मेरी बात से अग्री करेंगे कि मुझसे जब लोग पूछते हैं, क्योंकि होता क्या जब आपकी जिंदगी में ये सब घटनाएं घटती रहती है वेलफेयर स्कीम, तो यू टेक इट इन योर स्टेड, आपको लगता है ठीक है ये तो होना ही था भाई, ये तो मेरा हक है वगैरह वगैरह, ऐसे ख्याल आते हैं। पर बहुत अच्छा तरीका इसको देखने का क्या है, विच आई एम श्योर द लिसनर्स ऑफ आकाशवाणी वुड लाइक टू ड्वेल अपॉन एंड डीप डाइव, कि आप 2014 में जब ये सरकार आई 12 साल पहले, आप कहां खड़े थे? शायद लोगों की मेमोरी इतनी अच्छी ना हो, इट्स वेरी हार्ड टू रिमेम्बर के व्हाट आई यूज्ड टू अर्न, व्हाट वाज माय नेटवर्थ इन 2014, और आज आप कहां खड़े हैं। तो अगर आप दोनों को कंपेयर, क्योंकि हम तो कैसे देखते हैं, बहुत आसान तरीका है, आई थिंक मिस्टर टंडन वुड अग्री, इन 2014 वी वर अ $2 trillion इकोनॉमी, सो इन 67 ईयर्स फ्रॉम जीरो वी रीच 2 trillion, एंड इन द लास्ट 12 ईयर्स वी रीच 4 trillion. तो अगर इकोनॉमी डबल हुई है, तो इकोनॉमी तो हमको और आपको मिलाकर ही बनती है ना, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस बाय पीपल लाइक अस, सो आई थिंक दैट्स अ बेटर वे टू लुक एट इट, एंड दैट फॉर मी दैट इज द बिगेस्ट टेक अवे।
1: अशोक जी, मध्यम वर्ग की, जैसे कि भी शरद जी ने भी हमारे डिस्कशन की शुरुआत में कहा कि तीन सबसे बड़ी चिंताएं होती है, रोटी, कपड़ा और मकान, और इन तीनों के लिए ही जरूरी है रोजगार और नौकरी। तो पिछले बीते 12 सालों में भारत सरकार ने जो तेजी से बढ़ती युवा आबादी है देश की, उसके लिए नौकरी और खासकर स्वरोजगार के अवसरों को जो दिए हैं, उनको जो उसके लिए पहल शुरू की हैं, जो उसके लिए कार्यक्रम कर रहे हैं, उन्हें आप कैसे देखते हैं? खासकर अगर हम बात करें तो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना है, या नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम है, या फिर प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है, इन सब योजनाओं का आबादी को नौकरी, रोजगार या स्वरोजगार दिलाने में कितना बड़ा योगदान है?
0: मैं आपकी बात पर आने से पहले स्वास्थ्य की बात करना चाहता हूं। मुझे लगता है कि समाज में स्वास्थ्य उतना ही महत्वपूर्ण है जितना रोटी, कपड़ा और मकान है, और उस दिशा में जो आयुष्मान भारत योजना के तहत देश के 22 करोड़ से अधिक नागरिकों को 5 लाख तक का मुफ्त इलाज मिल रहा है, स्वच्छ भारत अभियान के तहत 11 करोड़ से अधिक शौचालय बनाए गए जैसे अभी बताया गया था, और आवास, नल,

0: यानी पीएम आवास योजना के तहत 3 करोड़ से अधिक किफायती घर बनाए गए हैं। आपने रोटी कपड़ा मकान की बात की, वहीं जल जीवन मिशन के माध्यम से करोड़ों ग्रामीण और अर्ध शहरी घरों तक सीधे जल से साफ पानी पहुंचाया गया है। और जैसे अभी बात हो रही थी, अब हम दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए हैं तो जीडीपी के दम पर, लेकिन इसमें एक राष्ट्र एक टैक्स यानी जीएसटी, और ये जो इसमें जो सरलीकरण किया गया, ये एक बड़ा ही ऐतिहासिक सुधार था जिसने हमारे देश के बिखरे हुए टैक्स ढांचे को खत्म कर पूरे भारत को एक बाजार बना दिया। मैं अगर स्टार्टअप की बात करना चाहूं तो हम देखते हैं कि इसके पीएलआई योजनाओं के सहयोग से भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन गया है
1: जी।
0: और जिससे इलेक्ट्रॉनिक और सेमीकंडक्टर जैसे क्षेत्रों में घरेलू जो इन्वेस्टमेंट है उसको बहुत बढ़ावा मिल रहा है। तो इस तरह से और भी बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं।
1: शरद जी, मैं अपने अभी जैसे अशोक जी ने बात की स्वास्थ्य की, पर मैं वापस आऊंगी जो हम नौकरी की बात कर रहे थे उसमें उन्होंने, और अशोक जी ने जो एक और बात करी स्टार्टअप जो इकोसिस्टम की, तो हम जब बात कर रहे थे कि जो सरकार की जो पहल थी जो विभिन्न योजनाएं हैं उनमें रोजगार मुहैया करवाने में, उनके लिए रोजगार क्रिएट करने में कितना बड़ा, और खासकर अगर हम स्टार्टअप इकोसिस्टम की बात करें तो उसमें स्टार्टअप इकोसिस्टम्स के जो के लिए जो उसको इनकरेज करने के लिए सरकार ने जो भी कदम उठाए हैं उससे मिडिल क्लास की जो एस्पिरेशंस हैं उसको कितना प्रोत्साहन मिला है।
2: बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है अनुभव। देखिए गवर्नमेंट यू नो एज एन एम्प्लॉयर सरकारी क्षेत्र में जितनी नौकरियां हैं अनुभव वो तो सरकार उतनी देगी। आप देखें प्रधानमंत्री रोजगार योजना जो है समय समय पर अपॉइंटमेंट लेटर्स प्रधानमंत्री जी खुद बांटते हैं
1: बिल्कुल,
2: पर इसमें यह ध्यान रखना होगा दैट गवर्नमेंट कैन नॉट एम्प्लॉय एवरीबॉडी इन द कंट्री। गवर्नमेंट प्रोवाइड्स एन एनेबलिंग प्लेटफॉर्म वेयर इट जनरेट्स एम्प्लॉयमेंट। तो आपने स्टार्टअप का बात किया, आई वुड लाइक टू कमेंट ऑन दैट। टुडे वी हैव स्टार्टअप इंडिया, जब शुरू किया गया था मुझे याद है 2016 की ये बात है, एंड आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल सेड दैट स्टार्टअप इंडिया यू नो पीपल हैव बीन डूइंग बिजनेसेस हियर फॉर टाइम्स इममेमोरियल, सो व्हाट इज न्यू? यस, देयर वाज समथिंग न्यू बिकॉज स्टार्टअप फोकस्ड ऑन इनोवेशन, स्टार्टअप फोकस ऑन न्यू आइडियाज, एंड दैट इज वेयर द यूथ ऑफ द कंट्री और द यूथ इंटेलेक्ट ऑफ द कंट्री गॉट एक्टिवेटेड एंड लॉट ऑफ यंगस्टर्स। एंड टूडे जस्ट ऑन स्टार्टअप इंडिया देर आर 2 lakh+ रजिस्टर्ड स्टार्टअप्स, एंड यू नो यू विल नॉट बिलीव दैट द एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइडेड बाय दी स्टार्टअप टूडे इज 2.3 million+ पीपल हु हैव बीन एम्प्लॉयड। And government has created a startup fund
1: yes.
2: where, you know, because these startups look for funding and they've been looking at funding to private sources, these angel investors and so on. So here government became an angel.
1: Right.
2: And I think the whole setting up of incubation centers, setting up of those places where these startups can get trained, I think that has done magic to this country. And today I'm telling you, when from being job seekers
1: yes.
2: to being job creators, when I talk to a cross section of youth today, what they tell me is that, yes, we want to work, not that, but we only want to work to gain experience. Once they gain experience, they want to be, you know, there is a flame burning inside every youth. Yes, I have to do something of my own. And I think this aspirational India is driving the growth of the country. You know, if 65% of our population, Anubha, is below 35 years of age, we are a very, very young country. And, you know, for everybody to find employment, you know, may not be possible in
1: yes.
2: the times to come. So if you become job creators, you just don't employ yourself. You create jobs for so many people around you. And, you know, we talk of Mudra Yojana, which was focused on women entrepreneurs, where government gives you a loan for up to a certain level, up to 10 lakh rupees, 5 lakh rupees. You borrow, you start. I've seen so many women entrepreneurs. You know, you'll be surprised, the participation of women in the mainstream economic activity in this country is not as high as men. We all know that. There are so many although I treat homemakers as
1: they
2: a very, very active GDP.
1: Workers,
2: in fact,
1: actually.
2: We did an analysis recently which said that if the GDP of women homemakers, it's not counted in the GDP,
1: right.
2: but then they contribute very, very significantly. But then those women who've now joined the main economic mainstream, their percentage is between 30 and 35%. This Mudra Yojana has helped women come forward. And I see so many women entrepreneurs today, not just employing themselves, but they've got a big team who follows them, who are employed with them. So I think the vision of this government was to make sure that you don't chase rozgar, you also create rozgar for other people. That for me, you know, and the whole taxation system and ease of doing business, I think that has helped the middle class. There was a time when middle class person used to think, main business kaise karunga, karungi, ye to bahut mushkil hota hai, company kaise banayenge, fir sarkar itne sare taxes lagati, 17 taxes ko mila ke GST jab aaya, और जब से जीएसटी 2.0 आया है उसने तो ऐसा लगता है जीएसटी को, आई मीन पीपल हैव ओपन देयर आर्म्स एंड एम्ब्रेस्ड इट, उससे पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था पे फर्क पड़ा।

0: ये जनधन आधार और मोबाइल, ये जो जैम की तिकड़ी है, इसने बिचौलियों को खत्म कर दिया है। और इसके साथ साथ जो 1600 से अधिक पुराने और ऑब्सोलीट कानून जिनको हम कहते हैं, उनको खत्म किया गया है। सरकारी नौकरियां हो, निचले स्तर में इंटरव्यूज को खत्म किया गया है, दस्तावेजों के सेल्फ अटेस्टेशन को शुरू किया है। ये सब भ्रष्टाचार को भी समाप्त करते हैं और सबसे ज्यादा इसका लाभ जो है वो मध्यम वर्ग को हुआ।
1: जी, हम क्योंकि डिजिटाइजेशन की बात कर रहे हैं और हम बात करें टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन की, तो इंटरनेट कनेक्टिविटी को भी बात करना बहुत जरूरी बन जाता है। पिछले 12 सालों में सरकार के विभिन्न प्रयासों के चलते लगभग 98% गांवों में 4G कनेक्टिविटी पहुंच चुकी है और तेज इंटरनेट के चलते ग्रामीण विकास में काफी तेजी आई है, उसे आप कैसे देखते हैं? और साथ ही साथ डेटा इतना सस्ता हुआ है पिछले 12 सालों में, और ये जो हमारी जिस तरह से तेज कनेक्टिविटी मिली है, इससे मध्यम वर्ग के विकास पर किस तरह का कितना प्रभाव पड़ा है?
2: जबरदस्त प्रभाव पड़ा है अनुभव, आपने ऐसा लगता है जैसे इस मध्यम वर्ग की जो दुखती रग थी उस पे हाथ रख दिया, बिकॉज दुनिया का सबसे सस्ता डेटा हमारे देश में है। और क्या कमाल इसने किया है कि इसने जो गांव और शहर के बीच में जो एक खाई हुआ करती
1: डिजिटल डिवाइड, जिसको
2: डिजिटल डिवाइड क्या लाइफस्टाइल डिवाइड था, बिकॉज दीज पीपल इन द विलेज अनुभव, दे नेवर यूज्ड टू नो व्हाट्स हैपनिंग इन द टाउन। टुडे व्हेन आई गो टू अ विलेज, आई फाइंड द थिंग्स दे यूज, द वे दे टॉक, व्हाट दे वेयर, द लाइफस्टाइल दे लीड, इट्स प्रीटी मच लाइक अ नॉर्मल टाउन सिटीजन। एंड देयर आर सो मेनी लर्निंग्स व्हिच आर हैपनिंग। प्राइम मिनिस्टर रिसेंटली मेड एन अपील व्हिच सेड कि आप ऑनलाइन क्लासेस लीजिए, कैसे ये कोविड में हम करते, पढ़ाई लिखाई बंद हो जानी थी अगर ये कनेक्टिविटी नहीं होती, बच्चों का कोई नुकसान कोविड में नहीं हुआ। आज भी प्रधानमंत्री जी, हम अपने विदेशी मुद्रा बचाने के लिए उन्होंने कहा कि आप ऑनलाइन क्लासेस लीजिए, क्यों कह पा रहे हैं? क्योंकि उनको पता है कि उसके पीछे इंटरनेट और डिजिटल कनेक्टिविटी की पावर आज है।
1: सरकार ने जो पिछले 12 सालों में काम किया
2: है, हमें उसके आधार पर उन्होंने बोला, उनको पता है कि इससे कोई नुकसान नहीं होगा और लोग वैसे ही लाभ उठाते रहेंगे। सो आई थिंक दिस होल्ड और वर्क फ्रॉम होम, वर्क फ्रॉम एनीवेयर फॉर दैट मैटर, मुझे ऐसे लोग मिलते हैं अनुभव, हु यूज्ड टू लिव इन से दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर, आज वो कई पहाड़ों पर जाके रहते हैं और बहुत सुकून की जिंदगी जीते हैं, और शायद उनके एम्प्लॉयर को, उनके क्लाइंट्स को ये मालूम भी नहीं होता कि वो कहां बैठ के काम कर रहे हैं। दैट हैज बीन द मैजिक ऑफ डिजिटलाइजेशन।
1: अशोक जी, आप कुछ कहेंगे?
0: मैं इसमें सोशल सिक्योरिटी का एंगल जरूर लाना चाहता हूं, क्योंकि जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है और जो लेबर है, श्रमिक है, उनके लिए जो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना आई है, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना आई है और अटल पेंशन योजना आई है, ये ऐसी योजनाओं के आने से, और पीएम स्वनिधि योजना है, इसके जरिए स्ट्रीट वेंडर जो है, सड़क पर जो सामान लगाता है, रेड़ी खोमचा लगाता है, और उनको फिर से अपना काम करने के लिए कितनी आसान शर्तों पर जो है वो लोन दिया जा रहा है। तो इसी कड़ी में मैं एक चीज और ऐड करूंगा कि 12 सालों में ये जो गुड गवर्नेंस का मंत्र दिया गया, सुशासन, और भारत के जो प्रशासनिक, आर्थिक और सामाजिक ढांचे को पूरी तरह से बदल दिया गया है, मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस, ये जो सिद्धांत पर चलते हुए सरकार ने ट्रांसपेरेंसी लाई है, स्पीड लाए हैं और टेक्नोलॉजी पर जो जोर दिया है, ये गुड गवर्नेंस भी अल्टीमेटली हम देखें तो मिडिल क्लास को ही इसका लाभ होना है।
1: We have seen in the last 12 years since 2014 when NDA government under Prime Minister Modi, you know, came in power, we have seen that there's been a continuous focus on expanding and improving infrastructure. In fact, every year in budget we've been seeing an increase in the allocation for infrastructure. So how has this improved the quality of life of the middle class and fast-tracked their economic prosperity?
2: Oh, it's done in a huge way, because we pick up anything, for example, highways. Any middle class family traveling from one town to another, 8 to 9 hours, Anubha, for a 200 kilometer distance was a normal earlier. Now you cover that distance in 2 hours and 2.5 hours. Look at the time saved. And if you're using your own vehicle to travel, look at the wear and tear that you save. And why forget metros? The way metro has been expanded, Anubha, over the last few years, I have stories of somebody in Delhi or Mumbai, you know, who used to spend 2 hours to reach the workplace, 2 hours to come back. Today that journey happens in 25 minutes. Look at the saving in fatigue which that commuter does. And Uran, Hawaii Chappal se Hawaii Yatra tak. Well, a plane journey used to be a dream for people. कि हम सारी उम्र में सोचता था कब मैं हवाई जहाज में बैठूंगा। आज मुझे लगता है आप अगर किसी भी हवाई यात्रा में जाएं, आपको एक आम आदमी उसमें दिखेगा। अब वो ऐसी लग्जरी नहीं है। छोटे छोटे एयरपोर्ट्स को बनाकर उनको कनेक्ट कर देना और चंद मिनटों में या घंटे में पहुंच जाना, जिसके लिए आप सारी रात की जर्नी करते थे। आपको याद होगा राजधानी और शताब्दी, अकेली ट्रेन हुआ करती थी जो कि प्रीमियम बोली जाती थी, जल्दी पहुंचना है। आज वंदे भारत लेके आप कुछ घंटों में एक जगह से दूसरी जगह और ऐसे कंफर्ट पहुंच रहे हैं, विच इज ऑफ इंटरनेशनल लेवल। द things we used to watch internationally के इस ट्रेन में टीवी भी होता है इसमें reclining seats होती हैं आज वो मुझे लगता है आम आदमी की पहुंच में so I think this government has brought luxury which used to be called earlier as a comfort and necessity to the people of the country
1: and you know that brings me to my next question क्योंकि आप जैसे बात करें कि infrastructure

0: में जो इम्प्रूवमेंट हुआ है, बी इट रोड्स, बी इट रेलवेज, बी इट एयरपोर्ट्स, जो एक्सपेंशन हुआ है, तो हमने देखा है कि हवाई यात्रा में जैसे भी आपने कहा कि बहुत तेजी से बढ़ोतरी हुई है, वंदे भारत जैसे हमारे पास वर्ल्ड क्लास ट्रेन्स हैं, जहां 2014 में सिर्फ 74 एयरपोर्ट थे, अब वो बढ़ के 160 हो चुके हैं 225 तक, जो मेट्रो रेल का नेटवर्क है वो 26 शहरों में फैल चुका है। तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि जैसे हम कार्यक्रम के शुरू में हम बात कर रहे थे
1: की बात करें तो इस मामले में अगर देखें तो जो एक डेवलपिंग कंट्री के नाते भारत रहा है अब तक, उसकी पहचान है, वो अब बड़ी तेजी से डेवलप्ड कंट्री की ओर जा रहा है। इसलिए जो लक्ष्य रखा गया है कि हम 2047 तक हम विकसित भारत बनेंगे, उसकी ओर देश तेजी से बढ़ रहा है।
0: शरद जी, आप क्या कहेंगे, हम जब बात कर रहे थे एस्पिरेशंस की, आकांक्षाओं की, अब मध्यम वर्ग का जो पिछले 12 सालों में हमने देश में विकास देखा है, आर्थिक विकास देखा है, टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन देखी है, हर तरह से जो हमारा देश प्रगति की पर एक बहुत तेजी से अग्रसर हो रहा है, उससे मध्यम वर्ग की आकांक्षाओं पर कितना असर पड़ रहा है और उनकी आकांक्षाएं जो पूरी हो रही हैं उससे देश की पूरी ओवरऑल डेवलपमेंट पर कैसा असर पड़ रहा है?
2: आई थिंक द पॉइंट यू हैव रेज्ड अनुभव रिलेट्स टू विकसित भारत 2047, और अभी आपने जब बुनियादी ढांचे की बात करी तो उसमें हर एक रुपया जो बुनियादी ढांचे पर खर्च किया जाता है, ये एक आर्थिक सिद्धांत है, उसका 8 गुना मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है। आपने कहीं सड़क बनाई, उसके आसपास अस्पताल आ जाएंगे, होटल्स आ जाएंगे, अपार्टमेंट्स आ जाएंगे, मॉल्स आ जाएंगे, इंडस्ट्रियल टाउनशिप्स आ जाएंगे। देखिए, एक सड़क बनने से, और ये ऐसे मेरे पास अनेकों उदाहरण है देश के, अगर मैं कोई भी एक सड़क उठा लूं तो मुझे लगता है कि ये जो विकसित भारत की यात्रा है पूरी, ये जो आपने एस्पिरेशनल इंडिया की बात करी, ये विकसित भारत की यात्रा में बहुत बड़ा कदम है। क्योंकि मुझे याद है एक फिल्म आई थी, रोटी कपड़ा मकान, और अगर आप उस फिल्म को याद करें और आज उसको इस परिप्रेक्ष्य में देखें, ऐसा लगता है उस फिल्म को हम 300-400 साल पहले छोड़ के आ चुके हैं। क्योंकि जब लोग देखते हो कहते हैं ये भी जमाना था क्या, रोटी कपड़े मकान के बारे में सोचना पड़ता था? क्योंकि आज आप सोचते हैं कि आप हवाई जहाज में बैठ रहे हैं, आज आप सोचते हैं कि आप वर्ल्ड क्लास हाईवे में ट्रेवल कर रहे हैं, आज आप सोचते हैं कि आप एक इनोवेटिव स्टार्टअप चला रहे हैं। तो मुझे लगता है वी हैव कम अ वेरी लॉन्ग वे अनुभव फ्रॉम वेयर वी वर।
0: यू नो, व्हेन वी टॉक अबाउट द मिडिल क्लास नाउ, वन सेगमेंट ऑफ द मिडिल क्लास दैट आई थिंक वी हैव टू टॉक अबाउट एंड वी शुड मेंशन इज द वुमेन। Women, you know, are the backbone of any middle-class family. What, in your opinion, in the last 12 years, the various schemes, the various initiatives that the Modi government has taken, how have they uplifted and empowered women, especially of the middle-class women, which in turn, you know, have made the middle-class much more prosperous? Ashok ji, aap batana chahiye.
1: Dekhiye, humne jitni bhi jan kalyan yojanaon ki baat ki hai, agar hum dekhenge to fayda to usse हर वर्ग को हुआ है, लेकिन विशेष तौर से महिलाओं और किसानों और युवाओं से जुड़े हुए जो हैं। अब आप देखिए, अगर हम बात करें प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की, तो जो गरीब परिवारों की महिलाओं को धुएं से जो मुक्ति मिली और उससे स्वच्छ ईंधन की उपलब्धि हुई और मुफ्त एलपीजी मिली, ये तो सीधा सीधा मैं कहूंगा महिलाओं के ही कल्याण के लिए हुआ है। इसी तरह से हम जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की बात करें और सामाजिक सुरक्षा के लिए, तो मैंने पहले भी कहा है, तो महिलाओं के लिए आवास की योजना हमने बात की, टॉयलेट के बारे में बात की, तो ये सब योजनाएं, आयुष्मान भारत, ये योजना से भी जो 5 लाख का मुफ्त इलाज है, इसमें महिलाएं सबसे ज्यादा, इनको भी लाभ हो रहा है। और सबसे बड़ी यही है कि जिसको हम वेमेन एम्पावरमेंट कहते हैं, तो उसमें लिए सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाए गए हैं, स्टार्टअप में बहुत महिलाएं हैं, तो हर क्षेत्र में महिलाएं जब सामने आ रही हैं और उनकी अगर स्वास्थ्य सुरक्षा, जैसे वेमेन सिक्योरिटी है, तो ये चीजें जब आज तसल्ली होगी तो महिलाएं ज्यादा से ज्यादा बाहर आकर काम करेंगी और इन सब योजनाओं का लाभ उठाते हुए वो आज खुद भी सेल्फ हेल्प ग्रुप के थ्रू या अदरवाइज स्टार्टअप के थ्रू वो भी एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रही हैं।
0: जी, अशरद जी, आप कुछ कहना चाहेंगे?
2: आई थिंक वुमेन एम्पावरमेंट हैज बीन द थीम ऑफ दिस गवर्नमेंट एंड महिला सशक्तिकरण जिसको हम कहते हैं, और महिलाएं चाहे उनकी एजुकेशन की बात हो, बिटिया की पढ़ाई की बात हो, बिटिया की सुरक्षा की बात हो, मुझे लगता है यहां से सारा का सारा ये जो उत्थान हुआ है वहां से निकल कर आया। एंड टूडे वुमेन, एज आई सेड अर्लियर, दे आर इन द मेन स्ट्रीम, द परसेंटेज ऑफ वुमेन हु आर इन्वॉल्वड इन द मेन स्ट्रीम दैट इज इंक्रीजिंग, एंड दिस इज अनुभव नॉट जस्ट हैपनिंग इन द टाउन। आई फाइंड लॉट ऑफ वुमेन, एज मिस्टर टंडन सेड दैट यू नो जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, वहां पर महिलाएं इकट्ठी होकर कुछ बिजनेस शुरू कर रही हैं। मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेटिव बन गई है, जहां से बहुत सारी कोऑपरेटिव सोसाइटीज के जरिए महिलाएं आगे आ रही हैं। और आप अगर देखें इसका रिजल्ट कहां दिख रहा है अनुभव, तो आप देखें कि जब भी रिजल्ट आते हैं किसी भी एग्जामिनेशन के, वहां महिला कैंडिडेट सबसे आगे होती हैं। ये इस बात बात को बताता है कि सरकार ने महिला एजुकेशन को और महिलाओं के सशक्तिकरण को कितना सीरियसली लिया है और हमारी आधी आबादी है तो मुझे लगता है कभी भी उनके साथ भेदभाव तो कभी भी जस्टिफाइड नहीं था। पर आज जो विभिन्न स्कीम्स की वजह से महिलाओं के हम स्कीम्स गिनवाएं तो बहुत लंबी लिस्ट है महिलाओं की स्कीम की, पर मुझे लगता है कि महिलाओं का मेन स्ट्रीम में आना, और अगर मैं एक जरूरी बात कहना चाहूंगा आई थिंक यू विल बी एबल टू रिलेट, अगर महिला काम नहीं भी कर रही है

0: मान लीजिए वो कहीं कमाई नहीं करती है, तो घर बैठे बैठे प्रधानमंत्री आवास योजना के जो घर हैं, महिलाएं इस बात को मानेंगी पहले उनके नाम किए गए हैं।
1: बिल्कुल,
0: आप देखिए कि घर में अगर पुरुष, वो खाली पुरुष है तो अलग बात है, पर अगर महिला है तो घर बैठे बैठे महिला सशक्तिकरण हो रहा है। महिला अपने पति को कह सकती है, देखिए ये घर मेरे नाम है, मेरा भी इस घर में उतना ही योगदान है। और मैं समझता हूँ उसने महिला को एक कॉन्फिडेंस दिया है। सबसे बड़ा अचीवमेंट मैं महिलाओं के मामले में मानता हूँ ये उनका कमाई के जरिए बनना, इन्होंने उज्ज्वला की बात करी, वो सब तो है ही है, पर मुझे लगता है महिलाओं में एक जो कॉन्फिडेंस आया है, और ये कॉन्फिडेंस आपको बताऊं सबसे ज्यादा मुझे कहां दिखा, जब प्रधानमंत्री जी ने महिला का पार्लियामेंट में बिल लाने की इस सरकार ने मुहिम छेड़ी, किसी वजह से वो नहीं पास हो पाया, पर सरकार की इंटेंट बताती है कि महिलाएं आधी आबादी नहीं है, महिलाएं ज्यादा शक्तिशाली आबादी भी है, ये प्रधानमंत्री जी की मंशा रही है।
1: आप दोनों से मैं एक सवाल पूछना चाहूंगी कि हम अब तक बात कर रहे थे कि मोदी सरकार के पिछले 12 साल में जो उन्होंने कदम उठाए उसका मध्यम वक्त में कितना फर्क पड़ा, कितना असर पड़ा, बट व्हेन वी लुक एट यू नो इन द फ्यूचर, लेट्स लुक एट द इन द फ्यूचर, इन द नेक्स्ट डेकेड वेयर डू यू सी द इंडियन मिडिल क्लास, वेयर इट इज गोइंग टू बी, एंड हाउ मच ऑफ अ मेजर फैक्टर विल इट बी इन इंडियाज डेवलपमेंट? अशोक जी,
2: देखिए जब हम बात कर रहे हैं ओवरऑल डेवलपमेंट की, तो मिडिल क्लास भी हम मान रहे हैं कि उसका सबसे ज्यादा उनको फायदा हो रहा है, तो यही मिडिल क्लास देश को प्रगति की ओर भी ले जा रहा है, और यही मिडिल क्लास ही देश को आज हम देखते हैं तो खेलों के मैदान में जो हो रहा है, क्योंकि सबसे ज्यादा खिलाड़ी हमारे मिडिल क्लास हैं। पहले हम सोचते थे कई खेल ऐसे हैं जो बहुत अमीर लोगों के खेल हैं, आज जो है स्मॉल टाउन से क्रिकेटर्स आ रहे हैं, हॉकी के प्लेयर्स आ रहे हैं, रेसलर्स आ रहे हैं, यहाँ तक कि टेनिस के प्लेयर्स भी आ रहे हैं, तो ये सब जो विकास हो रहा है तो खेलों में हमें दिखाई दे रहा है, ऐसे ओलंपिक वगैरह ये देखें तो ये सब मिडिल क्लास का ही आगे बढ़ना है, और इससे आगे चलकर मिडिल क्लास वो भी ये जो विकसित भारत का सपना है उसमें मुझे लगता है सबसे ज्यादा योगदान यही मिडिल क्लास देगा।
1: शरद जी, अशोक जी ने गरीब और अमीर का जो अंतर है वो बहुत कम होता जा रहा है।
0: देखिए जब भी कोई अर्थव्यवस्था विकास की ओर बढ़ती है, डेवलप की ओर बढ़ती है, तो वो खाई अपने आप भरती जाती है। मैं मिडिल क्लास को पर्सनली तीन हिस्सों में बांटता हूँ, लोअर मिडिल क्लास, मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास। तो मुझे लगता है इन तीनों को अगर हम मिला दें, आपका क्योंकि सवाल था कि हम भारत के विकास में इनका क्या योगदान रहेगा, मुझे लगता है लोअर मिडिल क्लास में आएगी, मिडिल क्लास अपर मिडिल क्लास में आएगी, और अपर मिडिल क्लास शायद अमीर बन जाए। द बिगेस्ट सक्सेस स्टोरीज, if you take in the world of sports, you take in the world of innovation, you take in the world of space, you take in the world of anything, I think the biggest success stories are coming from middle class.
1: Mr. Ashok Tandon, Mr. Sharad Kohli, thank you so much for joining us in Akashvani's special series on 12 years of Modi government.
0: It was a pleasure.
2: Thank you.
3: विशेष श्रृंखला के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे मोदी सरकार के 12 साल सुधार, सुशासन और जन कल्याण से सशक्त होता मध्यम वर्ग। इसमें भाग ले रहे थे राजनीतिक विश्लेषक अशोक टंडन और आर्थिक विश्लेषक शरद कोहली। कार्यक्रम का संचालन कर रही थी अनुभा रोहतगी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044। In the special series, you were listening to a discussion on 12 years of the Modi government transforming middle class lives through reform and welfare. Participants were Ashok Tandon, political analyst, and Sharad Kohli, economic analyst. Moderator was Anubha Rohatgi. This program was produced and presented by the News Services Division of Akashvani. You can listen to it on our mobile app, News on Air. This program is also available on our YouTube channel, News on Air Official. You may share your feedback about this program through email at airnsdtalks@gmail.com.
4: अभी आप सुन रहे थे सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर विशेष श्रृंखला की चौथी कड़ी। यह आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार संध्या हमारे दिल्ली केंद्र से। कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार।
5: आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय विमानन कंपनियों की सहायता के लिए 10,000 करोड़ रुपए के विमानन ईंधन स्थिरता

0: कोष को मंजूरी दी। दिल्ली NCR क्षेत्र में पुराने ट्रकों और बसों को नए वाहनों से बदलने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड को भी स्वीकृति मिली। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस ने निष्कासित विधायक ऋतव्रत बनर्जी को राज्य विधानसभा में विपक्ष का नेता नियुक्त किया गया। कांग्रेस नेता DK शिव कुमार ने कर्नाटक के 25वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। जी परमेश्वर ने उप मुख्यमंत्री पद की और 12 विधायकों ने कैबिनेट मंत्री पद की शपथ ली। दिल्ली के मालवीय नगर में भीषण आग में 21 लोगों की मौत। पुलिस ने गैर इरादतन हत्या के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की। मौसम विभाग ने कल केरलम और माहे में तेज वर्षा की चेतावनी दी। और इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन में आयुष शेट्टी चीन के वेंग होंग यांग को हराकर सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विमानन ईंधन की कीमतों को स्थिर रखने के लिए तेल विपणन कंपनियों को 10,000 करोड़ रुपए की एकमुश्त बजटीय सहायता देने का निर्णय लिया है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारतीय विमानन कंपनियों की सहायता के लिए ये आत्मनिर्भर कोष 36 महीने के लिए लागू रहेगा।
1: ATF प्राइस स्टेबिलाइजेशन फंड में एक सेल्फ सस्टेनिंग रिवॉल्विंग फंड बनाया गया। ATF प्राइस फॉर दी एयरलाइन कैरियर्स हु वांट टू पार्टिसिपेट इन दिस, उनको एक स्टेबल ATF प्राइस अभी करंट क्राइसिस के दौरान मिलेगा। इससे हमारे एंटायर एविएशन सेक्टर में करीब 70 लाख से अधिक जो जॉब्स हैं, जिनके ऊपर इम्पैक्ट पड़ना आरंभ होने लगा था बिकॉज ऑफ दी स्ट्रेस इन दी सेक्टर, वो इससे सिग्निफिकेंटली मिटिगेट होगा।
0: मंत्रिमंडल ने दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पुराने ट्रकों और बसों को नए वाहनों से बदलने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड को सहायता प्रदान करने की योजना को भी मंजूरी दी है। श्री वैष्णव ने बताया कि योजना के अंतर्गत लगभग 2 लाख ट्रक और 16,000 बसें BS6 या इलेक्ट्रिक वाहनों से बदली जाएंगी।
1: दिल्ली के पॉल्यूशन को रोकने के लिए लगातार कई स्टेप्स लिए जा रहे हैं। उन स्टेप्स में एक बहुत बड़ा निर्णय लिया गया कि जो 40% कॉन्ट्रीब्यूशन है पार्टिकुलेट मटेरियल का, वो ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर के कारण आता है। और उस ट्रांसपोर्टेशन में जो सबसे बड़ा कॉन्ट्रीब्यूटर हैवी ट्रक्स और बसेस, पुरानी ट्रकों और बसों को रिप्लेस करने का इसमें फैसला लिया गया।
0: मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने ओडिशा में रामेश्वर से पारादीप तक 163 किलोमीटर से अधिक लंबे तटीय राजमार्ग के निर्माण को भी मंजूरी दी है। इस परियोजना की कुल लागत 830 करोड़ रुपए से अधिक होगी। श्री वैष्णव ने बताया कि इससे रामेश्वर और पारादीप के बीच यात्रा का समय घटकर लगभग 2.5 घंटे कम हो जाएगा।
1: ओडिशा में कोस्टल हाईवे जो स्टेट की बहुत लंबे समय से एक डिमांड रही है, बिकॉज कोस्टल एरियाज का बार बार साइक्लोन से इम्पैक्ट होना, कोस्टल एक्टिविटीज जो है, फिशिंग हो, पान की खेती हो, धान की खेती हो, कई तरह के इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं, और साथ ही साथ जो टूरिज्म और श्रद्धा के बड़े केंद्र हैं जैसे पुरी हो गया, चिलिका हो गया, इन सब की कनेक्टिविटी अलॉन्ग दी कोस्ट कैसे हो, ये एक लंबे टाइम से ओडिशा की डिमांड रही है। तो इस डिमांड को आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कैबिनेट में अप्रूव किया।
0: मंत्रिमंडल ने बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग 31 और 231 के खगड़िया पूर्णिया खंड को 4 लेन करने को भी मंजूरी दी है। इसकी लागत 3,936 करोड़ रुपए से अधिक होगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। पश्चिम बंगाल विधानसभा में ऋतव्रत बैनर्जी को विपक्ष का नेता नियुक्त किया गया है। विधानसभा अध्यक्ष द्वारा तृणमूल कांग्रेस के बाकी विधायकों के एक समूह को अलग विधायक दल के रूप में मान्यता देने के बाद ये नियुक्ति हुई है। एक रिपोर्ट।
2: ऋतव्रत बैनर्जी पहले मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के राज्यसभा सांसद थे और बाद में तृणमूल कांग्रेस में शामिल हुए। उन्हें लगभग 60 विधायकों का समर्थन मिल गया है। यह संख्या दल बदल विरोधी कानून के अंतर्गत आवश्यक 2/3 बहुमत के आंकड़ों से अधिक है। ममता बनर्जी गुट ने इससे पहले शोभन देव चट्टोपाध्याय को विपक्ष नेता नामित किया था। इससे पहले पार्टी ने नेता प्रतिपक्ष की नियुक्ति के लिए जमा किए गए हस्ताक्षरों से जुड़े विवाद में पार्टी

0: विरोधी गतिविधियों के आरोप में विधायक ऋतिव्रत बैनर्जी और संदीपन साह को निष्कासित कर दिया था। कोलकाता से संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशेष शुक्ला।
1: इस बीच पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आज नबन्ना में सामाजिक सुरक्षा योजना अन्नपूर्णा की शुरुआत की। इसके अंतर्गत 28 लाख से अधिक महिलाओं के खातों में 3,000 रुपए भेजे गए। योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को पंजीकरण कराने के लिए 90 दिन का समय दिया गया है। 25 से 60 वर्ष की आयु वर्ग की महिलाएं योजना के लिए पात्र होंगी। कर्नाटक में वरिष्ठ कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार ने आज राज्य के 25वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। सिद्धारमैया मंत्रिमंडल में गृह विभाग संभाल रहे डॉ जी परमेश्वर ने उप मुख्यमंत्री पद की और 12 विधायकों ने कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार द्वारा शपथ ग्रहण के बाद एक्स साइट में कहा कि इस बदलते टेक्नोलॉजी के युग में कर्नाटक नए आइडियाज के साथ अपने विकास पथ में सबसे आगे बढ़े। लोकभवन से विधानसौध पहुंचने के बाद उन्होंने महात्मा गांधी, डॉक्टर बीआर अंबेडकर, जगत ज्योति बसवन्ना और अन्य महान पुरुषों की पुतली पर पुष्प नमन किया। उसके बाद उन्होंने विधानसौध के नॉर्थ गेट पर झुककर नमस्कार किया। अपने पहले कैबिनेट मीटिंग में वह कुछ नए समाज कल्याण कार्यक्रमों की घोषणा करने की संभावना है। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री डीके शिवकुमार को बधाई दी है। श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार जनता के कल्याण के लिए कर्नाटक सरकार के साथ मिलकर काम करेगी। दिल्ली के मालवीय नगर के एक होटल में आज सुबह आग लगने की घटना में 21 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में कई विदेशी नागरिक भी शामिल हैं। 40 से अधिक लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया है। एक रिपोर्ट।
3: दिल्ली पुलिस ने दक्षिण दिल्ली के मालवीय नगर में होटल में आग लगने की घटना में गैर इरादतन हत्या के आरोप में FIR दर्ज किया है। इस हादसे में कम 21 लोगों की मौत हो गई। 26 लोगों का अभी इलाज चल रहा है। दिल्ली नगर निगम ने भी घटना की जांच के आदेश दिए हैं। दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत संधू ने कहा है कि कल से जिला मजिस्ट्रेटों, पुलिस उपायुक्तों और नगर निगम के उपायुक्तों की संयुक्त नेतृत्व में 1 महीने तक चलने वाला प्रवर्तन और रोकथाम अभियान शुरू किया जाए। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने हादसे पर दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने मृतकों के परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा है कि भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा बाजार बनकर उभरा है। श्री यादव ने बताया कि 2025 तक वार्षिक सौर ऊर्जा क्षमता वृद्धि के मामले में देश ने अमेरिका को पीछे छोड़ दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के अंतर्गत देश में पिछले 12 वर्ष में उल्लेखनीय बदलाव आया है। इस दौरान मोदी सरकार ने निर्धनों, किसानों, महिलाओं और युवाओं के कल्याण और सशक्तिकरण के लिए अनेक महत्वपूर्ण पहल शुरू की हैं। आकाशवाणी समाचार पिछले 12 वर्ष में प्रमुख क्षेत्र में सरकार के प्रयासों पर विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज बात मध्यम वर्ग के कल्याण के लिए सरकार के कदमों की।
4: केंद्र सरकार ने पिछले 12 वर्षों में विभिन्न योजनाओं और सुधारों के माध्यम से मध्यम वर्ग के लोगों को सशक्त बनाया है। सरल कर व्यवस्था, बेहतर बैंकिंग, बीमा और पेंशन जैसी सुविधाओं ने मध्यम वर्ग की आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित की है। नई कर व्यवस्था के तहत सालाना 12 लाख रुपए तक कमाने वाले लोगों को कोई आयकर नहीं देना पड़ता। वहीं GST ने भी कर व्यवस्था को सरल बनाकर और रोजमर्रा की चीजों की लागत कम करके मध्यम वर्ग को राहत पहुंचाया है। 2015 में शुरू की गई प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन ने लाखों लोगों को पक्का घर उपलब्ध कराया है। इस योजना के तहत स्वीकृत 1,25,00,000 घरों में से 98 लाख से अधिक घर बनकर लाभार्थियों को दिए जा चुके हैं। उत्तर प्रदेश के अभिषेक कुमार ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कहा कि इस योजना के जरिए गरीबों को अपना घर मिल रहा है और किराए के मकान से मुक्ति मिल रही है।
5: मैंने प्रधानमंत्री आवास योजना में आवेदन किया था। आवेदन करने के बाद मेरे को लॉटरी ड्रॉ के माध्यम से मकान आवंटित होगी। स्कीम बहुत ही बढ़िया है जिससे गरीब लोगों को आवास मिल रहे हैं। सबको सहूलियत हो रही है।
4: वहीं आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 43,52,00,000 स्वास्थ्य कार्ड जारी किए जा चुके हैं, जिससे लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुरक्षा मिली है। इसके अलावा प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के अंतर्गत जन औषधि केंद्रों के माध्यम से

0: लोगों को सस्ती और गुणवत्तापूर्ण दवाइयां मिल रही है जो बाजार से 50-80% सस्ती दरों पर उपलब्ध है। बिहार के रहने वाले ब्रह्मदेव ने बताया कि इन केंद्रों पर दवाइयां बहुत कम कीमत पर मिलती है।
1: लगभग 1 साल से यहां से दवाई ले रहा हूं, सस्ती दवाई मिलती है, डॉक्टर का विश्वास है कि जरूरी से दवाई खरीदे।
0: वहीं 2015 में शुरू की गई प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के कारण लोग अपना व्यवसाय शुरू कर रहे हैं और

0: अपना व्यवसाय शुरू कर रहे हैं और दूसरों को भी रोजगार दे रहे हैं। इस योजना के तहत अब तक लाभार्थियों को 40 लाख करोड़ रुपए का ऋण दिए जा चुके हैं। भारत के मध्यम वर्ग के लोगों की आय बढ़ने और नए अवसर मिलने के कारण अब वे देश की आर्थिक प्रगति, विकास और समृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
2: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.go.in पर।
1: ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने कल केरलम और माहे में मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। उत्तराखंड, पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, कोंकण, गोवा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप में भी अगले दो दिन तेज वर्षा हो सकती है। भारत में अमरीका के राजदूत सर्जियो गौर ने कहा है कि प्रस्तावित भारत अमरीका अंतरिम व्यापार समझौते का 99% काम पूरा हो चुका है। मुंबई में उन्होंने कहा कि दोनों देश बाकी बचे मुद्दों को सुलझाने में लगे हैं और अगले कुछ सप्ताह में समझौते को अंतिम रूप दिया जा सकता है। ईरान ने कुवैत और बहरीन में स्थित अमरीकी सैन्य ठिकानों पर बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन से हमला किया है। इसमें एक भारतीय की मौत हो गई है। इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन में आयुष शेट्टी सिंगल्स तथा रोहन कपूर और ऋत्विका शिवानी गद्दे मिक्स डबल्स प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। आयुष ने चीन के वेंग होंग यांग को हराया। रोहन कपूर और ऋत्विका ने चीनी ताइपे के हु लिंग फांग और यांग पो ह्यूआन को पराजित किया। प्रवर्तन निदेशालय ने आज पंजाब और उत्तर प्रदेश में भारत और कम्बोडिया से संचालित मानव तस्करी गिरोह मामले में तलाशी अभियान चलाया। ईडी ने बताया कि इस गिरोह के मानव तस्करी, साइबर धोखाधड़ी और अवैध गतिविधियों में शामिल होने का संदेह है। निदेशालय ने बताया कि दिल्ली पुलिस द्वारा दर्ज एफआईआर और चार्जशीट के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम के तहत जांच शुरू की गई। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं सोनू सूद।
3: बम्बई शेयर बाजार का सेंसेक्स 304 अंकों की गिरावट से 74,346 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 78 अंक कम होकर 23,406 पर बंद हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज डॉलर के मुकाबले 44 पैसे कमजोर होकर 95.70 रुपए प्रति डॉलर के स्तर पर बंद हुआ।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय विमानन कंपनियों की सहायता के लिए 10,000 करोड़ रुपए के विमानन ईंधन स्थिरता कोष को मंजूरी दी। दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में पुराने ट्रकों और बसों को नए वाहनों से बदलने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड को भी स्वीकृति दी। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस ने निष्कासित विधायक ऋतव्रत बनर्जी को राज्य विधानसभा में विपक्ष का नेता नियुक्त किया गया। कांग्रेस नेता डी के शिव कुमार ने कर्नाटक के 25वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। जी परमेश्वर ने उप मुख्यमंत्री पद की और 12 विधायकों ने कैबिनेट मंत्री पद की शपथ ली। दिल्ली के मालवीय नगर में भीषण आग में 21 लोगों की मौत। पुलिस ने गैर इरादतन हत्या के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की। मौसम विभाग ने कल केरलम और माहे में तेज वर्षा की चेतावनी दी। और इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन में आयुष शेट्टी चीन के वेंग होंग यांग को हराकर सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम वल्सा विलियम्स विद द न्यूज एट 9। The headlines. Union Cabinet approves 10,000 crore rupee ATF price stabilization fund to support Indian Airlines. Also gives nod to National Capital Region Planning Board for old trucks and buses replacement in Delhi NCR area. Expelled TMC MLA Ritavrata Banerjee appointed as leader of opposition in West Bengal Legislative Assembly. Congress leader D.K. Shivakumar sworn in as 20-

0: कुमार ने कर्नाटक के 25वें वजीर आला की हैसियत से हलफ ले लिया है। डॉक्टर जी परमेश्वर नायक वजीर आला बने हैं, जबकि 12 लेजिस्लेचर ने काबीनी वजरा की हैसियत से भी हलफ लिया है। दिल्ली के मालवीय नगर इलाके में आग लगने के एक बड़े हादसे में 21 अफराद की जान चली गई है। पुलिस ने गैर इरादतन कत्ल के इल्जाम के तहत FIR दर्ज की है। मौसमियात के महकमे ने कल केरलम और माहे में बहुत शदीद बारिश की वार्निंग जारी की है। और बैडमिंटन में भारत के आयुष शेट्टी चीन के वैंग होंग यांग को हराकर इंडोनेशिया ओपन सुपर 1000 के दूसरे राउंड में पहुंच गए हैं। अब खबरें तफसील से। मरकजी काबीना ने तेल मार्केटिंग कंपनियों के लिए एक मर्तबा दी जाने वाली बजट इमदाद के तहत 10,000 करोड़ रुपए की रकम को मंजूरी दे दी है। इसका मकसद भारतीय एयरलाइन कंपनियों को उनकी घरेलू और बैन अलाकवामी परवाजों के लिए हवाई जहाज में इस्तेमाल होने वाले ईंधन की कीमतों को मुस्तहकम रखने में मदद फराहम करना है। मगरबी एशिया कशीदगी के सबब ईंधन की कीमत में पैदा होने वाले गैर मामूली अदम इस्तेहकाम के दौरान ये मदद एयरलाइन कंपनियों को ATF की कीमतों को मुस्तहकम करने में मदद की खातिर फराहम की जाएगी। नई दिल्ली में मीडिया को तफसील बताते हुए इत्तलात नशरियात के वजीर अश्वनी वैष्णव ने कहा कि ये अपने आप में काफी फंड है जो भारतीय तैयारा बरदार कंपनियों को हवाई जहाज में इस्तेमाल होने वाले ईंधन की कीमतों को मुस्तहकम रखने में मदद फराहम करेगा।
1: ATF प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड में एक सेल्फ सस्टेनिंग रिवॉल्विंग फंड बनाया गया। ATF प्राइस फॉर द एयरलाइन कैरियर्स हु वांट टू पार्टिसिपेट इन दिस, उनको एक स्टेबल ATF प्राइस अभी करंट क्राइसिस के दौरान मिलेगा। इससे हमारे एंटायर एविएशन सेक्टर में करीब 70 लाख से अधिक जो जॉब्स हैं, जिनके ऊपर इम्पैक्ट पड़ना आरंभ होने लगा था बिकॉज ऑफ द स्ट्रेस इन द सेक्टर, वो इससे सिग्निफिकेंटली मिटिगेट होगा।
0: मरकजी काबीना ने 9,585 करोड़ रुपए की माली अखराजात के साथ दिल्ली NCR इलाके में पुराने ट्रकों और बसों को तब्दील करने की खातिर कौमी राजधानी खित्ते से मुतालिक मनसूबा बंदी बोर्ड की मदद के लिए एक स्कीम को भी मंजूरी दी है।
2: दिल्ली के पॉल्यूशन को रोकने के लिए लगातार कई स्टेप्स लिए जा रहे हैं। उन स्टेप्स में एक बहुत बड़ा निर्णय लिया गया कि जो 40% कंट्रीब्यूशन है पार्टिकुलेट मटेरियल का, वो ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर के कारण आता है। और उस ट्रांसपोर्टेशन में जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर हैवी ट्रक्स और बसेस, पुरानी ट्रकों और बसों को रिप्लेस करने का इसमें फैसला लिया गया।
0: इक्तिसादी उमूर से मुतालिक काबीना कमेटी ने उड़ीसा के रामेश्वर से पारादीप तक एक नई साहिली शाहरा की तामीर की भी मंजूरी दी है, जिसकी कुल लंबाई 163 किलोमीटर से ज्यादा है। मगरबी बंगाल में अहम सियासी वाक़े के तहत रीजा ब्रता बनर्जी को मगरबी बंगाल कानून साज असम्बली में अपोजिशन का लीडर मुकर्रर किया गया है। तृणमूल कांग्रेस के लेजिस्लेचर के एक बागी ग्रुप को एक अलहदा कानून साज पार्टी के तौर पर असेंबली के स्पीकर की जानिब से तस्लीम किए जाने के बाद ये तकरीरी सामने आई है। पेश है एक रिपोर्ट।
3: रीता ब्रता, जो CPIM के राज्यसभा के साबिक रुकन पार्लियामेंट हैं, वो बाद में तृणमूल कांग्रेस में शामिल हुए और उन्हें तकरीबन 60 अरकान असेंबली की हिमायत हासिल है, जो पार्टी मुखालिफ सरगर्मियों के कानून के तहत जरूरी 2/3 से ज्यादा है। ममता बनर्जी के ग्रुप ने इससे पहले शोभन देव चट्टोपाध्याय को ओपोजिशन का लीडर नामजद किया था। स्पीकर से मीटिंग के बाद नामानिगारों से बात करते हुए रीताब्रता बंदोपाध्याय ने दावा किया है कि बागी लेजिस्लेचर्स ने अब ऐवान में हकीकी और असल ओपोजिशन तश्कील दी है। उन्होंने कहा कि उनका ग्रुप एक तामीरी ओपोजिशन का किरदार अदा करेगा और जब जरूरत होगी हुकूमत की हिमायत करेगा, लेकिन जिन पॉलिसियों की वो मुखालफत करेगा उन पर साबित कदम रहेगा। तृणमूल कांग्रेस के दरमियान शदीद सियासी बहरान के तहत ये वाकया सामने आया है, जिसे हालिया असेंबली इंतखाबात के बाद अंदरूनी बगावत का सामना है। पार्टी ने इससे पहले अरकान असेंबली रीताब्रता बंदोपाध्याय और संदीपन साहा को मुबैना तौर पर पार्टी मुखालिफ सरगर्मियों की बिना पर पार्टी से निकाल दिया था। सियासी माहरीन इस वाकये को जब से वो इख्तदार में आई हैं उस वक्त से ममता बनर्जी की क्यादत के लिए सबसे बड़ा चैलेंज करार दे रहे हैं। कोलकाता से संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए अर्जुमंद अली खान।
0: कर्नाटक में कांग्रेस के सीनियर लीडर DK शिवकुमार को रियासत के 25वें वजीर आला के तौर पर हलफ दिलाया गया है। गवर्नर थावरचंद गहलोत ने उन्हें ओहदे का हलफ दिलाया। डॉक्टर बी परमेश्वर, जिन्होंने सिद्धारमैया काबीना में दाखिली उमूर के फराइज अंजाम दिए थे, उन्हें

0: वजीर आला के तौर पर हलफ दिलाया गया। 12 कानून साजों ने भी काबीना वुजरा के तौर पर हलफ लिया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने डीके शिव कुमार को वजीर आला के तौर पर हलफ दिलाए जाने पर मुबारकबाद दी। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब मोदी ने उनकी मुद्दत कार के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। आज सुबह मालविया नगर के एक होटल में भयानक आग लगने के वाकये में गैर मुल्की शहरियों समेत 21 अफराद हलाक हो गए, जबकि 40 दीगर को बचा लिया गया। जनूबी दिल्ली के डीसीपी अनंत मित्तल ने कहा कि आग पर काबू पा लिया गया है और जख्मियों को इलाज के लिए नजदीकी अस्पतालों में पहुंचा दिया गया है। अभी 26 अफराद जेरे इलाज हैं। 10 पुलिस एहलकारों को भी आग में फंसे हुए अफराद को बचाने की कार्रवाई के दौरान सांस लेने में दुश्वारी के सबब अस्पताल में दाखिल कराया गया। दिल्ली पुलिस ने गैर इरादतन कत्ल के इल्जाम के तहत FIR दर्ज की है। पेश है एक रिपोर्ट।
1: दिल्ली पुलिस ने जनूबी दिल्ली के मालवीय नगर इलाके में एक होटल में भयानक आग लगने के वाकये में गैर इरादतन कत्ल के इल्जाम के तहत FIR दर्ज की है। इस सानहे में कम से कम 21 अफराद हलाक हो गए। दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने वाकये की छानबीन का हुक्म जारी किया है। दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर तरनजीत सिंह संधू ने कहा है कि DM, DCP और MCD के डिप्टी कमिश्नर की मुश्तरका कयादत में कल से एक माह के दौरान आग लगने की रोकथाम पर अमल आवरी से मुतालिक मुआयने, ऑडिट्स और अदम तामील की सूरत में सीलिंग की कार्रवाई करने के लिए होटल्स, गेस्ट हाउसों, नर्सिंग होम्स, कोचिंग सेंटर्स और दीगर मराकज के मुआयने की मुहिम शुरू की जाएगी। दिल्ली से अनुपम मिश्रा की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं तनवीर।
0: सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू, नायब सदर CP राधा कृष्णन, वजीर आजम नरेंद्र मोदी और मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने आग लगने के सानहे में हुए जानी नुकसान पर रंजो अफसोस का इजहार किया है। छत्तीसगढ़ में शहरी बल्दियाती इदारों के इंतखाबात के वोटों की गिनती कल होगी। 3 महलों में हुए पंचायती इंतखाबात के नतीजे का ऐलान भी कल ही होगा। शहरी बल्दियाती इदारों के आम और जिमनी इंतखाबात और 3 महलों में हुए पंचायती इंतखाबात पिछले पीर को हुए थे। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी की गुज़िश्ता 12 साल के दौरान दूर अंदेश क़यादत में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र के तहत भारत में खातिर ख्वाह तब्दीली आई है। इस मुद्दत के दौरान मोदी सरकार ने गरीबों, किसानों, ख़वातीन और जवानों की फलाह बहबूद और उन्हें बाइख्तियार बनाने के लिए कई अहम इकदाम किए हैं। आकाशवाणी न्यूज़ गुज़िश्ता 12 बरसों के दौरान अहम शोबों में हुकूमत की तरफ से किए गए इकदामात के बारे में एक खुसूसी फीचर पेश कर रहा है। आज हम भारतीय मुतवस्सित तबके को बाइख्तियार बनाने के लिए हुकूमत की तरफ से किए गए इकदामात के बारे में बात करेंगे। पेश है एक रिपोर्ट।
2: गुज़िश्ता 12 बरसों में हुकूमत ने वसी असलाहत के जरिए भारतीय मुतवस्सित तबके को बाइख्तियार बनाया है। टैक्स निजाम को सहल बनाया, बैंक कार्य को मुस्तहकम बनाया और पेंशन निजाम ने इस तबके के माली तहफ्फुज़ को मजीद बेहतर बनाया है। नए टैक्स निजाम के तहत 12 लाख रुपए सालाना की आमदनी वाले अफराद को टैक्स से मुस्तस्ना रखा गया है। इसके अलावा GST में इस्लाहात के जरिए रोजमर्रा की अशिया की कीमतों में कमी आई है। 2015 में शुरू की गई प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी स्कीम के तहत करोड़ों अफराद की जिंदगी में नुमाया तब्दीली आई है। आकाशवाणी न्यूज से बात करते हुए उत्तर प्रदेश के अभिषेक कुमार ने कहा कि इस स्कीम से किराए पर रहने वाले अफराद को नुमाया राहत मिली है।
3: मैंने प्रधानमंत्री आवास योजना में आवेदन किया था। आवेदन करने के बाद मेरे को लॉटरी ड्रॉ के माध्यम से मकान आवंटित हो गया। स्कीम बहुत ही बढ़िया है जिससे गरीब लोगों को आवास मिल रहे हैं।
2: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 43,52,00,000 हेल्थ कार्ड जारी किए गए जिससे आम लोगों को हिफ्जाने सेहत के शोबे में तहफ्फुज़ फराहम किया गया। इसके अलावा प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना स्कीम के तहत जन औषधि केंद्रों पर मयारी जेनरिक दवाएं 50-80% कम कीमतों पर दस्तयाब हैं। आकाशवाणी न्यूज से बात करते हुए बिहार के ब्रह्मदेव ने कहा कि इन केंद्रों पर आम दुकानों के मुकाबले दवाएं निहायत ही किफायती कीमतों पर दस्तयाब हैं।
4: लगभग 1 साल से यहाँ से दवाई ले रहा हूँ, सस्ती दवाई मिलती है। डॉक्टर का भी सलाह है कि जरूर से दवाई खरीदें।
2: 2015 में शुरू की गई प्रधानमंत्री मुद्रा योजना भी आम आदमी को बाख्तियार बनाने के अमल में एक मजबूत अवामिल साबित हुई है। इस स्कीम के तहत अहल मुस्तफिदीन को अब तक 40 लाख करोड़ रुपए के कर्जे तकसीम किए जा चुके हैं। जैसे जैसे आमदनी में इजाफा हो रहा है और मौके वसी हो रहे हैं, भारतीय मुतवस्सित तबका मुल्क की तरक्की, उमंग और खुशहाल मुस्तकबिल में फाल रोल अदा कर रहा है।

0: रहा है। दिल्ली से आनंद कुमार की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं शबाना बेगम।
1: वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने डेनमार्क के वजीर आजम के तौर पर लगातार तीसरी बार ओहदा संभालने पर मेटे फ्रेडरिक्सन को मुबारकबाद दी है। सोशल मीडिया की एक पोस्ट पर जनाब मोदी ने कहा कि भारत और डेनमार्क के दरमियान बाहमी एतमाद मुश्तरका अकदार और पायदार मुस्तकबिल के मुश्तरका अज़्म पर मबनी शराकतदारी है। वजीर आजम ने कहा कि वो भारत डेनमार्क ग्रीन कलीदी शराकतदारी को मजीद मुस्तहकम करने के लिए जनाब फ्रेडरिक्सन के साथ करीबी तौर पर मिलकर काम करने के मुंतजर हैं। लाओस के नायब वजीर आजम और वजीर खारजा थोंग सावन फोम विहाने ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में सदर जमहूरिया हिंद द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। मीटिंग के दौरान सदर जमहूरिया ने कहा कि दोनों ममालिक के दैरीना सकाफती ताल्लुकात हैं जो बुद्ध मत के मुश्तरका विरसे और रामायण से जाहिर होते हैं। उन्होंने कहा कि सिफारती ताल्लुकात के क्याम के 70वें सालगिरह का जश्न भारत लाओस दोतरफा ताल्लुकात में एक अहम संग मील है। वेनेजुएला की कारगुजार सदर डेलसी एलियोना रॉड्रिग्स कोम्स भारत के 5 रोजा दौरे के लिए नई दिल्ली पहुंच गई हैं। उमूर खारजा इकतसादियात और खजाना के वजरा और दीगर हुकाम पर मुश्तमिल एक वफ भी उनके हमरा भारत तशरीफ लाया है। दौरे के दौरान मोहतरमा रॉड्रिग्स वजीर आजम नरेंद्र मोदी के साथ दोतरफा तबादले ख्याल करेंगी। इस तबादले ख्याल में भारत वेनेजुएला ताल्लुकात के वसी तर पहलुओं का जायजा और तवानाई के तहफ्फुज़ तजारत व सरमायाकारी दवासाजी हिफ्जान सेहत नकलो हमल और काबिले तजदीद तवानाई के शोबों में मजीद तावुन के लिए राह हमवार करना शामिल है। भारतीय कंपनियों ने श्रीलंका के बुनियादी ढांचे और तवानाई के शोबे में अहम कॉन्ट्रैक्ट हासिल किए हैं जिससे दोनों पड़ोसी मुल्कों के दरमियान बढ़ते हुए इक्तिसादी तालमेल की अक्कासी होती है। लंका आईओसी पीएलसी ने सापू गासकांडा पावर स्टेशन के प्लांट ए फॉर 2026-27 के लिए 3,16,000 लीटर लुब्रिकेटिंग ऑयल सप्लाई करने का 392.47 मिलियन श्रीलंकाई रुपए की मालियत का ठेका हासिल किया है। भारतीय महकमा मौसमियात आईएमडी ने केरलम और माहे में बहुत तेज बारिश के पेश नजर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। उत्तराखंड शिमाल मशरकी भारत के कुछ हिस्सों मगरबी बंगाल कर्नाटक कोंकण गोवा तमिलनाडु पुदुचेरी कराईकल अंडमान और निकोबार जजायर और लक्षद्वीप में भी अगले 2 दिन के दौरान बहुत तेज बारिश की पेशगोई है। महकमे ने मशरकी राजस्थान हिमाचल प्रदेश मध्य प्रदेश जम्मू कश्मीर लद्दाख गिलगित बल्तिस्तान मुजफ्फराबाद में कल गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की पेशगोई की है। बैडमिंटन में भारतीय खिलाड़ी आयुष शेट्टी इंडोनेशिया ओपन सुपर 1000 के दूसरे राउंड में पहुंच गए हैं। उन्होंने चीन के वैंग होंगयांग को हराकर शानदार वापसी की है। मिक्स डबल्स मुकाबले में भी भारत के रोहन कपूर और ऋत्विका गाडे की जोड़ी ने चीनी ताइपे की जोड़ी को हराकर एक और जीत दर्ज की है। आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। मरकजी काबीना ने भारतीय एयरलाइन कंपनियों की मदद के लिए एटीएफ की कीमतों को मुस्तहकम करने की खातिर 10,000 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। उसने दिल्ली एनसीआर इलाके में पुराने ट्रकों और बसों को बदलने की खातिर कौमी राजधानी खत्ता मनसूबाबंदी बोर्ड को भी मंजूरी दी है। पार्टी से निकाले गए तृणमूल कांग्रेस के रुकन असेंबली रीता प्रताप बनर्जी को मगरबी बंगाल कानून साज असेंबली में अपोजिशन का रहनुमा मुकर्रर किया गया है। कांग्रेस के लीडर डीके शिवकुमार ने कर्नाटक के 25वें वजीर आला की हैसियत से हलफ लिया। डॉक्टर जी राम परमेश्वर नायब वजीर आला बने हैं जबकि 12 लेजिस्लेचर ने काबीनी वजरा की हैसियत से हलफ लिया। दिल्ली के मालविया नगर इलाके में आग लगने के एक बड़े हादसे में 21 अफराद की जान चली गई। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
2: ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 9:30 हो रहे हैं। प्रस्तुत है गैर फिल्मी गीत और गजलों का कार्यक्रम अंजुमन।

आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से आप सुन रहे हैं गैर फिल्मी गीत और गजलों का कार्यक्रम अंजुमन। अभी आप सुन रहे थे जगजीत सिंह की गाई गजल, और अब आइए आपको सुनवाते हैं पंकज उधास की गाई ये गजल। कार्यक्रम है अंजुमन।

और अब आइए सुनते हैं जगजीत सिंह, लता मंगेशकर और आशा भोसले की गाई ये गजल।

इस खूबसूरत गजल के साथ ही आज के सुरीले सफर को देते हैं यहीं विराम। उम्मीद है कि गीत और गजलों की ये महफिल आपके दिल को छू गई होगी। फिर होगी मुलाकात नई गीतों, नई बातों और नई यादों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत और सुनते रहिए ये गजल।

अभी आप सुन रहे थे गैर फिल्मी गीत और गजलों का कार्यक्रम अंजुमन। ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 10 बज रहे हैं। सुनिए डॉक्टर राजेंद्र उपाध्याय का लिखा रूपक काशी के मंदिर। प्रस्तुति है पांडुरंग पुराणिक और मोहन धनराज की।

0: काशी में अस्सी से वरुणा राजघाट के बीच फैली हुई घाट श्रृंखला के किसी भी बिंदु पर खड़े होकर हम यहाँ की जीवंत धरोहरों का साक्षात्कार कर सकते हैं। ऐतिहासिक महत्व के किंतु जागृत देवालय सत्ययुग से कलिकाल तक प्रवाहित पुण्य सलिला भागीरथी और उसके पश्चिमी तट पर दूर तक एक दूसरे से जुड़े हुए घाटों और मंदिरों की लंबी कतार कदम कदम तीर्थ की रचना करते हैं और महातीर्थ बन जाती है काशी।
1: पौराणिक प्रसंगों में भगवान शिव की प्रिय नगरी है काशी, जिसे वे कभी नहीं छोड़ते। यहाँ अपने अविमुक्त क्षेत्र में विराजमान होकर लोक मंगल की शिव साधना कर रहे हैं स्वयं विश्वेश्वर विश्वनाथ। दूसरी ओर अपने ही इस महाश्मशान की चिताग्नि में भस्मसात जीवात्मा को मोक्ष प्रदान करते हैं मृत्युंजय महादेव।
0: इस आनंदवन में आज भी प्रज्वलित है चिदानंदमयी दिव्य आत्मज्योति, जिसके आलोक से आलोकित है काशी। कभी कभी लगता है यहाँ कुछ नहीं बदला है, गति और स्थिति के बीच स्पंदित है कालचक्र, किंतु बह रहा है समय, बह रही है उत्तरवाहिनी गंगा।

पूरब में आकाश की नील सिंदूरी आभा के बीच सूर्योदय हो रहा है। गंगा में स्नान करते श्रद्धालु सूर्य को अर्घ दे रहे हैं, उपस्थान कर रहे हैं। देव मंदिरों में मंगल जागरण हो रहा है, घंटे बज रहे हैं, शंखर ध्वनि गूंज रही है। सचमुच भव्य है काशी नगरी का आध्यात्मिक वैभव।

0: मंदिर और मंदिर, मंदिरों की श्रृंखला चली गई है दूर तलक। शहर में हर गली, सड़क और चौराहों तक मंदिर ही मंदिर। सचमुच मंदिरों का नगर है काशी। अपने इतिहास, संस्कृति और परंपरा की दृष्टि से विश्व के प्राचीन नगरों में से एक है काशी।
1: विश्व स्तर पर एथेंस, रोम, जेरूसलम और बीजिंग के साथ साथ काशी को भी इतिहास और पुरातत्व के बीच जीवंत होने की प्रतिष्ठा प्राप्त है। वैदिक युग में ही अध्ययन का केंद्र बनी काशी और पौराणिक युग में शिव नगरी बन गई काशी।
0: जैन परंपरा के चार जैन तीर्थंकरों सुपार्श्वनाथ, श्रेयांसनाथ, चंद्रप्रभु और पार्श्वनाथ की जन्मभूमि है काशी। बौद्ध संप्रदाय में भगवान बुद्ध की प्रथम देशना का पवित्र स्थल है काशी।
1: पुराकाल से ही भारतीय धारा के विभिन्न धर्मों, संप्रदायों की साधना भूमि रही है काशी। अतः यहाँ सभी ने अपने अपने देवालय स्थापित किए। यहाँ सनातन वैदिक, जैन, बौद्ध धर्मों के साथ साथ भक्तिकाल में विकसित सभी पंथों और संप्रदायों के मंदिर, मठ और गुरुद्वारे मौजूद हैं।
0: सनातन परंपरा में मान्य पंचायतन के अंतर्गत शैव, शाक्त, वैष्णव, गणपत्य आदि सभी संप्रदायों से संबद्ध मंदिरों का निर्माण यहाँ बहुतायत में हुआ है। काशी की पुरातन लोकधारा में यक्षों, नागों, मातृकाओं और वृक्षों का पूजन भी प्रचलित रहा है। इस लोक आस्था का

0: अंतर्भाव मुख्य धारा की उपासना पद्धति में समाविष्ट है।
1: काशी में मौर्य कुषाण गुप्त काल से लेकर 12वीं सदी तक मंदिरों और मूर्तियों की प्रतिष्ठा होती रही है, किंतु दुर्भाग्य से अरब, तुर्क, गुलाम, खिलजी, लोदी, शर्की आदि आक्रमणकारियों द्वारा बार बार काशी के मंदिरों का विध्वंस किया जाता रहा। परिणामतः आज हमारे समक्ष 12वीं सदी से पहले के खंडहर हैं, खंडित मूर्तियां हैं, किंतु कोई सुरक्षित मंदिर नहीं है। अपवाद स्वरूप 12वीं सदी में ही कंदवा ग्राम में गाहड़ वालों द्वारा निर्मित कर्दमेश्वर मंदिर आक्रांताओं की चोट खाने के बावजूद आज भी अपने वैभव की गाथा कह रहा है।

0: वस्तुतः काशी क्षेत्र की विरासत यानी यहाँ के मंदिर, घाट, सारनाथ आदि का निर्माण 16वीं से 20वीं सदी तक होता रहा है। आक्रांताओं द्वारा बार बार ध्वस्त होने और लूटने के बावजूद जीवंत बनी रही काशी, यही तो है किसी संस्कृति की ऊर्जित जिजीविषा का उद्घोष। मृत्योर्मा अमृतम गमय।
1: नमो बिल्मिने च कवचिने च नमो वर्मिने च वरूथिने च नमः श्रुताय च श्रुतसेनाय च नमो दुन्दुभ्याय च हनन्याय च नमो धृष्णवे च प्रवृषाय च नमो निषङ्गिणे च शुधिमते च नमस्तीक्ष्णेशो वेचायुधिने च नमस्वायुधाय च सुधन्वने च नमस्त्याय च पथ्याय च नमः काट्याय च नीप्याय च नमः कुल्याय च सरस्याय च नमो नादेयाय च वैशन्ताय च नमः कूप्याय च वट्याय च नमः ईद्र्याय च तप्याय च नमो मेघ्याय च विद्युत्याय।

0: पौराणिक रूप से काशी को शिव क्षेत्र के तौर पर प्रतिष्ठा प्राप्त है। यहाँ पद पद पर शिवालय हैं। पंचायतन देवकुलिका के केंद्र में स्थापित ज्योतिर्लिंग समूची काशी को शिवमय बना देते हैं। काशी की अंतर्गृही बहिर्गृही पंचक्रोशी आदि यात्राओं में सर्वत्र विद्यमान हैं देवाधिदेव। सर्वत्र ज्योतिर्लिंग स्वरूप में पूजित भगवान शिव की प्रतिमाएं भी यहाँ के मंदिरों में स्थापित की गई अथवा भित्ति चित्रों या शिखरों पर उत्कीर्ण की गई हैं।
1: इन साकार प्रतिमाओं में उमा महेश्वर, दक्षिणामूर्ति, कल्याण सुंदर, गंगाधर, रावणानुग्रह, अंधकार, नटराज आदि विभिन्न स्वरूपों की कालक्षरित प्रतिमाएं स्वयं अपने इतिहास, स्थापत्य, शिल्प और पुरातत्व का संकेत करती प्रतीत होती हैं।
0: काशी वाराणसी या बनारस की पहचान है विश्वनाथ मंदिर। भारतीय आस्था का ये मंदिर कई बार तोड़ा गया और पुनः अपने वैभव के साथ निर्मित किया गया। वर्तमान विश्वनाथ मंदिर इंदौर की भक्त रानी अहल्याबाई होलकर द्वारा 1775 में बनवाया गया है। विश्वनाथ के अन्य मंदिरों में आदि विश्वेश्वर बांसभाटक और काशी हिंदू विश्वविद्यालय स्थित विश्वनाथ मंदिर है।
2: हरा हरा।

इसके अतिरिक्त प्रमुख शिव मंदिरों में समराजेश्वर, ललिता घाट, रघुराजेश्वर, भोसला घाट, कृत्तिवासेश्वर, हरतीरथ, मृत्युंजय महादेव, दारानगर, महाकालेश्वर, ओंकारेश्वर और त्रिलोचन महादेव, मछोदरी, तिलभांडेश्वर, पांडे हवेली, केदारेश्वर, केदारघाट, कांची कामकोटेश्वर मंदिर, हरिश्चंद्र घाट, लोलार्केश्वर, लोलार्क कुंड, कर्दमेश्वर, कंदवा, रामेश्वर मंदिर, रामेश्वर, वृषभध्वजेश्वर, कपिलधारा आदि विशेष प्रतिष्ठित हैं। भारत के राष्ट्रीय भूगोल में फैले हुए द्वादश ज्योतिर्लिंग भी यहाँ स्थापित हैं, जिनके अलग अलग मंदिर हैं। दक्षिण के वीर शैव संप्रदाय का सर्वाधिक प्राचीन मठ जंगमबाड़ी भी अपनी गरिमा के साथ मौजूद है, जहाँ का समूचा वातावरण ही शिवमय है।

0: भारतीय सामाजिक सांस्कृतिक धारा में शिव ही एकमात्र पार्थिव देवता हैं, जिनका पूजन परिवार या गृहस्थी के साथ अथवा एकल स्वरूप में करने का विधान है। पौराणिक युग में जब काशी को शिव नगरी बनने का महत्व प्राप्त हुआ तो भला शिव परिवार कैसे वंचित रहता। माता पार्वती, गणेश, कुमार कार्तिकेय, रुद्रगण अर्थात भैरव और सबके वाहन नंदी, सिंह, मूषक, मयूर और श्वान भी शिव परिवार के देवताओं के साथ स्थापित हो गए।
1: माता पार्वती के अन्नपूर्णा स्वरूप के साथ शाक्त साधना में विकसित उनके सभी रूपों के अलग अलग मंदिर यहाँ विद्यमान हैं। महिष मर्दिनी दुर्गा, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती के अतिरिक्त नवदुर्गा, नवगौरी, दश महाविद्या, सप्तमात्रिका, 64 योगिनी आदि देवियों के लिए अलग अलग साधना स्थलों का निर्माण किया गया, जिनके मंदिरों में तांत्रिक विधि विधान के अनुसार साधना प्रचलित रही है।
0: मातृशक्तियों के ये मंदिर नगर के विभिन्न मोहल्लों में अवस्थित हैं। इनमें प्रसिद्ध हैं अन्नपूर्णा मंदिर, दुर्गा मंदिर, महालक्ष्मी मंदिर, कालीबाड़ी, शव शिवा मंदिर, त्रिपुर सुंदरी, ललिता मंदिर, तारा मंदिर, पीताम्बरा मंदिर, संकटा मंदिर, कामाक्षा मंदिर, शीतला मंदिर आदि। वासंती और शारदीय नवरात्र की विभिन्न तिथियों में श्रद्धालुजन अलग अलग मातृपीठों की यात्रा एवं आराधना करते हैं।

0: सृष्टि स्थिति संहार की शक्ति जगदम्बा की उपासना के साथ यहाँ शिवपुत्र गणेश और कार्तिकेय साथ ही भैरवों की उपासना भी प्रचलित रही है। काशी नगरी के केंद्र से चतुर्धिक परिधि के बीच 56 विनायक और अष्ट भैरव के अनेक मंदिर स्थापित हैं। कुछ मंदिरों में गणेश के साथ कार्तिकेय की प्रतिमाएं भी मिलती हैं।
1: गणेश मंदिरों में प्रमुख हैं ढूंढराज गणपति मंदिर, साक्षी विनायक मंदिर, चिंताहरण गणेश मंदिर, सिद्धि विनायक मंदिर, बड़ा गणेश मंदिर, जौ विनायक, देहली विनायक मंदिर आदि। इसी क्रम में बटुक भैरव, दंडपाणि भैरव, काल भैरव, चंड भैरव, लाट भैरव, भूत भैरव, संहार भैरव आदि भैरव मंदिर भी इसी शिव परिवार की परिधि में स्थापित।

0: सनातन आस्था के पंचायतन में स्थित विष्णु और सूर्य को भी यहाँ पूरा महत्व दिया गया है। सूर्य यहाँ अपने द्वादश आदित्य स्वरूप में विभिन्न मंदिरों में स्थापित हैं। स्वतंत्र रूप में लोलार्क कुंड और सूर्य कुंड पर सूर्य मंदिर विद्यमान है। जहाँ तक विष्णु मंदिरों का प्रश्न है, उनका भी काशी में पर्याप्त महत्व है। 11वीं सदी में स्थापित आदिकेशव मंदिर से लेकर वैष्णव संप्रदायों के अनुसार लक्ष्मी नरसिंह, श्री राम पंचायतन, श्री कृष्ण आदि विष्णु अवतारों के मंदिर भी यहाँ काफी हैं।
1: इनमें आदिकेशव मंदिर, बिंदु माधव मंदिर, लक्ष्मी नरसिंह मंदिर, लक्ष्मी नारायण मंदिर, गोपाल मंदिर, राम मंदिर, जगन्नाथ मंदिर आदि अत्यंत प्रसिद्ध हैं। राम भक्त संत गोस्वामी तुलसीदास द्वारा 16वीं-17वीं सदी के दरमियान स्थापित किए गए संकट मोचन हनुमान मंदिर से लेकर हनुमान फाटक तक अलग अलग 12 हनुमान मंदिर तो हैं ही, इनके अतिरिक्त हनुमान के प्रति लोक आस्था ने भगवान शंकर के अवतार के तौर पर भी शिव मंदिरों में भी हनुमान को प्रतिष्ठित कर दिया है।
0: सनातन धर्म की मूर्ति पूजा विधान में जितनी सांसारिकता और पारिवारिक अपनापन है, उसी ने इस बहुदेववाद को सच्चिदानंद परब्रह्म के विश्व रूप में प्रतिष्ठित कर दिया है। इसीलिए तो काशी का कंकर कंकर शंकर है।

0: सनातन आस्था के देवकुल के साथ यहाँ मध्यकालीन संतों, योगियों और साधकों के भी अपने मठ और आश्रम रहे हैं और कुछ बाद में बने हैं। श्री विद्यामठ, सुमेरु पीठ, गुरुधाम मंदिर, कीनाराम स्थल, भास्करानंद समाधि स्थल, संत कबीर मठ, गोरक्ष मंदिर मठ, तैलंग स्वामी मठ, गुरुद्वारा विशुद्धानंद कानन, रामानुज मठ, वल्लभाचार्य की बैठकें और रामानंद द्वारा स्थापित श्रीमठ आदि लोक आस्था के प्रेरणा केंद्र हैं।
1: प्राचीन वैदिक औपनिषदिक धारा के दार्शनिक विकास क्रम में जिन ऋषियों ने वेदों को अपौरुषीय प्रमाण मानकर स्वीकार किया उन्हें सनातन धर्म में आस्तिक कहा गया और जिन चिंतकों ने वेदों के प्रामाण्य को अस्वीकार करते हुए उसे पौरुषीय बताया उन्हें नास्तिक कहा गया। नास्तिक दर्शन है जैन, बौद्ध और चार्वाक। इनमें जैन परंपरा के 24 तीर्थंकरों में 4 तीर्थंकरों की जन्मभूमि है काशी।
0: भदैनी मोहल्ले में भगवान सुपार्श्वनाथ, भेड़ूपुर में भगवान पार्श्वनाथ, सिंहपुर सारनाथ में श्रेयांश प्रभु और चंद्रनगर अदलहाट से पहले चंद्र प्रभु के स्थान एवं मंदिर हैं। इनके अतिरिक्त श्वेतांबर और दिगंबर जैन संप्रदायों के भी अपने अपने मंदिर हैं।
1: जैन मंदिरों में 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर को समर्पित कई मंदिर बने हैं। काशी में जैन मंदिरों और प्रतिमाओं का निर्माण 6वीं सदी से 20वीं सदी तक अविरल किया जाता रहा है। जैन आस्था के ये मंदिर भी बार बार आक्रांत हुए, तोड़े गए और फिर तनकर खड़े हो गए उसी गौरव के साथ।

शंकरों को प्रणति अर्पित कर आइए चलते हैं ऋषिपत्तन सारनाथ। बोध गया में स्वयं संबुद्ध बोधिसत्व ने काशी नगरी के उत्तर में स्थित सारनाथ के मृगदाव में पंचवर्गीय भिक्षुओं के बीच धर्मचक्र प्रवर्तन किया, उन्हें देशना दी, प्रव्रज्ञा प्रदान की। बौद्ध संप्रदाय के महत्वपूर्ण तीर्थ स्थलों में से एक है सारनाथ वाराणसी।

0: भगवान बुद्ध के व्यावहारिक दर्शन, उनकी देशना, उनके आचार का प्रभाव तत्कालीन राजन्यों और प्रजाजनों पर भी समान रूप से पड़ रहा था। बुद्ध के बाद भी बौद्ध भिक्षुओं ने चारिका करते हुए बुद्धवाणी का प्रसार जारी रखा। सर्वप्रथम सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म को राजधर्म की प्रतिष्ठा प्रदान की और बुद्ध देशना के पालन हेतु राज्याज्ञा भी प्रसारित की।
1: इसी क्रम में अशोक ने बुद्ध से जुड़े सभी प्रमुख स्थानों पर स्तूप, चैत्य, विहार आदि बनवाए। यहाँ सारनाथ में विशाल धम्मेक स्तूप, सिंह शीर्ष स्तंभ जिसके ऊपर धर्म चक्र स्थापित था, एवं कई विहार भी अशोक ने ही समर्पित किए। सारनाथ में स्तूप, चैत्य, बुद्ध प्रतिमाएं, मंदिर और विहारों के निर्माण का ये क्रम 11वीं सदी तक जारी रहा है।
0: आक्रांताओं द्वारा मंदिरों के विध्वंस क्रम में सारनाथ का वैभव खंडहर बनकर मिट्टी के टीलों में तब्दील हो चुका था। 20वीं सदी के पूर्वार्ध में की गई पुरातात्विक खुदाई में जीवंत होने लगा इतिहास, मुखर हो उठे खंडहर और गूंजने लगी बुद्धवाणी।

उन्हीं दिनों श्रीलंका के सिंहली भिक्षु अनागरिक धर्मपाल ने बुद्ध मंदिर की प्रतिष्ठा की। अब तो यहाँ सभी प्रमुख बौद्ध धर्मानुयायी देशों ने भी अपने अपने मंदिर, अपने अपने विहार बनवाकर सारनाथ को वैश्विक स्तर पर प्रमुख बौद्ध तीर्थ के रूप में स्थापित कर दिया है।

काशी की ये जीवंत धरोहर, यहाँ के मंदिर भौतिक स्तर पर जितने स्थूल हैं, आध्यात्मिक स्तर पर उतने ही सूक्ष्म हैं, चिदानंदमय ज्योतिष्मान।

अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर राजेंद्र उपाध्याय का लिखा रूपक काशी के मंदिर। वाचन था पांडुरंग पुराणिक और पुष्पा मिश्रा का। प्रस्तुति थी पांडुरंग पुराणिक और मोहन धनराज की। इसी के साथ ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है।

यह आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। इस स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 10:30 हो रहे हैं। प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में सुनिए विष्णु प्रसन्ना और साथी का बजाया शहनाई पर राग पूरिया कल्याण।

शास्त्रीय संगीत में अभी आप सुन रहे थे विष्णु प्रसन्ना और साथी का शहनाई पर बजाया राग पुरिया कल्याण। इसी के साथ शास्त्रीय संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है।

यह आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। इस स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 11 बजने को हैं। थोड़ी ही देर में आप हमारे दिल्ली केंद्र से समाचार सुनेंगे। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विमानन ईंधन की कीमतों को स्थिर रखने के लिए तेल विपणन कंपनियों को 10,000 करोड़ रुपए की एकमुश्त बजटीय सहायता देने का निर्णय लिया है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारतीय विमानन कंपनियों की सहायता के लिए ये आत्मनिर्भर कोष 36 महीने के लिए लागू रहेगा। मंत्रिमंडल ने दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पुराने ट्रक और बस को नए वाहनों से बदलने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड को सहायता प्रदान करने की योजना को भी मंजूरी दी है। श्री वैष्णव ने बताया कि योजना के अंतर्गत लगभग 2,00,000 ट्रक और 16,000 बस BS6 या इलेक्ट्रिक वाहनों से बदली जाएंगी।
1: दिल्ली के पॉल्यूशन को रोकने के लिए लगातार कई स्टेप्स लिए जा रहे हैं। उन स्टेप्स में एक बहुत बड़ा निर्णय लिया गया कि जो 40% कंट्रीब्यूशन है पार्टिकुलेट मटेरियल का, वो ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर के कारण आता है। और उस ट्रांसपोर्टेशन में जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है हैवी ट्रक्स और बसेस, पुरानी ट्रकों और बसों को रिप्लेस करने का इसमें फैसला लिया गया है।
0: मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने ओडिशा में रामेश्वर से पारादीप तक 163 किलोमीटर से अधिक लंबे तटीय राजमार्ग के निर्माण को भी मंजूरी दे दी है। इस परियोजना की कुल लागत 830 करोड़ रुपए से अधिक होगी। श्री वैष्णव ने बताया कि इससे रामेश्वर और पारादीप के बीच यात्रा का समय लगभग 2.5 घंटे कम हो जाएगा। मंत्रिमंडल ने बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग 31 और 231 के खगड़िया पूर्णिया खंड को 4 लेन करने को भी मंजूरी दी है। इसकी लागत 3,936 करोड़ रुपए से अधिक होगी। सर्वोच्च न्यायालय ने अरावली पर्वत श्रृंखला की परिभाषा और सीमांकन संबंधी केंद्र सरकार की रिपोर्ट की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद की महानिदेशक कंचन देवी करेंगी। समिति को इस वर्ष 31 अगस्त तक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के

0: श्रीनगर में एक होटल में आग लगने से 21 लोगों की मौत हो गई। आग पर काबू पा लिया गया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि स्थिति पर कड़ी नजर रखी जा रही है। शहरी विकास मंत्री आशीष सूद ने कहा कि लापरवाही करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
1: जिनके लापरवाही के कारण ये हुआ है, पुलिस जांच करके उसे तुरंत अभी गिरफ्तार करेंगी। आसपास के इस एरिए में ऐसी जितनी इमारतें चल रही हैं, जिसमें राई बराबर भी वॉयलेशन होगी, शाम तक उसकी जांच करके ऐसी सभी इमारतों को सील किया जाएगा। एक भी दोषी छोड़ा नहीं जाएगा।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने हादसे पर दुख व्यक्त किया है। पश्चिम बंगाल विधानसभा में ऋतव्रत बनर्जी को विपक्ष का नेता नियुक्त किया गया है। विधानसभा अध्यक्ष द्वारा तृणमूल कांग्रेस के बागी विधायकों के एक समूह को अलग विधायक दल के रूप में मान्यता देने के बाद ये नियुक्ति हुई है। कर्नाटक में वरिष्ठ कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार ने आज राज्य के 25वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। सिद्धरमैया मंत्रिमंडल में गृह विभाग संभाल रहे डॉ जी परमेश्वर ने उप मुख्यमंत्री पद की और 12 विधायकों ने कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री डीके शिवकुमार को बधाई दी है। श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार जनता के कल्याण के लिए कर्नाटक सरकार के साथ मिलकर काम करेगी। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि भारत में आवागमन वाहन पारितंत्र अब किसी एक तकनीक पर निर्भर नहीं रहेगा। नई दिल्ली में हीरो मोटोकॉर्प की पहली फ्लेक्स फ्यूल मोटरसाइकिल बाजार में उतारे जाने के अवसर पर उन्होंने कहा कि भविष्य का वाहन पारितंत्र इलेक्ट्रिक वाहनों, जैव ईंधन, हाइड्रोजन और नवीकरणीय ऊर्जा को भारतीय परिस्थितियों के अनुरूप एकीकृत करेगा। इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन में आयुष शेट्टी सिंगल्स तथा रोहन कपूर और ऋत्विका शिवानी गद्दे मिक्स्ड डबल्स प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। आयुष ने चीन के वेंग होंगयांग को हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।